0: सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की आलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की आलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? आलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में इवेंट्स का आज आखिरी दिन, कई गोल्ड मेडल्स पर भारत की तगड़ी दावेदारी। पहले क्रिकेट और फिर हॉकी में होगा सोना जीतने का मौका। एशियन गेम्स में आज क्रिकेट की पिच पर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। सुबह 10 बजे से निशन में होगा मैच, जीतकर गोल्ड लाने के लिए तैयार है टीम। आज एक और क्रिकेट सीरीज अपने नाम कर सकती है इंडियन टीम। न्यू चंडीगढ़ में 2 बजे से वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा और अंतिम वनडे। एशियन गेम्स के पदक वीरों की स्वदेश वापसी जारी है। एयरपोर्ट पर परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम। क्रिकेट और हॉकी के बाद आज फुटबॉल फीवर का भी दिन है। कोलकाता में आज ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम खेलेगी फ्रेंडली मैच, शाम 7:30 बजे से होगा मैच। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आज, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रख रही हैं जेतिया व्रत, आज ही महालक्ष्मी व्रत का भी समापन। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की पूजा की तैयारी, 500 सालों से हो रहा है भव्य आयोजन, 15 दिनों तक चलती है आराधना। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने की है पाचो हेलीकॉप्टर की गन सिस्टम की परख, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

आप बैठे कहां हैं? एक बात और मेरे पागलों याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो, जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, चार दो पंडाल सामने लगे, दो पंडाल तीन बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे, पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि दिल में कथा बैठे कैसे? सावधान से, जब तक कथा में बैठे ना तब तक सिर्फ कथा सुने, केवल कथा, सावधान होकर के बैठे। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाएं, कथा जब तक विराम ना हो तब तक भगवान को पीठ दिखा कर ना जाएं, कोशिश भर। अब कोई जरूरी काम आ गया तो बात अलग है, पर बहुत जरूरी नहीं है ना, तो पूरी कथा विराम हो तब जाएं, श्रोता सुन लें, यजमान जी। दूसरा नियम क्या है? इन सात दिनों में, वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर सात दिन तो छोड़ ही देना, सात दिन में तो ना बोलना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा नियम, हो सके तो दिन में फलाहार रहो, रात को फुलाहार लो। पर मान लो कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, खा के आओ, पर इतना ही खा के आओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रसाद तो पाके आओ पर थोड़ा कम, हाँ कम आहार, ताकि नींद भी ना आए। डिस्टर्ब कई प्रकार से होता है, केवल इससे नहीं, कई प्रकार से होता है। नींद आ जाए, ज्यादा पाने से नींद भी तो आती है, तो थोड़ा नींद भी ना आए, थोड़ा चैतन्यता बनी रहे, क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता ना तो पूरा भोजन उसको पचाने में लग जाता, फिर कथा कौन सुनेगा? पड़ोसी। इसलिए कम आहार पाके आओ। पांचवा नियम, वो भी बहुत अच्छा नियम है, इन सात दिनों में स्वस्ति तिलक मस्तक पर लगाना और वैष्णव मंत्र का जप करना। गुरु जी का कोई मंत्र दिया हो, राम नाम, या आपको जो मंत्र प्रिय लगता हो, आप जिनके उपासक हो, वो मंत्र जप करना। छठवां नियम, आहार पाएं पर वही आहार भोजन खाएं जिस जो ठाकुर जी को जिसका भोग लगाया जा सके। हम दरबार में बैठे थे तो एक बार हमसे गलती हो गई, हमने एक चेला को कहा बेटा लहसुन प्याज नहीं करना, बाकी आगे का नहीं बोल पाए। तो एक साल बाद हमारे पास आया, बोले गुरुजी दो काम तो हो गए पर एक नहीं हो रहा, हमका नियम पूरा किया। अरे बोले लहसुन प्याज आज तक छुआ नहीं। तो हमने अपने गुरुजी से वाईफाई में सिग्नल मिलाया कि एक साल से आ रहा है और हमने इसको वचन दे दिया था, इसका काम क्यों नहीं हो रहा? बोले इससे कहो पौवा बंद क्यों नहीं किया। तो हमने कहा ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, तो पौवा पीता रहा छह दिन और मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करता रहा, अब कहां से तुझ पे कृपा हो जाए? बोले गुरुजी आपने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, भगवान कसम लहसुन प्याज नहीं खाया। हमका मूसर चंदा लहसुन प्याज नहीं खाया, बाकी सब? बोले बाकी रोका ही नहीं आप। इसलिए हम ये छठवां नियम बता रहे स्पेशल, वही पाए जिससे जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके, आहार में भी सात्विक आहार। सातवा नियम, यजमान खास करके सुने, सातवा नियम है कथा सुनने का, सात दिन की कथा है, सात नियम। सातवा नियम है, इन सात दिनों में दुश्मन भी आ जाए तो भी मन में ईर्ष्या ना लाना, यही सोचना इतने बड़े पंडाल में
लगता है हनुमान जी कोई ना कोई रूप बना करके कथा सुनने आए, क्योंकि हर कथा में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। पूछो क्यों?

0: लखन
1: सीता मन वसिया।
0: हनुमान जी को कथा प्रिय है, हम लोगों को वृथा प्रिय है। पूछो क्या प्रिय है? हाँ, कथा होत के बीच में हम लोगों की बात, हमारी नहीं, तुम सुनो अपनी भी 50-50।

0: कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती है। जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है कि ये क्या हो गया। लगता है ये जो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते हैं तो क्या करते हैं वो, दो तीन काम। जैसे ही कथा में बैठेंगे तुरंत नींद आएगी, और कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट में जय बोलते हैं। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिक्स है, वो कथा में सबसे आगे आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते हैं, बोलो सीताराम। त्यागी कौन है पूछो, कौन?
1: तजो पिता पहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत व्रज नंदन भय मुद मंगल कारी। कौन है त्यागी? तजो पिता पहलाद। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। और सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता, पर भरत महतारी, किसके कारण? भगवान के कारण। बलि गुरु तजो, गुरु का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन बलि महाराज ने गुरु का परित्याग कर दिया, किसके कारण? बोलो बोलो बोलो, भगवान के कारण। कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगलकारी। जो राम का नहीं वो किसी, तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त, जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्ची

भागवत जी के महत्व में ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाया, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप?

0: बोले कौन कृष्ण?
1: श्री कृष्णाय वयम नमः।
0: बोले कौन?
2: तापत्रे विनाशाय,
0: जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहुप्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहा है ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ, फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है, और ये जो कथा है ना ये मणि है मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था, और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगे कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो अमर। तो देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है, कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ रहा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए, और साहब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहे दम हो तो आ आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, अब हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम होते इधर तक आओ, फिर बताते हैं। उस बालक को आने देना, बेटे तुम आ जाओ लेके।

0: सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की अलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की अलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त, जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन खेलों में इवेंट्स का आज आखिरी दिन, कई गोल्ड मेडल पर भारत की तगड़ी दावेदारी, पहले क्रिकेट और फिर हॉकी में होगा सोना जीतने का मौका। एशियन गेम्स में आज क्रिकेट की पिच पर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, सुबह 10 बजे से निश्चित में होगा मैच, जीत कर गोल्ड लाने के लिए तैयार है टीम। आज न्यू चंडीगढ़ में 2 बजे दिन से वेस्ट इंडीज के साथ भारत का तीसरा और अंतिम वनडे मैच, क्रिकेट सीरीज अपने नाम करने के बाद टीम के पास क्लीन स्वीप का मौका। एशियन गेम्स के पदक वीरों की स्वदेशी वापसी जारी है, एयरपोर्ट पर परेनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम किया गया। क्रिकेट और हॉकी के बाद आज फुटबॉल फीवर का भी दिन, कोलकाता में आज ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम खेलेगी फ्रेंडली मैच, शाम 7:30 बजे से होगा मैच। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आज, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं जितिया व्रत रख रही हैं, आज ही महालक्ष्मी व्रत का भी समापन है। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की पूजा की तैयारी, 500 सालों से भव्य आयोजन हो रहा है, 15 दिनों तक चलती है आराधना। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर के गन सिस्टम की परख की, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: एशियन गेम्स में आज मेंस क्रिकेट का फाइनल मैच, भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने, गोल्ड मेडल के लिए होगा मैच। निशन के कोरोगी पार्क मैदान में सुबह 10 बजे से खेला जाएगा क्रिकेट का फाइनल मैच, भारत की ओर से मैदान पर उतरेंगे T20 के स्टार मैच के प्लेयर्स। एशियन गेम्स में एक और गोल्ड जीतने के इरादे से पिच पर उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम, पिच पर नमी, आसमान में उछाल और टर्न के कारण स्पिनर्स पर रहेंगी निगाहें। आज ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच, दिन में 2 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा मैच, भारतीय टीम 2-0 से आगे। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, 1998 के बाद पहली बार एक ही दिन में 2 अलग अलग देशों के खिलाफ मैच खेलेंगे भारतीय क्रिकेटर। एशियन गेम्स में आज पुरुष हॉकी में भी भारत के पास गोल्ड जीतने का मौका, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच सकती है भारतीय टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का दिन में 3:30 बजे से मलेशिया से होगा फाइनल मैच, खिताब पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। गोल्ड जीतने पर एलए ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई करेगी टीम, जीत के लिए करना होगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। एशियन गेम्स में इवेंट के आखिरी दिन आज भी भारत को कई मेडल्स मिलने की उम्मीद, तो वहीं कुश्ती, तीरंदाजी समेत कई खेलों में दावेदारी होगी। एशियन गेम्स में कुल 76 मेडल्स जीतकर 5वें नंबर पर है भारत, अब तक 16 गोल्ड, 25 रजत और 35 कांस्य पदकों पर कब्जा। जापान से पदक वीरों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में देश का परचम लहराकर घर लौटे निशानेबाज परेनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। एशियन गेम्स के बाद अब ओलंपिक में है खिलाड़ियों की निगाहें, कहा एशियन गेम्स से हासिल हुआ शानदार एक्सपीरियंस। केरला के पलक्कड़ में एशियन गेम्स के पदकवीर एन श्री शंकर का शानदार स्वागत किया गया, पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। झारखंड के सिमडेगा में हॉकी के प्लेयर्स ने मनाया जश्न, एशियन गेम्स में महिला टीम की जीत से दिखा उत्साह। एशियन गेम्स में भारत पाकिस्तान की खिताबी टक्कर से पहले वाराणसी में बाबा सारंगनाथ की पूजा आरती, प्रशंसकों ने भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। क्रिकेट फैंस ने तिरंगे और भारतीय क्रिकेट टीम को तस्वीरों के साथ बाबा सारंगनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार के साथ टीम इंडिया के लिए नारे लगे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर बॉक्सर अंकुश पंघाल के घर खुशी का माहौल, गांव आने पर जुलूस निकालकर किया जाएगा स्वागत। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया के घर पर हुई आतिशबाजी, परिजनों ने मिठाइयां बांटकर कामयाबी का जश्न मनाया। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला, परिजनों ने बांटी मिठाइयां। एशियन गेम्स में कल विमेंस हॉकी से भारत के लिए आई शानदार खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद गोल्ड जीता। भारत की बेटियों ने हॉकी में भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, भारत ने 1-0 से चाइना को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। लालरे मसियामी ने शानदार फील्ड गोल कर भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, तो वहीं ये उनका 200वां इंटरनेशनल मैच था। गोल्ड के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक और गुड न्यूज आई, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। एशियन गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक, पुरुष ध्वजवाहक के नाम का आज ऐलान होगा। जापान के नागोया में कल होगी क्लोजिंग सेरेमनी। ऐतिहासिक जीत पर चैंपियन बेटियों का शानदार जश्न, डांस करती हुई दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम, हॉकी इंडिया ने खास वीडियो शेयर कर लिखा चैंपियन चैंपियन। ग्वालियर में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी के घर पर भव्य जश्न मनाया गया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिठाई बांटी गई, परिवार के सदस्यों ने तिरंगा हाथ में लेकर फहराया। झारखंड की खूंटी में हॉकी प्लेयर निकी प्रधान पर जीत का जश्न, तो वहीं परिवार ने एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर मनाई खुशी, हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आए। गोल्डन जीत पर मणिपुर के इम्फाल में हॉकी खिलाड़ी खरीबाम बिचू देवी के घर पर जश्न मना, परिवार ने ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर रोहतक में दीपिका सहरावत के परिवार ने जश्न मनाया, पिता जगदीश और दादी फूलपति की आंखों में दिखा गर्व। पहलवान सुजीत कलकल की गोल्डन जीत पर चरखी दादरी में परिवार की खुशी की लहर, परिजनों ने टीवी पर लाइव मुकाबला देखा और जीतते हुए तालियां बजाई, तो वहीं विक्ट्री साइन भी दिखाया। एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज जीत कर लौटी प्राची चौधरी का सहारनपुर में ग्रैंड वेलकम हुआ, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया, मां के हाथों में सम्मान पाकर भावुक हुई प्राची। एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक जीतकर मेरठ लौटी पारुल चौधरी, फूल मालाओं से शानदार स्वागत, भारी संख्या में उमड़े लोग। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट अशिमा अहलावत का रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत, परिवार और समर्थकों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शूटर्स कमलजीत और सुरुचि सिंह का रेवाड़ी में स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजा सुलखा गांव। कोलकाता में आज फुटबॉल फीवर का दिन है, ब्राजील की नेशनल टीम भारतीय ब्लू टाइगर्स के साथ खेलेगी फ्रेंडली मैच। स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शाम 7:30 बजे से होगा मैच, जोश के साथ कोलकाता के फुटबॉल प्रेमी। पहली बार किसी भारतीय टीम के साथ मैच खेलेगी ब्राजील की टीम, मैदान में दिखेंगे विनीसियस सहित कई स्टार प्लेयर्स। मैच से पहले कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस में बहाया था पसीना, 5 बार की विश्व चैंपियन है ब्राजील, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की होगी कोशिश। कोलकाता में भारत ब्राजील फुटबॉल मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, सीसीटीवी से भी निगरानी। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की बनाई जा रही है प्रतिमा, गढ़ सोना पोता गांव में सदियों से परंपरा है। केशवपुर में 500 साल से चली आ रही है दुर्गा पूजा की परंपरा, माता के महालक्ष्मी चंडी का स्वरूप की 15 दिन की होती है पूजा। दुर्गापुर में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल, भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने कसी कमर। आज है पितृपक्ष की अष्टमी, संतान की लंबी उम्र उन्नति और मंगल कामना के लिए महिलाएं रख रही हैं जीवित पुत्र का व्रत। पितृपक्ष की अष्टमी को मिल सकता है महालक्ष्मी की अपार कृपा। इस तिथि पर होती है महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने रेगिस्तानी इलाकों में अपाचे हेलीकॉप्टर के गन सिस्टम की परख की। मुश्किल माहौल में हवाई जंग की तैयारियों की नुमाइश। साउथ वेस्टर्न कमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हथियारों की सटीक क्षमता, ऑपरेशनल तैयारी और मिशन के लिए तैयार रहने की क्षमता की झलक दिखी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन। भारत और मंगोलिया की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 के तहत भारत और मंगोलिया के जवानों ने स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ली। मुश्किल इलाकों में तेजी और असरदार ढंग से तैनात होने की क्षमता हुई बेहतर। जोधपुर में जारी है वायुसेना का तरंग शक्ति अभ्यास 2026। हिस्सा ले रहे हैं कई देशों के एयरक्राफ्ट, एयरक्रू और सपोर्ट टीमों ने साथ साथ फ्लाइंग ऑपरेशन के अनुभव साझा किए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या आपके कपड़ों की अलमारी से आपकी जिंदगी का सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की अलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की अलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर की अलग अलग अलमारियों की और उनके रख रखाव की और आपके भाग्य की। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो अलग अलग अलमारियां हैं उनको कैसे रखना चाहिए और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपके घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है? देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके बचत को, सेहत को और सुरक्षा को ठीक किया जा सकता है। यानी आप अगर अपने घर की अलमारियों को ठीक से रखें तो आप धन की बचत कर पाएंगे, चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो बचत, सेहत और सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपके घर की अलमारियों से कंट्रोल होती हैं। आम तौर पर हर घर में, चाहे दीवार में फिक्स हो या अलग से ली गई हो, कपड़ों की अलमारी अवश्य होती है। क्या विशेषता है इसकी? कपड़ों की जो अलमारी है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है, और अगर आप कपड़ों की अलमारी को ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं।

0: तो इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा रखने से, व्यवस्थित रखने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। इस अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखिए, कपड़े ठूंस कर अव्यवस्थित तरीके से, खराब तरीके से ना रखें। इस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्य स्थितियों में नहीं रखना चाहिए। धन रखने पर बहुत तेजी से खर्च होगा। हालांकि इस अलमारी में अगर कोई दराज है, कोई छोटी अलमारी के अंदर रैक है, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण कागज आप रख सकते हैं। कपड़ों की अलमारी में अगर आप आभूषण रखेंगे, उनके खोने का खतरा होगा, और अगर धन रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, बड़ी तेजी से खर्च होता चला जाएगा। रसोई की जो अलमारी है, जिसमें आप डब्बे रखते हैं अनाज के, मसालों के, या बर्तन भी रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है। रसोई की अलमारी भैया सूर्य की अलमारी है, इससे कनेक्ट करता है सूर्य। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान, अनाज, मसाले, दालें और बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को पूरे तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर दरवाजे वाला बना रहे हैं तो पारदर्शी दरवाजे यानी ट्रांसपेरेंट डोर्स या जाली वाले दरवाजे इसमें लगाने चाहिए। और मसाले और अनाज के डब्बे इसमें अलग अलग आपको रखने चाहिए। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी आपको अलमारी में अलग अलग रखने चाहिए। रसोई की जो अलमारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। और अगर आप रसोई की अलमारी में डब्बे सही से रखते हैं, बर्तन सही से रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, सूर्य प्रबल होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां घर में चार बर्तन होते हैं वहां टकराते हैं, इसका मतलब झगड़ा होता है। तो अगर आप बर्तन अव्यवस्थित अलमारी में रखते हैं तो बर्तन टकराएंगे और वो घर के लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा। इसीलिए रसोई में चाहे वो अनाज वाली अलमारी हो, मसाले वाली अलमारी हो, बर्तन वाली अलमारी हो, उसको आपको ठीक तरीके से रखना चाहिए। देखिए, धन की अलमारी वो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, और इसकी चाबी हमेशा बंद रख के अपने पास रखते हैं। अलमारी नॉर्मली ये खुला नहीं छोड़ते, बड़ी सिक्योरिटी से इसको रखने का प्रयास करते हैं। धन की जो अलमारी है इसका संबंध होता है बृहस्पति से, जुपिटर से, और धन की अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर धन की अलमारी या आपकी तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के कोने में हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। धन की अलमारी, बेहतर तो ये होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर धन की अलमारी खुले तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर धन की अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। तो धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा, इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। जो आपके धन रखने की अलमारी है उसका रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप सिंदूर से बनाकर लगा दें और हर दीपावली पर अलमारी की साफ सफाई करें, दीपावली पर इस अलमारी की पूजा भी करें और हर दीपावली पर पुनः एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर अपने धन की अलमारी पर लगा लेंगे। देखिए, किताबों की जो अलमारी है, जो आपकी बुक शेल्फ है, वो दरअसल बुद्ध का स्थान है। पढ़ना लिखना, चीजों को संभालना, ज्ञान को इकट्ठा करना, हालांकि ज्ञान में बृहस्पति का रोल है, लेकिन किताबों की जो अलमारी है वो बुद्ध की अलमारी है। आप याद रखिए कि अगर आप अपनी किताबों को सलीके से रखते हैं, पढ़ने के बाद संभाल कर रखते हैं, नियमित रूप से किताबों की अलमारी की सफाई करते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। अगर आप किताबों को फाड़ते हैं, मुड़े तुड़े हाल में ठूंस कर रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, तो ऐसा करने से दो चीजें पक्की होंगी। एक तो जब आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उस समय बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, दूसरा आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपनी किताबों को, कॉपी को संभाल कर अलमारी में रखें और किताब कॉपी की अलमारी को बहुत अच्छी तरह से रखें, बिल्कुल सिस्टम से रखें। इससे बच्चों की बुद्धि एकाग्रता शुरुआत से बेहतर होगी। और जो लोग बचपन से शुरुआत से किताबों का, कॉपियों का रख रखाव जानते हैं, उनका मूल्य जानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत बेहतर होती है। देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, पूजन करने, और वहां से अगर कोई फूल या माला मिलती है आपको, तो उसे ऐसे ही मत कहीं रख दीजिए, उसको ला करके अपने काम करने की जगह पर, अपने पढ़ने की जगह पर रख दीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी। और जब ये सूख जाए तो क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आपके जमीन का, मकान का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गाय को गुड़ खिलाएं। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, कुमकुम मोहोद ने आर्चरी में जीता गोल्ड मेडल, विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व फाइनल में दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को मात दी। एशियन गेम्स में आज क्रिकेट और हॉकी सहित कई खेलों में गोल्ड मेडल पर भारत की तगड़ी दावेदारी, क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ होगा महामुकाबला। आज न्यू चंडीगढ़ में 2 बजे दिन से वेस्ट इंडीज के साथ भारत का तीसरा और अंतिम वनडे मैच, क्रिकेट सीरीज अपने नाम करने के बाद टीम के पास क्लीन स्वीप का मौका। एशियन गेम्स के पदक वीरों की स्वदेश वापसी जारी है, एयरपोर्ट पर परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम। क्रिकेट और हॉकी के बाद आज फुटबॉल फीवर का भी दिन, कोलकाता में आज ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम खेलेगी फ्रेंडली मैच, शाम 7:30 से मैच होगा। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आज, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं जितिया व्रत रख रही हैं, आज ही महालक्ष्मी व्रत का भी समापन। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की पूजा की तैयारी, 500 सालों से हो रहा है भव्य आयोजन, 15 दिनों तक चलती है आराधना। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने की अपाचे हेलीकॉप्टर की गन सिस्टम की परख, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
0: नमस्कार।
5: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं आपके घर की अलमारियों के बारे में। देखिए, आपके घर की अलमारियां जिसमें आप सामान रखते हैं, कपड़े रखते हैं, किचन में आप अपने घर के डब्बे रखते हैं, बर्तन रखते हैं, तो आखिरकार इन अलमारियों का ज्योतिष शास्त्र से क्या कुछ कनेक्शन है, और आपको अपनी अलमारियों को किस तरीके से रखना चाहिए, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, पूजन करने, और वहां से अगर कोई फूल या माला मिलती है आपको, तो उसे ऐसे ही मत कहीं रख दीजिए, उसको ला करके अपने काम करने की जगह पर, अपने पढ़ने की जगह पर रख दीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी, और जब ये सूख जाए तो क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दीजिएगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 3 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रातः 7:59 तक, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपके घर की अलमारियों का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं।
0: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो अलग अलग अलमारियां हैं उनको कैसे रखना चाहिए और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपके घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है? देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके बचत को, सेहत को और सुरक्षा को ठीक किया जा सकता है। यानी आप अगर अपने घर की अलमारियों को ठीक से रखें तो आप धन की बचत कर पाएंगे, चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो बचत, सेहत और सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपके घर की अलमारियों से कंट्रोल होती हैं।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके कपड़ों की अलमारी के बारे में। तो आखिरकार कपड़ों की अलमारी का कौन से ग्रह से सीधा संबंध है और आपका भाग्य क्या इसमें रखकर या इसके रखरखाव से बदल सकता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
0: आम तौर पर हर घर में चाहे दीवार में फिक्स हो या अलग से ली गई हो, कपड़ों की अलमारी अवश्य होती है। क्या विशेषता है इसकी? कपड़ों की जो अलमारी है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है, और अगर आप कपड़ों की अलमारी को ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा रखने से, व्यवस्थित रखने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। इस अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखिए, कपड़े ठूंस कर अव्यवस्थित तरीके से, खराब तरीके से ना रखें। इस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्य स्थितियों में नहीं रखना चाहिए। धन रखने पर बहुत तेजी से खर्च होगा। हालांकि इस अलमारी में अगर कोई दराज है, कोई छोटी अलमारी के अंदर रैक है, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण कागज आप रख सकते हैं। कपड़ों की अलमारी में अगर आप आभूषण रखेंगे, उनके खोने का खतरा होगा, और अगर धन रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, बड़ी तेजी से खर्च होता चला जाएगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न हरप्रीत जी ने हमें लिखा है और हरप्रीत जी हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 29 मई 1994 का जन्म है। दोपहर के 2:10 राजपुरा पटियाला पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हरप्रीत जी, आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से संभावना ये बनती है कि जून 2027 के पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगले 6-8 महीने में आपके विवाह के योग प्रबल दिखाई दे रहे हैं। विवाह के बाद हो सकता है आप विदेश जाएं या आपका कोई स्थान परिवर्तन हो और ऐसा करना भी आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और बृहस्पतिवार को केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको बता दूं ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल पंडित जी आप किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न समीर जी ने हमें लिखा है और समीर जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1979। जन्म का समय 7:25। जन्म स्थान है जमालपुर मुंगेर बिहार। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है, कोई ना कोई समस्या मेरे साथ हमेशा लगी रहती है, तो मैं कब तक पूरी तरह से स्वस्थ होऊंगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए। समीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मुख्य समस्या आपका डाइजेशन है, आपका पेट है, लीवर, आंतों और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। मई 2027 तक अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, मई 2027 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपके जीवन में सुधार होगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आपकी रसोई की अलमारी के बारे में। आखिरकार आपकी रसोई की जो अलमारी है कौन से ग्रह से इसका संबंध है और आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर इसका किस तरीके से असर पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: रसोई की जो अलमारी है जिसमें आप डब्बे रखते हैं अनाज के, मसालों के, या बर्तन भी रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है। रसोई की अलमारी भैया सूर्य की अलमारी है, इससे कनेक्ट करता है सूर्य। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान, अनाज, मसाले, दालें और बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को पूरे तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर दरवाजे वाला बना रहे हैं तो पारदर्शी दरवाजे यानी ट्रांसपेरेंट डोर्स या जाली वाले दरवाजे इसमें लगाने चाहिए। और मसाले और अनाज के डब्बे इसमें अलग अलग आपको रखने चाहिए। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी आपको अलमारी में अलग अलग रखने चाहिए। रसोई की जो अलमारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। और अगर आप रसोई की अलमारी में डब्बे सही से रखते हैं, बर्तन सही से रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, सूर्य प्रबल होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां घर में चार बर्तन होते हैं वहां टकराते हैं, इसका मतलब झगड़ा होता है। तो अगर आप बर्तन अव्यवस्थित अलमारी में रखते हैं तो बर्तन टकराएंगे और वो घर के लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा। इसीलिए रसोई में चाहे वो अनाज वाली अलमारी हो, मसाले वाली अलमारी हो, बर्तन वाली अलमारी हो, उसको आपको ठीक तरीके से रखना चाहिए।
5: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपकी धन की अलमारी कैसी होनी चाहिए और कौन से ग्रह से इसका संबंध होता है।
0: देखिए, धन की अलमारी वो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं और इसकी चाबी हमेशा बंद रख के अपने पास रखते हैं। अलमारी नॉर्मली ये खुला नहीं छोड़ते, बड़ी सिक्योरिटी से इसको रखने का प्रयास करते हैं। धन की जो अलमारी है इसका संबंध होता है बृहस्पति से, जुपिटर से, और धन की अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर धन की अलमारी या आपकी तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के कोने में हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। धन की अलमारी बेहतर तो ये होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर धन की अलमारी खुले तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर धन की अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। तो धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। जो आपके धन रखने की अलमारी है उसका रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप सिंदूर से बनाकर लगा दें और हर दीपावली पर अलमारी की साफ सफाई करें, दीपावली पर इस अलमारी की पूजा भी करें और हर दीपावली पर पुनः एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर अपने धन की अलमारी पर लगा लेंगे।
5: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न हर्षित ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। हर्षित की जन्म की तारीख है 19 फरवरी 2010। जन्म का समय है रात में 11:22। जन्म स्थान है दिल्ली। हर्षित कह रहे हैं कि मैं 10वीं में हूं, अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूं, आगे मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, किस तरह के करियर में जाना मेरे लिए बेहतर होगा। हर्षित आपकी कुंडली है टेक्नोलॉजी की, तकनीक की, इसलिए आप 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़िएगा और आगे इंजीनियरिंग में जाने की कोशिश करिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर रहेगी। टेक्निकल फील्ड में आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करना है। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को गले में धारण करने से आपको लाभ होगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपने सवाल लिख करके हम भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, आज का चौथा यानी कि अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न विष्णु प्रिया जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1992। जन्म का समय 7:10। जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। विष्णु प्रिया जी कह रही हैं कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई है और वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मेरी शादी चल सकेगी और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। विष्णु प्रिया जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी बिल्कुल चलेगी, थोड़ा सब्र करिए। फरवरी 2027 के बाद एक तो जगह बदलेगी पति के साथ, आप वाराणसी से निकलकर किसी और स्थान पर शिफ्ट करेंगी, एक संभावना तो ये बन रही है। और दूसरी बात, अगले साल फरवरी के बाद वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, तो थोड़ा पेशेंस और धैर्य बनाए रखिए, आने वाले समय में चीजें आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-13 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो पंडित जी, एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आज आपने बताया कि कपड़ों की अलमारी कैसी होनी चाहिए, आपके किचन की अलमारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन बुक शेल्फ यानी जहाँ आप अपनी किताबें रखते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका आपके जीवन से, आपके भाग्य से क्या संबंध है, उसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, किताबों की जो अलमारी है, जो आपकी बुक शेल्फ है, वो दरअसल बुद्ध का स्थान है। पढ़ना लिखना, चीजों को संभालना, ज्ञान को इकट्ठा करना, हालांकि ज्ञान में बृहस्पति का रोल है, लेकिन किताबों की जो आलमारी है वो बुद्ध की आलमारी है। आप याद रखिए कि अगर आप अपनी किताबों को सलीके से रखते हैं, पढ़ने के बाद संभाल कर रखते हैं, नियमित रूप से किताबों की आलमारी की सफाई करते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। अगर आप किताबों को फाड़ते हैं, मुड़े तुड़े हाल में ठूंस कर रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, तो ऐसा करने से दो चीजें पक्की होंगी। एक तो जब आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, उस समय बुद्धि आपका साथ नहीं देगी। दूसरा, आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपनी किताबों को, कॉपी को संभाल कर आलमारी में रखें और किताब कॉपी की आलमारी को बहुत अच्छी तरह से रखें, बिल्कुल सिस्टम से रखें। इससे बच्चों की बुद्धि एकाग्रता शुरुआत से बेहतर होगी। और जो लोग बचपन से शुरुआत से किताबों का, कॉपियों का रख रखाव जानते हैं, उनका मूल्य जानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत बेहतर होती है।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर और शिक्षा में परिवर्तन होगा, इसके बाद सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सुबह की पूजा में भी दीपक जलाना आवश्यक है? देखिए, वैसे आप दोनों समय की पूजा में दीपक जला सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वास्तव में दीपक जलाने का उपयुक्त समय संध्या काल है। शाम की पूजा में दीपक जलाना ज्यादा जरूरी है और दीपक जलाकर पूजा करने से पूजा ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है।
5: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 3 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर यानी अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 3 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि साढ़े साती के हालात अलग अलग राशियों पर क्या हैं इस समय। आज की गुड लक राशि है मेष एरीस। इस समय आपकी साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। इस समय आप तैयार हो जाइए, आपके करियर में और जीवन में बड़े परिवर्तन जरूर होंगे।
5: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपके जमीन का मकान का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा हो तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गाय को गुड़ खिलाएं। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
5: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
5: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: और इस वक्त की शानदार खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। आपको बता दें, एशियन गेम्स में आज भारत की गोल्ड मेडल से शुरुआत हुई है। तीरंदाजी में 17 साल की कुमकुम मोहोर ने गोल्ड मेडल जीता है। कुमकुम एशियाई गेम्स की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने फाइनल में साउथ कोरिया की

0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए, गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब बात करते हैं शक्ति साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक माँ दुर्गा की। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है, देश भर में मूर्तिकार आदि शक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में हैं, और यहां अधर्म अन्याय और अहंकार के विनाश का प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं से बंगाल की छाप साफ दिख रही है।

भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी। विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और

0: डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो मूर्ति, दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ के आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन, ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा, हम लोग ऐसे कम नहीं करता। ऑरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। गिराक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न है?
1: हमारा बंगाली पैटर्न कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है।
3: किस प्रकार के?
1: हमारा गंगा जी का मिट्टी, आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ कदंश पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: चौतीस साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
4: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है, अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
4: जब क्या है मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है, उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां पर बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड भी खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता है इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर अब जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
4: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

0: बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हों। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान हैं। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत पूरी करने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस सदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले एप्पल मिलेगा, और ये बात शायद हाथी को पता है। तभी पहले सूंड एप्पल पर जाता है और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ मुड़ जाता है। बच्चे भी मानो अपना वादा निभाती है, एक एक कर सारे एप्पल हाथी को खिला देती है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना,
7: सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
10: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, कुमकुम महोद ने आर्चरी में जीता गोल्ड, विमेन इंडिविजुअल रिकर्व फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को मात दी। एशियन गेम्स में आज क्रिकेट और हॉकी सहित कई खेलों में गोल्ड मेडल पर भारत की तगड़ी दावेदारी, क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ थोड़ी देर में मुकाबला। एशियन गेम्स के पदक वीरों की स्वदेशी वापसी जारी है, एयरपोर्ट पर परिणाश धालीवाल और माहेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आज, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं द्वितीया व्रत रख रही हैं, आज ही महालक्ष्मी व्रत का भी समापन। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज हुई, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने संवारने का काम जारी। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने किया अपाचे हेलीकॉप्टर की गन सिस्टम की परख, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश की। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा रहे हैं खाने पीने के सामान, नाव से भी मदद पहुंचाने के इंतजाम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा।
10: आईची नागोया एशियन गेम्स में आज भी भारत की सुनहरी शुरुआत, आर्चरी में मिला एक और गोल्ड। 17 साल की कुमकुम मोहर ने रच दिया इतिहास, शूट ऑफ दक्षिण कोरिया की ओ येजन को हराया। कुमकुम के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, एशियन गेम्स की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। एशियन गेम्स में कुल 77 मेडल जीतकर 5वें स्थान पर है भारत, अब तक 17 गोल्ड 25 रजत और 35 कांस्य पदकों पर कब्जा। एशियन गेम्स में इवेंट के आखिरी दिन आज भी भारत को कई मेडल मिलने की उम्मीद, कुश्ती तीरंदाजी समेत कई खेलों में होगी दावेदारी। एशियन गेम्स में आज मेंस क्रिकेट का फाइनल मैच, भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला। नेशन के कोरोगी पार्क मैदान पर सुबह 10 बजे से खेला जाएगा क्रिकेट का फाइनल, भारत की ओर से मैदान पर उतरेंगे T20 के स्टार खिलाड़ी। एशियन गेम्स में एक और गोल्ड जीतने के इरादे से पिच पर उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम, पिच पर नमी, आसमान में उछाल और टर्न के कारण स्पिनर्स पर निगाहें रहेंगी। आज भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच, दिन में 2 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा मैच। इंडियन क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, 1998 के बाद पहली बार एक ही दिन में 2 अलग अलग देशों के खिलाफ मैच खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स। जापान से पदक वीरों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। एशियन गेम्स में देश का परचम लहराकर निशानेबाज परिणाश धारीवाल और माहेश्वरी चौहान एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। एशियन गेम्स के बाद अब ओलंपिक पर है खिलाड़ियों की निगाहें, कहा एशियन गेम्स से हासिल हुआ शानदार एक्सपीरियंस। केरला के पलक्कड़ में एशियन गेम्स के पदक वीर का श्री शंकर का शानदार स्वागत किया गया, पुरुषों में लॉन्ग जंप स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। झारखंड के सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने मनाया जश्न, एशियन गेम्स में महिला टीम की जीत से दिखा उत्साह। एशियन गेम्स भारत पाकिस्तान की खिताबी टक्कर से पहले वाराणसी में बाबा सारंगनाथ की पूजा आरती, प्रशंसकों ने मांगा आशीर्वाद। क्रिकेट फैंस ने तिरंगे और भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीरों के साथ किया बाबा सारंगनाथ का जलाभिषेक, मंत्रोच्चार के साथ टीम इंडिया के नारे लगे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बॉक्सर अंकुश पंघाल के घर खुशी का माहौल, गांव आने पर जुलूस निकालकर स्वागत किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया के घर पर आतिशबाजी हुई, परिजनों ने मिठाइयां बांटकर मनाया कामयाबी का जश्न। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के घर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला, परिजनों ने बांटी मिठाइयां। एशियन गेम्स में कल विमेंस हॉकी में भारत के लिए आई शानदार खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद जीता गोल्ड। भारत की बेटियों ने हॉकी में भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड, भारत ने 1-0 से चाइना को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। लालरे ममसियामी ने शानदार फील्ड गोल कर भारत को दिलाया गोल्ड, तो वहीं ये उनका 200वां इंटरनेशनल मैच था। गोल के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक और गुड न्यूज, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। एशियन गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक, पुरुष ध्वजवाहकों के नाम आज होगा ऐलान, तो वहीं जापान के नागोया में कल होगी क्लोजिंग सेरेमनी। ऐतिहासिक जीत पर चैंपियन बेटियों का शानदार जश्न, डांस करती हुई दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम, हॉकी इंडिया ने खास वीडियो शेयर कर लिखा चैंपियन चैंपियन। ग्वालियर में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ईशिका चौधरी के घर पर भव्य जश्न मनाया गया, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिठाई बांटी गई, परिवार के सदस्यों ने तिरंगा हाथ में लेकर लहराया। झारखंड की खूंटी में हॉकी प्लेयर निकी प्रधान पर जीत का जश्न, तो वहीं परिवार ने एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर मनाई खुशी, हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आए। गोल्डन जीत पर मणिपुर के इम्फाल में हॉकी खिलाड़ी खरीबाम बिचू देवी के घर पर जश्न मना, परिवार ने ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर रोहतक में दीपिका सहरावत के परिवार ने जश्न मनाया, पिता जगदीश और दादी फूलपति की आंखों में दिखा गर्व। पहलवान सुजीत कलकल की गोल्डन जीत पर चरखी दादरी में परिवार की खुशी की लहर, परिजनों ने टीवी पर लाइव मुकाबला देखा और जीतते हुए तालियां बजाई, तो वहीं विक्ट्री साइन भी दिखाया। एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज जीत कर लौटी प्राची चौधरी का सहारनपुर में ग्रैंड वेलकम हुआ, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया, मां के हाथों में सम्मान पाकर भावुक हुई प्राची। एशियन गेम्स में दो कांस्य पदक जीतकर मेरठ लौटी पारुल चौधरी, फूल मालाओं से शानदार स्वागत, भारी संख्या में उमड़े लोग। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट अशिमा अहलावत का रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत, परिवार और समर्थकों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शूटर्स कमलजीत और सुरुचि सिंह का रेवाड़ी में स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजा सुलखा गांव। कोलकाता में आज फुटबॉल फीवर का दिन है, ब्राजील की नेशनल टीम भारतीय ब्लू टाइगर्स के साथ खेलेगी फ्रेंडली मैच। स्वामी विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शाम 7:30 बजे से होगा मैच, जोश के साथ कोलकाता के फुटबॉल प्रेमी। पहली बार किसी भारतीय टीम के साथ मैच खेलेगी ब्राजील की टीम, मैदान में दिखेंगे विनीसियस सहित कई स्टार प्लेयर्स। मैच से पहले कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस में बहाया था पसीना, 5 बार की विश्व चैंपियन है ब्राजील, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की होगी कोशिश। कोलकाता में भारत ब्राजील फुटबॉल मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, सीसीटीवी से भी निगरानी। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की बनाई जा रही है प्रतिमा, गढ़ सोना पोता गांव में सदियों से परंपरा है। केशवपुर में 500 साल से चली आ रही है दुर्गा पूजा की परंपरा, माता के महालक्ष्मी चंडी का स्वरूप की 15 दिन की होती है पूजा। दुर्गापुर में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा है दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल, भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने कसी कमर। आज है पितृपक्ष की अष्टमी, संतान की लंबी उम्र उन्नति और मंगल कामना के लिए महिलाएं रख रही हैं जीवित पुत्र का व्रत। पितृपक्ष की अष्टमी को मिल सकता है महालक्ष्मी की अपार कृपा, इस तिथि पर होती है महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने रेगिस्तानी इलाकों में अपाचे हेलीकॉप्टर के गन सिस्टम की परख की। मुश्किल माहौल में हवाई जंग की तैयारियों की नुमाइश। साउथ वेस्टर्न कमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हथियारों की सटीक क्षमता, ऑपरेशनल तैयारी और मिशन के लिए तैयार रहने की क्षमता की झलक दिखी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन। भारत और मंगोलिया की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 के तहत भारत और मंगोलिया के जवानों ने स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ली। मुश्किल इलाकों में तेजी और असरदार ढंग से तैनात होने की क्षमता हुई बेहतर। जोधपुर में जारी है वायुसेना का तरंग शक्ति अभ्यास 2026। हिस्सा ले रहे हैं कई देशों के एयरक्राफ्ट, एयरक्रू और सपोर्ट टीमों ने साथ साथ फ्लाइंग ऑपरेशन के अनुभव साझा किए। फ्लाई दुबई के पायलट स्मित मजहर की जाबाजी के मुरीद हुए एक्टर सलमान खान। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सराहना की। सलमान खान ने अपनी पोस्ट में स्मित मजहर को सल्यूट किया। लिखा, कमाल कर दिया पायलट जी, आपके साथ उड़ान भरना चाहेंगे। कैप्टन स्मित मजहर की बचपन की तस्वीर आई सामने। मुंबई के स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र थे सहपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। मुंबई में इसराइल के कौंसलेट जनरल ने सड़क पर बिलबोर्ड लगाकर कैप्टन स्मित को सलामी दी। कौंसल जनरल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। इसराइल के कौंसल जनरल ने कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा, स्वागत करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है इसराइल। कैप्टन स्मित मजहर के लिए सूरत में हवन पूजन और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। 51 वैदिक विद्वानों ने हवन पूजन किया। हनुमान मंदिर में गूंजी हनुमान चालीसा की चौपाइयां। बजरंग बली से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। रणथंभौर में स्टार शटलर साइना नेहवाल का फैमिली टाइम देखने को मिला। सोशल मीडिया पर देखी खास झलकियां। परिवार और दोस्तों के साथ बताया खुशनुमा पल। साइना नेहवाल ने अपनी बहन के साथ डांस का वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड सॉन्ग और राजस्थानी गीतों पर बहनों की मस्ती ने बटोरी खूब सुर्खियां। सिर्फ डांस ही नहीं, साइना ने तीरंदाजी का भी आनंद लिया। एक वीडियो में बैडमिंटन स्टार धनुष पर निशाना साधती हुई नजर आई। उत्तराखंड में बारिश थमने और लंबे वीकेंड के चलते चारधाम यात्रा में फिर से तेजी आई। मुनि की रेती और तपोवन में उमड़ी भीड़। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी संगम पर उमड़ी दिल्ली एनसीआर से पहुंचे लोगों की भारी भीड़। पितृपक्ष में तर्पण के अलावा तुंगनाथ, रुद्रनाथ और बद्रीनाथ धाम की ओर रवाना हुए यात्री। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में सैलानी। लोगों को आकर्षित कर रहा है खुशनुमा मौसम। राजस्थान के धौलपुर जिले से सर मथुरा की सब्जी मंडी में आकर्षण का केंद्र बनी 4 फीट लंबी लौकी। फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बिहार के सारण में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही है राहत सामग्री। गोरखपुर एयरबेस और पटना के बेहटा एयरबेस से वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। बाढ़ पीड़ितों को तक पहुंचाया खाने पीने का सामान। बिहार में बेतिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। मोटरबोट से पहुंचे प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव तेज करने का निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 3 दिनों से बाढ़ में फंसे ग्रामीणों तक पहुंची राहत सामग्री। नाव के जरिए पहुंचाई जा रही है सामान। लखनऊ में बढ़ा गोमती नदी का जलस्तर। आम लोगों के लिए बंद किया गया रिवर फ्रंट का इलाका। नॉर्थ बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व पर फिर सुनाई देगी बाघों की दहाड़। अलीपुर द्वार में बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों की वापसी के अभियान की शुरुआत। सीएम शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बाघिन को रिजर्व में छोड़ा। टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत रिजर्व में छोड़ी गई पहली बाघिन। झांसी में मलखम का महासंगम, तो वहीं 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे। लक्ष्मी व्यायामशाला में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पंचकुला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज, पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए। नमो क्रिकेट लीग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे धामी। गोरखपुर की तीन बहनें चाय स्टॉल चलाकर कर रही हैं यूपीएससी की तैयारी। पिता को पैरालिसिस अटैक के बाद बड़ी बहन वर्तिका ने संभाली परिवार की जिम्मेदारी। बिहार में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। महज एक साल में सुकन्या समृद्धि योजना के 1,00,000 से ज्यादा खुले खाते। योजना से जुड़ने के लिए डाक विभाग की ओर से जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के जरिए अभिभावक बेटियों के भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। मुंबई में संत ज्ञानेश्वर महाराज की 750वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने संत ज्ञानेश्वर महाराज को नमन किया। अयोध्या के प्राचीन उदासीन ऋषि आश्रम में गुरु पर्व समारोह की तैयारी तेज हुई। 5 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल होंगे। रानोपारी के उदासीन ऋषि आश्रम में खास होगा गुरु पर्व का अंतिम दिन। नवनिर्मित नारायण संस्कृत महाविद्यालय भवन का उद्घाटन होगा। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी पार्टी, हर तरफ दिखा सफेद रंग। सफेद रंग के कपड़ों में शामिल हुए मेहमान। हर साल न्यूयॉर्क में किसी खास जगह पर होती है ये व्हाइट पार्टी। हजारों लोग एक साथ लेते हैं संगीत नृत्य और खान पान का आनंद। अर्जेंटीना लॉन्च करेगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पहली बार किसी दक्षिण अमेरिकी देश में पहल की जा रही है। 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर की नॉन रिफंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिल सकेगी अर्जेंटीना में नागरिकता। 8 लाख डॉलर का पब्लिक बॉन्ड खरीदने पर सुविधा मिलेगी। ब्यूनस आयर्स से शुरू हुआ पहला चाइनीज ऑटो शो, 20 से ज्यादा ब्रांड्स की गाड़ियों की नुमाइश। लैटिन अमेरिका में तेजी से पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के मेकर्स। शानदार आतिशबाजी से जगमग हुए चाइना के तमाम शहर, राष्ट्र दिवस के सिलसिले में जश्न जारी। नेशनल डे की छुट्टियां मनाने के लिए सैर सपाटे के लिए निकले चाइना के लोग, पर्यटन स्थलों पर भीड़। नेशनल डे की छुट्टी के पहले दिन बीजिंग के तियानमेन इलाके में दिखी जबरदस्त गेमा गेमी, 3,00,000 से ज्यादा लोग सैर के लिए पहुंचे। नेशनल डे के अवसर पर चाइना में गुरुवार से शुरू हुई 7 दिनों की सालाना छुट्टियां, मौके का आनंद ले रहे हैं लोग। चाइना के नेशनल डे पर दिख रही है लोक संस्कृति की झलक, नृत्य और संगीत और खान पान से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं लोग। चाइना के हांगजू में इंसान और मशीन के बीच अनोखा सपोर्ट इवेंट, तो वहीं स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया गया। नेशनल डे की छुट्टियों में रोबोट्स और एआई ने मैदान में मचाया धमाल। टेक इवेंट में बच्चों ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ फुटबॉल खेला। टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के मेल में खींचा ध्यान। हांगजू में लिखा भविष्य का स्पोर्ट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ खेल मुकाबला और मस्ती। चाइना के फुजियान में इंसान और रोबोट ने की पियानो पर जुगलबंदी। टेक्नोलॉजी और क्लासिकल म्यूजिक का दिखा अद्भुत संगम। ह्यूमनॉइड रोबोट की उंगलियों से निकली पियानो की मधुर धुन, द वेव्स की धुन बजाकर किया मंत्रमुग्ध। शंघाई की चबी जिंजर कैट नेशनल डे की छुट्टियों में बनी नया हॉटस्पॉट। डिजिटल स्क्रीन पर वायरल बिल्ली अब फ्लोरल आर्ट इंस्टॉलेशन के रूप में नजर आ रही है। मेट्रो में लगाया गया फूलों से तैयार की गई बिल्ली का शानदार डिस्प्ले, सुनहरे रंगों और आकर्षक डिजाइन ने खींचा ध्यान। चाइना की चाय संस्कृति विदेशी पर्यटकों को दे रही है खास सांस्कृतिक अनुभव। जेजियांग के हुझोऊ में पर्यटक खुद चाय बनाना और उसका स्वाद लेना सीख रहे हैं। चाय के साथ स्थानीय संस्कृति और प्रकृति को करीब से जान रहे हैं विदेशी मेहमान। पारंपरिक संस्कृति, पहाड़ और ताजी हवा ने यात्रा को बनाया यादगार। रूसी परिवारों ने चाय बनाने से लेकर स्थानीय खान पान तक का आनंद लिया। हुझोऊ में विदेशी पर्यटकों के लिए बढ़ाई जा रही है पर्यटन सुविधाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
11: तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त, जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है।
2: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं? और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, कुमकुम मोहोद ने आर्चरी में जीता गोल्ड, विमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व फाइनल में दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को मात दी। एशियन गेम्स में आज क्रिकेट और हॉकी सहित कई खेलों में गोल्ड मेडल पर भारत की तगड़ी दावेदारी, क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ थोड़ी देर में महामुकाबला। एशियन गेम्स के पदक वीरों की स्वदेश वापसी जारी है, एयरपोर्ट पर परिनाज धालीवाल और महेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आज, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं जितिया व्रत रख रही हैं, आज ही महालक्ष्मी व्रत का भी समापन। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने संवारने का काम जारी है। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने की अपाचे हेलीकॉप्टर की गन सिस्टम की परख, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश की। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा रहे हैं खाने पीने के सामान, नाव से भी मदद पहुंचाने के इंतजाम।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो आ गया है सुपर सैटरडे और अब से थोड़ी देर में जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। गोल्ड के लिए आज एशियन गेम्स में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत ने टॉस जीत लिया है, ये अच्छी खबर, और पहले बैटिंग करने का फैसला भारत ने लिया है। सुबह 10 बजे गोल्ड के लिए भिड़ंत होने वाली है और अब से कुछ ही देर में भारत पाकिस्तान का मैच शुरू होने जा रहा है। भारत ने इसके लिए टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। आज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में घमासान मैच होने जा रहा है। जाहिर है टीम इंडिया मिशन गोल्ड के लिए पूरी तरह से तैयार है और क्रिकेट फैंस को मिलने वाली है रोमांच की फुल डोज। इस महामुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तैयारी कैसी है, फैंस के बीच एक्साइटमेंट कैसा है, तमाम तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। एशियन गेम्स में अब नजर क्रिकेट के गोल पर है और अब से थोड़ी देर में जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का पाकिस्तान से सामना होने जा रहा है। दांव पर गोल्ड है और यंगिस्तान हर हाल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने के लिए बेताब है। जिस अंदाज में सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया है, उससे यह साफ है कि एक बार फिर से टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीतेगी।
1: एक बार फिर जोश आसमान छुएगा, एक बार फिर जुनून क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। एशियन गेम्स के इस महामुकाबले में गोल्ड दाव पर है, यंगिस्तान तैयार है। जाहिर है ब्लू ब्रिगेड को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि मुकाबला उस विरोधी से है जिससे न दिल मिलते हैं न हाथ। फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है। बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे धुरंधर हैं, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से गेंदबाजी को वही पुरानी धार मिल चुकी है जो किसी भी स्थिति में मैच जिता सकती है। वहीं पाकिस्तान ने बाबर आजम, सलमान अली आगा के बाद कप्तानी के मोर्चे पर अब साहिबजादा फरहान पर दाव चला है। T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर एक टीम है और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी। यूं तो ब्लू ब्रिगेड का सामना छठे नंबर की पाकिस्तान टीम से है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा टीम इंडिया पूरी तरह मुस्तैद है और पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने को बेताब है। रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखा जाए तो T20 में अब तक 17 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिनमें से 14 बार भारत जीता है। ये आंकड़े पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन भारतीय टीम साहिबजादा फरहान एंड कंपनी को एशियन गेम्स के मैदान पर भी पानी पिलाने को तैयार है और एक बार फिर ये साबित करने को बेताब है कि क्यों टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर वन है। दांव पर गोल्ड है और टीम इंडिया 20वें एशियन गेम्स में भी पिछली बार के एशियन गेम्स की सुनहरी कामयाबी को दोहराना चाहेगी, जब हांगझोऊ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान को चित करने का मौका है। अब मौका है तो टीम इंडिया दस्तूर निभाने को भी तैयार है, पाकिस्तान को पटक कर गोल्ड झटकने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: क्रिकेट का गोल्ड और पाकिस्तान के साथ आज मैच। आज सुपर सैटरडे है। खास बात यह है कि हॉकी में भारतीय पुरुष टीम गोल्ड के लिए मलेशिया से मुकाबला करेगी। विक्रांत, आज का दिन बड़ा ही खास रहने वाला है, क्या कहना है आपका?
2: आमतौर पर खेल के लिए ना सुपर संडे की बात करते हैं, बट ये सुपर सैटरडे ऐसा सुपर सैटरडे है कि आप यकीन माने, अगर आप एक स्पोर्ट्स चैनल खोलते हैं तो सुबह 10 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आप स्पोर्ट्स चैनल से हिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट एशियन गेम्स गोल्ड मेडल मैच नगोया में, वो ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो लास्ट वनडे मैच है मुल्लापुर में मोहाली में, वो शुरू होगा। आपको याद ही है ना कि पिछले मैच में इंडिया ने 400 से आ रन चेज किए थे। विराट ने पहले मैच में 100 बनाया, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 100 बनाया और शुभमन ने पहले में 100 बनाया, दूसरे में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, तो वहाँ पर भी नज़र रहेगी। फिर 3:30 बजे इंडिया हॉकी फाइनल खेलेगा मलेशिया के साथ। चलिए ये तो भाई हो गया, लेकिन उसके बाद ब्राज़ील के साथ जो फ्रेंडली मैच है इंडिया का, फुटबॉल इंडिया वर्सेस ब्राजील वो शाम 7:30 बजे से है। तो भाई आप स्पोर्टिंग एक्शन मैं कहूंगा सुपर सैटरडे होगा और विदाउट एनी डाउट कहने की जरूरत नहीं है जो भी खेल का एक्शन होगा जो उसके इर्द गिर्द कहानियां होंगी वो आपको GNT पे, क्यों? क्योंकि खेल गुड न्यूज लेकर आता है। होपफुली सैटरडे GNT यानी कि गुड न्यूज लेकर आएगा।
0: जी शुक्रिया विक्रांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले के लिए पूरे देश में उत्साह है। फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रही है। उन्हें भरोसा है कि टीम इंडिया मिशन गोल्ड में जरूर कामयाब होगी और क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा देगी। वाराणसी में क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
3: काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं क्योंकि एशियन गेम्स हो रहा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और पूजन अर्चना और हनुमान चालीसा और हवन योजन का आयोजन किए हैं और इंडिया जीते इस उम्मीद से।
4: हमारे यहाँ सुबह से पूजा पाठ चल रही है, बाबा बजरंग बली का पाठ चल रहा है और हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसको देखते हुए हमारे एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और जो आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच इससे पहले काफ़ी बार देखे हैं T20 वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप में या और भी सीरीज में मैच देखे हैं, बट ये जो एशियन गेम्स है इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच पहली बार देखा जा रहा है। और जैसे कि हर बार हिंदुस्तान जीता हुआ है, हम माता रानी से कृपा करते हैं, मतलब माता रानी से ये विनती करते हैं कि हिंदुस्तान इस बार भी जीते, लेकिन हमारी सुबह से ये यज्ञ चल रहा है कि हिंदुस्तान का जो मैच है आज उसको हिंदुस्तान बहुत अच्छे जीते जैसे हमेशा जीता हुआ आया। प्रभु के यहाँ हम लोग इसीलिए खड़े हैं, यहाँ विनती प्रभु से कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हर बार की तरह इस बार भी विजयी बनाए।
5: आज सुबह से हम लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा और यहाँ पे पूरे हर्ष उल्लास के साथ आज हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हम लोग का पूरा ये है कि आज हमारी टीम इंडिया को पूरा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पूरा अच्छे से मिल जाए और हम लोग को जीतना तो है ही लेकिन बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ और हम लोग अच्छे रन के साथ जो है जीते। आज हमारी टीम को हमारी यही कामना है, हमने प्रभु से भी अपने यही मांगा है और हमें लगता है कि आज हमारी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और एक अच्छी ट्रॉफी हम लोग के पास आज आ ही जाएगी।
0: जाहिर है कि पूरे देश में फैंस के बीच इस महामुकाबले के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हर ओर एक ही आवाज आ रही है कि जीतेगा तो इंडिया ही।
6: यही उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी और इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मुझे जस्सी भाई से ज्यादा लग रहा है तो मे बी इंडिया इज बेटर डूइंग।
7: हमारे भारत टीम हमेशा अच्छा करके आई और हमेशा अच्छा करेगी और हम चाहते हैं कि हमारे गोल्ड मेडल हमारा हो।
8: Want India to win and smash Pakistan very hard.
9: उम्मीद तो एक ही है सर, इंडिया जीतेगी और एज श्रेयस भाई अपने कैप्टन है तो होप सो इंडिया विल विन दिस मैच, वी विल सी।
10: आज इंडिया जीतने वाली है जिसमें अभिषेक शर्मा का बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहेगा, उनसे बहुत उम्मीद है हमें। और बॉलिंग में बुमराह ये गए कि जो हमेशा फाइनल मैच में अच्छा करते हैं।
11: जिस तरह से हमारी इंडिया टीम खेल रही है और कोऑर्डिनेशन बना के बढ़िया परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से वन साइडेड पाकिस्तान को हारना चाहिए हमारी टीम को।
0: एशियन गेम्स में आज भारत के लिए सुबह की शुरुआत गोल्ड के साथ हुई। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने गोल्ड मेडल जीता। कुमकुम व्यक्तिगत रिकर्व में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली महिला एथलीट बन गई। उन्होंने दक्षिण कोरिया की ओ येजन को रोमांचक मुकाबले में हराया तो वहीं शुरुआत में पिछड़ने के बाद कुमकुम मोहोद ने जोरदार वापसी की और शूट आउट में विरोधी खिलाड़ी को हराया। साथ ही कुमकुम ने भारत के लिए 2028 ओलंपिक कोटा भी पक्का कर लिया है। तो एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और अब तक भारत के कुल 79 मेडल्स हो चुके हैं जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं और इसी के साथ पदक तालिका में भारत मजबूती के साथ पांचवें स्थान पर काबिज है। इसके अलावा आज क्रिकेट और हॉकी में गोल्ड की उम्मीद बनी हुई है। ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं कितने मेडल्स अब तक भारत के खाते में आ चुके हैं। 18 गोल्ड, 26 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत के पास आ चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, फिर चाहे मेंस क्रिकेट हो, हॉकी हो, तीरंदाजी हो, महिला हो या फिर पुरुष, शानदार प्रदर्शन के साथ अब तक 79 मेडल्स भारत की झोली में भर दिए हैं। और इसी बीच इस वक्त की शानदार खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। आपको बता दें एशियन गेम्स में आज भारत की गोल्ड मेडल से शुरुआत हुई। तीरंदाजी के बाद गोल्फ में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो वहीं प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। तो वहीं फाइनल राउंड से पहले प्रणवी ने 15 under 195 के स्कोर के साथ 3 शॉट की बढ़त बनाई थी और इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 79 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें गोल्ड 18 हैं, सिल्वर 26 हैं, ब्रॉन्ज 35 हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। गुड न्यूज ये भी है कि कल भारत की बेटियों ने हॉकी का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इस मायने में कि 44 साल बाद ये गोल्ड मिला है और साथ ही अगले ओलंपिक के लिए टीम क्वालिफाई कर गई है। जापान में जीत का जश्न है और देश में दिवाली की रौनक सी देखने को मिल रही है। इस असाधारण जीत के बाद अब विस्तार से आगे बात होगी। साथ ही एशियन गेम्स में आज गोल्ड के मामले में भारत का सिक्सर भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, आज के दिन भारत ने महिला हॉकी में गोल्ड समेत 5 और गोल्ड जीते। तो वहीं बॉक्सिंग में कीर्तिमान बनाते हुए भारत की 2 बेटियों ने 2 गोल्ड अपने नाम किए। इस तरह पहलवानी और आर्चरी में भी भारत को गोल्ड मिला और इस अद्भुत प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। और साथ ही क्रिकेट के गोल्ड के लिए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर बात भी होने वाली है। आपको बता दें ये दिन बेहद खास रहा, भारत के पास क्रिकेट और साथ ही पुरुष हॉकी में गोल्ड जीतने का भरपूर मौका भी है। आज एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियन चाइना को 1-0 से मात दे दी और इस तरह 4 दशक के बाद गोल्ड पर कब्जा कर लिया। हमारी बेटियों ने चाइना जैसी मजबूत टीम को पूरे खेल में 1 गोल तक नहीं करने दिया और जबरदस्त डिफेंस की बदौलत अपनी जीत सुनिश्चित की। इस जीत के बाद जहां जापान में खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, वहीं देश में दिवाली से पहले दिवाली जैसी रौनक है। देखिए रिपोर्ट।

खुशी है, धमाल है, ये पल बेमिसाल है। जश्न सिर्फ जापान में नहीं, देश में भी जबरदस्त है। चेहरों पर हंसी, गलियों में पटाखे, ये रौनक, ये धूप, जो भी नजर आता है इन बेटियों का कमाल है। देश झूम रहा है, एक दूसरे को बधाई है। ऐसी वैसी कामयाबी नहीं है ये घड़ी 44 साल बाद आई है। 4 दशक का लंबा इंतजार, धैर्य, परिश्रम और मैदान पर जी जान लगाने के बाद ये दिन आया है जब एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने परचम लहराया है। फाइनल मुकाबले में हराया भी तो किसे, चीन को, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर पर मौजूद है और मौजूदा एशियाई चैंपियन है। उस टीम को वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में 1-0 से हरा दिया। 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। लाजमी है इस ऐतिहासिक जीत के बाद सभी खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन जश्न का ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। 4 दशक बाद ये चक दे इंडिया जैसी कहानी है और इसीलिए भारत में भी खिलाड़ियों के घर पर दिवाली से पहले दिवाली है। ग्वालियर में इस टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी के घर दिवाली जैसा माहौल है। माता, पिता, मामा, घर के सभी सदस्य गदगद हैं। गली में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है।

0: साल के दिन हो 50,000, न सिर्फ टीम और साथी बल्कि पूरा देश खुशी से झूम रहा है और लवलीना को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। कितना खूबसूरत इत्तेफाक और क्या शानदार गिफ्ट, गले में गोल्ड, सामने जन्मदिन का केक। लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को स्वर्ण पदक की सौगात दी है। एशियन गेम्स में अपने पंच की बदौलत बॉक्सिंग का गोल्ड अपने नाम किया और उसके बाद टीम के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। यकीनन लवलीना बोरगोहेन ने देश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अपने शानदार खेल की बदौलत ओलंपिक में गोल्ड लाने का भरोसा दिया है। लेकिन लवलीना अकेली नहीं है। नायोगा में बेटियों ने पंच का वो दम दिखाया कि एशियन गेम्स की पदक तालिका में देश सीधे टॉप 5 में आ गया। एक नहीं बल्कि 2 बॉक्सर बेटियों ने एक ही दिन एशियन गेम्स में अपनी ताकत दिखाई और देश के नाम 2 गोल्ड कर दिया। लवलीना बोरगोहेन ने विमेंस 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और परवीन हुड्डा ने विमेंस 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीत कर देश को गर्व से भर दिया।
1: काफ़ी प्राउड फील हो रहा है सर कि कंट्री की जो हमारी मेडल टैली है उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा एंड मैंने कंट्री के लिए कुछ किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मतलब कॉन्फिडेंट थी मैं कि अच्छी मेहनत की है बट सामने अपोनेंट भी बहुत अच्छी थी और जैसे सेकंड राउंड में उन्होंने मेरा गेम भी कैच कर लिया था तो सेकंड राउंड उनके फेवर में था तो थर्ड राउंड थोड़ा प्रेशर था कि अपने फेवर में ही लेना है बट अच्छा रहा सर और मतलब जो प्लान था थोड़ा चेंज किया थर्ड राउंड में और वो हमारे फेवर में आ गया। ये मेडल मैं अपनी कंट्री और अपने लेट भाई हार्दिक राठी को डेडिकेट करूँ।
0: एशियन गेम्स में भारत की ओर से ये ऐतिहासिक उपलब्धि है जब देश की 2 महिला मुक्केबाजों ने अपनी अपनी कैटेगरी में 2 गोल्ड जीता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने बॉक्सिंग में हैट्रिक का कीर्तिमान बना दिया। लवलीना और परवीन के साथ ही बॉक्सर अंकुश पंघाल ने पुरुषों की 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीत कर देश का सीना चौड़ा कर दिया। ये पहली बार है जब मुकाबले में 3 भारतीय मुक्केबाज एशियन गेम्स में चैंपियन बने हैं।
2: बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे। प्रेशर तो नहीं था पर लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी अगले साल पे फोकस करेंगे।
3: किसको डेडिकेट करते हैं ये मेडल आप?
2: ये मेरे मम्मी पापा को, मेरे को साहब को और मेरी इंडियन आर्मी 6 ग्रेनेडियर को।
0: मौजूदा एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का ये ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है क्योंकि बॉक्सिंग में भारत ने 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज के साथ कुल 6 मेडल पर कब्जा किया है। 2010 एशियाड में भारतीय मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड समेत कुल 9 मेडल जीते थे। वहीं 2022 में भारत के खाते में 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज समेत 4 मेडल आए थे। जाहिर है भारत में और भारतीय खेमे में बेहिसाब खुशी है। खुशी का ये मौका और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि लवलीना ने ये उपलब्धि अपने जन्मदिन पर हासिल की।
4: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए क्योंकि इतना लंबा जर्नी था मेरा और कहीं ना कहीं ये मेडल पूरा जर्नी याद दिला देता है। और बीच में बहुत ज़्यादा टफ भी आया था कि कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी। उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा भगवान दे रहा है तो उसको मैं बहुत अच्छे से ले रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
3: आज बर्थडे वाले दिन आपका मेडल आया है, क्या आप मानती हैं दूसरा जन्म हुआ है आपका, लवलीना गोल्डन मेडल बन गया
4: आज? जरूर क्योंकि सबसे स्पेशल बर्थडे है ये मेरे लिए। कहीं मैंने शायद कभी अपने आप को इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया था अपने बर्थडे पे और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: लवलीना का ताल्लुक असम के गोलाघाट के बारोमुखिया गांव के एक किसान परिवार से है। लवलीना गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करती हैं और 75 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली इस स्टार बॉक्सर

0: कड़ी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। किसान परिवार से आने वाली नॉर्थ ईस्ट की ये जुझारू खिलाड़ी आज युवाओं की रोल मॉडल बन चुकी हैं। लवलीना ने 2018 और 2019 के AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार ब्रोंज मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद टोक्यो 2020 ओलंपिक में ब्रोंज जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। 2023 IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी लवलीना ने गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली इस स्टार बॉक्सर को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है।
1: क्या कुछ आपने मतलब तैयारियों में लगी थी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और तीन दिन से क्या दिमाग में चल रहा था क्योंकि परसों आप सिक्योर कर चुकी थी गोल्ड मेडल राउंड, तो क्या कुछ बोलेंगे?
2: माइंड में बस इस बार एक ही था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ भी नहीं आई थी, मुझे बस अपने गेम को जीना था और जापान मेरे लिए वैसे भी लकी है और मैं बस पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जब कंपटीशन के क्लोज आते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कोशिश करते हैं उसको किस तरीके से पॉजिटिव ले ले और माइंड में बस एक ही था कि मुझे जीतना है और हर वक्त वही था और सबका जिस तरीके से सपोर्ट मिला कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है उस वजह से ही मैं जीत पाई।
1: मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: मेडल अभी तक तो सोचा ही नहीं किसको डेडिकेट करूं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मुझे लगता है।
1: और क्या कुछ अभी खाना पीना जो छोड़ा हुआ था वो जाके खाना चाहेंगे?
2: जरूर मेरा बहुत ज़्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के दो तीन दिन ही 1-2 kg कम करना पड़ता है और स्वीट तो वैसे भी मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ लेकिन आज तो जरूर इसके गोल्ड मेडल के वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
0: लवलीना के जन्मदिन पर भारत को गिफ्ट परवीन हुड्डा ने भी दिया। परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे की चेन नियान चिन को 3-2 से मात देकर गोल्ड जीता। इसी के साथ परवीन हुड्डा ने मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन के साथ एशियन गेम्स की गोल्डन गर्ल क्लब में एंट्री मारी। इसी के साथ भारत का एशियन गेम्स में महिला बॉक्सिंग गोल्ड का 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में मैरीकॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। खास बात ये है कि ये पहला मौका है जब एशियन गेम्स में दो महिला बॉक्सर्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग में गोल्ड की हैट्रिक अंकुश पंघाल ने लगाई। 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में अंकुश पंघाल ने साउथ कोरिया के मुक्केबाज किन मियसांग को 4-0 से करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खास बात यह है कि पुरुषों की मुक्केबाजी में भारत को पूरे 8 साल बाद कोई गोल्ड मिला है। लवलीना, परवीन और अंकुश के अलावा प्रिया घंगास, कपिल पोखरिया और नरेंद्र बेरवाल ने बॉक्सिंग में देश के लिए ब्रोंज मेडल जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में आज भारत की गोल्डन शुरुआत, तीरंदाजी के बाद गोल्फ में जीता गोल्ड, प्रणवी शरत ने उर्स में रचा इतिहास। एशियन गेम्स के पदकवीरों की स्वदेश वापसी जारी है, एयरपोर्ट पर परीनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान का ग्रैंड वेलकम। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने संवारने का काम जारी है। पश्चिमी सरहदों पर सेना ने किया अपाचे हेलीकॉप्टर के गन सिस्टम की परख, निशाने की सटीकता सहित जंगी तैयारी की क्षमता की नुमाइश। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा रहे हैं खाने पीने के सामान, नाव से भी मदद पहुंचाने के इंतजाम। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बंपर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार।
6: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस,
8: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर की अलग अलग अलमारियों की और उनके रख रखाव की और आपके भाग्य की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो अलग अलग अलमारियां हैं उनको कैसे रखना चाहिए और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपके घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है? देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके बचत को, सेहत को और सुरक्षा को ठीक किया जा सकता है। यानी आप अगर अपने घर की अलमारियों को ठीक से रखें तो आप धन की बचत कर पाएंगे, चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो बचत, सेहत और सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपके घर की अलमारियों से कंट्रोल होती हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार में शांति रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आम तौर पर हर घर में, चाहे दीवार में फिक्स हो या अलग से ली गई हो, कपड़ों की आलमारी अवश्य होती है। क्या विशेषता है इसकी? कपड़ों की जो आलमारी है, ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है। और अगर आप कपड़ों की आलमारी को ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ कपड़ों की आलमारी को साफ सुथरा रखने से, व्यवस्थित रखने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। इस आलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखिए। कपड़े ठूंस कर अव्यवस्थित तरीके से, खराब तरीके से ना रखें। इस आलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्य स्थितियों में नहीं रखना चाहिए। धन रखने पर बहुत तेजी से खर्च होगा। हालांकि इस आलमारी में अगर कोई दराज है, कोई छोटी आलमारी के अंदर रैक है, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण कागज आप रख सकते हैं। कपड़ों की आलमारी में अगर आप आभूषण रखेंगे, उनके खोने का खतरा होगा। और अगर धन रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, बड़ी तेजी से खर्च होता चला जाएगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। रसोई की जो अलमारी है जिसमें आप डब्बे रखते हैं अनाज के, मसालों के, या बर्तन भी रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है। रसोई की अलमारी भैया सूर्य की अलमारी है, इससे कनेक्ट करता है सूर्य। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान, अनाज, मसाले, दालें और बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को पूरे तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर दरवाजे वाला बना रहे हैं तो पारदर्शी दरवाजे यानी ट्रांसपेरेंट डोर्स या जाली वाले दरवाजे इसमें लगाने चाहिए। और मसाले और अनाज के डब्बे इसमें अलग अलग आपको रखने चाहिए। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी आपको अलमारी में अलग अलग रखने चाहिए। रसोई की जो अलमारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। और अगर आप रसोई की अलमारी में डब्बे सही से रखते हैं, बर्तन सही से रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, सूर्य प्रबल होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां घर में चार बर्तन होते हैं वहां टकराते हैं, इसका मतलब झगड़ा होता है। तो अगर आप बर्तन अव्यवस्थित अलमारी में रखते हैं तो बर्तन टकराएंगे और वो घर के लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा। इसीलिए रसोई में चाहे वो अनाज वाली अलमारी हो, मसाले वाली अलमारी हो, बर्तन वाली अलमारी हो, उसको आपको ठीक तरीके से रखना चाहिए। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, धन की अलमारी वो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं और इसकी चाबी हमेशा बंद रख के अपने पास रखते हैं। अलमारी नॉर्मली ये खुला नहीं छोड़ते, बड़ी सिक्योरिटी से इसको रखने का प्रयास करते हैं। धन की जो अलमारी है इसका संबंध होता है बृहस्पति से, जुपिटर से, और धन की अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर धन की अलमारी या आपकी तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के कोने में हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। धन की अलमारी बेहतर तो ये होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर धन की अलमारी खुले तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर धन की अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। तो धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। जो आपके धन रखने की अलमारी है उसका रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप सिंदूर से बनाकर लगा दें और हर दीपावली पर अलमारी की साफ सफाई करें, दीपावली पर इस अलमारी की पूजा भी करें और हर दीपावली पर पुनः एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर अपने धन की अलमारी पर लगा लेंगे। देखिए, किताबों की जो अलमारी है, जो आपकी बुक शेल्फ है, वो दरअसल बुद्ध का स्थान है। पढ़ना लिखना, चीजों को संभालना, ज्ञान को इकट्ठा करना, हालांकि ज्ञान में बृहस्पति का रोल है, लेकिन किताबों की जो अलमारी है वो बुद्ध की अलमारी है। आप याद रखिए कि अगर आप अपनी किताबों को सलीके से रखते हैं, पढ़ने के बाद संभाल कर रखते हैं, नियमित रूप से किताबों की अलमारी की सफाई करते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। अगर आप किताबों को फाड़ते हैं, मुड़े तुड़े हाल में ठूंस कर रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, तो ऐसा करने से दो चीजें पक्की होंगी। एक तो जब आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उस समय बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, दूसरा आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपनी किताबों को, कॉपी को संभाल कर अलमारी में रखें और किताब कॉपी की अलमारी को बहुत अच्छी तरह से रखें, बिल्कुल सिस्टम से रखें। इससे बच्चों की बुद्धि एकाग्रता शुरुआत से बेहतर होगी। और जो लोग बचपन से शुरुआत से किताबों का, कॉपियों का रख रखाव जानते हैं, उनका मूल्य जानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत बेहतर होती है। देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, पूजन करने, और वहां से अगर कोई फूल या माला मिलती है आपको, तो उसे ऐसे ही मत कहीं रख दीजिए। उसको ला करके अपने काम करने की जगह पर, अपने पढ़ने की जगह पर रख दीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी। और जब ये सूख जाए तो क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आपके जमीन का मकान का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा हो तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गाय को गुड़ खिलाएं। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं, कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

बैठे कहां हैं? एक बात और मेरे पागलो याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो, जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, चार दो पंडाल सामने लगे, दो पंडाल तीन बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे, पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि दिल में कथा बैठे कैसे? सावधान से, जब तक कथा में बैठे ना तब तक सिर्फ कथा सुने, केवल कथा, सावधान होकर के बैठे। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाएं, कथा जब तक विराम ना हो तब तक भगवान को पीठ दिखा कर ना जाएं, कोशिश भर। अब कोई जरूरी काम आ गया तो बात अलग है, पर बहुत जरूरी नहीं है ना, तो पूरी कथा विराम हो तब जाएं, श्रोता सुन लें, यजमान जी। दूसरा नियम क्या है? इन 7 दिनों में, वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर 7 दिन तो छोड़ ही देना, 7 दिन में तो ना बोलना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा नियम, हो सके तो दिन में फलाहार रहो, रात को फुल आहार लो। पर मान लो कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, खा के आओ, पर इतना ही खा के आओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रसाद तो पाके आओ पर थोड़ा कम, हाँ कम आहार, ताकि नींद भी ना आए। डिस्टर्ब कई प्रकार से होता है, केवल इससे नहीं, कई प्रकार से होता है। नींद आ जाए, ज्यादा पाने से नींद भी तो आती है, तो थोड़ा नींद भी ना आए, थोड़ा चैतन्यता बनी रहे, क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता ना तो पूरा भोजन उसको पचाने में लग जाता, फिर कथा कौन सुनेगा? पड़ोसी। इसलिए कम आहार पाके आओ। पांचवा नियम, वो भी बहुत अच्छा नियम है, इन 7 दिनों में स्वस्ति तिलक मस्तक पर लगाना और वैष्णव मंत्र का जप करना। गुरु जी का कोई मंत्र दिया हो, राम नाम, या आपको जो मंत्र प्रिय लगता हो, आप जिनके उपासक हो, वो मंत्र जप करना। छठवा नियम, आहार पाए पर वही आहार भोजन खाएं जिस जो ठाकुर जी को जिसका भोग लगाया जा सके। हम दरबार में बैठे थे तो एक बार हमसे गलती हो गई, हमने एक चेला को कहा बेटा लहसुन प्याज नहीं करना, बाकी आगे का नहीं बोल पाए। तो एक साल बाद हमारे पास आया, बोले गुरुजी 2 काम तो हो गए पर एक नहीं हो रहा। हमका नियम पूरा किया, अरे बोले लहसुन प्याज आज तक छुआ नहीं। तो हमने अपने गुरुजी से वाईफाई में सिग्नल मिलाया कि 1 साल से ये आ रहा है और हमने इसको वचन दे दिया था, इसका काम क्यों नहीं हो रहा? बोले इससे कहो पौवा बंद क्यों नहीं किया। तो हमने कहा ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, तो पौवा पीता रहा 6 दिन और मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करता रहा, अब कहां से तुझ पे कृपा हो जाए? बोले गुरुजी आपने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, भगवान कसम लहसुन प्याज नहीं खाया। हमका मूसर चंदा लहसुन प्याज नहीं खाया, बाकी सब? बोले बाकी रोका ही नहीं आप। इसलिए हम ये छठवा नियम बता रहे स्पेशल, वही पाए जिससे जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके, आहार में भी सात्विक आहार। 7वां नियम, यजमान खास करके सुने, 7वां नियम है कथा सुनने का, 7 दिन की कथा है, 7 नियम। 7वां नियम है, इन 7 दिनों में दुश्मन भी आ जाए तो भी मन में ईर्ष्या ना लाना, यही सोचना इतने बड़े पंडाल में
लगता है हनुमान जी कोई ना कोई रूप बना करके कथा सुनने आए, क्योंकि हर कथा में कोई पहुंचे या ना पहुंचे हमारे हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। पूछो क्यों,

0: लखन
1: सीता मन वसीया।
2: हनुमान जी को कथा प्रिय है, हम लोगों को वृथा प्रिय है। पूछो क्या प्रिय है? हाँ, कथा होत के बीच में हम लोगों की बात, हमारी नहीं, तुम सुनो अपनी भी 50-50। कथा होत के बीच में पाप उठे या कुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती है। जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है कि ये क्या हो गया। लगता है ये जो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते हैं तो क्या करते हैं वो? दो तीन काम। जैसे ही कथा में बैठेंगे तुरंत नींद आएगी, और कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट ही में जय बोलते हैं। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिक्स है, वो कथा में सबसे आगे आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते हैं।
3: उस बालक को आने देना, बेटे तुम आ जाओ लेके, बहुत

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से

0: पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
2: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
3: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
4: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
6: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
8: बिना सहारे के मैं 2

0: कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
1: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: इस वक्त की शानदार खबर एशियाई खेलों से, एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा है। भारत ने आज 2 गोल्ड के बाद 1 सिल्वर मेडल जीता है। विमेंस की महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। प्रणवी शरद उर्स अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय तिकड़ी ने यह कमाल कर दिखाया। उनके 2 मेडल जीतने से जापान के आइची नागोया में भारत के लिए 14वां दिन रोमांचक रहा। सफलता का सिलसिला जारी है और कुमकुम मोहोद ने महिलाओं के रिकर्व व्यक्तिगत तीरंदाजी इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 79 मेडल हैं, जिसमें गोल्ड 18 हैं, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 35 शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
7: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं? और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: एशियाई खेलों में आज भारत की गोल्डन शुरुआत, तीरंदाजी के बाद गोल्फ में जीता गोल्ड, विमेंस की महिला टीम ने भी जीता सिल्वर। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने संवारने का काम जारी। थूथुकुड़ी में पूरा तासी के तीसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा रहे हैं खाने पीने का सामान, नावों से भी मदद पहुंचाने का इंतजाम। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी व्हाइट पार्टी, सफेद लिबास और सफेद माहौल में हजारों लोगों ने लिया खानपान और संगीत का मजा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य कल्पना से दिलचस्प ही होता है? इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के, चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहां सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपना प्यार कर लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहां सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। Let the world also see के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती, बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गई। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: Your Honor, how can he call me that?
11: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोल कर रख देगी।
7: जिसने आप पर, आपकी माँ पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
13: आई उज्ज्वल निकम अस Accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
14: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बम्बई घूमने आया था जनाब, उधर जूहू चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
13: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
15: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है मुंबई पे आतंकी हमला,
15: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
15: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे हुई, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
16: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई, सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
13: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजायंट सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था, लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था, भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में। नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
17: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
18: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
13: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाएगा।
0: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्लोगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आकाओं को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
13: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मेरे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, एक बड़ी अहम जाए।
7: मुझे केस।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
7: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
10: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
19: वो सर हैं, वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
7: जब तक क्रिमिनल
20: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट्स हुआ, उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
7: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही है। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
21: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
15: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
22: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
23: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
10: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्जवल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
2: देखिए मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भली भांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है। और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
2: नहीं देखिये, ये ठीक होना न ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रही थी पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया, 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है आप, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
2: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूं, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी?
2: कौन सी देखी थी तो
1: मतलब नहीं देखते, मतलब ना
2: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
3: थिएटर्स में ज्यादा जाते नहीं है, जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिल करके।
1: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
2: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि ये देखो, ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहा था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेज जो है वो किस पे थी, क्या थी, लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है,
22: लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता है, क्या हुआ है इस केस।
1: नहीं होते अगर वकील उज्ज्वल निकम तो क्या होते?
22: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
1: अच्छा।
22: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है।
1: हाँ।
22: फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब।
1: हाँ।
22: बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर। वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
22: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसे बात करता है तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्ज्वल निकम अस एक्यूज उज्ज्वल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
1: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: और इस वक्त की शानदार खबर एशियाई खेलों से। एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा है। तीरंदाजी में गोल के बाद नीरज चौहान ने एशियन गेम्स में इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में सिर्फ दूसरा मेडल है। भारत ने आज कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 80 मेडल हो गए हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं? और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियाई खेलों में आज भारत का गोल्डन डे, गोल्फ में जीता एक गोल्ड और सिल्वर, तीरंदाजी में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने सवारने का काम जारी। थूथुकुड़ी में पूरा तासी के तीसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा रहे हैं खाने पीने के सामान, नाव से भी मदद पहुंचाने का इंतजाम। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी व्हाइट पार्टी, सफेद लिबास और सफेद माहौल में हजारों लोगों ने लिया खान पान और संगीत का मजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या सीसीटीवी कैमरा तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश की जाती है तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है और नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फैक्ट चेक में आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाई उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि पानी में बहती गाड़ियों का यह वीडियो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर आई बाढ़ का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बाढ़ के बाद सड़कों पर मछलियां तैरती हुई दिखाई दी। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: नेपाल में एक महीने के अंदर दूसरी बार आए बाढ़ और लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि पानी में बहती गाड़ियों का यह वीडियो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई बाढ़ का है। यह वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इसकी पड़ताल की।
5: नेपाल अगस्त की तबाही से उबर भी नहीं पाया है कि एक बार फिर हालात बदतर होने शुरू हो गए हैं। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और कई लोगों को इसमें जान भी गंवानी पड़ी है। इन सब के बीच पानी में बहती गाड़ियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई बाढ़ का है। वीडियो में चलती गाड़ियों के बीच अचानक पहाड़ से मलबा नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान तेज बहाव वाली नदी के किनारे सड़क पर मौजूद गाड़ियां एक एक कर पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
4: नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है। अगस्त के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है और इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर आई बाढ़ का है। वीडियो में चलती गाड़ियों के बीच अचानक पहाड़ से मलबा नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान तेज बहाव वाली नदी के किनारे सड़क पर मौजूद गाड़ियां एक एक करके पानी में बहती हुई दिखने लगती हैं। ये खबर हमारे सामने भी आई क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल बाढ़ को लेकर कई तस्वीरें और वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं और फैक्ट चेक की टीम लगातार उनका फैक्ट चेक कर रही है। तो अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो हमने इस वीडियो की भी तहकीकात की है, लेकिन हमें ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि वीडियो नेपाल का है। ऐसे में हमने वीडियो को ध्यान से देखा, इस दौरान हमने इसमें ऐसी कई गलतियां पाई जिससे इसके वास्तविक होने पर सवाल खड़े हो गए। उदाहरण के तौर पर तेज बहाव वाली नदी में जब भारी वाहन पानी की चपेट में आते हैं तो पानी से टकराने और वाहन के डूबने जैसी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन वायरल वीडियो में गाड़ियां बिना किसी दबाव के पानी में खिलौने की तरह सीधी दिशा में तैरती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा वीडियो में सड़क पर चल रही नीली बसें भी नजर आ रही हैं और गौर करने पर इन बसों का डिजाइन एक जैसा दिखाई देता है। तो वहीं वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे पर हमें ये शक भी हुआ कि ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोत से जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल, वीडियो में कुछ वीडियोस के नंबर प्लेट पर लिखे अंक और अक्षर भी असामान्य कटे फटे और धुंधले नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसी खामियां असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या पाया, इस रिपोर्ट में देखिए।
5: वायरल वीडियो के जरिए जो कहानी पेश की जाती है वो सही है हो ऐसा होता नहीं है। हमें भी ये खबर देखकर शक हुआ क्योंकि सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जिसमें से नेपाल तिब्बत बॉर्डर की बाढ़ का वास्तविक दृश्य बताया गया हो। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइप डिटेक्ट पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 84.5% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। इस वीडियो को हमने एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म डिटेक्ट वीडियो AI पर भी जांचा। इस टूल ने भी वीडियो को 89% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा साइट इंजन और एलोरनॉट ने भी वीडियो में मौजूद दृश्यों को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर गाड़ियों के पानी में बहने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो AI जनरेटेड है।
4: और अब बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बाढ़ के बाद सड़कों पर मछलियां तैरती हुई दिखाई दी। वायरल हो रही इस खबर में हमने भी पड़ताल की और सच्चाई जानने के लिए दावे की जांच भी की।
6: थाईलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रिहायशी इलाके में कुछ ही सेकंड में पानी भर गया। बाढ़ से करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। अब इसी बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नजारा है जहां बाढ़ के बाद सड़कों पर कई मछलियां तैरती हुई दिखी। बाढ़ के पानी में बहकर ये मछलियां यहां तक पहुंची थी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि लबालब पानी में मछलियां तैर रही हैं। इस दौरान कुछ लोग अपने मोबाइल के कैमरे से इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
4: बता दें, थाईलैंड में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 2700 वर्ग किलोमीटर इलाके में बाढ़ फैल गई और उसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इन सब के बीच ये वीडियो सामने आया। दावा ये कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नजारा है ये, जहां बाढ़ के बाद सड़कों पर कई मछलियां तैरती हुई दिखी। वायरल हो रहा वीडियो हमारे पास भी आया, हमने भी इसकी पड़ताल करने की ठानी, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। वीडियो में किसी सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ दिख रहा है और इस दौरान पानी में मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। लोग इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हमें कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में अमेरिका की सुविधा स्टोर चेन 7-11 का नाम कम से कम 2 अलग अलग साइन बोर्ड पर गलत लिखा हुआ है। बैंकॉक में ये स्टोर हर जगह है और इसलिए ये बात बहुत ही अजीब और लगभग नामुमकिन है कि सड़क के अलग अलग तरफ मौजूद 2 अलग अलग आउटलेट्स पर नाम की स्पेलिंग 7-11 लिखी हुई है। ऐसे में एक और बात, वीडियो में कई गाड़ियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये गाड़ियां एक ही जगह खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इनमें कोई हरकत देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कहीं से भी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हाँ, ये बात सच है कि थाईलैंड के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। खासतौर पर बैंकॉक में बारिश और बाढ़ के डबल अटैक से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। थाईलैंड से लगातार तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई वीडियो हाल फिलहाल में सामने नहीं आया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाई गई है। हमारी फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
6: वायरल हो रहा दावा चौंका रहा था। यह हमें अजीब लग रहा था कि बैंकॉक की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भरोसेमंद लोकल या इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि बाढ़ के दौरान कैटफिश और दूसरे जलीय जीव बैंकॉक की सड़कों पर आ गए हों। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को फ्रेम द फ्रेम देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी खामियां देखने को मिली जिसमें हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए, तैरती हुई मछलियों की संख्या और आकार के हिसाब से पानी की गहराई साफ तौर पर कम लग रही थी। इसके बाद हमने AI डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन का इस्तेमाल करके वीडियो की जांच की। टूल ने 97% पक्के तौर पर कहा कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। हाई मॉडरेशन ने यह भी बताया कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये वीडियो सिडांस का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। सिडांस चीनी टेक कंपनी का बनाया हुआ टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो AI जनरेटेड है, इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: और यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

0: देखने गए थे आपको याद है?
1: कहाँ?
0: शादी से पहले?
1: ना, हम नहीं देखे थे।
0: आप नहीं देखे थे?
1: हम देखते तब तो इनको रिजेक्ट कर देते।
0: अरे काहे? काहे उनको रिजेक्ट करते?
1: अरे हम सात सात लड़की रिजेक्ट किए।
0: अरे
1: कोई छोटी, कोई नाती, कोई बड़ी। इनके बारे में हम सुने कि लोग आए हैं जाए, तो हमने हमारे पिताजी, माँ और बहन और भाभी चार आदमी बलिया स्टेशन पर जाके दी।
2: पोते के पूछने पर दादाजी ने अपनी शादी का मजेदार कस्सा सुनाया और इस दौरान उनकी दादी से तीखी नोकझोंक भी हो गई।
1: लिखी तो कहें कि हम इसको लड़के की यहाँ भेजेंगे, देखेगा। क्या हम कह लें कि जब आप लोगों ने पसंद कर लिया तो ठीक
3: है।
0: तो आपको नहीं पसंद थी? अरे हाँ,
3: हम कहिया बना रहे।
0: आप बाबा को शादी से पहले देखी थी कि नहीं?
3: हम खाली रेल के नौकरी देखा।
2: एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का ये अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वो तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद ये एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वो उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बल खा के चली है और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है। मानो कह रही हूँ है कोई मुझसे तो सामने आए। बच्चे का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

सुर है, ताल है और ढोल की थाप पर झूमते लोगों की मस्ती है। लेकिन इस महफिल में सबसे खास है एक छोटा सा कलाकार, जो कभी ढोल बजा रहा है तो कभी उसी की धुन पर खुद थिरक रहा है। बच्चे के हाथों में ढोल आते ही माहौल और भी रंगीन हो जाता है। उसकी मासूम अदाएं देखकर आसपास मौजूद लोग भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाते। लोग बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं और उसकी मासूमियत भरी अदाओं का खूब आनंद ले रहे हैं।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने परंपरा और आधुनिक तकनीक को एक ही मंच पर ला दिया। यहाँ चीन में बने कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सऊदी अरब के मशहूर पारंपरिक अरदा तलवार डांस किया। खास बात यह रही कि रोबोट्स ने ये डांस सऊदी की पारंपरिक पोशाक पहनकर किया। उनका ये अंदाज देखने वालों के लिए काफी अलग और दिलचस्प था। ये खास प्रेजेंटेशन चीनी दूतावास की ओर से आयोजित एक रिसेप्शन के दौरान हुई। कार्यक्रम का आयोजन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया था। इस दौरान रोबोट्स को थॉब और घुटरा जैसी पारंपरिक सऊदी पोशाक में तैयार किया गया था। हाथों में पारंपरिक तलवारें लिए ये रोबोट्स संगीत की धुन पर एक साथ कदम मिलाते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों का ध्यान खासतौर पर इस बात पर गया कि रोबोट्स ने अरदाह के कई पारंपरिक मूवमेंट्स को काफी तालमेल के साथ दोहराया। बता दें कि अरदाह सऊदी अरब की ट्रेडिशनल कल्चर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसे आमतौर पर राष्ट्रीय समारोहों, त्योहारों, शादियों और दूसरे खास मौकों पर किया जाता है। इसमें लोग एक साथ खड़े होकर संगीत और ट्रेडिशनल ताल के साथ तलवारें थाम कर कदम मिलाते हैं।

0: एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में हैंडल और सड़क की सफाई का ऐसा अंदाज कि देखने वाले भी तारीफ किए बिना न रह पाए। महिला पूरे जोश और उत्साह के साथ सड़क की सफाई में जुटी है। काम चाहे कोई भी हो, अगर उसे करने का हौसला और जज्बा हो तो हर काम आसान लगने लगता है। महिला का यही जज्बा इस वीडियो में नजर आ रहा है। अपने काम को लेकर उसकी मेहनत और लगन लोगों का ध्यान खींच रही है और लोग उसकी खूब सराहना कर रहे हैं। एक वक्त था जब मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और गांव की गलियों में ही मनोरंजन के कई रास्ते मिल जाते थे। खासकर लड़कियों के बीच ऐसे देसी खेल बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। काम से थोड़ी फुर्सत मिली नहीं कि खेल शुरू, लेकिन वक्त बदला और ये खेल पीछे छूट गए। अब एक महिला ने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए उसी खेल को फिर से खेला। वीडियो देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ रहा है और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं।
1: हर गली बदल रही है रूप जिंदगी।
0: बस में यात्री आ रहे हैं, अपनी सीट पर बैठ रहे हैं, लेकिन इस सफर की सबसे खास बात है बस का ड्राइवर, जो यात्रियों का स्वागत किसी आम अंदाज में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए और गाना गाकर कर रहा है।

0: ड्राइवर के चेहरे की मुस्कान और उसकी आवाज ने बस के माहौल को खुशनुमा बना दिया। बस में बैठने वाले यात्री भी उसके गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आते जाते लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है और सफर यादगार बन रहा है। कबड्डी का खेल तो आपने खूब देखा होगा। दो टीमें, एक मैदान और जीत के लिए जोर आजमाइश। लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ इंसानों की नहीं बल्कि बंदरों की टीम आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ बंदरों का झुंड है तो दूसरी तरफ दूसरा झुंड, और दोनों के बीच कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसे देख कर लोग हैरान भी है और खुश भी। बंदरों की सनों की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: एवरेस्ट दिखाला सही तीखा सही लाल।
9: एशियाई खेलों में आज भारत का गोल्डन डे, गोल्फ में जीता एक गोल्ड एक सिल्वर, तीरंदाजी में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने सवारने का काम जारी। थूथुकुड़ी में पूरा तासी के तीसरे शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती।

0: जाम हटाने में जुटी पुलिस। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी व्हाइट पार्टी, सफेद लिबास और सफेद माहौल में हजारों लोगों ने लिया खान पान और संगीत का मजा।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा उपाय कर लें, एक ऐसी पूजा कर लें जिससे हमारी जिंदगी ठीक रास्ते पे चलती रहे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सी पूजा कर लें, कौन सा उपाय कर लें कि पूरी जिंदगी बेहतर चलती रहे, ज्यादा मुश्किलें जीवन में ना आए और भाग्य हमारा साथ दे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कि आपको कौन सी एक पूजा जरूर करनी है, और अगर वो एक पूजा आप रेगुलरली करें, थोड़ा ध्यान रखें, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, बड़ा शक्तिशाली और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है ये। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई बड़ा विवाद हो गया है, उसको निपटाना चाहते हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, मुकदमे से विवाद से बाहर आना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने बैठ करके इस मंत्र का एक एक माला जप करिएगा। कितना भी बड़ा विवाद हो, कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, अगर सुबह शाम आप ये मंत्र पढ़ेंगे ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, अगर सुबह शाम ये मंत्र पढ़ें लगातार 3 महीने तक, निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्या से बड़े विवादों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो 3 महीने तक सात्विकता का पालन करेंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार अगर आप एक विशेष तरह की पूजा करें तो आपको लाभ हो सकता है। आखिर लग्न के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, किसी व्यक्ति का जो लग्न है उसके जीवन का केंद्र है। लग्न का मतलब वो व्यक्ति स्वयं, लग्न मतलब आप खुद, राशि मतलब आपका मन। तो किसी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन का केंद्र है और कुंडली के लग्न से ही स्वास्थ्य, सफलता और बाधाएं निर्धारित होती हैं। आपके लग्न से ही ये पता चलता है कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, कितने सफल होंगे और जीवन में बाधाएं कैसी आएंगी। लग्न के अनुसार हर लग्न के जीवन की बाधाएं निश्चित होती हैं कि उस तरह की बाधाएं जरूर आती हैं। तो लग्न के अनुसार पहले बाधाओं को समझना चाहिए और इसके बाद लग्न के अनुसार विशेष पूजा करके बाधाओं को दूर करना चाहिए। अगर आप अपने लग्न का नेचर जान जाएं, लग्न का टेम्परामेंट जान जाएं, तो एक पूजा करके आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हर लग्न का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग मुश्किलें भी होती हैं। तो आप पहले देखिए कि आपका लग्न क्या है और लग्न के हिसाब से किस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। जिस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, उससे संबंधित अगर पूजा आप लंबे समय तक करें तो आपका भाग्य चमकेगा और बाधाएं जीवन से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल और ये चर लग्न है, यानी मेष लग्न के अंदर स्थिरता नहीं होती, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेष लग्न वालों के जीवन में चीजें अक्सर अस्थिर रहती हैं और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। योग्य होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, मेहनत करते हैं, नई चीजों को खोज निकालते हैं, लेकिन काफी उम्र तक इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अगर किसी का मेष लग्न है, सर दर्द की शिकायत होने की पॉसिबिलिटी काफी है, चोट चपेट लगने की संभावना काफी है और उम्र बढ़ने पर नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम भी इनको पकड़ लेती है। लेकिन मेष लग्न वालों की सबसे बड़ी बाधा है कि इनका जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता। इनको जीवन में स्टेबल होने में, स्थिर होने में वक्त लगता है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मेष लग्न है, आंख मूंद कर बिना सोचे विचारे सूर्य भगवान की पूजा जरूर करिए। इनको रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः या ओम घृढ़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लिए एक पूजा है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सूर्य मंत्र का जप करेंगे। वृषभ लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है। स्थिर स्वभाव का लग्न है, स्टेबिलिटी और स्थिरता इनके काम में हमेशा दिखाई देगी। वृष लग्न के जो लोग होते हैं ये अत्यधिक संघर्ष जीवन में करते हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और अक्सर करियर के और इमोशंस के, भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनका किसी न किसी मामले में स्ट्रगल चलता रहता है। वृष लग्न का जो सिंबल है वो क्या है? बैल। तो स्वभावतः ये बड़े जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, जिद इनके अंदर काफी ज्यादा होती है और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने जिद की वजह से, अपने उग्र स्वभाव की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। वैवाहिक जीवन में या रिश्तों में 100% कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% समर्पण होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगला भी उतना ही समर्पण दिखाए। इसीलिए वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में इनको संतोष नहीं मिल पाता। वृष लग्न वाले बड़े स्थिर दिमाग के, बड़े मेहनती, बड़े तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनको चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। क्या पूजा करेंगे? वृष लग्न वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इनको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करने से लाभ होगा। इनको रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक इनको जलाते रहना चाहिए। अगर वृष लग्न वाले नियमित रूप से शनि देव की पूजा करें तो इनका स्वभाव थोड़ा माइल्ड होगा और इनके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। मिथुन लग्न स्वभावतः इंटेलिजेंट लग्न है, बुद्धिमान लग्न है। बुद्ध इस लग्न का स्वामी है। वायु तत्व का और द्वि स्वभाव का लग्न है। मिथुन लग्न वाले नॉर्मली 100 में से 80% मामलों में इंटेलिजेंट होते हैं। ये अक्सर जल्दबाजी के और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। हर काम जल्दी करना चाहते हैं और एक साथ कई काम में हाथ डाल देते हैं। उस चक्कर में कोई काम सही नहीं हो पाता और अक्सर निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। कंफ्यूजन और जल्दबाजी इनके जीवन में बनी रहती है। संतान के साथ इनका अटैचमेंट बहुत होता है। मिथुन लग्न वाले संतान का बड़ा मोह रखते हैं और संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं। मोह में संतान को बिगाड़ देते हैं और बाद में चीजें बिगड़ जाती हैं। संतान के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, संतान के मुंह में गड़बड़ियां होती हैं। मिथुन लग्न वाले बुरे नहीं होते, किसी को परेशान नहीं करते, नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में, सबको खुश रखने के चक्कर के मामले में ये अक्सर अकेले रह जाते हैं। इनको लगता है इसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, इसका भी ध्यान दे दो, ये काम भी कर लो, उस चक्कर में बेचारे अकेले रह जाते हैं। मिथुन लग्न वाले हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। अब अगर मिथुन लग्न है तो आपकी मुश्किल क्या है? एक साथ बहुत सारे काम में घुसना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहना और बुद्धि तेज होने के बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देना। क्या करना चाहिए? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर कठिन लगता है, बड़ा लगता है, तो मोबाइल पर लगा करके सुन लें। सुन करके भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कर्क लग्न, चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है, चर लग्न है, जल तत्व का लग्न है, भावनाओं का, इमोशन का, क्रिएटिविटी का और भाग्य का सबसे बड़ा लग्न है कर्क लग्न। लेकिन कर्क लग्न वालों के जीवन में सुकून नहीं होता, चमक सूर्य की तरह जाएंगे लेकिन अंधेरा भी अमावस्या की तरह होगा। कर्क लग्न वालों की सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े लापरवाह भी होते हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं, खासतौर से पेट की समस्याएं इनको परेशान करती हैं और मन की समस्याएं भी इनको काफी परेशान करती हैं। कर्क लग्न वालों की सेहत, आयु और मन की समस्या इनको लगातार परेशान करती है। इनका मेंटल लेवल बड़ा सेंसिटिव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में कोई बात लग गई कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। ऐसा देखा गया है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन 90% मामले में अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में इनके अगर भगवान की कृपा है तो वैचारिक मतभेद रहता है, जिंदगी रोते गाते घिसटती रहती है, और अगर नकारात्मक प्रभाव है तो शादी टूटना निश्चित होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर कर्क लग्न वालों को कष्ट का सामना अक्सर करना पड़ता है। ये जीवन में जब भी निर्णय लेंगे ना, ये बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क लग्न वाले बुद्धिमान नहीं होते, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनोवेटिव बहुत होते हैं और भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा भी होती है इनके ऊपर, लेकिन अक्सर इमोशंस में आके इनसे बड़ी गलतियां होती हैं और भावनात्मक गलतियां करते हैं निर्णय लेने में, जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। ये अक्सर दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की बात नहीं सुनते और इसी चक्कर में कर्क लग्न वाले बुद्धि होने के बावजूद बेवकूफ बनते हैं। तो कर्क लग्न वालों की क्या समस्या है? मुख्य समस्या है इनकी भावनाएं, इनका अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक इमोशनल होना। क्या करना चाहिए? कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दुनिया में संतुलन के दो ही देवता हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा से शिव जी डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप कुछ करें या ना करें, शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय रोज सुबह पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। सिंह लग्न, सूर्य इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का अग्नि तत्व का लग्न है, बड़ा ताकतवर, बड़ा शक्तिशाली, रॉयल लग्न, राजसी लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जो होते हैं ना, जैसे सूर्य के अंदर भावनाएं नहीं होती, सूर्य का क्या गुण है, रूखा होना, ड्राई होना, क्रूर होना या जिद्दी होना, तो सूर्य का जो बेसिक टेम्परामेंट है ना, वो सिंह लग्न वालों के अंदर होता है। ये बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, और अगर सूर्य इनका प्रबल हो गया ना, सिंह लग्न है, सूर्य अगर प्रबल है तो ये बड़े रूखे, बड़े डोमिनेटिंग और सबके ऊपर शासन करने वाले होंगे। अगर सिंह लग्न है और जल्दी शादी हो गई 24 साल में, 25 साल में, 26 साल में, तो ज्यादातर मामले में दिक्कत आती है, विवाह टूटता है या विवाह में कुछ समय तक अलगाव का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न वाले बड़े शक्तिशाली होते हैं, हर स्थिति परिस्थिति से जूझते हैं, संघर्ष से, मेहनत से नहीं घबराते, और किस्मत भी ऐसी ही मिलती है, जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन सिंह लगन वाले भी कम नहीं होते, नहीं मिलेगी तो भी जूझेंगे और पा करके ही दम लेंगे, अगर सिंह लग्न की प्रबलता ज्यादा है। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो देखिए, एक लाइन में आपकी समस्या है, आपका कठोर स्वभाव और जीवन का संघर्ष। तो क्या करेंगे, नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी है। अगर आपका सिंह लग्न है तो भगवान सूर्य की उपासना करिए, सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाइए और जीवन की समस्याओं में विजय पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सिंह लग्न वालों का जीवन बेहतर होगा, जीवन का अनावश्यक संघर्ष कम हो जाएगा। कन्या लग्न, बुध इस लग्न का स्वामी है, द्वि स्वभाव का लग्न है, पृथ्वी तत्व का लग्न है। कन्या लग्न वाले जो होते हैं ना, वे अनुशासित होते हैं आम तौर पे। अगर कन्या लग्न है तो डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, सफाई होगी और क्लास होगा। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो भी कपड़े बड़े सोच समझ के, बड़े सिस्टम से पहनेंगे, बड़े क्लास का पालन करेंगे। तो ये लोग अनुशासन, सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं, और अक्सर इनको जीवन साथी ऐसा मिलता है जो इनका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनुशासन को ना मानने वाला, जीवन में लापरवाही करने वाला, ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और कन्या लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत होता है, मैनेजमेंट इनके ब्लड में होता है, कठिन से कठिन काम को ब्यूटीफुली मैनेज करने का गुण कन्या लग्न वालों में पाया जाता है। लेकिन इनकी मुश्किल क्या है, बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं, इनको लगता है जीवन में कुछ नया हो, रोज नई चुनौती आए, रोज मेहनत करनी पड़े और रोज कुछ नया करके दिखाने का मौका मिले, कन्या लग्न वाले ऐसा सोचते हैं। कन्या लग्न वालों की मुश्किल क्या है कि ये अपने बराबर किसी को नहीं समझते। ये क्लास के चक्कर में, अपनी योग्यता के चक्कर में दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते और दूसरे इनके काम को कुछ नहीं समझते। इस चक्कर में आप देखेंगे कन्या लग्न वालों के ऑफिस में बॉस के साथ झंझट बहुत होते हैं। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। हालांकि देखिए कितनी बात मानेंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता का सम्मान हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको गौरव मिले, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें, श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और नियमित रूप से सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें या सुनें। तो यही एक पूजा, भगवान कृष्ण की केवल एक मात्र पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपका कल्याण होगा। तुला लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और चर यानी मूवमेंट वाला लग्न है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो होते बड़े डिसेंट हैं। तुला लग्न के लोग आम तौर पर झंझटों में पड़ने वाले नहीं होते और आम तौर पर नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं। तुला लग्न के लोग सामान्यतः जल्दबाजी में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। सामान्यतः जल्दबाजी में इनसे बड़ी गलतियां होती हैं क्योंकि इनको लगता है कोई भी काम जितना जल्दी करो उतना अच्छा। हर काम जल्दी करना अच्छा नहीं होता, कुछ काम में थोड़ा समय देना भी बेहतर होता है। दिखावे के चक्कर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनको पॉम्प एंड शो का, दिखावे का बड़ा शौक होता है और इस चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं। और तुला लग्न वालों के सरल स्वभाव की वजह से लोग इनको बेवकूफ बनाते हैं, इनसे पैसे भी लेते हैं, इनकी झूठी तारीफ करके इनको उल्लू बनाते हैं और अक्सर प्रेम के चक्कर में, लगाव में इनको अक्सर असफलता मिलती है, उसमें इनको नुकसान होता है। तुला लग्न वालों की दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, दिखावा, दिखावे की आदत, उस चक्कर में गड़बड़ी होती है और बिना सोचे समझे, बिना विचार किए प्राइमा फेसी, जो प्रथम दृष्टया है, जो जैसा दिख रहा है, बिना सोचे विचारे, बिना जांच पड़ताल किए प्रेम में और रिश्तों में पड़ जाते हैं और 90% इनको असफलता मिलती है। इनके सरल स्वभाव का लोग फायदा उठाते हैं, ये बेचारे दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, दूसरों को बेहतर करने में लगे रहते हैं और लोग इनको बेवकूफ बना के निकलते बनते हैं। हालांकि तुला लग्न वाले भाग्यवान बहुत होते हैं, इसीलिए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद किस्मत इनका साथ देती है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो नियमित रूप से दान करिए। आपको दिखावे के लिए नहीं, आपको दूसरों की सहायता के लिए दान करना है, नियमित रूप से ध्यान करना है और अगर परमात्मा की कृपा से आपका सही समय विवाह हो गया है तो जीवन साथी की बात मानिए, जीवन साथी से डिस्कस करके, सलाह मान करके चलिए तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन की कम हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, मंगल स्वामी है, जल तत्व का लग्न है और स्थिर स्वभाव का लग्न है। जल का एक लग्न कर्क लग्न भी, आपको बताया ना, कर्क लग्न का जो पानी है वो ठंडा है, वृश्चिक लग्न का जो पानी है वो गर्म है, बॉइलिंग वाटर है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों के अंदर छुपी हुई पानी के अंदर गर्मी होती है, पानी को देख के नहीं जान सकते गर्म है कि ठंडा है, टच करना पड़ेगा। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को देख के नहीं जान सकते कि क्या है इनका रहस्य, वृश्चिक लग्न वाले बड़े रिवेंजफुल होते हैं। अगर उनको आपने परेशान नहीं किया तो जीवन में उनसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर वो नॉर्मल जीवन में चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, वो जीवन में आराम से रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर छेड़ा या परेशान किया तो इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, सही समय का इंतजार करेंगे और सही समय आने पर आपके लिए ऐसी तैसी स्थितियां पैदा कर देंगे। वृश्चिक का जो सिंबल है वो क्या है? बिच्छू। अगर आपने उसे छेड़ा, वो डंक मारेगा समय आने पर। वृश्चिक लग्न वाले विद्वान बहुत होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को अगर कोई भूत, कोई सनक सवार हो गया तो आप मान करके चलिए कि फिर ये देखेंगे नहीं कि उसके परिणाम क्या हैं। अक्सर वृश्चिक लग्न वालों का अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है, जो इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हो सकता है गुरु ने कभी कोई ऐसी बात कह दी जो इनको ईगो को लग गई, इनके मार्गदर्शक ने इनको कुछ ऐसा बता दिया जो इनको कष्ट पहुंचा गया, चुभ गया, तो ये छोड़ करके रास्ता अलग हो जाएंगे और मौका पड़ने पे अपना काम करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं, आम तौर पर जीवन साथी इनको बड़ा अच्छा मिलता है, कोई बड़े उच्च पद की स्त्री, उच्च पद का पुरुष, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से इनकी शादी होती है, ऐसा देखा गया है। या तो वो रहता नहीं, और अगर शादी हो गई तो बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपनी बदला लेने की आदत छोड़नी है, मन में रहस्य नहीं रखना है और ऊपर से मीठे रह के मन में जहर नहीं रखना है। हर जगह राजनीति मत करिए, खुराफातों से बचिए। ईश्वर ने आपको बड़ी योग्यता दी है, क्यों आप दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का? इनको नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वृश्चिक लग्न वाले अगर शिव जी की उपासना करें तो कम से कम जीवन में शांत तरीके से, संयमित तरीके से, बेहतर तरीके से रहेंगे। और शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करें या सुने रोज सुबह तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु लग्न बृहस्पति स्वामी हैं, द्विस्वभाव का लग्न है और अग्नि तत्व का लग्न है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, लड़ाई करने को तैयार, ये बेसिक फीचर है धनु लग्न का, एग्रेशन होना या लड़ाई करना। इसीलिए आर्मी में, पुलिस में, सेना में, साहस में, करेजियस क्षेत्रों में धनु लग्न वाले काफी होते हैं। धनु लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है और उग्रता की काफी समस्या होती है, एग्रेसिव बहुत होते हैं, और जब ये एग्रेसिव होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्रोध में ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। धनु लग्न वालों की संतान योग्य होती है ऐसा देखा गया है, लेकिन संतान इनको कुछ समझती नहीं, इनका बेटा या बेटी इनसे दूर चला जाता है और संतान की तरफ से इनको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, विचार एक पैसे के नहीं मिलते। धनु लग्न में भी संघर्ष बहुत होता है, आसानी नहीं होती, मेहनत धनु लग्न वालों को भी बहुत करनी होती है, और बहुत बार ये मेहनत करते हैं, फायदा कोई और ले जाता है, ऐसा भी धनु लग्न वालों के साथ होता है। लेकिन ये भागते नहीं, हारते नहीं, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। मेहनती बहुत होते हैं और लगातार दिमाग लगा के, मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, लेकिन हाँ, काफी उम्र बीत जाने के बाद तब इनको सफलता मिलती है। सामान्यतः दिमाग और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन धनु लग्न वालों के पास पाया जाता है। इनकी समस्या है इनका क्रोध, इनकी उग्रता और इनके जीवन का संघर्ष। भगवान सूर्य की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, थोड़ा टेम्परामेंट शांत होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न, शनि स्वामी है, चर लग्न है और पृथ्वी तत्व का लग्न है। मकर लग्न वाले बड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, कन्या लग्न वालों के जैसे ही परफेक्शन होता है इनके अंदर, और मकर लग्न वाले जिस सब्जेक्ट में होंगे उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मकर लग्न वालों की मुश्किल ये है कि अगर इनको बार बार कोई साहस न दे, कोई हिम्मत न दे, कोई दिलासा न दे तो बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वालों को अगर ये कहते रहा जाए कि तुम सब कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर ले जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, बार बार इनको बताया जाए तो ये पर्वत भी लांग सकते हैं, लेकिन चूंकि बार बार सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। और मकर वाले बड़े ईमानदार होते हैं अपने रिश्तों के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मामलों में, जिसको अपना मानते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, उसके साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन इनको उतना सपोर्ट वापस नहीं मिलता, इसीलिए पारिवारिक जीवन से रिश्तों के मामले में संतुष्ट नहीं होते। मकर लग्न वालों का स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। मकर लग्न वालों को आमतौर पर बड़ी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या, त्वचा की समस्या, सर दर्द की समस्या, कान नाक गले की समस्या, ये अक्सर मकर वालों को परेशान करती है। मकर वालों को जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो बार बार इनको साहस देता रहे, बार बार इनको इनकी ताकत याद दिलाता रहे, तो मकर लग्न वाले वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर आपका लग्न मकर लग्न है, जीवन में भाग्य को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए, यही एक पूजा आपके लिए जरूरी है। नियमित शनि की उपासना करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न, शनि स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, और कभी कभी इतने ज्यादा बुद्धिमान कि वो बुद्धि ज्यादा होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है कुंभ लग्न वालों को। कुंभ लग्न वालों के चूंकि जीवन का केंद्र होता है शनि, इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आप आमतौर पर देखेंगे कि उम्र के 32 साल तक बड़ा संघर्ष करते हैं। 30-32 साल तक कुंभ लग्न वालों का संघर्ष चलता रहता है, खास तौर से करियर के मामले में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बाकी चीजें धीरे धीरे इनको मिलती रहती हैं। करियर को स्टेबल करने में वक्त लगता है। कुंभ लग्न वाले होते इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, एग्रेसिव, बात ना सुनने वाला, बात ना मानने वाला, अगर बुद्धिमान है तो भी उद्दंड और उज्जड होता है। तो कुंभ लग्न वालों को जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन करें क्या। कुंभ लग्न वाले बुद्धिमान बहुत हैं, कुंभ लग्न वाले ताकतवर बहुत हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जिंदगी में जिससे उनको दुनिया याद रखती है, अगर भगवान की कृपा रही तो। लेकिन कुंभ लग्न वाले भीड़ में भी अकेले रहते हैं, ये पक्के तौर पे जानिए कि कुंभ लग्न वाले कितने भी पॉपुलर हों, कितने भी प्रसिद्ध हों, जीवन में अकेलापन रहेगा और कुंभ लग्न वालों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले आपको बताएंगे नहीं, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, ये सब छुपा लेते हैं अपनी चीजों को। तो जीवन में अकेलापन और अवसाद इनको बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले जब जीवन में सब कुछ पा जाते हैं तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर या एकदम आइसोलेशन में अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन करें, जितना ध्यान करें, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपकी सहायता कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। जितना ध्यान करें, मंत्र जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उतना ही आप जीवन में ठीक रहेंगे। प्रातः काल पूजा करना, प्रातः काल ध्यान करना आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो कुंभ लग्न वालों को सिर्फ एक ही पूजा करनी है, वो है ध्यान। मीन लग्न, बृहस्पति स्वामी है, जल तत्व का लग्न है, द्वि स्वभाव का लग्न है। मीन लग्न वाले जो होते हैं ना, वो होते तो बुद्धिमान है, बात किसी की नहीं सुनेंगे चाहे कोई कितना भी समझाए। आपके मुंह पे भले ही कह देंगे कि ठीक है मैं मानूंगा, मानेंगे बिल्कुल नहीं। इनको अपनी बुराई और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता और इनके मन में बहुत जल्दी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। मौका पाए तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है और अगर गलत संगति पकड़ ली तो चरित्र भी बहुत जल्दी कमजोर होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शिव जी की जितनी पूजा करें उतना अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का अगर आप जप रोज करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुडलक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: भाग्य कहीं दूर नहीं,
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और चलिए अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
6: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है, और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

0: बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हों। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान हैं। कंधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत पूरी करने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस अदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले एप्पल मिलेगा। और ये बात शायद हाथी को पता है, तभी पहले सूंड एप्पल पर जाता है और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ मुड़ जाता है। बच्चे भी मानो अपना वादा निभाती है, एक एक कर सारे एप्पल हाथी को खिला देते हैं। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियाई खेलों में आज भारत का गोल्डन डे, गोल्फ में जीता एक गोल्ड और सिल्वर, तीरंदाजी में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने संवारने का काम जारी। नैनीताल के नीम करौरी धाम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। वीकेंड पर उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु, जोशीमठ से जोगीधार के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, जाम हटाने में जुटी पुलिस। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी व्हाइट पार्टी, सफेद लिबास और सफेद माहौल में हजारों लोगों ने लिया खान पान और संगीत का मजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: एशियन गेम्स 2026 की गोल्फ में भी भारत का शानदार प्रदर्शन, गोल्ड मेडल के साथ खुला खाता। प्रणवी ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। गोल्फ की महिला टीम ने भी किया कमाल, सिल्वर पदक पर किया कब्जा। प्रणवी अदिति और दीक्षा डागर की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रणवी ने किया टीम का नेतृत्व। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने महिला हॉकी टीम को शानदार तरीके से शुभकामनाएं दी, रेत पर बनाई कलाकृति। आईची नागोया एशियन गेम्स में आज ही भारत की सुनहरी शुरुआत, आर्चरी में मिला एक और गोल्ड। सत्रह साल की कुमकुम मोहर ने रच दिया इतिहास, शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया की ओ येजिन को हराया। कुमकुम के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। एशियाई खेलों में कुल 80 मेडल जीतकर 5वें स्थान पर है भारत, अब तक 18 गोल्ड, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों पर कब्जा। एशियाई खेलों में इवेंट के आखिरी दिन आज भी भारत को कई मेडल मिलने की उम्मीद, कुश्ती तीरंदाजी समेत कई खेलों में होगी दावेदारी। जापान से पदक वीरों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में देश का परचम लहराकर घर लौटी निशानेबाज परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य तरीके से स्वागत। एशियाई खेलों के बाद अब ओलंपिक पर भी खिलाड़ियों की निगाहें, कहा एशियन गेम से हासिल हुआ शानदार अनुभव। केरल के पलक्कड़ में एशियाई खेलों के पदकवीर एन श्री शंकर का शानदार स्वागत, पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। झारखंड के सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने मनाया जश्न, एशियाई खेलों में महिला टीम की जीत से दिखा उत्साह। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पुरतासी महीने के तीसरे पवित्र शनिवार को विशेष आयोजन, पेरुमल मंदिर में पूजा अर्चना। थूथुकुड़ी पेरुमल मंदिर में नंदी का किया गया विशेष श्रृंगार, पुरोहितों ने की विशेष पूजा। तिरुचिरापल्ली के मुंकोबू में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा, खुले स्लुइस गेट मेटूर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी नदी में उफान। मुकोम्बू में जलस्तर 9,900 क्यूसेक के पार, कावेरी डेल्टा में सांबा खेती के लिए छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी। मुकोम्बू बांध का बड़ा जलस्तर बना आकर्षण का केंद्र, ड्रोन तस्वीरें हुई वायरल, निचले इलाके के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाटों पर भरा पानी। पटना के दानापुर दियारा में फिर बाढ़ का संकट, 6 पंचायतों की सड़कें डूबी, स्टीमर बना यातायात का सहारा। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी, वैशाली से भेजे गए राहत सामग्री से भरे 5 ट्रक। बिहार के सारण में 11,000 पॉलिथीन शीट और 1,700 ड्राई राशन पैकेट भेजे गए, जिला प्रशासन की टीम राहत में जुटी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम, छुट्टियों के चलते अचानक से बढ़ी सैलानियों की संख्या। पश्चिम बंगाल के केशपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की बनाई जा रही है प्रतिमा, गढ़ सोनापोता गांव में सदियों से है ये परंपरा। केशपुर में 500 साल से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा, माता के महालक्ष्मी चंडी का स्वरूप की 15 दिन होती है पूजा। दुर्गापुर में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल, भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने कसी कमर। आज है पितृपक्ष की अष्टमी, संतान की लंबी उम्र, उन्नति और मंगल कामना के लिए महिलाएं रख रही हैं जीवित पुत्री का व्रत। पितृपक्ष की अष्टमी को मिल सकती है महालक्ष्मी की अपार कृपा, इसी तिथि पर होता है महालक्ष्मी व्रत का समापन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: एशियाई खेलों में आज भारत का गोल्डन डे, गोल्फ में जीता एक गोल्ड एक सिल्वर, तीरंदाजी में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। अयोध्या में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, सजाने सवारने का काम जारी। नैनीताल के नीब करौरी धाम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। वीकेंड पर उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु, जोशीमठ से जोगीधार के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, जाम हटाने में जुटी पुलिस। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की बम्पर ओपनिंग, पहले दिन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 95 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी व्हाइट पार्टी, सफेद लिबास और सफेद माहौल में हजारों लोगों ने लिया खान पान और संगीत का मजा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी।
8: दोस्तों मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ, टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर ओटीटी और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।

एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया में आज देखिए, रक्षित और अपराजिता लेंगे घर छोड़कर जाने का फैसला, त्याग देंगे सारी धन संपत्ति।

0: मुस्कान पर गुस्साई बंसुरी को रोकेंगे अनंत और बा। अब क्या करेगी बंसुरी?
1: मेरी वजह से जो भी तुम्हें आज तक तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी मुस्कान।
2: बोल तूने किंजल के कोचिंग सेंटर के नाम पे?
0: अनुपमा को फिर आएगा तो उशु पर गुस्सा, करेगी उसकी पिटाई। बेटी दुआ को बचाने के लिए मन्नत ने लिया दबंगई का अवतार की अंकित की पिटाई।

और साथ ही सास बहू और बेटियां जाएंगी कोलकाता जी टीवी पर आने वाले रियलिटी शो सारेगामापा के सेट की सैर करने, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल मन अति सुंदर में राध्या का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर राध्या प्रथम के लिए सजी संवरी है। उसे इंतजार था कि प्रथम उसे सरप्राइज देगा, लेकिन खुद राध्या को ही सरप्राइज मिल जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं।
1: नाच रे गुट्टू टमकू आलू कचालू खा लड्डू मुर्गा बोला कुकुर
2: राध्या का जन्मदिन।
1: नाच रे गुट्टू टमकू आलू कचालू खा लड्डू मुर्गा बोला कुकुर हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: बर्थडे गर्ल बनी लाल परी।

अयोध्या को प्रथम का इंतजार। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज है राध्या का जन्मदिन और ऐसे में आज वो सज संवर रही है अपने बर्थडे के लिए। देखिए कैसे आज उसने निकाली है ये स्पेशल वाली लाल साड़ी। भाई बर्थडे गर्ल है, ऐसे में सजना धजना तो बनता है क्योंकि घर में पार्टी जो होने वाली है। देखिए कैसे खुद को राध्या शीशे में निहार रही है और ऐसे में वहाँ प्रथम भी आ जाते हैं और राध्या प्रथम से पूछती है कि कैसी लग रही है उन्हें ये साड़ी। ऐसे में शुरू हो जाता है इनका रोमांस, जहाँ प्रथम बिना बोले ही इशारों से कर रहे हैं राध्या की तारीफें। मन राध्या भी काफी खुश हो रही है क्योंकि उसे प्रथम से तारीफ जो मिल गई है। लेकिन आपको बता दे कि प्रथम तो घर में मौजूद ही नहीं है, ये तो है राध्या का हसीन सपना जहां वो प्रथम को इमेजिन कर रही है। असल में प्रथम किसी काम से बाहर गया है और राध्या की उससे बात भी नहीं हो पा रही। यहां तक कि प्रथम ने घर में डेकोरेशन तो करवाया है लेकिन उसने खुद राध्या को अब तक बर्थडे विश किया नहीं है।

0: तभी वहाँ पर पहुँच जाती है राध्या की सासू माँ, जो देखिए कैसे राध्या को इस लुक में देख कर रही है उसकी तारीफ। और राध्या भी आज किसी परी से कम नहीं लग रही।
1: दिल जा में मेरा पिघल पिघल पिघल जद कर दो।
2: बहुत खूबसूरत ना लगे हमारी को। चलो नीचे चलो, तुम्हारे लिए खास तैयार की है।
1: कर तैनू गोदी
2: है प्रथम जी आ रहे
3: स्पेशल ना मॉल तो सबने होली पहने हैं। दूसरी आंटी हेयर में आज वाला में भी पॉल्स है। आज की थीम पॉल्स एक्सेसरीज फॉर हेयर। बहुत ही प्यारा लुक है नो डाउट।
0: राध्या का बर्थडे जरूर है लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटती। तभी तो सज धज कर पहुँच गई है किचन में बनाने गुलाब जामुन।

0: माँ कोई बात नहीं, वजह का मैसेज है। वो प्रथम जी का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, बस काम खत्म होने वाला है।
1: राध्या का बर्थडे केक भी आ गया है और साथ ही साथ सभी लोग जमा भी हो गए हैं बर्थडे पार्टी के लिए। लेकिन राध्या को तो बस अपने पति प्रथम का इंतजार है, जो अब तक घर लौट कर नहीं आया है। ऐसे में दादी फिर एक बार राध्या को ताने देने से नहीं चूकती है।
2: उसका बर्थडे है वो कंप्लीट हो जाएगा। रात में बोला भी पूरा दिन ना सही आपके साथ कुछ घंटे भी मिल जाएंगे, बस अपने गिफ्ट का इंतजार
3: कुछ तरीके से राजा का बर्थडे स्पेशल करे। लेकिन बेचारा फंसा हुआ है क्योंकि उसको आने नहीं दिया जा रहा राध्या के पास विश करने के लिए, तो मैं पूरी तरह से हेल्प कर रही हूँ कि दोनों एक हो जाए बर्थडे पे, लेकिन वो नहीं पा रहे।
1: भाई ये तो अंतरा और दादी की ही चाल है जो प्रथम और राध्या को मिलने नहीं दे रहे राध्या के बर्थडे के मौके पर। तो भाई अब देखना होगा कि क्या सही समय पर प्रथम लौट कर आएगा और बर्थडे पार्टी मनाएगा या नहीं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सीरियल अनुपमा में तोशु पर एक बार फिर भड़का अनुपमा का गुस्सा, क्योंकि आदत से मजबूर तोशु ने एक बार फिर चालाकी दिखाकर अनुपमा के काम में दखल देने की कोशिश की। ऐसे में अनुपमा ने कैसे सिखाया तोशु को सबक, चलिए देखते हैं।
5: बोल तूने किंजल के कोचिंग सेंटर के नाम पे 2 लाख रुपए लिए ने?
6: 2 लाख नहीं, 50 हजार लिए, सिर्फ 50।
1: एक तरफ अनुपमा फिर से लगा रही है तोशु की क्लास,
7: फासलों से,
1: तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही कर रहे हैं स्लो मोशन वाला प्यार।

0: स्टार्टर्स के सीरियल अनुपमा में अनुपमा का बेटा तोशु कभी नहीं सुधरेगा। भाई इस बार उसने अपनी ही बीवी को धोखा देने का फैसला कर लिया है। उसके बिजनेस पे हेरा फेरी करनी शुरू कर दी है और ये बात अनुपमा को पता चली तो देखिए कैसे अनुपमा पहुंच गई तोशु की कान खिंचाई करने के लिए, वो भी अपनी बहुरानी किंजल के साथ।
1: बोल तूने किंजल के कोचिंग सेंटर के नाम पे 2 लाख रुपए लिए ने?
2: 2 लाख नहीं, 50 हजार लिए। 50 हजार
3: का फ्रॉड?
2: हाँ, मतलब हाँ, आप दोनों को पता नहीं था? मम्मी आपने झूठ बोला?
1: मम्मी तेरे झूठ की लाइब्रेरी से अगर तेरी माँ ने एक पतली सी झूठ की किताब चुरा ली तो तुझे बुरा लग गया। शर्म नहीं आती तोशु, शर्म नहीं आती? फिर से किंजल को धोखा दिया?
0: भाई अनुपमा तो अपने बेटे की धोखाधड़ियों से परेशान है और आज तो तोशु ने हद ही कर दी। खैर अनुपमा ने किंजल को आदेश भी दे दिया है कि वो अपने सभी इन्वेस्टर से ये बोल दे कि उसका तोशु से कोई नाता नहीं है और तोशु एक नंबर का धोखेबाज है, और तो और पुलिस को भी उसकी शिकायत कर दे। बस फिर क्या, ये सुनते ही तोशु का चेहरा पीला पड़ गया।
2: पुलिस, डंडे, चाबुक, बेल्ट, सुपारी, अरे अपने बेटे को मरवाओगी क्या? कैसी माँ हो आप?
1: अरे ऐसे बेटे की माँ हूँ जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी माँ तक को जेल दे सकता है? अपनी देवी जैसी पत्नी को हमेशा धोखा देता है, आज भी धोखा दिया तूने तो सुन।
3: और अब से ना तोशु हम यही करेंगे, तुम एक कांड करोगे हम डबल कांड करेंगे, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है तोशु, तुम्हें अब तक अपने किए की पूरी सजा मिली ही नहीं है, लेकिन अब मिलेगी और गिन गिन के मिलेगी।
2: मुझे माफ कर दो देवियों, मुझे माफ कर दो, मैं वो पैसे लौटा दूंगा, ये फोन तो लोन पे जाएगा नहीं वापस। मम्मी आप गिफ्ट ले लो, बस मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। मैं बेबी
3: मेरा नाम मत लो तोशु, और प्लीज बस कर दो।
0: अब किंजल ने तो तय कर लिया है कि इस बार वो तोशु को माफ करेगी ही नहीं। लाख बोलने पर भी किंजल उसकी नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इतना ही नहीं, ये देख अनुपमा फिर से तोशु को समझाने की कोशिश करती है और तो और देती है अल्टीमेटम भी कि अगर वो सही रास्ते पर नहीं आया तो अगली बार वो फिर से पिटने के लिए तैयार हो जाए। खैर ये तो अनुपमा के घर की कहानी है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही की जिंदगी में स्लो मोशन वाला प्यार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तभी तो देखिए कैसे आज प्रेम और राही अपने अनुज कैफे में एक दूसरे के साथ न सिर्फ प्यार जता रहे हैं बल्कि फिल्मी रोमांस भी कर रहे हैं, वो भी स्लो मोशन में।

0: सॉरी।
1: लगी सॉरी?
2: भाई प्रेम तो राही के चेहरे पर खुशी लाना चाहता था और वो आ गई है। इतना ही नहीं, अब तो प्रेम और राही तैयार है जल्द से जल्द शाह हाउस में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर अनुपमा के लिए स्पेशल डे सेलिब्रेशन करने का फैसला लिया है। और ये स्पेशल डे है मांडे, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए अनुपमा भी तैयार है। देखना होगा कि अनुपमा पुराने लम्हों में किस तरह से जाएगी और कैसे अनुज को याद कर अपने दिन को खास बनाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल मन्नत में मन्नत कर रही है अंकित की पिटाई, तो वहीं दूसरी तरफ धैर्य को लग रहा है अपना राज खुलने का डर। ऐसे में उसने एक बार फिर कर लिया है दुआ को किडनैप। अब धैर्य का राज कैसे आएगा मन्नत के सामने, चलिए देखते हैं।
2: अंकित पर फूटा मन्नत का गुस्सा, दुआ को बचाने की जद्दोजहद। जल्द होगा धैर्य का खुलासा। कलर्स के सीरियल मन्नत में अंकित और बहरूपिया धैर्य दुआ को किडनैप कर वहाँ से लेकर भाग निकलने की फिराक में तो थे ही, पर मन्नत की आर्मी ने उसे ढूंढ निकाला। और देखिए कैसे मन्नत ने अंकित का पीछा किया, और अपनी बेटी को बचाने के लिए देखिए कैसे मन्नत बन गई मर्दानी और उसने कर दी अंकित की पिटाई।
4: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: चाहे अंकित मेरे साथ हो या ना हो, मैं अपने प्लान को अंजाम देके रहूंगा। मन्नत जी और दुआ इस जन्म में एक साथ तो नहीं रह सकते।
1: तुम इधर ही रुकना, इधर ही रुकना।

अब मन्नत को क्या पता कि अंकित के अलावा एक और है जो दुआ को किडनैप करना चाहता है। मन्नत ने कोशिश तो की दुआ को बचाने की, लेकिन अंकित ने उसे पकड़ लिया। लेकिन मन्नत ने भी हार नहीं मानी। जरा देखिए कैसे हिम्मत जुटाकर उसने अंकित को मारी जोरदार लात और वहाँ से हो गई फरार अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो भी बहरूपिया धैर्य के पीछे पीछे।

0: वह इतने दिनों से धैर्य कोशिश कर रहा था सभी से छिपने की, लेकिन आज दुआ के सामने धैर्य की दाढ़ी खुल गई और दुआ को अपने बाबा नजर आ गए। ऐसे में बहरूपिया धैर्य ने कोशिश तो की अपने आप को छिपाने की, लेकिन दुआ ने उसका हाथ थाम लिया और उसके दाढ़ी मुछ हटाकर उसे अच्छे से पहचान लिया। वैसे इसी के साथ मन्नत और विक्रांत के सामने भी धैर्य के जिंदा होने का सच आ जाएगा और फिर छिड़ेगी रिश्तों में जंग। देखना होगा इस बार कौन बनेगा निशाना। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: You're a murderer. तुमने मेरी नीतू मॉम को मारा है।
2: पिछली बार उसे गोली मारी थी ना, तो नीतू आंटी बीच में आई थी। इस बार कोई नहीं आएगा।
3: मम्मा, मम्मा ये कर लो, बाबा रोंगे। मम्मा आप इस गन से बाबा को वार्न करो।
4: तेरे कुमार
3: आज तुमने सब खो दिया, वो इज्जत भी, दुआ का प्यार भी।
5: रुक करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये छटपटी और मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग दोनों ही खबर जुड़ी हुई है स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से। पहले देख लीजिए रॉकिंग अपडेट। अनुपम अपनी चाले चल रहा है और जल्द ही मिहिर की याददाश्त भी आने वाली है। क्या मिहिर मुंबई में अपनी तुलसी से मिल पाएगा?
6: मैं हूँ ना, मैं जा रही हूँ, आप प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी, मैं पापा की इन्फॉर्मेशन लेकर ही वापस आऊंगी। टेलिंग यू प्लीज।
7: आपकी याददाश्त भी आती है जाती है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक बार मुंबई जाकर मनीष से मिलते हैं तो हो सकता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।
8: मुंबई जाना ही चाहिए एक बार।
0: इसी के साथ शॉकिंग न्यूज ये कि सबका फेवरेट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जल्द ही अपने दर्शकों से अलविदा कहने वाला है। खबरों की माने तो इस सीरियल की शूटिंग का आखिरी दिन होगा अक्टूबर 20 और इसके एपिसोड्स के हिसाब से अगले महीने इस सीरियल का होगा दी एंड। शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म फर्जी 2 में शाहिद कपूर के किरदार सनी को मिलने वाली है नई प्रेमिका। खबरों की माने तो इस फिल्म में शाहिद कपूर की जोड़ी जमेगी युक्ति थरेजा से, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हैं। हालांकि अब तक इस बात पर कंफर्मेशन नहीं आई है। आदित्य रॉय कपूर डायरेक्टर मिलाप जावेरी के साथ जल्द ही एक म्यूजिकल लव स्टोरी लाने वाले हैं। खबरों की माने तो इस म्यूजिकल लव स्टोरी की शूटिंग शुरू हो जाएगी अक्टूबर के एंड में। इसी के साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर की जोड़ी जम सकती है कृति शेट्टी के साथ।

फिल्म महा अवतार में विकी कौशल की जोड़ी जम सकती है तारा सुतारिया के साथ, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अब तक इस फिल्म के मेकर ने फीमेल लीड फाइनलाइज नहीं की है, यानी तारा सुतारिया के बाद किसी और का नाम भी सामने आ सकता है। बीती रात हुई फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन की स्क्रीनिंग, जहां पर नजर आए अनिल कपूर, इशिता दत्ता, वत्सल सेठ, हेली शाह और तनुश्री दत्ता भी। इनके अलावा कई और सितारे भी पहुंचे हैं इस फिल्म को देखने के लिए।

लोगों के महामंच सारेगा मा पा के सेट पर पहुंची सास बहू और बेटियां की टीम, जहां कंटेस्टेंट श्रद्धा श्री ने हमें कराई सेट की सैर और शो के जजेस संग हमने की खास मुलाकात। तो चलते हैं संगीत के इस मंच पर और करते हैं इसके हर कोने की सैर।

0: कंटेस्टेंट संग सेट की सेट
1: संगीत साधना
2: संगीत उपासना
0: करेंगे शो के जजेस से खास मुलाकात। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सारेगामापा के सेट पर। भाई ये एक ऐसा शो है जो 30 साल से अपने दर्शकों को एंटरटेन करता आ रहा है। इस शो से हमें मिले हैं श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला जैसे सिंगर्स। एक ऐसा शो जहां संगीत है, सुर है और है टैलेंट भरपूर।
3: ये तो शुभारंभ है, अंजाम क्या होगा अगर आगाज इस तरह का हुआ है।
2: A fantastic singing.
4: बस इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, यही
2: सही मायने में ये हिंदुस्तान का संगीत स्थान है।
0: आपको बता दें कि इस सीजन में शो के जजेस हैं नीति मोहन, शंकर महादेवन, जावेद अली और कुमार सानू, और पहली बार कोई शो होस्ट करते नजर आएंगे एक्टर श्रेयस तलपड़े। आज हम दिखाएंगे कैसा है शो का सेट। भाई इसमें खास बात ये है कि ये सेट है 360 डिग्री सेट है, हर तरफ सजावट है। तो आज हम कंटेस्टेंट श्रद्धा श्रीसंग करेंगे इस सेट की सैर।

मिलेंगे शो के जजेस से, करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातें। देखेंगे शो के बिहाइंड द सीन नज़ारे,

0: इसकी भी अपनी एक जगह है। कंटेस्टेंट्स आकर स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम सारे गामापा के सेट की सैर कर लेते हैं।
1: पिछले 30 साल से एक रियलिटी शो जी टीवी पर सबका मनोरंजन कर रहा है। जनरेशन बदली है लेकिन ये शो अभी भी लोगों का मनोरंजन कर रहा है, और इस शो का नाम है सारे गामा पा। भाई ये एक म्यूजिकल रियलिटी शो है और इसने श्रेया घोषाल से लेकर कुणाल गांजावाले से लेकर कमाल खान जैसे सिंगर्स हमारी इंडस्ट्री को दिए, और 2026 में भी ये शो एक्टिव है। तो इस वक्त मैं हूँ इस शो के नए सेट पर। जी हाँ, ये शो हर साल कुछ कुछ नया करता है, तो इस बार ये है एक ग्रैंड सेट जो बिल्कुल राजमहल की तरह लग रहा है। तो इस शो की खासियत होती है म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस यहाँ पर आ चुके हैं। कोई वायलिन बजाता है, कोई गिटार बजाता है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस शो को एक खास ध्वनि देते हैं। इसके साथ यहाँ पे डांसर्स भी आते हैं, और सबसे खास होते हैं मेंटर्स जो वहां पर बैठते हैं। तो इस बार मैं आपको मेंटर्स दिखाऊं तो वो उनके चेहरे आपको वहां पर नजर आएंगे। तो इस बार शंकर महादेवन है, नीति मोहन है, जावेद अली है, और है कुमार सानू, यानी वेटरन्स जो हैं, जो इसके यू नो दे आर द जजेस, यू कहें गुरु हैं। तो वो गुरु जो प्रतिभाओं को परखते हैं जो देश भर से आती हैं, और उसमें से चुने जाते हैं वो लोग जो सारेगामापा में आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। तो ये नया सेट है, ये नया अंदाज है, और ये एक ऐसा मैं कहूंगा क्लासिक या ओजी शो है जो अभी तक लोगों का मनोरंजन कर रहा है। एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ अ म्यूजिकल रियलिटी शो, दैट्स सारेगामापा। उसका नया सीजन आ चुका है, मैं उसके सेट पर हूँ। सेट की रंगीनियां देखिए, एकदम महल की तरह फील आ रहा है। मैं एकदम सेंटर में हूँ, जहाँ पे आके ही सिंगर्स गाते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। वो है वो कैमरा, वो है जजेस की जगह। यहाँ पर अलग अलग यू नो म्यूजिशियंस को यहाँ पर बैठते हैं, दर्शक बैठते हैं। तबले का सेक्शन है, वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका वहां पे है। चारों तरफ यू फील लाइक अ ओपेरा, एंड दिस इज ये जो उसका जगह है सेंटर पॉइंट तो सेट पर है। ये सारी झलकियां मैं आपके लिए लेकर आया।
0: तो आज हमारे साथ हैं सारेगामापा के इस सीजन की कंटेस्टेंट्स श्रद्धा श्री, जिन्होंने आते ही अपने सुरों से जजेस का दिल जीत लिया।

तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं सारेगामा पा के मंच पर। तो भाई इस बार सेट की सजावट काफी खास है। सजावट देखते ही बनती है, हर तरफ कोई ना कोई डिजाइन और लाइट्स लगी हुई है, एक भी कोना खाली नहीं है, ढेर सारे म्यूजिशियंस हैं।

0: तो प्यार। और आज श्रद्धा हमें करवा रही है सेट की सैर, बता रही है कि सेट के हर एक कोने में क्या सजावट की गई है, क्या क्या सेक्शंस है और कैसा है सारेगामापा का ये सेट, जिसे बड़े ही प्यार से सजाया गया है और थीम भी दी गई है।
1: हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, मेरा नाम है श्रद्धा श्री और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्टली क्योंकि मैं टॉप 13 में सिलेक्ट हो गई हूँ और जो इस बार का सारेगामापा है वो बहुत ही ग्रैंड हो रहा है और उसका सेट मैं आपको आज घुमाने वाली हूँ। और कभी भी आई थिंक मैंने तो या फिर शायद किसी ने भी रियलिटी शो पे इतना बड़ा इतना ग्रैंड सेट देखा ही नहीं होगा। यहाँ पे जो थीम है इस बार वो भी बहुत डिफरेंट है, आप सेट देख रहे हैं शायद ये महल जैसा ही लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, लाइव म्यूजिशियंस, वो मैं आपको उधर भी दिखाऊंगी क्लोजली कि कितना हमारा पूरा एक स्ट्रिंग सेक्शन है यहाँ पे जहाँ पे वायलिंस है, चेलो है और पूरा हॉर्न सेक्शन है, ट्रम्पेट्स हैं और उस तरफ रिदम सेक्शन है, गिटार सेक्शन है। तो मैं आपको स्टेज पे लेके चलती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा एक तो ये स्टेज है और जब हम यहाँ पे खड़े होके गाते हैं ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट ही हो रहा है। और साथ में इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ गाना, ये जो अपॉर्चुनिटी है आई थिंक ये ही बहुत इनक्रेडिबल है। और इतने सारे म्यूजिशियंस देखिए यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे हमारा हॉर्न सेक्शन और हमारा स्ट्रिंग सेक्शन बैठता है इस तरफ और ये जो है बीच में स्टेयरकेस, यहाँ से एंट्री लेते हैं हमारे होस्ट श्रेयस तलपड़े, जो कि अगेन इट्स अ वेरी बिग ऑनर टू हैव हिम क्योंकि कभी भी उन्होंने कोई रियलिटी शो होस्ट नहीं किया है, तो वो भी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, हम सब हमेशा उनके जोक्स पे हंसते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। इस तरफ हमारा रिदम सेक्शन है, कीबोर्ड्स हैं, गिटार है और बहुत फिनोमिनल म्यूजिशियंस हमारे साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी बात है हम सब के लिए, इतनी बड़ी है अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके साथ यू नो गाना गा पा रहे हैं, उनके साथ हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि इस स्टेज पे हमको शूट करने को मिल रहा है। और सामने, ठीक सामने आप देख रहे हैं कि चार चेयर्स हैं, वो हमारे जजेस का गद्दी है, जजेस की गद्दी है जिसको हम कहते हैं, जो गुरु मंडली है। और जजेस भी इतने इनक्रेडिबल हैं, लेजेंडरी शंकर महादेवन सर, कुमार शानू सर, जावेद अली सर और नीति मैम, नीति मोहन मैम। आई क्लोजली आज तक मैं यहाँ पे पहले नहीं आई हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए स्पेशली हम देखते हैं क्लोज लुक। ये है हमारी जजेस की सीट्स और उनके सामने एक गोल्डन वीना है। तो जब हमारा ऑडिशन हो रहा था तो ये आई थिंक वो प्रेस करते होंगे तो ये गोल्डन वीना, जो नॉर्मल वीना लग रही है अभी, उसमें लाइट जल जाती है और वो गोल्डन हो जाती है और वहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है जिसको बोलते हैं नंबर पट्टी श्रेयस से, वहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाता था। तो अगर चार ग्रीन टिक्स मिल गए थे तो वो लोग सेलेक्ट हो गए थे, जिनको तीन मिले थे तो वो जो एरिया है वहाँ पे बालकनी जैसा, वहाँ पे लोग होल्ड पे चले जाते थे। और अगर एक या दो टिक्स मिलते थे तो फिर थोड़ा उनको फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए कहा गया। तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम टॉप 13 में जो लोग हैं हम सबको मोस्टली लोगों को चार टिक्स मिले और कुछ कुछ लोग होल्ड से भी अपनी जगह बना के आ गए। यहाँ पे जो एक सेक्शन है वहाँ पे देखिए आप कितने सारे माइक्स हैं, अभी तो सब लोग लंच पे गए हुए हैं लेकिन यहाँ पे जितने माइक्स हैं उतने ही सिंगर्स हमारे साथ साथ में कोरस कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, इतना ग्रैंड सेटअप। और ये जो स्टेज है ये और जो पूरा सेट है वो पूरा 360 डिग्री है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पूरे हर तरफ लाइट्स हैं, स्टेज है, सेट है, कुछ ना कुछ एक सेक्शन है जहाँ पे कहीं कोरस है, कहीं पे म्यूजिशियंस हैं। इस सिर्फ भी अकॉर्डिंग टू थीम, कभी कभी मोस्टली पहले जब हम ऑडिशन में थे तब तो सबके पेरेंट्स और ऑडियंसेस आई हुई थी, लेकिन अब वेन एवर वी नीड मोर म्यूजिशियंस तो हम और म्यूजिशियंस, देखिए कितने सारे तबले हैं यहाँ पे। और बिल्कुल उसके सामने उस तरफ और इस तरफ कुछ चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठते हैं और यही सीट हासिल करने के लिए हमने इतनी मेहनत करी और इतनी मेहनत करी कि हम यहाँ बैठ पाए। और रोज़ यहाँ बैठना आई थिंक बहुत खुशकिस्मती की बात है और आई रियली होप कि हम लोग आपसे इतना प्यार मिलता रहे कि हम यहीं बैठे रहें और अच्छा करते रहे और टॉप में जाते रहे और आपको बहुत अच्छा लगे हमारा शो। अब हम सेट के डिटेल्स की बात करते हैं। तो जो सेट है, जो स्टेज है वो इतना सुंदर है, आप देख ही रहे होंगे ऊपर एक आलीशान सा झूमर लगा हुआ है जिससे एकदम सुंदर सी लाइट्स आती है और हम पे कभी स्पॉट लाइट पड़ती है, कभी एकदम गोल्डन गोल्डन लाइट्स हो जाती है, आप देखिए। और जो थीम है वो सबका अपना अपना परसेप्शन है, मुझे लग रहा है कि एकदम टेम्पल थीम है क्योंकि हम मानते हैं कि सारेगामापा जो है वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान, इट्स लाइक अ टेम्पल। तो ये बहुत मंदिर जैसी इसमें डिटेलिंग है, आप देखिए एक हाथी है, बहुत सारे मोटिव्स हैं, ऊपर देखते हैं, मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। ये रही वो जगह म्यूजिशियंस वाली, और यहाँ से ठीक वहाँ हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेंटर ऑफ द स्टेज। इससे ऊपर आई थिंक 150 म्यूजिशियंस तो डेफिनेटली है, एंड वी कीप हैविंग आर्टिस्ट म्यूजिशियंस, गेस्ट म्यूजिशियंस इन डिफरेंट एपिसोड्स आल्सो, जैसे हमारे साथ बीच में शिवमणि सर आए थे, और ऐसे आई थिंक आगे के एपिसोड्स में भी हम और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि और अलग अलग आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हम परफॉर्म कर पाएं। और बीच में शान सर आए थे, तो अपार्ट फ्रॉम आर लेजेंडरी जजेस जो हैं, हमें न्यू आर्टिस्ट रोज देखने को मिल पा रहे हैं, जो हम कभी सपने में सोचते थे इनसे मिल भी नहीं पाएंगे या मिल पाएंगे, उनके साथ हम गा रहे हैं, कभी कभी उनके सामने तो हम गा ही रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और देखिए यहाँ पे एक बालकनी भी है, बहुत डिटेलिंग है, बताने की वजह से मुझे इस बालकनी में जाने की परमिशन मिली, अदरवाइज तो मैं, मुझे लगता कि मैं यहाँ पे आ पाती। यहाँ से ये आई थिंक एक टेक्निकल एरिया है, तो ये तो आपको शायद दिखता नहीं होगा टीवी पे, पर आपको ये अगर सामने से आप देखें यहाँ से व्यू, बहुत सुंदर सा पूरा एक एरिया दिख रहा है। तो जो भी होल्ड में गया था कंटेस्टेंट, आई थिंक उनको ये व्यू दिख रहा था जब वो ऊपर आके होल पे बालकनी में बैठे थे। रियलिटी शो देखने को नहीं मिला, शायद देखने को मिले या ना मिले। और इस बार जो हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत सेन सर, उनके उन्होंने बहुत सारा बांग्ला रियलिटी शो बनाया है, मूवीज भी बनाई है, तो आई रियली ट्राई कि अगर वो मिल जाए थोड़ी देर के लिए तो मैं आपकी उनसे थोड़ी बात कराऊँ। ये देखिए कितने डिटेल्स हैं यहाँ पे, ऊपर भी कुछ सितार रखे हुए हैं और वहाँ पर भी कुछ लोग बैठते हैं, नीचे भी लाइट्स हैं, पीक डिटेलिंग, इट लुक्स लाइक अ टेम्पल, मतलब पूरी मॉन्यूमेंट जैसी यहाँ पे डिटेलिंग है। अगर आप ये भी देखें, ये जो यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसके अंदर भी बहुत डिटेल्स है, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे थे पहले वहीं पर क्राफ्टमैन बना रहे थे, हमने सामने में देखी हैं चीज़ें बनती हुई। यहाँ से भी अगर आप उस तरफ देखेंगे तो बहुत सुंदर है। कमी जाते हैं, ये है वो स्क्रीन सारेगामापा, और यहीं से हमने एंट्री ली थी, मैं जब अपने ऑडिशन के लिए आई थी मैं यहाँ पे खड़ी थी, ये था बैक स्टेज ताकि मुझे कोई देखे नहीं, और फिर मैं चल के आई और मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं चल के आई। आई थिंक दिस वाज अ वेरी इनक्रेडिबल फीलिंग, यहीं से मैं फर्स्ट टाइम चल के स्टेज पे आई थी, और मेरा गाना था आज की रात, जो कि बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका उसको, हमने आज की रात को बहुत डिफरेंटली इस बार ही ट्रीट करा। रतिजीत सर और जो मेरे मेंटर्स हैं वो बहुत बहुत गुणी कलाकार हैं, और वो हमें बहुत हेल्प करते हैं सिखाने में, और उस पूरे गाने को इतना रीब्रांड करके गजल की तरह ट्रीट किया, और आप तो बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने गाया था आज की रात, तो मैं उसका ये एडलिब थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। बंदे तो क्या इस हुस्न पे, फरिश्ते भी फना है,
2: ग्रैंड,
1: बस दूर से देखिए इसे छूना मना है,
2: नॉट देयर
1: छूना
2: मना है।

0: भाई आज तो श्रद्धा ने शो के डायरेक्टर से भी हमें मिलाया और उन्होंने भी बताई शो के बारे में कई खास बातें।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: सर। फर्स्टली वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू एज अ डायरेक्टर और आपने इतना ग्रैंड जो सोचा है कभी भी ऐसा रियलिटी शो मैंने तो नहीं देखा है, आई थिंक किसी ने नहीं देखा, तो आपने कैसे सोचा ये स्पेशली ये जो इतना सुंदर सेट बनाया आपने सोचा है वो क्या आपका इंस्पिरेशन रहा होगा इसके पीछे?
2: ये हम अकेला नहीं सोचा है, सब मिल के सोचा है और जी टी वी का सारेगामापा जो है ये मदर ऑफ ऑल नॉन फिक्शन शो है।
1: जी
2: सारेगामापा हम जब छोटा थे तब से हम ये फैन है ये शो का, तो एक अपॉर्चुनिटी हम सबको मिला है ये जो शो को एक नया तरीका से सबके सामने फुल नेशन के सामने इसको पेश करे, तो हम लोग वही कर रहे हैं।
1: जी।
2: और आप लोग जैसे इतना अच्छा अच्छा बेहतरीन आर्टिस्ट को मिला है पूरा इंडिया से और इतना अच्छा सा महल हम लोग बनाया है, एक टेम्पल जैसा एक
1: जी बिल्कुल जी।
2: तो एंड so many musicians, more than 100 musicians, special musicians, different जी. parts of our country, they're coming and playing with you.
1: जी.
2: So we are all experiencing and we are all celebrating each and every moment.
1: Yes sir, I think इतने सारे cultures display करते हैं हम stage पे, हर एक कोने से इंडिया के लोग आ रहे हैं, artists आ रहे हैं, not just musicians, dancers, sometimes actors. हमने एक और भी किया था आईगिरी नंदिनी में ही जहाँ पे पूरा रामलीला हो रहा था, वो देखने को मिलेगा। आई थिंक इट्स वेरी वेरी ग्रैंड और हम बहुत फॉर्चुनेट सर आपकी आई थिंक मूवीज भी और बांग्ला पहले वाले भी आपका जो पूरा रेपर्टोरी है वो बहुत कमाल का है और बहुत ही बहुत खुशनसीब है हम लोग जो इस बार।
2: आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस शो

तो भाई इतने सालों से ये शो अपने दर्शकों को एंटरटेन करता आ रहा है और इस बार खास बात ये भी है कि सेट तो शानदार है ही, साथ ही साथ यहाँ सुरों के साथ साथ डांस का भी तड़का लगने वाला है। जी हाँ, सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग टैलेंट भी है। और देखिए ये BTS नज़ारे, कैसे म्यूजिक और डांस का तालमेल बना हुआ है। भाई सिंगर्स और म्यूजिशियंस अपना टैलेंट तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नच का हुनर भी ये सभी दिखा रहे हैं। भाई यहाँ पर देखिए कैसे BTS नज़ारे हम आपके लिए लाए हैं, जहाँ पर कोरियोग्राफर्स की टीम डांस प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि खास परफॉर्मेंस जो होने वाली है। भाई इस एपिसोड में अवियान रॉय और टीम रिथियम की कोरियोग्राफी दिखेगी, यानी कि अवियानंद डांस ग्रुप की। तो आइए देखते हैं कैसी ये प्रैक्टिस चल रही है।

0: सस्पेंस ब्रेक चल रहा है और अभी थोड़ी देर में हम एपिसोड शूट शुरू करने वाले हैं, तो उसी के किसी एक परफॉर्मेंस की अभी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि हम इतना डिफरेंटली और ग्रैंड तरीके से करते हैं, तो सिर्फ हम गाना नहीं गा रहे होते, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट एन ऑडियो शो, विजुअली भी इतना इम्पैक्टफुल है कि हम गा रहे हैं साथ में और भी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स. अभी थिएटर हो रहा है, कभी डांसर्स आ रहे हैं, तो बहुत टाइप का जो पूरे इंडिया का कल्चर है वो काफी अच्छे से स्टेज पे दिखता है.
1: तो देखा आपने ये 360 स्टाइल वाला कितना शानदार सेट है, सारेगामा पा का भाई 33 साल पुराना शो है. ऐसे में हर सीजन में खास बात तो होगी ही, तो भाई सेट की सैर कर ली, बिहाइंड द सीन नजारे भी देख लिए, अब बारी मिलने की शो के होस्ट से, जो कि है श्रेयस तलपड़े. भाई आपको बता दे कि ये पहली बार है जब कोई रियलिटी शो श्रेयस होस्ट कर रहे हैं. इन्हें आप कई फिल्मों में देख चुके हैं, ओम शांति ओम और इकबाल जैसी फिल्मों से वो अपने दर्शकों का दिल जीत चुके हैं, और अब होस्टिंग में दिखेगा इनका हुनर. तो आइए उन्हीं से जानते हैं उन्होंने क्या प्रैक्टिस की है और किस तरह से होगा इनका होस्टिंग स्टाइल.
2: एंकर आ गया है, मैं लेके
3: दुखी लग रहे हैं. श्रेयस तलपड़े कम, श्रेयस तड़पते ज्यादा लग रहे हैं.
4: सारे काम आप 2026 के सेट पर, और गेस्ट स्पॉट हम मेरे साथ में श्रेयस तलपड़े. और श्रेयस पहली बार मैंने देखा है कि श्रेयस को हमेशा हमने पर्दे पर, बड़े पर्दे पर हंसाते हुए देखा, बताते हुए देखा इकबाल में, लेकिन टेलीविजन होस्टिंग, आई थिंक श्रेयस दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट इन योर करियर एज वेल. हाउ मच आर यू एंजॉयिंग दिस?
5: एब्सोल्युटली एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक what does an actor really look for? Some challenges in his profession, right? So whether it's a film part, a theater production, whether it's direction, or whether it is hosting a musical reality show, the biggest in fact in the country, so I personally wanted to experience all of that. How is it? What happens? You know, of course you understand music, but you don't understand it to the level of what our gurus really understand. But then hosting is a completely different ballgame altogether. To mix entertainment and the whole film experience with a music reality show is what we were really looking at. And the kind of response that we're getting for the show now from the audience is very positive, very humbling and very, very overwhelming.
4: सारे काम आई थिंक हम लोग बचपन से देखते आए, 30 साल से है, तो
5: सारे लोग हैं.
4: हाउ डू यू सी दैट शो एज एन आइकॉनिक ओजी मेड इन इंडिया?
5: No, the show, you know, that day I was telling someone that the show, yes, gave us a lot of talent, but at the same time, the show created a lot of good listeners, because we would listen to music. And for people like me, हम लोग रेडियो पे सुबह मम्मी डैडी को रेडियो लगा रहे थे, क्यों? Because गाने चलते थे, ठीक है, but ads होती थी उनकी, वो उसी time पे होती थी. कि 8:30 बजे ये एड लगी, मतलब 8:30 बज गए, ये एड लगी मतलब 9:45 बज गए, तो वो भी. बट रेडियो पे तब जितने गाने होते थे हम सुनते थे, फिल्में सैटरडे संडे होती थी वो देखते थे. घर में ये यू नो क्या कहते हैं, कैपेसिटी नहीं थी कि टेप रिकॉर्डर लाया जाए और टेप रिकॉर्डर पे गाने सुने जाए. फिर जब थोड़े थोड़े पैसे आए तो पहला टेप रिकॉर्डर आया, फिर कैसेट्स घर पे आने लगे, फिर हम बाकी के गाने सुनने लगे, फिर वो गजलें हो या फिल्मी गाने हो वगैरह वगैरह. सो देन व्हेन सारेगामा पा केम, इट वाज यू नो अ भंडार ऑफ सो मेनी सॉन्ग्स. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट द शो वाज सोनू निगम जी होस्टिंग इट.
4: यस.
5: एंड यू नो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आई गेस अ होस्ट एंड एन एंकर, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी, द होस्ट, बिकॉज ही ड्राइव्स द शो, ही ड्राइव्स द वाइब ऑफ द शो. You know, and that is what he did. That is what he taught us. I am usually inspired, both as a singer, yes, but even as a host, he taught us so many things. And all of us friends would discuss. अरे सुना क्या? सोनू निगम ने ऐसे ऐसे बताया यार, उनकी ये कहानी थी. So वो गाने सुने, कैसे सुनने चाहिए और क्या उसका मजा है, क्या उसका मजा लूटना चाहिए, ये सब चीजें भी सारे गामा ने ही सिखाई है. So today, after so many years, when you get an opportunity to host that iconic show, I think it's a huge honor.
4: तो शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे श्रेयस का कला की दुनिया से एक बहुत गहरा ताल्लुक है, इनका परिवार कला से फिर जुड़ा हुआ है. तो आपके घर में कितना पुरानी फिल्में, गाने, क्योंकि आपकी फैमिली में इतने सारे कलाकार ऑलरेडी
5: ने. I'll tell you, मतलब मेरी aunts actresses रह चुकी है,
4: जैसे कि नीना दीदी,
5: बिल्कुल. सो मेरे डैड की कजिन सिस्टर्स, पर ऐसा नहीं था कि मतलब हमारा रोज उनके घर पे आना जाना है. हम गणपति में एक दिन उनके यहाँ जाते थे और वो अपने काम में बिजी होती थी ऐसे। बट बाकी इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, घर में फिल्मों को या नाटक को लेके बहुत अलग कल्चर था, ऐसे फिल्में देखनी है नाटक ऐसा कुछ नहीं था okay, बहुत टाइम तक ऐसा नहीं था। तो अगर हम कोई फिल्म देखने जाते भी तो पहले पहले तो मना कर दिया जाता था। और मैं जब नाटक काम में काम करने लगा तो बहुत रेजिस्टेंस था कि नहीं यार ये कहाँ जा रहा है, ये कॉलेज लेवल तक ठीक है, इसके बाद में बिल्कुल नहीं, ये नहीं वो नहीं। सो वो कल्चर उतना था नहीं ऑनेस्टली, ना म्यूजिक का था, ना एक्टिंग का था, ना परफॉर्मिंग आर्ट्स का था हमारे घर में। तो ये था, एक नाटक देखा, वहां से सब शुरू हो गया एंड टुडे वी आर
6: रेस्ट इज हिस्ट्री एंड आई एम श्योर विल, आप जैसे हमेशा रॉक करते हैं, दिस विल आल्सो रॉक, ऑल द बेस्ट,
5: वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड लाइक आई सेड द रिस्पांस दैट वी रिसीव्ड टिल डेट हैज बीन क्वाइट फेनोमिनल, वेरी एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव, एंड वी आर होपिंग टू कंटिन्यू विद द सेम।
6: लाइक आपने ओम शांति ओम में बोला था, पिक्चर अभी बाकी
5: है, बाकी है मेरे दोस्त।
1: जजेस की बात करें तो आज हमारे साथ हैं नीति मोहन, शंकर महादेवन और जावेद अली। कुमार सानू आज सेट पर मौजूद नहीं है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं मुलाकात नीति मोहन से, जो बता रही हैं कि इस सीजन में क्या खास होने वाला है। सुरों के साथ इन्होंने शुरुआत की और साथ ही साथ नीति मोहन बताएंगी कि कैसे वो कंटेस्टेंट्स को चुनती है।
0: मेरी जंग, मेरी

0: एक ऐसी सुरीली गायिका जिनकी आवाज मैं क्या कहूँ मिश्री घुल जाती है। तो मेरे साथ है नीति मोहन, एंड नीति की जब आवाज गूंजती है तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन नीति की आवाज गूंजने वाली है एक ऐसे शो के साथ जिससे नीति का मैं कहूंगा कि नीति हैज ग्रोन इन द शो। मुझे लगता है इस आंगन में खेलकर आप बड़ी हुई हैं। नीति अगेन 30 साल पुराना शो है सारेगामा, और एक बार फिर से आना, आई थिंक चौथी बार आप इस शो का हिस्सा हो रही हैं। तो हाउ इज द फीलिंग लाइक? मुझे लगता है एक आंगन है जहां भर घर खेली हैं ये।
1: फर्स्टली बिग हेलो टू यू अमित, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग वेल।
1: एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक ऑन सारेगामापा, एंड दिस टाइम एज यू कैन सी द स्केल, द ग्रैंडियर ऑफ म्यूजिक हैज बीन स्केल्ड अप। मुझे लगता है कि वो जो पूरा एक जैसे होता है ना, नया फोन आता है तो अपग्रेड चाहिए हमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारेगामा ने भी वही किया है। इस बार सारेगामापा ने हमारे पूरे म्यूजिक के लेवल को, कंटेस्टेंट्स को, ओवरऑल पूरे सेट, उसकी जो वाइब है और क्या हमारी ऑडियंस घर बैठ के कॉन्सर्ट जैसा शो एंजॉय कर सकती है, उस चीज का इस बार एक्सपीरियंस दे रहे हैं।
0: नीति, आजकल बहुत हल्ला उठ रहा है कि हमारी जो जेंजी है वो लोग हमारे देश की राजनीति का भी हिस्सा है, हम म्यूजिक का भी हिस्सा है, लेकिन उनको बहुत समझ है। तो जेंजी जो लोग होते हैं, आपको क्या लगता है उनका टेस्ट अलग है? आजकल चीजें सबको जेंजी को केटरिंग करके बन रही है, तो ये शो कितना जेंजी है?
1: मुझे लगता है कि सी अच्छी तालीम पाना बहुत जेंजी बात है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी एजुकेटेड, एवरीबडी वांट्स अ गुड जॉब, एवरीबडी वांट्स अ ब्राइट फ्यूचर, और सब जो जो भी करियर फॉलो करना चाहते हैं उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। दिस इज वेरी जेंजी, और मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑल्सो आर वेरी वोकल अबाउट इट। पहले की जनरेशन आई कैन से दैट थोड़ा सा वो बोलते थे कि ठीक है आप जो बोलोगे मम्मी मैं वो कर लूंगी, बट इस बार जो हम अभी देखते हैं न्यू जनरेशन, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट, और उन्हें पता है कि उसमें वो अच्छा कर सकते हैं और उसमें एक्सेल करेंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड करेंगे। तो सारेगामापा इज आई थिंक इज जेन जी ऑडियंस है, मतलब हमारे कंटेस्टेंट्स है, एंड दे आर सो श्योर अबाउट देयर जॉनर, अबाउट द टाइप ऑफ म्यूजिक दे आर डूइंग, एंड ऑल्सो हाउ दे वॉन्ट टू प्रेजेंट देमसेल्स। लाइक देर इज वन 16 ईयर ओल्ड,
0: ओके
1: एक्चुअली 2 16 ईयर ओल्ड्स,
0: अच्छा
1: और उनको देख के वी आर शॉक्ड कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एट 16 मुझे तो नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट आई एम सो हैप्पी दैट आज की जनरेशन को ये बहुत पहले से पता है कि दे वॉन्ट टू डू म्यूजिक, दे वॉन्ट टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, देयर पेरेंट्स ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि अ लॉट ऑफ सिंगर्स कम हियर एंड दे से हमारे पेरेंट्स ने ट्राई किया था, उनको नहीं मिला, बट हम चाहते हैं हम उनका सपना पूरा करें। सो देर आर वन और टू कंटेस्टेंट्स लाइक दैट ऑल्सो ऑन द शो।
0: सारेगामापा जैसे मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, तो मुझे क्या खास बात लगती है कि वो दिल को सीधा छूता है। मतलब कई चीजें ऐसी रुला देती हैं, आपको
1: जी
0: हंसा देती है, देर फन मोमेंट्स, देर इमोशनल मोमेंट्स। तो हाउ इमोशनल रोलर कॉस्टर जर्नी हैज बीन? बिकॉज आप लोग ही हो जो वो फील करते हैं इमोशंस, वो
1: जी
0: सुरों के पीछे की जो इमोशंस होती है वो आप लोग फील करते हो। पीपल कम विद देयर बैक स्टोरीज, उनको छोटी छोटी बातें टच करती है। तो छोटी छोटी बातें हमेशा सारेगामा की खासियत रही है। तो कुछ ऐसा हुआ इस बार, कुछ ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें जो आपके दिल को छू गई हो सीधा?
1: इस बार सबसे नई बात और अहम बात हुई है कि इस बार सिर्फ म्यूजिक ही दिल छू रहा है। देर आर नो बैक स्टोरीज,
0: अच्छा
1: देर आर नो इमोशनल स्टोरीज, क्योंकि वो हम वो है वो भी हम जानेंगे कंटेस्टेंट्स के बारे में। अगर किसी को कोई कठिनाई है तो ऑफकोर्स वी वॉन्ट टू शेयर दैट एंड शेयर द लोड मे बी, अगर उनको मन है तो। बट दिस टाइम ये है कि म्यूजिक ही सुप्रीम है, उसी की बात हो रही है, उसी के बारे में, उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे पास 100 म्यूजिशियंस हैं शो पे, एंड सो मेनी कोरस सिंगर्स, गर्ल्स बॉयज, सो मेनी तबला प्लेयर्स यू विल सी, एंड ऑल यंग
0: आई सी अ
1: बडिंग
0: लॉन्ग
1: आर्टिस्ट,
0: लॉट ऑफ यंग क्रू ऑन द सेट।
1: या यंग क्रू, एंड आप देखेंगे इट्स समथिंग, आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस टू बी ऑन द सेट ओनली, एंड देन टू बी विद फैंटेस्टिक जजेस एंड श्रेयस, इट इज जस्ट अमेजिंग। सो इस बार मुझे लग रहा है इमोशनली सबसे ज्यादा मुझे म्यूजिक छू रहा है, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही है, रत्जीत दा जो है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है शो के, द वे ही हैज मेड द मैशअप्स या फिर अरेंजमेंट्स ऑफ द शो, हमने ऐसा म्यूजिक कभी कॉन्सर्ट्स में सुना है, शायद उसमें भी नहीं सुना है हर बार, बट सारेगामापा में इस बार हम सुन रहे हैं, वो बहुत मजा आ रहा है।
0: तो आजकल जो है म्यूजिशियंस या कोई परफॉर्मर को सिंगिंग के अलावा एक अच्छा दिखना भी जरूरी है. तो आई थिंक यू आर ऑलवेज बीन अ स्टाइलिश सिंगर नोन फॉर आई मीन सिंगिंग एज वेल, बट ये आपका स्टाइल भी हमेशा एक रहता है. यू ऑलवेज क्विंटेसेंशियली ऑलवेज वेल ड्रेस्ड. सो इस बार किस तरह का स्टाइल क्वेश्चन हमें नीति का देखने को मिल रहा है शो में? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस आर यू वेयरिंग? हाउ आर यू लाइक प्रेजेंटिंग योर सेल्फ? बिकॉज आजकल म्यूजिशियंस आर सपोज टू लुक गुड एज वेल अलॉन्ग विद सिंगिंग, बिकॉज इट्स बिकम अ होल पैकेज.
1: आई मीन आई थिंक पार्टली योर ट्रू, क्योंकि आप जो बोल रहे हो सच है, क्योंकि नाउ डेज ना सिंगर्स या आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस समझ रहे हैं दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, नॉट जस्ट योर क्राफ्ट. सिर्फ मैं अपनी वॉइस नहीं, बट वेन आई एम गोइंग ऑन स्टेज, राइट फ्रॉम माई शू टू माई हेयर, एवरीथिंग
0: बिल्कुल
1: इज
0: नोटिस.
1: नोटिस्ड. सो इफ यू कैन बी एस्थेटिक अबाउट इट, अगर आप कलाकार हैं तो आपकी हर चीज में अगर कला हो सकती है, सो वाई नॉट, इज वॉट आई बिलीव इन. सो इस बार हमारा सेट है बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा लगता है कोई एक इंडियन फोर्ट में हम
0: हाँ,
1: बैठे हैं
0: टेम्पल
1: और
0: फोर्ट
1: एक
0: और
1: टेम्पल जैसी भी वाइब है, और ये ऐसा लगता है कोई फिल्म सेट है. तो इसीलिए इस बार जितना भी हम इंडियननेस लेके आ सकते हैं अपने कपड़ों में, अपने मतलब एक एक उस तरह का फील है हमारे शो, तो इस बार मोस्टली इट्स दैट.
2: इसी के साथ हमारे साथ हैं शंकर महादेवन यानी कि ब्रेथलेस. आज वो बता रहे हैं कि इस शो में क्या खास होगा और कैसे वो चुनेंगे अपने कंटेस्टेंट्स, जिसमें है एक उभरता सितारा.
3: ये मेरा जो अनुभव है, आप देख रहे हैं कितना एक बड़ा स्केल में किया गया. आई थिंक इट इज ट्रूली कमेंडेबल जो जी टीवी ने इस बार सारे का पापा ने जो एफर्ट लिया है. सिंगर्स विद ग्रेट डेप्थ. यहाँ के जो गाने वाले हमारे जो कंटेस्टेंट बच्चे हैं, अनबिलीवेबल है, बड़े कलाकार, सब बड़े कलाकार, वेरी वेरी ब्राइट.
4: हमारा म्यूजिक भारत का जो है कैसे विदेश देखता है, और हमारे म्यूजिक में कितनी पावर है कि दैट वी कैन जस्ट मेक इंडिया ग्लोबल पावर विद म्यूजिक.
3: देखिए, हमारा जो संगीत है उसका जो फाउंडेशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग. तो अगर आप हमारा जो संगीत, अच्छा हमारा देश ऐसा यूनिक है कि आज इज द ओनली कंट्री जहां पर दो किस्म के क्लासिकल म्यूजिक है, दो किस्म के क्लासिकल म्यूजिक है, कोई विश्व में कोई और कंट्री नहीं है. तो हम जब हमारा शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है. फिर आप रॉक गाओ, पॉप गाओ, गजल गाओ, सूफी गाओ, यू कैन फाइंड योर वे into any form of music. So, पूरे विश्व का जो focus है, that is towards the greatness of Indian music.
2: हमारे साथ हैं एक और रॉक स्टार जज जिनका नाम है जावेद अली. वे पहले भी ये सारे गामा पा के सीजन में जज रह चुके हैं और फिर एक बार ये अपनी पारी निभाने को है तैयार. तो इस बार क्या खास होने वाला है, आइए खुद जावेद अली से ही जानते हैं.
4: तो मेरे साथ एक ऐसी आवाज जो चाहे रूहानी हो, चाहे रोमांटिक हो, हर जगह जो दिल में एक सुकून लाती है, तो मेरे साथ जावेद अली की आवाज, जिसे मैंने कहा कि आपने बहुत सारे गाने हैं, कहीं ना कहीं हर तरह के भाव जागृत कर देते हैं. रियलिटी शो है भारत में एक ऐसा मीडियम है हमारे युवाओं को काफी प्रेरित करता है, युवाओं के अंदर देखता है. तो 30 साल से ये शो है सारे गाने. समझना बहुत मुश्किल है, क्या कर पाएगा?
5: डेफिनेटली कर पाएगा, मैं ये पक्की पक्की बात बोल रहा हूँ. इसलिए क्योंकि शो में कंटेंट जबरदस्त है. सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे ऐसा म्यूजिकल शो है जो सबसे पहला म्यूजिक है और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है. अभी देखिए, इस बार इतना ग्रैंड शो हमने कभी नहीं देखा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. सो वी आर सो हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. और ऐसा सेट, इतने सारे म्यूजिशियंस,
4: ऐसा लग रहा है मैं मंदिर में हूँ.
5: मैं लगता है मैं राजस्थान में पैलेस में नहीं, मंदिर ऑफ कोर्स मंदिर में भी, लेकिन और कंटेस्टेंट जो जो आए हैं माइनी जो कंटेस्टेंट और सबकी अपने बीच में, और हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही जबरदस्त हमारे चारों ट्रैकिंग से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव एटमोसफेयर है ओवरऑल जो शो का, जो एक जो साल है जबरदस्त, वेरी हैप्पी।
4: जावेद अली को ज्यादातर लोग बड़े सीरियस रूप में देखते हैं, पर यहाँ पर आपके एक बड़ी ह्यूमन साइड, थोड़ा एक मजाक किया, थोड़ा वेरी हाउ यू आर देखने को मिलता है, तो जो म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं कि आपने सीरियस टाइप के।
5: मैं थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ना अपने आप में रहता हूँ, और सारे कामों पर से हमारा बहुत लंबा पुराना रिश्ता, तो इस शो के जरिए लोगों को हमें जानने का मौका मिलता है कि मैं क्या सोच रखता हूँ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि ना किसी दूसरे इंसान के लिए। तो जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि आपके बच्चे से जो कंटेस्टेंट आते हैं, जो सिंगर आते हैं, आप उससे बड़ी प्राइवेट की बात करते हो, उसमें कोई बनता नहीं, तो लोगों को ना आपकी पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिलता है।
4: जब
5: लोग सेट देख रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं जो वहाँ पे आके देखेंगे तो सबसे पहले उसकी बात संगीत का संगीत
4: संगीत संस्था मिल चुका है कि शुरू होने वाली है,
5: उसको कहते हैं हिंदुस्तान का संगीत स्थान।
4: उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक इस तरह चलता रहे और हमारी आने वाली जनरेशन हमारे पास में कहीं ना कहीं वीडियो वाला एक्सप्रेशन बहुत लाभ दे रहे हैं, तो आगे आगे वाली जनरेशन को
5: जो कह रहा हूँ वो दिल से बात है, यही सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, सच्चाई है एक एक कंटेस्टेंट जो ना परफॉर्म कर चुके हैं वो सबके फेवरेट बन चुके हैं।
4: दोस्तों मैं सारेगामापा के मंच पर खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि ना मतलब ये संगीत का संगीत स्थान कहते हैं हम इसका,
5: और इतना प्योरिटी है यहाँ पे, इतनी पॉजिटिविटी है, ना जाने क्या कशिश है इस जगह में कि जो भी बात आती है वो बहुत दिल से आता है, और मैं समझता हूँ कि जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक पहुँचते हैं।
2: तो भाई सुरों की तान छिड़ चुकी है और तैयार है सारेगामापा इस बार फिर से एक उभरता सिंगर इंडस्ट्री को देने के लिए। तो भाई उम्मीद है कि यूं ही अपनी सिंगिंग से ये सभी अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: सीरियल तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता दोनों ने भारद्वाज हाउस छोड़कर सिंपल लाइफ जीने का फैसला लिया है। इनके घर से जाने पर सबसे ज्यादा शीला खुश है। आखिर क्या है शीला की इस खुशी का कारण, चलिए जानते हैं।

0: रक्षित ने थामा अपराजिता का हाथ।
1: ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम
0: घर छोड़ चले मियां और बीवी।
2: तुम कहां हम कहां
0: शुरू होगी रक्षित और अपराजिता की नई जिंदगी। प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में घर में शुद्धिकरण की पूजा को लेकर जो तमाशा हुआ उसके बाद रक्षित की मां सुधा ने फैसला ले लिया है कि अपराजिता इस घर में नहीं रहेगी। ऐसे में रक्षित अपराजिता का हाथ पकड़कर लेकर जाता है दरवाजे के पास और देखिए कैसे अपराजिता को देहरी के उस पार खड़ा कर देता है और अगले ही पल खुद भी अपराजिता का हाथ थामे खड़ा हो जाता है दरवाजे के उस पार। और इस बार ये नजारा देखकर हैरान रह जाती है सुधा। और देखिए कैसे सुधा अब भी अपनी बहुरानी को ताने कसना नहीं छोड़ती, पर उसे ये नहीं पता कि रक्षित ने अपराजिता का हाथ थाम लिया है और अब वो किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ेगा।
3: है ना कि वैसे तो किसी की छोड़ी हुई पत्नी थी ना वो तो मैंने सुधा के कान में इतने मंत्र फूके कि ये जो उतरी हुई आइटम है हमारे घर में उसका शुद्धिकरण करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सुधा के दिमाग में भी शुद्धिकरण की पूजा की बात थी तो हमने ये शुद्धिकरण की पूजा का पूरा यहाँ पे तैयारी करके रखा था, जो ना रक्षित को पता था और अपराजिता को तो यही पता था कि हम एक छोटी मोटी पूजा करने जा रहे हैं और उसको तो हमने बहुरानी करके इतना ही बुलाया, बिचारी बह गई हमारी बातों में। और जिस दिन पूजा थी तब उसे पता चल गया कि ये लोग मेरा शुद्धिकरण करने वाले हैं। अब मैंने ही बोल दिया, अरे पंडित जी शुद्धिकरण की पूजा, ताकि वो अपराजिता सुन पाए, पूरा ड्रामा रच पाए और वो रक्षित जो अपनी बीवी के पल्लों के साथ लगा हुआ है वो उसको लेके ये घर छोड़ के चला जाए।
0: भाई रक्षित के इस फैसले ने सुधा को मजबूर कर दिया है अपने ही बेटे से मुंह फेरने के लिए। ऐसे में रक्षित ये फैसला लेकर अपनी माँ के पैर छूता है और सुधा अपने आंसुओं को पोंछती है। लेकिन तभी जैसे ही अपराजिता आगे बढ़ती है तो सुधा मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। बस फिर क्या, इस मौके का फायदा उठाती है शीला। तभी तो देखिए कैसे वो रक्षित को ताने कसने लगती है।
4: घर में कोई कुत्ता रहता है ना, उसे अंदाजा नहीं होता कि बाहर सड़क पे घूमने वाले कुत्तों की दुनिया क्या दशा करती है। क्या नाम है तेरा? रक्षित भारद्वाज। नाम ही बहुत बड़ा है। अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो पहले इस नाम को छोड़ो और अपना कुछ करके दिखाओ, अपने बल बूते पर अपनी हैसियत बनाओ। जाओ।
5: भाई क्या कह रही है?
3: अब देख रहे हो ना, जिस तरह से मैं महारानियों की तरह इस चेयर पे बैठी हूँ, अब मेरी पोजीशन वही है महारानी की। उस चुड़ैल अपराजिता और रक्षित को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है और किसी को भी इमोशनली फंसने नहीं दिया मैंने। जो मेरा एजेंट था कि मेरा मोहित इन सब का मालिक बन जाए, बस बहुत जल्द होने वाला है वो।
0: भाई मानना पड़ेगा रक्षित को, बड़ी माँ की बात को मानते हुए और अपराजिता का हाथ थामते हुए वो चुपचाप जाकर अपनी जेब से मोबाइल, महंगा कड़ा, महंगी घड़ी और मोबाइल से बैंक अकाउंट को डिलीट कर देता है। इतना ही नहीं, अपराजिता भी अपने पति का साथ देते हुए अपनी चूड़ियाँ, अपने झुमके, अपने सारे गहने उतार देती है। हालांकि वो इमोशनल हो रही है क्योंकि अब रक्षित इस परिवार के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन रक्षित के साथ नाम तो जुड़ा ही रहेगा। खैर,

0: ये बोलते हुए रक्षित और अपराजिता जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी बड़ी माँ यानी कि शीला ने फिर से अपराजिता को रोक दिया, क्योंकि अपराजिता के गले में मंगलसूत्र जो है।
1: तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो क्या दहेज में लाई?
2: सुनने में तो यही आ रहा है कि वो फटीचरों की बस्ती में जाने वाले हैं, वो जहाँ से वो अपराजिता और ये हमारी दूसरी चुड़ैल छोटी वाली वो भी वहीं तो आई है, वहीं से। वो जो फटीचरों की बस्ती है उनका जो मैका है शायद मेरा रक्षित भारद्वाज वहीं जाएगा, लेकिन भारद्वाज सरनेम तू छोड़ के जा और ये सब कुछ छोड़ के जा, वो मैंने उसको बोला है। तो अब हो सकता है रक्षित भी फटीचर बन जाए, फटीचरों की बस्ती में खुद फटीचर।
0: अब अपराजिता मंगलसूत्र उतारने से रही, क्योंकि वो ही उसके सुहाग की निशानी है। ऐसे में रक्षित ने वादा किया है कि मंगलसूत्र बनाने में जितने भी पैसे लगे हैं वो सारी रकम वो सूद समेत वापस दे देगा। और ये बोलकर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, और ये बात विवान को पसंद नहीं आती और ना ही मोहित को। जरा देखिए वो दोनों कैसे पहुँच जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। भाई शीला तो धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो रही है, लेकिन मोहित और विवान दोनों नहीं चाहते कि रक्षित और अपराजिता दोनों घर छोड़कर जाएं। ऐसे में दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने की, और ना चाहते हुए भी आराध्या को अपनी बहन को रोकने के लिए कहना पड़ रहा है, वो भी मन मार के। खैर अपराजिता और रक्षित दोनों रुकने वाले नहीं, उन्होंने तो जाने से पहले इन तीनों को इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। और देखिए कैसे जाते जाते अपराजिता इस घर के आंगन में लगी तुलसी की मिट्टी अपने आंचल में ले लेती है ताकि अपने परिवार को वो अपने साथ लेके जाए।

0: नहीं नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, नहीं जा रहे होंगे तो मैं भेज दूंगी।
1: निकल चुके हैं, जो उनका वनवास का जो पीरियड है वो बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हम लोग भी एक्साइटेड हैं वो देखने के लिए, क्योंकि रक्षित भारद्वाज आज तक इतने बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, हाउस ऑफ भारद्वाज का नाम रहा है, कैसे वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक साधारण इंसान की तरह अपने जीवन को जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो वो जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट।
0: मुझे उनके किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, ऑलरेडी बहुत तेज दिमाग चलता है, जितना नहीं भी चलना चाहिए उससे भी तेज चलता है, तो मैं सब संभाल ही लूंगी। ऑफकोर्स बहुत लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि आराध्या कभी भी अपनी दीदी के साए में नहीं रहना चाहती थी, और अब वो दिन फाइनली आ गया है जब उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा और भैया दीदी अपने आप ही घर से बाहर जा रहे हैं। अब वो घर की इकलौती बड़ी बहू रहेगी, और अब होपफुली विवान को भारद्वाज खानदान की गद्दी पर भी बिठवा ही देगी। अभी तो बड़ी मम्मी को भी चैलेंज करने वाली है ये कि अब देखो आपका पाला बारू से पड़ा है।
2: वहीं दूसरी ओर रक्षित के जाने से सुधा परेशान तो है ही, लेकिन वो अपना दर्द दिखा नहीं रही। इसी बीच वो अपने पति अरविंद को भी रोकती है खाना खाने के लिए, लेकिन अरविंद मना करके वहाँ से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, मोहित भी चला जाता है। ऐसे में सुधा जिद में आकर चेयर पर बैठ जाती है, और शीला अपने हाथों से सुधा के लिए खाना परोस रही है, क्योंकि जो वो खुशी है वो जता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे दिखा जरूर सकती है।
3: अरे ओ सुधा, ये दही बड़े को ऐसे क्यों देख रही है? इसे दही में से बड़ा ऐसे बाहर कूद के तुझे ही खा जाएगा, खा ना।
4: मतलब जिसने मुंह बना रखा है, जिसको खाना नहीं खाना है वो भूखे मरे, मुझे क्या, मुझे तो सबका खाना खाने को मिल रहा है, तो मुझे भूख लगी है मैं खाना खा रही हूँ। हाँ थोड़ा सुधा को मुझे कंट्रोल में रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा हुक्म का इक्का है ना वो सुधा है, तो वो अगर अपने बेटे के प्यार में बह गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा ना। तो मैं सुधा को थोड़ा ऐसा मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान जा, जैसे मेरा मोहित मेरे कंट्रोल में है तेरा रक्षित वापस आ जाएगा, पर तू भूखी मत रहे, खा ले, थोड़ी हिम्मत रख और अपनी बात पे डटी रहे। उसी ने तो घर से बाहर निकाला है अपने बेटे को, अगर वो फंस गई बेटे के प्यार में तो मेरे तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सुधा को ऐसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी के गए तेल लेने, मुझे क्या, खाना खाओ, आज तो मस्त दही बड़े बने हैं हमारे यहाँ।
2: बस शीला की खुशी एक तरफ और सुधा का उदास दिल एक तरफ। खैर सुधा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शीला वो अब घर में और भी टेस्टी खाना बनाने के लिए बावर्ची को कहती है, और ये नज़ारा मोहित देख लेता है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से नाराज भी होता है। ऐसे में शीला उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि मौके का फायदा उठाया जाए। फिलहाल तो मोहित अपनी माँ की बातें सुनना नहीं चाहता, इसलिए देखिए कैसे नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है, और इसी बात पर शीला कोसने लगती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी सारी बातें आराध्या ने सुन ली है, और अब आराध्या भी अपने पति को इस घर की प्रॉपर्टी और बिजनेस देने की पूरी कोशिश करती रहेगी। देखना होगा कि अब रिश्तों में क्या नए ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में मुस्कान को हराने के लिए बंसरी ने नया चक्रव्यूह रचा है, जहां उसने बीमारी का नाटक कर घर की सारी जिम्मेदारी मुस्कान को सौंप दी है। ऐसे में क्या मुस्कान को सबक सिखा पाएगी बंसरी, देखना दिलचस्प होगा।
2: मुस्कान की चाल से बंसरी को आया गुस्सा।

0: कीजिएगा।
1: मेरी वजह से जो भी तुम्हें आज तक तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी मुस्कान।
2: बंसरी ने खेला खेल, मांगी मुस्कान से माफी।
1: मुझे मुस्कान पे शक था, बस इसीलिए मैं इसको ना घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी।
2: बंसरी ने दी मुस्कान को घर की जिम्मेदारी।

0: दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में मुस्कान बेहद खुश है क्योंकि उसने सभी घर वालों के सामने इनफैक्ट लक्ष्य के सामने उसकी भाभी को झूठा साबित कर दिया है और इस घर में अपना हक बना लिया है। तभी तो देखिए कैसे मंदिर में वो पूजा की तैयारी कर रही है। सभी लोग मुस्कान का साथ देने के लिए वहाँ पहुँच भी जाते हैं लेकिन जैसे ही बंसरी ये नज़ारा देखती है बंसरी को आता है गुस्सा और वो मुस्कान पर भड़कने के लिए आगे बढ़ती ही है कि अनंत उसे रोक लेता है। अनंत ही नहीं बल्कि भाभी आकर बंसरी को रोकती है क्योंकि वो मुस्कान की चाल से बखूबी वाकिफ है। ऐसे में उनकी बात ना मानते हुए भी बंसरी पहुंच जाती है मुस्कान के पास और देखिए कैसे एक ही पल में फेंकती है ऐसा पासा कि मार लेती है पूरी बाजी।
1: इसीलिए मैं मुस्कान को ना घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ना मम्मी ने सबके सामने बता दिया और बहुत महान हूँ ऐसे पर्वत जैसे नहीं एकदम ऐसे टिप टॉप। तुम तो साक्षात देवी हो देवी सच कह रही हूँ। जो संबंध है दस साल में नहीं सुलझा पाई वो तुमने आके ऐसे चचरे के पत्ते सुलझा दी। 100 बात नहीं 1 बात द्वारकाधीश के सामने कह रही हूँ। आज से अभी से मैं मुस्कान पे कभी भी शक नहीं करूंगी।
2: हाँ मतलब वो तो बस पूजा कर रही है शी हैप्पी लेकिन उसे पता है कहीं ना कहीं पे जो अब जाकर बोलने वाली है वो सब प्लान ही है। वो मतलब तो सबके सामने दिखावा कर रही है लेकिन मुझे पता है कि ये अब और कुछ आगे इंटरेस्टिंग करने वाली है आई एम श्योर। इसीलिए
0: भाई बंसरी की बातें सुनकर तो मुस्कान हैरान हो रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि बंसरी उसकी चालों को नाकामयाब करके ही मानेगी क्योंकि भाभी की बातों में आकर लक्ष्य ने मुस्कान को बीती बातों को भूल जाने का आदेश जो दे दिया है। खैर लक्ष्य का साथ पाकर भाभी जी बहुत खुश हैं और देखिए कैसे बंसरी ने उठा ली है आरती की थाली। लक्ष्य और मुस्कान दोनों को लगता है कि बंसरी उन्हें पूजा करने के लिए कहेगी लेकिन तभी वो बुला लेती है अनंत को और देखिए कैसे पूजा करने की जिम्मेदारी दोनों भाइयों को दे देती है। ये देखकर लक्ष्य भी हैरान है। अब उसे क्या पता कि आखिर बंसरी कर क्या रही है।
2: मुस्कान ने मेरे कानूनों को हाथ लगाया और बंसरी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसलिए वो अब दिखाने वाली है कि बंसरी क्या कर सकती है। तो वही गजब सीन जहाँ कैसे बंसरी मुस्कान को रोकती है और लालू और अनंत को आरती करने के लिए कहती है।
0: भाई मानना पड़ेगा बंसरी को कितनी आसानी से उसने अपने देवर को अपने साइड कर लिया है वो भी फिर से। और इसका सबूत मुस्कान को तब मिला जब पूरा परिवार हॉल में बैठा बातें कर रहा था कि तभी लक्ष्य को सुनाई देती है भाभी के चीखने की आवाज़। ऐसे में मुस्कान जो उसका हाथ थामे हुए है वो उसका हाथ छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है साथ ही पूरा परिवार भी उसके पीछे पीछे जाता है और मुस्कान अपना खाली हाथ देखकर हैरान रह जाती है। खैर मुस्कान को ये नहीं पता कि अब बंसरी क्या करने वाली है।
3: बंसरी! बंसरी! बंसरी!
0: फिलहाल तो बंसरी ने मुस्कान को पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में सभी घर वाले पहुँच गए हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए और ये खाना किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान ने बनाया है और पूरा परिवार उस खाने का मजा भी ले रहा है। इसी बीच फुई काकी बना रही है अपना लाइव वीडियो पूरे परिवार के हंसते मुस्कुराते हुए लेकिन किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि मुस्कान कितनी परेशान हो रही है। ये सिर्फ बा और बंसरी जानती है

0: महीने का सामान भी लाना है ना?
1: अरे हाँ भाव, वो भी तो है।
2: वो कर ले लेंगे, कोई बात
1: नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे नहीं लालो, वो मेरा मतलब है कि वो पहली तारीख की करी थी ना, पहली तारीख को ही करनी पड़ती है। हाँ तो उसका सामान तो आज ही लाना पड़ेगा। अरे कल कोई किसी सामान में कमी रह गई, कोई चीज नहीं आई तो उसकी जिम्मेदारी फिर मुस्कान की होगी। मतलब मेरा मतलब है कि उसका लड़की छोटी बहू है, मेहमान थी ऊपर, कभी ना कभी तो इसको ये घर संभालना पड़ेगा। मैं चली जाती है, पर मुझे ना मुझे इतने चक्कर आते
3: हैं।
1: मैं ही चली जाती।
4: भाई इतनी लंबी लिस्ट देखकर मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया है। अब देखना होगा कि कैसे लक्ष्य के सामने अच्छा बनने के चक्कर में मुस्कान की बैंड पर बैंड बचती जाएगी। खैर ये तो ऑन स्क्रीन कहानी है, ऑफ स्क्रीन की बात करें, देखिए कैसे पूरी टीम को मिल गए हैं फुर्सत के पल, और इन फुर्सत के पलों में देखिए कैसे सभी खींच रहे हैं एक दूसरे की तस्वीरें और बना रहे हैं वीडियोस, वो भी फुल एंटरटेनमेंट के साथ। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: एमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
1: महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म से मनोज बाजपेयी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के किरदार में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनकी मां का किरदार निभाने वाली वाहिदा रहमान की भी तस्वीर सामने आई है। देख लीजिए ये सारी तस्वीरें।

अब्बास मस्तान की आने वाली फिल्म थ्री मंकी का मोशन पोस्टर रिवील हो गया है, जिसमें उनके तीन बंदर दिखाई दे रहे हैं, अमर, अकबर और एंथोनी। बता दें कि इस फिल्म में अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इनके साथ नजर आएंगे विशाल जेठवा, मुस्वा बर्मावाला और तेंजिंग ढल्हा। अब ये तीनों अमर, अकबर और एंथोनी के किस किरदार में ढले हुए हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब इनके चेहरे से नकाब हटेगा।

0: काजी, जब किसी को आपका इंटेंशंस गलत लगा है, यू शुड जस्ट बैक आउट।
1: देख लीजिए कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस का ये प्रोमो, जहां पर सलमान खान काजी तौकीर और कनिका मान दोनों का ही साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों को ही समझा रहे हैं।
0: काजी, जब किसी को आपका इंटेंशंस गलत लगा है, यू शुड जस्ट बैक आउट। लेकिन आप लगे रहे नॉन स्टॉप लाइक अ स्टक रिकॉर्ड। कनिका, इसे सॉरी बोला आपको?
2: सर, इनमें बहुत हवा आ गई है।
3: गेट पे सॉरी बोला मैंने?
0: हमने नहीं देखा आपने इनको सॉरी बोलते हुए। आपने ये कहा कि मैं गोली खा लूंगा, सॉरी नहीं कहूंगा।
3: सर, मैंने पहले सॉरी मजाक मजाक में इनको कहा था।
2: नहीं नहीं, आपने नहीं बोला था।
0: आपने सुना है किसी को मजाक मजाक में सॉरी बोलते हुए लाइफ में?
1: इसके अलावा बिग बॉस के सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं फिल्म प्रेम कीटाणु के कलाकार आफिया सैयद और वीर पहाड़िया, जो पहुंचे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इनके अलावा फिल्म उड़ता तीर के भी कास्ट यानी कि आयुष्मान खुराना, सारा अली खान भी मौजूद रही, जो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंचे हैं। इनके अलावा आशा नेगी और अभय महाजन भी नजर आए हैं, जो पहुंचे हैं अपनी सीरीज अलीबाबा और 40 भूत को प्रमोट करने के लिए। साथ ही दिखे हैं मीका सिंह भी, यानी आने वाले हफ्तों में ये खास मेहमान लगाएंगे शो में तड़का।

0: शहर पिछली बार जब हमारा निकाह हुआ था।
1: देख लीजिए कलर्स के सीरियल शहर का ये प्रोमो, जहां पर जल्द ही माहिद और शहर का रिश्ता जुड़ने वाला है और इनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है।
0: सर, पिछली बार जब हमारा निकाह हुआ था तो आपकी मर्जी नहीं थी उसमें, इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज में भी सिर्फ आप ही।

नुसरत भरूच की स्पाइन में आ गई है गंभीर चोट। असल में बाली में वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और शूटिंग के दौरान ही उनके साथ हादसा हो गया, जिसके चलते उनके स्पाइन में गंभीर चोटें आई हैं और उसी के चलते वो बाली से पहुंच गई हैं मुंबई अपने इलाज के लिए। जल्द ही इनकी सर्जरी होगी और जल्द ही सास बहू और बेटियां इनके हेल्थ की अपडेट देंगी।

0: रोहित सर, हम आपके पीजेस के बहुत बड़े।
1: रोहित शर्मा के शो फैमिली फुल हाउस में जल्दी नजर आएंगी अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमी के साथ। इनके अलावा राकेश बेदी भी नजर आएंगे।
2: जगू दादा ना हर जगह आगे पेड़ पौधे सबको बांट रहे हैं, हरियाली चाहते हैं हर जगह। क्यों
3: क्यों क्यों?
2: क्योंकि टाइगर को जंगल चाहिए।
1: और साथ ही नजर आएंगे हर्ष और भारती भी। देख लीजिए प्रोमो।
4: ये जो सपने लेकर आए हो ना आप,
5: ऐसे ही जाएंगे लेके।
2: जो जो सपने देखे सब पूरे हुए। आज रोहित शर्मा से भी मिल लिया। ना ये होती है टेक्निक, सबसे पहले होस्ट की चापलूसी करो ताकि
6: yes. अंदर आ
7: जाए। प्लीज वेलकम दोपहिया सीजन 2 के एंटायर कास्ट।
8: राइज एंड फॉल के जो टीम थी उन्होंने कहा था कि मैं शो में आके।
1: देख लीजिए राइज एंड फॉल का प्रोमो जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंच गई है दोपहिया सीजन 2 की टीम।
9: आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाए जाए जिसकी वजह से आपका आक्रोश भी आप व्यक्त कर सकते हैं।
8: वैशाख नंदन सुना है क्या?
10: नहीं सर।
8: संस्कृत में गधे को कहते हैं वैशाख नंदन।
9: अल्प बुद्धि मनुष्य।
4: वैशाख नंदन अल्प बुद्धि मनुष्य।
1: सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन गेम शो के सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं भारती हर्ष, प्रिंस नरूला, मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार, ऐशा सिंह, विशाल आदित्य सिंह, अर्चना गौतम, जो इस बार एक दूसरे को चैलेंज देंगे और करेंगे टास्क पूरा, वो भी खेल खेल में।
11: सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: और इस वक्त की शानदार खबर, एशियाई खेलों से एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा है। भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के 211 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट 192 रन ही बना पाई। भारतीय टीम ने पहले खेलते 211 6 का बड़ा स्कोर बनाया, जो भारतीय टीम का पहले खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर रहा। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने शानदार पारियां खेली। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने 51 गेंदों पर 96 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लेकिन वो अपनी टीम को भारत के 211 रनों से आगे नहीं ले जा सके और रोमांचक अंदाज में भारत ने पाक को 19 रनों से हरा दिया। भारत की तरफ से अक्षर, सुंदर और दुबे को दो दो विकेट मिले। भारत ने आज कुल 5 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 81 मेडल है, जिसमें गोल्ड 19, सिल्वर 26 और ब्रॉन्ज 36 शामिल है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में भारत का जलवा, क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर जीता गोल्ड मेडल। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए शानदार दिन, गोल्फ में जीता एक गोल्ड और सिल्वर, तीरंदाजी में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमाएं, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी मां। नैनीताल के नीव करौली धाम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे हैं मजा। असम में पर्यटकों के लिए खुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को खुलेगा पोबितोरा सेंचुरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला जीता, देश को दिलाया एक और गोल्ड मेडल। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था 212 रनों का लक्ष्य, पीछा करने उतरी टीम 6 विकेट पर 192 रन ही बना सके। मुकाबले में भारतीय टीम ने 19 रनों से हासिल की जीत, निशीन के करोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुआ मुकाबला। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी की पूरी, 61 रनों का दिया योगदान। तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली, शिवम दुबे ने भी 15 गेंदों में शानदार 27 रन बनाए। ग्वालियर में भारत की G20 गोल्ड जीत पर क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न, पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने पर जमकर खुशी जताई। प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत को लेकर फैंस में जोश का माहौल, जय हिंद जय भारत के लगाए नारे। एशियन गेम्स में भारत की जीत पर जापान में भारतीय प्रवासियों ने जताई खुशी, स्टेडियम से निकलते वक्त चेहरे पर नजर आई खुशी। एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में भी भारत को पदक, नीरज ने कांस्य पदक जीता। भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने अपने ही देश के धीरज को दी मात, 6-4 से हराकर जीता कांस्य पदक। एशियन गेम्स 2026 की गोल्फ में भी भारत का शानदार प्रदर्शन, गोल्ड मेडल के साथ खुला खाता। प्रणवी ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। गोल्फ की महिला टीम ने भी किया कमाल, सिल्वर पदक पर किया कब्जा। प्रणवी अदिति और दीक्षा रागर की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रणवी ने किया टीम का नेतृत्व। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने महिला हॉकी टीम को शानदार तरीके से दी शुभकामनाएं, रेत पर बनाई कलाकृति। आईची नागोया एशियन गेम्स में आज ही भारत की सुनहरी शुरुआत, आर्चरी मिला एक और गोल्ड। 17 साल की कुमकुम मोहर ने रच दिया इतिहास, शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराया। कुमकुम के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। एशियाई खेलों में कुल 81 मेडल जीतकर पांचवें स्थान पर है भारत, अब तक 19 गोल्ड, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों पर कब्जा। एशियाई खेलों में इवेंट के आखिरी दिन आज ही भारत को कई मेडल मिलने की उम्मीद, कुश्ती तीरंदाजी समेत कई खेलों में होगी दावेदारी। जापान के पदक वीरों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में देश का परचम लहराकर घर लौटी निशानेबाज परिणाज धालीवाल और महेश्वरी चौहान, एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत। एशियाई खेलों के बाद अब ओलंपिक पर है खिलाड़ियों की निगाहें, कहा एशियन गेम्स से हासिल हुआ शानदार अनुभव। केरल के पलक्कड़ में एशियाई खेलों के पदकवीर एन श्रीशंकर का शानदार स्वागत, पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। झारखंड के सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने मनाया जश्न, एशियाई खेलों में महिला टीम की जीत से दिखा उत्साह। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पुरतासी महीने के तीसरे पवित्र शनिवार को विशेष आयोजन, पेरुमल मंदिर में पूजा अर्चना। थूथुकुड़ी पेरुमल मंदिर में नंदी का किया गया विशेष श्रृंगार, पुरोहितों ने की विशेष पूजा। तिरुचिरापल्ली के मुकोम्बू में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा, खुले स्लुइस गेट, मेटूर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी नदी में उफान। मुकोम्बू में जलस्तर 9,900 क्यूसेक के पार, कावेरी डेल्टा में खासा खेती के लिए छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी। मुकोम्बू बांध का बड़ा जलस्तर बना आकर्षण का केंद्र, ड्रोन तस्वीरें हुई वायरल, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के कानपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाटों पर भरा पानी। पटना के दानापुर दियारा में फिर बाढ़ का संकट, 6 पंचायतों की सड़कें डूबी, स्टीमर बना यातायात का सहारा। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी, वैशाली से भेजे गए राहत सामग्री से भरे 5 ट्रक। बिहार के सारण में 11,000 पॉलीथीन शीट और 1,700 ड्राई राशन पैकेट भेजे गए, जिला प्रशासन की टीम राहत में जुटी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम, छुट्टियों के चलते अचानक से बढ़ी सैलानियों की संख्या। असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क का शुभारंभ, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को फिर से खुलेगा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। पर्यटन नगरी डलहौजी में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे हैं मजा। राजकोट में कैप्टन स्मिथ मचार के पिता ने बेटे पर जताया घर, परिवार जल्द स्वस्थ होकर उनकी वापसी की कर रहा है कामना। पश्चिम बंगाल के केशपुर में 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की बनाई जा रही है प्रतिमा, गढ़ सोनापोता गांव में सदियों से है ये परंपरा। केशपुर में 500 साल से चली आ रही है दुर्गा पूजा की परंपरा, माता की महालक्ष्मी चंडी का स्वरूप, 15 दिन होती है इनकी पूजा। दुर्गापुर में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल, भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने कसी कमर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: और इस वक्त की शानदार खबर एशियाई खेलों से, एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा बरकरार है। अमन सहरावत ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 57 की ग्राफ फ्री स्टाइल कुश्ती कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अमन ने फाइनल में नॉर्थ कोरिया के हॉन जोंग सोंग को 11-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स 2026 में कुश्ती में भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। भारत ने आज कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 82 मेडल हैं, जिसमें 20 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: एशियाई खेलों में आज भारत के लिए शानदार दिन, रेसलिंग में भारत ने जीता एक और गोल्ड, अब तक भारत ने जीते कुल 20 गोल्ड समेत 82 मेडल। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर जीता गोल्ड मेडल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमाएं, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी मां। नैनीताल के नीब करौरी धाम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे हैं मजा। असम में पर्यटकों के लिए खुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद, 13 अक्टूबर को खुलेगा पाबीतोरा सेंचुरी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज बात होगी उस पवित्र पुस्तक की जिसे धरती पर ईश्वर की वाणी माना गया है, जिसके अध्यायों में मुक्ति मोक्ष का विधान छिपा हुआ है, जिसकी विश्वसनीयता पे संदेह नहीं किया जा सकता। द्वापर युग से ही जिसके पाठ को जीवन के दर्शन का आधार माना जाता है। मान्यता है कि गीता का पाठ करने से आपके सारे कष्ट कट जाते हैं और खुल जाते हैं आपके पितरों के लिए मुक्ति के द्वार। तो गीता के किस अध्याय के पाठ से तृप्त होते हैं आपके पितर और कैसे खुलेंगे उनके लिए वैकुंठ के द्वार, चलिए आज इसी पर बात करते हैं।

0: पितृपक्ष में जब मन हो परेशान, गीता में छिपा है पितरों की मुक्ति का समाधान। गीता बताएगी पूर्वजों के मोक्ष का विधान। पुरखों के आशीर्वाद से दूर होंगे व्यवधान। सातवें अध्याय के पाठ से खुलेगा बैकुंठ का द्वार। गीता पाठ से होगा पितरों का उद्धार। पितरों की मुक्ति का ये पर्व पितृपक्ष में अति पावन है। ये जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने का काल है। शुचिता और शुद्धता से परिपूर्ण ये पक्ष मोक्ष के द्वार खोल देता है, आपको पितृ ऋण से मुक्त कर देता है।
1: देखिए, पितरों के लिए श्राद्धों में श्राद्ध विशेष विधि बताई गई है और पितृणाम तारणायच, पितरों के तारणा के लिए अच्छे अच्छे स्तोत्रों का पाठ करें, ऐसा एक शास्त्र में उल्लेख मिलता है। एक पारण श्राद्ध विधि है, जब उसमें हम पितरों का पूजन कर लेते हैं, पितरों को भोजन करा देते हैं, तो उनको एक स्तोत्र सुनाया जाता है, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हो, चाहे वो वेद के पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हो, चाहे वो पितृ सूक्त के मंत्र हो। इसके लिए सर्वसुलभ कोई विधि है क्या शास्त्रों में? जब ये प्रश्न पैदा हुआ तो कहा गया कि गीता का पाठ श्रवण करने से भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है।
2: भगवद गीता मनुष्य को, सनातन धर्मियों को जीने की एक संदेश देती है कि मनुष्य के जीवन में जीने का सही क्या तरीका है, सही क्या ढंग है, और उसका सही दिशा निर्देश करती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कई प्रकार कहा है और उनकी उनको आकर्षण किया है और उसके विषय में गीता के उपदेशों के विषय में समझाया है और कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो, यही गीता में संदेश दिया गया है।
0: श्रद्धा इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध बिना श्रद्धा के हो तो उसका कोई फल नहीं। पिंड दान में अगर पितरों की मुक्ति का भाव ना हो तो इसका कोई लाभ नहीं। शास्त्र कहते हैं कि हर मनुष्य पर तीन तरह के ऋण होते हैं, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण या गुरु ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन तीनों ऋण में पितृ ऋण को सर्वोपरि माना गया है। हर प्राणी पर माता पिता के अतिरिक्त उन सारे बुजुर्गों का ऋण होता है जो उसके जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहायक होते हैं। तर्पण और पिंडदान के अलावा भी पितरों की शांति और मुक्ति के कई माध्यम शास्त्रों में वर्णित हैं। मान्यता है कि गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ से पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आपकी कुंडली से जुड़े सभी ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गीता के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी हैं, चलिए आपको उससे अवगत कराते हैं। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है।
1: श्रवण शब्द का तात्पर्य है कि कोई मुख से सुनाए और पितर उसको अदृष्ट योनि में श्रवण करें, इसलिए पितरों को गीता का पाठ सुनाना चाहिए। उस सुना करके पितृणाम अर्पणम अस्तु ये संकल्प बोलना पड़ता है कि ये जो मैंने सुनाया है ये पितरों को अर्पित करता हूँ, जिससे पितरों को ज्ञान की प्राप्ति हो और पितर इस बंधन से मुक्त होकर के और भी ऊर्ध्वलोकों की यात्रा पर जाएं, जिससे और वो बली हो जाए।
0: वैसे तो रोज गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष की अमावस्या के दिन गीता का पाठ करना विशेष लाभदायक होता है। जिस दिन श्राद्ध कर रहे हों उस दिन भी गीता का पाठ विशेष फलदायी होता है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन दोपहर के समय गीता का पाठ सर्वोत्तम है।
1: पितृपक्ष में कम से कम कर ले गीता का पाठ, तो वो गीता का पाठ, इसीलिए शास्त्र कहता है गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये ही शास्त्र विस्तरी, बड़े बड़े शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल गीता का सुगीता मतलब सुंदर तरीके से गायन शैली में पाठ करिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है नाम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक है इसके अंदर, श्लोकों का श्लोक के तरीके से पाठ करना है।
0: इस बात का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध के दौरान या पितृपक्ष के दौरान किन्हें गीता का पाठ करना चाहिए और किन्हें इसके पाठ से लाभ हो सकता है। जिनके घर में कोई आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, जिन लोगों को सपने में पूर्वजों के दर्शन होते हों, ऐसे लोगों को पितृपक्ष में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि पितृपक्ष में गीता का पाठ उन लोगों के लिए भी फलदायी होता है जिन्हें लगता है कि उनके पूर्वजों या पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसा होने पर गीता के 7वें, 9वें और 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए।
1: आपको 15वें अध्याय का एक श्लोक सुनाता हूँ मैं, जो है निर्मान मोहा जित संग दोषा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे ही कच्छन्त्यमूढा पद्मव्ययम् तत। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में मान और मोह का त्याग कर दिया है कि मुझे सम्मान चाहिए, मैं मोह में ग्रस्त हूं। निर्मान मोहा जित संग दोषा, जिसने संगति के दोषों को जीत लिया है वो मेरे पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का गीता शास्त्र में बहुत सारे अच्छे सुंदर श्लोक हैं।
0: अगर आप किसी कारणवश गीता के किसी भी अध्याय का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन गीता की पुस्तक का दान भी आपको उतना ही फल दिला सकता है जितना कि अध्यायों का पाठ। पितृपक्ष में गीता के किन अध्यायों से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
3: पितृपक्ष में पूर्वजों की सेवा करने से विधाता भी प्रसन्न हो जाते हैं और गीता पाठ को तो पितृपक्ष में महाफलदायी माना जाता है। इसके अलग अलग अध्याय कैसे पितरों को मुक्त करके आपको भी पितृ ऋण से मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं आगे हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो पितृपक्ष में गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ का क्या महालाभ है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं।

0: गीता के पाठ से होंगे सारे संकट दूर, पितरों की कृपा भी बरसेगी भरपूर, श्रद्धा से श्राद्ध की है महिमा अपार, पितृपक्ष में खुल जाते हैं मुक्ति मोक्ष के द्वार, गीता के अध्याय के पाठ से पूर्वज होंगे प्रसन्न, पितरों के आशीर्वाद से आप होंगे संपन्न, पितृपक्ष के विशेष दिनों में घर में गीता पाठ की महिमा आपके संकटों का समाधान कर सकती है, पितरों को भवसागर से पार करा सकती है। मान्यता है कि गीता के सातवें अध्याय को पढ़ने से पूर्वज आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गीता के और भी कई ऐसे अध्याय हैं जिनके पाठ मात्र से पितरों को तृप्ति मिल सकती है।
1: गीता के पाठ से, गीता में 18 अध्याय हैं, उसके 3 खंड हैं, 6-6 अध्यायों के 3 खंड बनते हैं। एक में भगवान ने ज्ञान योग बताया, एक में भक्ति योग बताया, एक में कर्म योग बताया, और तर्पण में इतना ही नहीं है, उसमें लिखा है देवास्त्रप्यंताम, मनुष्यास्त्रप्यंताम, सागरास्त्रप्यंताम, पर्वतास्त्रप्यंताम, भूतग्रामश्चतुर्विधस्त्रप्यताम। सागरों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है, पर्वतों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है। गीता शास्त्र में इतनी प्रश्न किए हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, उनको प्रश्नों के उत्तर सुन करके सारे पितरों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं इस संसार रूपी युद्ध को जीतने के लिए।
0: कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के इच्छुक लोगों को गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी पितरों की तृप्ति के लिए गीता के अध्यायों के पाठ का जिक्र किया है। अगर आप पूरे पितृपक्ष में किसी भी वजह से पूर्वजों के लिए तर्पण पिंडदान नहीं भी कर पाए तो अभी भी कुछ समय बचा है, जिसमें गीता के पाठ से आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितृपक्ष में गीता पाठ को लेकर कई लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि वो सिर्फ सातवें अध्याय का पाठ करें या फिर उनकी विशेष समस्याओं के लिए उन्हें कोई दूसरा अध्याय भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गीता के बाकी अध्यायों के पाठ से पितरों को कैसे मुक्ति और तृप्ति मिल सकती है।
1: या स्वयं पद्मनाभ से, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, तो गंगा का भी महत्व है पितरों की मुक्ति में, और मुख से निकली गीता का भी महत्व है। ये गीता का उपदेश मोह से निवृत्त करने के लिए अर्जुन को दिया गया महाभारत के युद्ध में। भारतीय शास्त्रों में पितरों की मुक्ति के लिए गीता का इसीलिए बताया गया कि महाभारत युद्ध में इतने लोगों ने वीरगति प्राप्त की कि उन सबकी सदगति कैसे हो।
0: दरअसल पितृपक्ष में गीता के 3 अध्यायों के पाठ की महिमा है। 7वें, 9वें और 12वें अध्याय के पाठ से लाभ होता है। पाठ करने वाले व्यक्ति को या तो इन 3 अध्यायों का या पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। ये भी ना कर पाए तो 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इसको करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के घर में किसी के देहांत से नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, उन्हें 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से हर गुरुवार गीता की 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे कुंडली के ऋण और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।
1: देखिए, तृप्ति पितरों को जो है भोजन से होती है, अन्न से होती है, जल से होती है, तर्पण से होती है, तिल मिले जल से होती है। कहते हैं यदि जल में तिल न डालें, केवल जल दे दें, तो एक पुराण कहता है कि बिना तिल का जल राक्षसों को चला जाएगा, भूत प्रेतों को चला जाएगा, असुर योनियों में पड़े हुए लोगों को चला जाएगा। यदि तिल डालेंगे तो उस पर पितरों का अधिकार हो जाएगा।
0: पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी गीता पाठ एक सरल समाधान है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसके साथ पूर्ण सात्विकता का आचरण रखें और अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करें। तभी होगी आपकी प्रार्थना स्वीकार और मिलेगी पितरों की कृपा।
2: हर धार्मिक पुस्तक के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां होती हैं, जिनका पालन करने से उसका जो असर होता है वो प्रभावी हो जाता है। तो गीता पाठ करने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, चलिए अब उसके बारे में आपको बता देते हैं।

0: गीता ईश्वर का दर्शन है, श्री हरि की साक्षात वाणी है। गीता द्वापर में अर्जुन की वैतरणी बनी तो कलयुग में मानवों की पथ प्रदर्शक। गीता के पाठ की महिमा का बखान तो कई जगह पर किया गया है। गीता का पाठ पूर्वजों के लिए अति शुभ है, उनकी मुक्ति और मोक्ष का सबसे सरल साधन भी है। पर गीता के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां भी है। अगर इन नियमों के साथ गीता का पाठ किया जाए तो इसके पाठ का लाभ अत्यंत गुणा हो जाता है।
1: गीता शास्त्र की विधि यह है, प्रातः काल संकल्प ले कि मुझ में जितना ज्ञान है, मैं जितना जानता हूँ उसी भाषा में, आज मुझे पंडित जी भी उपलब्ध नहीं है, संस्कृत में मैं कैसे सुनाऊं हे पितरों आपको, मैं हिंदी पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। हाथ में संकल्प ले, तिल जल लेकर के कुशा हाथ में रख करके संकल्प करे जिससे वो सुनाया हुआ मेरे पितर ही सुने। विधि ये है, कहे कि मैं आपका ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं अपने पिता फला गोत्र के व्यक्ति के उद्धार के लिए आज गीता के एक अध्याय का पाठ आपको सुनाता हूँ। अंत में कहता है कि इस पाठ के द्वारा मेरे फला पिता सदगति को प्राप्त हूँ।
0: तो चलिए जानते हैं गीता का पाठ कैसे किया जाना चाहिए। गीता के पाठ से पहले भगवान कृष्ण की तस्वीर सामने रखें, एक घी का दिया जलाएं, एक लोटे में जल भरकर सामने रखें। इसके बाद गीता का पाठ करना शुरू करें। हर अध्याय के पाठ के साथ ही भगवान कृष्ण के लिए शंख या घंटी बजाएं। शंख जरूर बजाएं। गीता के पाठ के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। बचा हुआ जल गीता पाठ करके दक्षिण दिशा में किसी पौधे में डाल दें। जो भी गीता का पाठ करे वो प्याज और लहसुन का सेवन ना करे। पाठ आसन पर बैठकर ही करे। पीले रंग के आसन पर बैठकर गीता का पाठ करना अति शुभ होता है।
1: शरीर तो भस्म हो गया लेकिन मन की, आत्मा की, जो मन की अंधकार है, अंधकार कहाँ होता है? अंधकार तो मन में होता है ना। जब मन में अंधकार होता है तो आत्मा अंधकार से आवृत हो जाती है, और आत्मा की मुक्ति ही पितरों की मुक्ति है। आत्मा ही पितर लोक में जाती है। सर्व इसमें एक अध्याय में श्लोक आया है, सर्वभूतेषु मामेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानं विद्धि सात्विकं। आपको ज्ञान योग का प्रधान श्लोक सुना रहा हूँ। सर्वभूतेषु मामेकं भावमव्ययमीक्षते,

0: द्वारा पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है।
1: ऐसे में आप भी गीता 7वें, 9वें और 11वें अध्याय के पाठ से पितृपक्ष में पा सकते हैं अपने पूर्वजों की अनंत कृपा।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
10: न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन होती हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग दिखा, और वो रंग था सफेद। खास बात ये रही कि डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। देखिए शानदार पार्टी की खास रिपोर्ट।
11: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइट डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाली सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
12: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
11: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार

0: बाजार बनाने की कोशिश की।
1: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this, that is every type of other people like us.
0: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
2: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
0: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
3: It's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
0: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: और अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
5: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

0: ये बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हो। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान है। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत पूरी करने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस सदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले एप्पल मिलेगा, और ये बात शायद हाथी को पता है। तभी पहले सूंड एप्पल पर जाता है और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ मुड़ जाता है। बच्चे भी मानो अपना वादा निभाती है, एक एक कर सारे एप्पल हाथी को खिला देती है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: लगा निकल जाएगा दम, पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन, फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
0: एशियाई खेलों में आज भारत के लिए शानदार दिन। रेसलिंग में भारत ने जीता एक और गोल्ड। अब तक भारत ने जीते कुल 20 गोल्ड समेत 82 मेडल। एशियन गेम्स में भारत का जलवा। क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रनों से हरा के जीता गोल्ड मेडल। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। शारदीय नवरात्र को लेकर देशभर में तैयारियां तेज। अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमाएं, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी मां। नैनीताल के नीब करौली धाम में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या। सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे मजा। असम में पर्यटकों के लिए खुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। बड़ी संख्या में सैलानियों ने किया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को खुलेगा पोवितोरा सेंचुरी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहाँ वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत पहले से ही नजर आने लगती है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, पर एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काट के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
2: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
3: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
1: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
4: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
1: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
5: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खड़ा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी, माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
1: कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले माँ का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
6: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
1: माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी जिसे एटेल माटी कहते हैं उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है, इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
7: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना, माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
8: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल स्वयं दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
1: टोली में अब कई तरह की मूर्तियां बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियां होती हैं। जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियां भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियां भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
5: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का, 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
1: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
9: ये बहुत पुराना संबंध है यहाँ पे, आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। यहीं से हम लोग पूजा कमेटी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
10: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है?
11: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
10: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
11: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
9: ये बहुत पुराना संबंध है यहाँ पे, आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
1: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
12: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
10: आज क्या घूमने ही आए थे?
12: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
13: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
1: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पाक। तो देखिए सीआर पाक को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो हैं वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुमार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थी, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियां दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहां पर मूर्तियां यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहां से फिर ये मूर्तियां राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी जरूरत होती है वहां इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, थोड़ा मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: एशिया खेलों में आज भारत के लिए शानदार दिन। रेसलिंग में भारत ने जीता एक और गोल्ड, अब तक भारत ने जीते कुल 20 गोल्ड समेत 82 मेडल। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रनों से हरा के जीता गोल्ड मेडल। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज। अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी मां।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे के खास शो गुड रिपोर्टर में सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली की एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। 2 दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उसको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8 से 9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई, ये पता नहीं चला। लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था, जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो अभी भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नहर के इस हिस्से को सालों तक उसमें लगे रहे, उसे साफ किया और अब उसे इस तरह का बना दिया है कि आने वाले वक्त में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि छठ पूजा का अर्घ इसी नहर में खड़े होकर दिया जाएगा।
0: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तान सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनक नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं जिनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं, विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जे जे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि लगभग एक वर्ष के अंदर लगभग 2000 से 2500 मूर्तियां हमने यहाँ पे कलेक्ट करी है और हमें पता है कि यहाँ पर लोग मैं क्या बताऊँ, शब्द बोलने में भी शर्म आती है कि यहीं पर हमारे देवी देवता बैठे हुए हैं। यहाँ पे विसर्जन के नाम पे लोग कूड़े के बीच में छोड़ के जाते हैं। गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियाँ कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे हैं ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: यहाँ पे ना अधिकतर क्लस्टर एरिया है, जेजे क्लस्टर है और झुग्गिया है, तो यहाँ पर आम बात है दिल्ली की, आप किसी भी स्थान पे जाओगे तो आपको इंजेक्शन भरने वाली सुइयाँ मिलेगी जो स्मैकिया यूज करते हैं वो, प्लस बहुत सारी गंदगी। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता, और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा, मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जल कुंभिया उठाई, उसमें मूर्ति आनी थी, तो उसमें भी काफी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शंस का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहां से कहां पहुंच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं कम से कम, अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो, बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतरकर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और अस्या, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: अब आगे बढ़ते हैं और अब बात राजधानी के एक ऐसे सबवे की जो आम लोगों की सोच से थोड़ा सा हटकर है। आमतौर पर दिल्ली में सबवे को इस्तेमाल करने वाले लोग उसके रख रखाव को लेकर खुश नहीं होते हैं। उसमें हल्का अंधेरा, गंदगी और बदबू की शिकायत अक्सर ही सुनी जाती है। हालांकि दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे जरा हटकर है। उसके अंदर से गुजरने वाला रास्ता काफी ज्यादा साफ सुथरा और दीवारें हस्तशिल्प से सजी हुई हैं। घुमंतू जनजातियों के सहयोग से इसको तैयार करने वाली फिल्म निर्देशक ने इसका नोमैडिक हार्ट इसका नाम रखा है। करीब 26 वर्षों से इसकी देखभाल भी वही कर रही है।

0: तेज रफ्तार वाली सड़कों को आसानी से पार करने के लिए बनाए जाते हैं सबवे या अंडरपास, लेकिन दिल्ली का कोई सबवे इतना साफ सुथरा, विचारशील और कलात्मक दिख सकता है? कुछ देर के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का इलाका बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे या अंडरपास अनोखा है। नोमैडिक हार्ट नाम का ये पैदल रास्ता सबसे अनूठी और खूबसूरत अंडरपास बाजारों में गिना जाता है। आमतौर पर दिल्ली में मौजूद ज्यादातर सबवे अपनी बदहाली, गंदगी, अंधेरा और असुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वो असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों और बेघर लोगों का डेरा भी बन जाते हैं। हालांकि हनुमान मंदिर का ये सबवे उनसे काफी अलग है। इस सबवे की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको बेहद साफ सुथरा रास्ता और खूबसूरती से सजाई गई दीवारें दिखेंगी। दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकारी आपको यहाँ बार बार आने का न्योता देंगी।
1: ऊपर एक मुख्य सड़क और उसके नीचे बनाया गया एक रास्ता। इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है। इसे सबवे कहते हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारे सबवे मिलेंगे, लेकिन अमूमन किसी भी सबवे से आप गुजरेंगे तो वहां गंदगी होगी, वहां बदबू आएगी, वहां पर आपको नशे करते हुए लोग मिल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली का एक ऐसा सबवे दिखाने जा रहा हूं जो कि जीवन और जीवन की खूबसूरती का एक मिसाल बन चुका है। शानदार बात यह भी कि सबवे को 16 साल से इसकी खूबसूरती को मेंटेन भी किया जा रहा है। आपको आज ये सबवे भी दिखाएंगे और मिलवाएंगे उन खास लोगों से भी जो इस काम में लगे हुए हैं।
0: रोमैटिक हार्ट नाम के इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिलने वाले हस्तशिल्प हैं, जो अलग अलग जनजातियों से जुड़े हैं।
2: इसका श्रेय जाता है घुमंतु जातियों को और भारत सरकार को, जिन्होंने ये पहल की कि इस तरह के जो अंडरपासेस हैं, जिनकी ऊर्जा बड़ी आक्रामक होती है, उनको संस्कृति से जोड़ा जाए और इसमें जीवन डालने का काम केवल और केवल घुमंतु जाति कर सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ और कुछ से कुछ नहीं, इसको जितनी सहजता से घुमंतु जातियाँ इस सिद्धांत को जी पाती हैं, वो उनकी बदौलत हम ये प्रोजेक्ट कर पाए जिसे नोमैडिक हार्ट कहते हैं। हनुमान मंदिर के नीचे सबवे में जब आप आएंगे तो आपको ये नोमैडिक हार्ट मिलेगा और इसमें स्वयं आप स्वयं से संवाद कर सकेंगे। यहाँ पर कोई सेल्स पर्सन तो नहीं होता जो आपको कुछ चीज़ें बताए, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ ठहर कर स्वयं से संवाद किया जाता है, लोग करते हैं, और इसकी ऊर्जा में एक शांति है जिसको अनुभव करते हैं और आकर बोलते भी हैं। तो विनय जी और मैंने दोनों ने सरकार के साथ और घुमंतु जातियों के साथ मिलकर इस नोमैडिक हार्ट को क्यूरेट किया और आज NDMC की एक बेहतरीन स्पेसेस में से ये है।
0: राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक मशहूर घुमंतु जनजाति कालबेलिया की तरफ से बांस से बने कलाकृतियां देखिए। बंजारा समुदाय से जुड़ी कढ़ाई और पारंपरिक कला की पहचान रखने वाला पोंचू भी गजब है। ऐतिहासिक रूप से जंगलों में रहने, शिकार करने और प्रकृति के करीब रहने वाली बावरिया जाति के पास जड़ी बूटियों, शहद और औषधीय पौधों का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है, जिसकी मिसाल इस खास सबवे में दिखती है।
2: देखिए, जैसे ये बांस का काम, कालबेलिया जाति जो है बांस का काम करती थी। अब कालबेलिया जातियों को भी नहीं पता, इनके जो बुजुर्ग थे वो बांस का काम करते थे और ये रच पट्टी बनाया करते थे और ये हथपंखे बनाया करते थे जो अब कालबेलिया से बीन तक रह गए हैं। तो उनकी जो विशेषताएं थी, उनकी संस्कृति की, वो सब यहाँ पर हैं। तो बंजारन जो है ये पोंचू बनाते हैं, इसको प्रेम पोंचू भी बोलते हैं।
1: प्रेम पोंचू
2: तो ये जो है गूंथती है, चिपकाती नहीं है, और ये गवर्नमेंट ने भी काफी बार सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को। और ये पायल हमारे संस्कृति में और एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो अच्छे से कोट्स रच देती हैं।
1: अब आप देखिए कि यहाँ पर आप कुछ चीजें भी आप देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर बिकती हैं औषधि के रूप में, लेकिन ये औषधि ऐसे ही नहीं है, ये औषधि भी उन्ही कम्युनिटी से आती है, उन्ही बंजारा जातियों से आती हैं, घुमंतु लोगों से आती हैं।
2: ये जो नीपोड है ये बावरिया समुदाय, क्योंकि वो गैदरर्स हैं, तो बिरछा फली जो है उनकी भेड़ बकरियां भी खाती हैं, वो भी खाते हैं सीजन में, और इसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं हम, और ये ऋतु आहार है उनका, और इससे कार्टिलेज बनता है घुटनों में और लोग ठीक होते हैं और सर्जरी से बच जाते हैं, जो अपने आप में एक, हमें लगता है कि ऋतु आहार के रूप में बहुत अच्छी चीज है, लोगों को जाननी चाहिए, खानी भी चाहिए।
0: अलग अलग जनजातियों की तरफ से बनाई गई ज्वेलरी, कपड़े, बैग, होम डेकोर, पेंटिंग्स, लोक वाद्य यंत्र और कई तरह के पारंपरिक सामान यहाँ दिखते हैं। सबवे की दीवारों ने जिंदगी के कई गहरे संदेश और खूबसूरत विचार समेटा हुआ है।
1: मैम, ये कोर्स में मैं बहुत बार फंस चुका हूँ और फिर से एक बार मैं कोर्स में आपको ले जाता हूँ। जो मैंने कहा था कि आप यहाँ आएंगे तो रुकेंगे, ठहरेंगे। ये देखिए, मन फ्रेम में बस तुम हो, ये समझना पढ़ लेना कितना अच्छा है। वेटिंग टू बी विद यू, ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन जब आप रुकते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद कोई घर पे वेट कर। मन की सुलझने गई उलझ, ऐसा तो ना सोचो।
2: ये हमारे
1: जीवन का सार हो गया,
2: कोट लिखा। अब ये हमारी एक फीचर फिल्म है अनमिले, उसका एक उसके एक गीत का मुखड़ा बन गया है अब ये।
0: इस सबवे में जनजातियों से जुड़ा लोक संगीत भी बजता है जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही है, सुकून भी देता है। यही कारण है कि जो लोग इस अंडरपास से गुजरते हैं वो ठहर कर सभी वस्तुओं को निहारते हैं और इन्हें खरीद भी लेते हैं। बड़ी बात ये ही है कि इस सबवे को साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त तैयार किया गया था। पिछले 15-16 सालों में इसने नए प्रतिमान भी गढ़े हैं और नई पहचान भी बनाई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उदयपुर की डॉक्टर मनस्वी अग्रवाल ने पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा हौसला दिखाते हुए पर्वतारोहण की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। महज 9 महीने के अंदर उन्होंने दुनिया के 5 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने का काम किया है। यूरोप के माउंट एम्ब्रुस से शुरू हुआ उनका यह सफर अफ्रीका के किलिमंजारो, अंटार्कटिका के विंसन मैसिव और दक्षिण अमेरिका के माउंट अकोनकागुआ से होता हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा।

0: उदयपुर की डॉक्टर मनस्वी अग्रवाल ने महज 9 महीने के भीतर दुनिया के 5 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह करके इतिहास रच दिया है। मनस्वी ने 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर पहुंचकर वहां भारतीय तिरंगा लहराया है।
1: राजस्थान के उदयपुर की एक ऐसी बेटी आज हमारे साथ में जयपुर में मौजूद है जिन्होंने पहाड़ देखे नहीं है, पहाड़ों को चुनौती की तरह देखा है और महज 9 महीने के समय में 5 ऐसी चोटियां जो महाद्वीप हैं उनको ये चढ़ी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस जो इनकी राह पे आए हैं उनको इन्होंने पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है। महज 9 महीने में 5 महाद्वीपों की चढ़ाई करने का, जिसमें किलिमांजारो भी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है।
0: मनस्वी के कठिन

0: मैसिव को फतेह किया। इसके बाद 22 जनवरी 2026 को दक्षिण अमेरिका की 6962 मीटर सर्वोच्च चोटी माउंट अकोंकागुआ पर पहुंची और आखिर में 21 मई 2026 को एशिया के 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर मनस्वी ने इतिहास रचा। वो राजस्थान की पहली महिला सिविलियन पर्वतारोही बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतह की, लेकिन एवरेस्ट की चोटी फतह करने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहां मनस्वी अत्यधिक ठंड और बर्फीली परिस्थितियों की चपेट में आ गईं और उन्हें गंभीर थर्ड और फोर्थ डिग्री फ्रॉस्ट बाइट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
1: जब मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुई थी तो एक इंजेक्शन होता है एलोप्रोस्ट नाम का, वो मुझे मात्र 12 घंटे में लंदन से मंगवाया गया फ्लाइट को डाइवर्ट करा के और कस्टम्स डिपार्टमेंट को खुलवा कर। तो एक इकलौता अनोखा केस था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, नेपाल एम्बेसी सब लोग इन्वॉल्व थे और सबने पूरा ट्राई किया कि ये इंजेक्शन जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिसमें मेरे दोनों पैर काटने पड़ते। पर उस इंजेक्शन के कारण आज मैं आप सबके सामने बैठी हुई हूँ और खड़ी हुई हूँ, तो मुझे उन सब का बहुत सपोर्ट रहा।
0: मनस्वी की प्रतिभा केवल पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज है। 10 मीटर राइफल शूटिंग की महिला वर्ग में ISSF सिविलियन चैंपियनशिप की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी है। वो राष्ट्रीय स्तर के घुड़सवार भी हैं और 60 किलोमीटर एंड्योरेंस राइड प्रतियोगिता में साल 2022 में वो कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। मनस्वी ने पर्वतारोहण के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण हासिल किया है। उन्होंने माउंट आबू स्थित स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, ग्रेड ए एडवांस्ड माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग का भी प्रशिक्षण लिया है। वो प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनर भी हैं। कभी बर्फीली चोटियां और कभी जानलेवा मौसम, हर चुनौती के बाद मनस्वी ने अपने सफर को आगे बढ़ाया। अब मनस्वी की नजर दुनिया के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतेह करना यानी 7 समिट्स पर विजय पाना है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: आरती की जाती है। आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशियाई खेलों में आज भारत के लिए शानदार दिन, रेसलिंग में भारत ने जीता एक और स्वर्ण पदक, अब तक भारत ने जीते कुल 20 गोल्ड समेत 82 मेडल। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर जीता गोल्ड मेडल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। शारदीय नवरात्र को लेकर देशभर में तैयारियां तेज, अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही है मां दुर्गा की प्रतिमाएं, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी मां। नैनीताल के नीम करौली धाम में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, फिल्म हनुमान अंश ने जगाई बाबा की भक्ति। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे हैं मजा। असम में पर्यटकों के लिए कुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद, 13 अक्टूबर को खुलेगा पाबीतोरा सेंचुरी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं।
1: यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके।
0: आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
2: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी ऑफ रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
1: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
2: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को, जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतारकर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे।
1: ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
2: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
1: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को 5-5 की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
2: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है, जिसको कहा जाए, जहाँ पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं, वो आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया, और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
1: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है, और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया। रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सकें।
3: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
1: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
3: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
2: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
3: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
2: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
3: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
2: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
3: रोबोटिक डॉग। में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
2: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
3: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
1: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
3: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और इस वक्त की शानदार खबर एशियन गेम से आ रही है। भारत ने मलेशिया को हराकर मेंस हॉकी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही। चीन के हांगझू में हुए पिछले एशियन गेम्स में भी भारत की पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह लगातार दूसरी बार भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान आइची नागोया में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हॉकी इतिहास में पहली बार भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। मेंस हॉकी के स्वर्ण पदक से भारत के एशियन गेम्स में कुल 21 गोल्ड मेडल हो गए हैं। तो इस वक्त की शानदार खबर एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम को गोल्ड हासिल हुआ है और भारत ने मलेशिया को हराकर मेंस हॉकी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ ये जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है भारतीय टीम। चीन के हांगझू में हुए पिछले एशियन गेम्स में भी भारत की पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और अपनी जीत का परचम लहराया था और इस तरह लगातार दूसरी बार भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान आइची नागोया में भी स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। हॉकी इतिहास में पहली बार भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम्स ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। मेंस हॉकी के स्वर्ण पदक से भारत के एशियन गेम्स में कुल 21 गोल्ड मेडल हो गए हैं। और अब आगे देखिए रणक्षेत्र।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी दुनिया एक तरीके से फ्यूचर वेपन्स बनाने में जुटी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है अनमैन व्हीकल्स की। फिर चाहे वो अनमैन ड्रोन्स हो या फिर अनमैन गाड़ियां या फिर अनमैन बोट या अनमैन टैंक, जो कि सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं। इंसानी निर्देश मिले या नहीं मिले, ये सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं।
1: अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकियों के सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाता रहा है। अनमैन ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलने पर दुश्मन पर वार करता है और इसकी वजह से जवानों का जोखिम कम होता है।
0: दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में जंग लड़ने के तौर तरीके भी पूरी तरह से बदल दिए हैं। फिर चाहे वो व्हीकल्स हो या फिर रणनीति हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां लाखों गीगाबाइट सूचनाएं जुटा सकता है, वहीं पलक झपकते ही इसे नष्ट भी कर सकता है।
1: आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें लगातार एआई सिस्टम को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी जंगी काबिलियत दिखाते नजर आएंगे। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया अनमैन ग्राउंड व्हीकल उतारा, नाम है मार्कर। मौजूदा समय में ये ड्राइवरलेस टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। मार्कर यूजीबी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कॉर्नेट रूस की सबसे ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल है, जो 100 से 5500 मीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी में 7.62 एमएम की मशीन गन लगी हुई है, जिससे हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग की जा सकती है। दावा ये कि रूसी मार्कर 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त लगा सकते हैं, जो अपने साथ स्वार्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चलता है। स्वार्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: यूरो 9 के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा अनमैन्ड टैंक है यूजीवी। हालांकि इसका ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक के हुए ट्रायल के हिसाब से अगर देखा जाए तो टैंक ने सफल परीक्षण किया है, क्योंकि बाहर से ना तो किसी इंसानी कमांड की जरूरत पड़ी है और ना ही किसी मदद की जरूरत पड़ी है। और अगर तमाम ट्रायल सफल हो जाते हैं तो ये जल्दी ही रूसी सेना का हिस्सा होगा।
1: आज सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देश फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिसमें एआई की ताकत शामिल की जा रही है। फ्यूचर वेपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देने के मामले में इजराइल भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में नए रोबोट हथियार तैनात किए हैं। रिमोट कंट्रोल बंदूकों से आंसू गैस, स्टैंड ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागी जा सकती हैं। हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर रोबोटिक वेपन तैनात किए गए हैं। इजराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावर्स पर यह हथियार तैनात किए हैं। बंदूकों पर कैमरे लगे हैं, जिन्हें टावर के भीतर से इजराइल डिफेंस फोर्सेज के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंदूकें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में तुर्की ने भी ड्राइवरलेस बोट का परीक्षण कर भविष्य के हथियार की झलक दिखा दी, कि न सिर्फ समुद्री सरहद की निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। साउथ कोरिया ने एक एआई आधारित किलर बोट तैयार किया है, जो किसी भी लोकेशन पर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरह ड्रोन कर रहे हैं। एक बार बोट प्रोग्राम कर दिया जाए तो उसके बाद ये किलर बोट अपने दुश्मन की खुद पहचान कर उसे मार गिराएगा। ये किलर बोट त्वचा के रंग, चेहरे की बनावट, आवाज और कपड़े के आधार पर दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और पल भर में उन्हें तबाह कर सकते हैं।
0: ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और किलर रोबोट के जरिए तमाम देश अब कमर कस रहे हैं, क्योंकि जिस देश के पास भी ये हथियार होंगे वो आने वाले समय में युद्ध के क्षेत्र में आगे होगा। और इसीलिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि इजराइल जैसे देशों ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश कर दिया है।
1: आखिर क्या है किलर बोट और क्यों है दुनिया के लिए ये खतरा, इसे जानने और समझने की जरूरत है। किलर बोट्स फुल ऑटोनोमस वेपन होते हैं। किलर बोट्स के मिशन में ह्यूमन ऑपरेशन का रोल नहीं होता, यानी किलर बोट रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से इसके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन की प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है। अमेरिकी सेना की नजरें कुछ सालों में अपने जल, थल और वायु सेना को किलर बोट से लैस करने पर है। वहीं रूस भी किलर बोट्स को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा है कि वो किलर बोट्स को विकसित करने की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक ग्लोबल लीडर होगा।
2: देखिए, रोबोट्स वो हैं जो बनाए गए हैं, ट्यून किए गए हैं, जिनमें बैटरी लगाई गई है, जिनको 5-7-10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग जैसी डिवाइसेस लगाई गई हैं, जो बैटलफील्ड के ऊपर क्या काम करते हैं, इंटेलिजेंस का कलेक्शन का, रिकॉग्नाइजेंस कलेक्शन का और सर्विलेंस करने का। लेकिन अगर इन्हीं रोबोट्स में, जो जनरली मिलिट्री के रोबोट्स आर्म्स से इक्विप नहीं होते, लेकिन अगर इन्हीं के अंदर आर्म्स लगा दिए जाएं तो फिर इन्हें किलर ड्रोन कहते हैं। और अगर इनमें आर्म्स लगा दिए जाएं तो उन आर्म्स के फायर को कंट्रोल करना एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी बैटल ग्राउंड पे ऐसे भी सीन देखे गए हैं कि रोबोट्स ने अपने ही लोगों को मार दिया है।
1: दुश्मन की साजिशों से निपटने के लिए भारतीय युवाओं की ऐसी टोली तैयार की जा रही है जो तकनीक में इतने दक्ष हों कि वो दुश्मन के चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सके। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपे गए, जिनमें साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडरिन ट्रांसलेटर डिवाइस थे। आज के दौर में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिवीजन बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी एलएमजी, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। 300 मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगा सकता है। अगर टारगेट मूविंग हो तो इसकी एक्यूरेसी रेट 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से लगा है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में एआई के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है।
3: दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा, क्योंकि LAC के ऊपर जितना भी चाइनीज की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है, क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। वहाँ वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेज है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं।
1: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी तरह की सोचने समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोचा जा रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखता हो। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही और गलत होने पर दुनिया भर में अभी बहस छिड़ गई है।
0: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: आरती की जाती है। आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: और अब आत्मा दुर्गा की कर लेते हैं जो जल्द ही विराजने वाली है। 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से, और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाता है 12-14 माने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया। ठीक है, उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया। ठीक है, उसको जो आँख, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आँखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
4: मैंने बहुत सुना था बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
5: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नजारा।
0: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं, जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

0: ये बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हो। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान है। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत पूरी करने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस सदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले एप्पल मिलेगा, और ये बात शायद हाथी को पता है। तभी पहले सूंड एप्पल पर जाता है और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ मुड़ जाता है। बच्चे भी मानो अपना वादा निभाती है, एक एक कर सारे एप्पल हाथी को खिला देती है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: क्यों देवी और देवता की आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं, और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे

0: आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत। 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया दम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज। अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही है माँ दुर्गा की प्रतिमाएं, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी माँ। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या। सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे मजा। असम में पर्यटकों के लिए खुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को खुलेगा पोबितोरा सेंचुरी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो वंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाले हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानियू हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानियू हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's a bee near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crushed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंग बली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: इसराइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुंबकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई। भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हों इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई।
2: मैं एक सिर्फ पॉजिटिव है कि मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाई।
1: दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
2: बहुत बहुत गर्व होता है, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर, सॉरी कि आपके सामने लौट

0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मित का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों, शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
2: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्यों देवी और देवता की आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं, और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हरा के सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी युद्धाओं का रण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भी भरी उड़ान। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी माँ। यूपी के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज, 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका उद्घाटन, कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा है एक्सपो मार्ट। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे मजा। असम में पर्यटकों के लिए खुला मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद, 13 अक्टूबर को खुलेगा पोबितोरा सेंचुरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: एशियन गेम्स से भारत का स्वर्णिम सफर बरकरार, पुरुष हॉकी ने दिलाया भारत को 21वां गोल्ड। भारत ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराया, इस जीत के साथ ही ओलंपिक 2028 के लिए किया डायरेक्ट क्वालिफाई। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल, वहीं गुजरात हार्दिक और शिलानंद ने 1-1 गोल किया। इससे पहले भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती का गोल्ड मेडल जीते, उन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया के हान को हराया।

रेसलिंग में 53 किलो कैटेगरी में अंतिम पंगाल को सिल्वर मिला। फाइनल में जापान के मोई क्योका को 9-1 से हारा। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला जीती, देश को दिलाया एक और गोल्ड मेडल। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था 212 रनों का लक्ष्य, पीछा करते उतरी टीम 6 विकेट पे 192 रन ही बना सकी। मुकाबले में भारतीय टीम ने 19 रनों से हासिल की जीत। निशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुआ यह मुकाबला। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 20 गेंद में हाफ सेंचुरी की पूरी, 61 रनों का दिया योगदान। तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 15 गेंदों में शानदार 27 रन बनाए। ग्वालियर में भारत की T20 गोल्ड जीत पर क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाया। पाकिस्तान को हरा के एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने पर जमकर खुशी जताई। प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत को लेकर फैंस में जोश का माहौल। जय हिंद जय भारत के लगाए गए निचल नारे। एशियन गेम्स से भारत की जीत पर जापान में भारतीय प्रवासियों ने जताई खुशी। स्टेडियम से निकलते वक्त चेहरे पर नजर आई खुशी। एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में भी भारत को पदक। नीरज ने कांस्य पदक जीता। भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने अपने ही देश के धीरज को दी मात, 6-4 से हरा के जीता कांस्य पदक। एशियन गेम्स 2026 के गोल्फ में भी भारत का शानदार प्रदर्शन, गोल्ड मेडल के साथ खुला खाता। प्रणवी ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बने। गोल्फ की महिला टीम ने भी किया कमाल, सिल्वर पदक पर किया कब्जा। प्रणवी अदिति और दीक्षा डागर की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रणवी ने किया टीम का नेतृत्व। पूरी में सैंड आर्टिस्ट ने महिला हॉकी टीम को शानदार तरीके से शुभकामनाएं दी, रेत पे बनाई कलाकृति। आईची नागोया एशियन गेम्स में आज भी भारत की सुनहरी शुरुआत, आर्चरी में मिला एक और गोल्ड। 17 साल की कुमकुम मोहर ने रच दिया इतिहास, शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया की ओ येजुन को हराया। कुमकुम के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, एशियाई खेलों के व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। एशियाई खेलों में कुल 85 मेडल जीत के चौथे स्थान पर है भारत, 21 गोल्ड 27 रजत और 37 कांस्य पदकों पर कब्जा। जापान से पदक वीरों की स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ उनका स्वागत। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पुरतासी महीने के तीसरे पवित्र शनिवार को विशेष आयोजन, पेरुमल मंदिर में पूजा अर्चना। थूथुकुड़ी पेरुमल मंदिर में नंदी का किया गया विशेष श्रृंगार, पुरोहितों ने की विशेष पूजा अर्चना। तिरुचिरापल्ली के मुक्कोमो में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा, खुले स्लूज गेट मेटूर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी नदी में उफान। मुक्कोमो में जल स्तर 9,900 क्यूसेक के पार, कावेरी डेल्टा में सांबा खेती के लिए छोड़ा गया पानी किसानों में खुशी के लिए है। मुक्कोम्बो बांध का बड़ा जलस्तर बना आकर्षण का केंद्र, ड्रोन तस्वीरें हुई वायरल, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के कानपुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाटों पर भरा पानी। पटना के दानापुर दियारा में फिर बाढ़ का संकट, 6 पंचायतों की सड़कें डूबी, स्मीटर बना यातायात का सहारा। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी, वैशाली से भेजे गए राहत सामग्री से भरे 5 ट्रक। बिहार के सारण में 11,000 पॉलिथीन शीट और 1700 ड्राई राशन पैकेट भेजे गए, जिला प्रशासन की टीम राहत में जुटे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम, छुट्टियों के चलते अचानक से बड़ी सैलानियों की संख्या। असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क का शुभारंभ, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को फिर से खुलेगा पोबितोरा वन जीव अभयारण्य, बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचने की उम्मीद। पर्यटन नगरी डलहौजी में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, पर्यटन कारोबारियों के खिले शहर में। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे मजा। राजकोट में कैप्टन स्मिथ मछार के पिता ने बेटे पर जताया गर्व, परिवार जल्द स्वस्थ होकर उनकी वापसी की कर रहा है कामना। शारदीय
लिए नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज। दुर्गा पूजा पंडालों को तैयार करने के साथ ही प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अजमेर में दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम जारी। विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी माँ। दुर्गा पूजा के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा जोर। इको फ्रेंडली प्रतिमाएं की जा रही हैं तैयार। यूपी में युवाओं के लिए राहत देने वाली खबर। सीएम योगी ने 4 लाख से ज्यादा युवाओं को बांटी स्कॉलरशिप। बैंक खातों में भेजे गए स्कॉलरशिप के 148 करोड़ रुपए की राशि। लखनऊ में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। लैंडफिल साइट से 100 एकड़ जमीन कराई गई है कचरा मुक्त। ओखला में ताजा कचरे की प्रोसेसिंग के लिए नई यूनिट की शुरुआत। रोजाना 3 से 4 हजार मीट्रिक टन कचरे का होगा निस्तारण। ओखला लैंडफिल पर पुराने कचरे का लगभग पूरा निस्तारण होने का दावा। ताजा और सीएनईडी कचरे की प्रोसेसिंग पर भी सरकार का फोकस। ओलंपियन नीरज चोपड़ा और गगन नारंग पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोनों खिलाड़ियों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। नैनीताल के कैंची धाम में फिल्म हनुमान अंश के बाद उमड़ा आस्था का सैलाब। पर्यटन उद्योग को भी मिल रहा है बढ़ावा। वाराणसी के नमो घाट पर पहली बार वायुसेना का होगा एरियल डिस्प्ले। 25 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर आसमान में दिखेगा दमखम। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा मुख्य समारोह। एयरफोर्स डे पर लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर और हथियार प्रणालियों की होगी प्रदर्शनी। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक पर दिया जाएगा जोर। एयरफोर्स डे समारोह में टीम शक्ति भी दिखाएगी अपने कर्तव्य। महिला एरोबैटिक टीम सिंक्रोनाइज मूवमेंट और जटिल फॉर्मेशन करेगी पेश। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह करेंगे एयरफोर्स डे की परेड की समीक्षा। समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुख और पूर्व वायुसेना प्रमुख शामिल होंगे। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने रेगिस्तानी इलाकों में किया अपाचे हेलीकॉप्टर के गन सिस्टम के परख। मुश्किल माहौल में हवाई जंग की तैयारियों की नुमाइश। साउथ वेस्टर्न कमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हथियारों की सटीक क्षमता, ऑपरेशनल तैयारी और मिशन के लिए तैयार रहने की क्षमता की दिखी झलक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2026 का आयोजन। भारत और मंगोलिया की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2026 के तहत भारत और मंगोलिया के जवानों ने ली स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग। मुश्किल इलाकों में तेजी और असरदार ढंग से तैनात होने की क्षमता हुई बेहतर। जोधपुर में जारी है वायुसेना का तरंग शक्ति अभ्यास 2026। हिस्सा ले रहे देशों के एयरक्राफ्ट एयरक्रू और सपोर्ट सिस्टम ने साथ साथ फ्लाइंग ऑपरेशन के अनुभव किए साझा। उत्तराखंड में बारिश थमने और लंबे वीकेंड के चलते चारधाम यात्रा में फिर आई तेजी। मुनि की रेती और तपोवन में उमड़ी भीड़। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी संगम पर उमड़ी। दिल्ली एनसीआर से पहुंचे लोगों की भारी भीड़। पितृपक्ष में तर्पण के अलावा तुंगनाथ रुद्रनाथ और बद्रीनाथ धाम की ओर रवाना हुई यात्री। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए पहाड़ का रुख कर रहे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैर सपाटे के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में सैलानी। लोगों को आकर्षित कर रहा है खुशनुमा मौसम। राजस्थान के धौलपुर जिले के सर मथुरा की सब्जी मंडी में आकर्षण का केंद्र बनी 4 फीट लंबी लौकी। फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोलकाता में आज फुटबॉल फीवर का दिन। ब्राजील के नेशनल टीम भारतीय ब्लू टाइगर्स के साथ खेलेगी फ्रेंडली मैच। स्वामी विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगण में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। जोश में कोलकाता के फुटबॉल प्रेमी। पहली बार किसी भारतीय टीम के साथ मैच खेलेगी ब्राजील की टीम। मैदान में दिखेंगे विनीसियस सहित कई स्टार खिलाड़ी। मैच से पहले कल दोनों टीमों की प्रैक्टिस में बहाया पसीना। 5 बार के विश्व चैंपियन है ब्राजील, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की होगी कोशिश। कोलकाता में भारत ब्राजील फुटबॉल मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हजारों पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। चीन के हुआंगशान में ड्रैगन का जलवा 38 हिस्सों से बना करीब 100 मीटर लंबा रोशन ड्रैगन पहाड़ पर नजर आया। रात में जगमगाया हुआंगशान पर्वत। चीन के अनहुई में पहली बार यिंगलोंग थीम पर नाइट टूर शुरू हुआ। रोशनी से बना 100 मीटर लंबा ड्रैगन ड्रैगन लैंटेन पहाड़ी रास्तों पर नदी की तरह बहता हुआ नजर आया, जिसे

0: देखने के लिए पर्यटक उमड़े। चीनी संस्कृति की झलक दिखा रहा ये शो नाइट टूर में पेपर कटिंग, ड्रैगन डांस और फिश लैटिन जैसी परंपराएं भी शामिल हैं। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआंगशान नेशनल डे हॉलिडे में नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से यहां पर पर्यटकों का अनुभव और भी ज्यादा खास हो गया। चीन की 77वीं वर्षगांठ पे विक्टोरिया हार्बर के पास 2026 ड्रोन आसमान से उड़ाया गया। ड्रोन से रॉकेट, रेडियो टेलीस्कोप और फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें बनी। ड्रोन शो में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का मॉडल आसमान में नजर आया। साथ ही हैप्पी बर्थडे और हांगकांग के 5-ईयर प्लान के संदेश दिखे। चीन के नेशनल डे पे हांगकांग में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ लोगों के लिए कई तरह की छूट भी दी गई। 1-7 अक्टूबर को चुनिंदा सामान पर 23% तक की छूट दी जा रही है। ऑफर दुकानों के साथ ऑनलाइन शॉप और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। हांगकांग के कई मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर ने स्पेशल ऑफर शुरू किए हैं। डाइनिंग, शॉपिंग और पार्किंग पर भी लोगों को दी जा रही है छूट। चीन के हांगझोउ में नेशनल डे पर इंसान और रोबोट के बीच अनोखी खेल प्रतियोगिताएं हुई। लोगों ने एआई और रोबोट के साथ मिलकर खेलों में हिस्सा लिया। ह्यूमन रोबोट गेम्स में अत्याधुनिक तकनीक को आम लोगों के लिए पेश किया गया। प्रतिभागियों ने इसे भविष्य की दुनिया का शानदार अनुभव बताया। हांगझोउ में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे तकनीकी लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। कभी लैब तक सीमित तकनीक अब आम जिंदगी में नजर आ रही है। हांगझोउ चीन का प्रमुख एआई इनोवेशन शहर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोबोट और एआई से जुड़े नए प्रयोग शहर में बढ़ रहे हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में हांगझोउ में टेक्नोलॉजी आधारित आकर्षण बढ़े हैं। साइंस और रोबोटिक्स के अनुभव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन रहे हैं। चीन के हार्बिन पोलर पार्क में नेशनल डे पे खास पेंगुइन परेड हुई। पेंगुइन को देखने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंचे। पेंगुइन स्क्वायर में टहलते नजर आए और लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा। उनकी क्यूट चाल देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी। पेंगुइन्स के लिए परेड वाली जगह पे बर्फ बिछाई गई, इससे तापमान कम रखा गया और उन्हें बाहर लाया गया। परेड में जेंटू पेंगुइन शामिल हुए जो अटलांटिक इलाके में पाए जाते हैं। ये बेहद ठंडे इलाके के बजाय अपेक्षाकृत कम ठंड वाले क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। हार्बिन पोलर पार्क के पेंगुइन परेड छुट्टी का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बने। देश भर से आए पर्यटकों ने पेंगुइन्स को करीब से देखा। शानदार आतिशबाजी से जगमग हुए चीन के तमाम शहर। राष्ट्रीय दिवस के सिलसिले में जश्न जारी। नेशनल डे की छुट्टियां मनाने के लिए सैर सपाटे को निकले चीनी लोग। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी लोगों की भीड़। नेशनल डे की छुट्टी के पहले दिन बीजिंग के तियानमेन इलाके में दिखी जबरदस्त गहमा गहमी। 3 लाख से ज्यादा लोग सैर के लिए पहुंचे। नेशनल डे के अवसर पर चीन में गुरुवार से शुरू हुई 7 दिनों की सालाना छुट्टियां। मौके का मजा ले रहे लोग। चीनी नेशनल डे पे दिख रही लोक संस्कृति की भी झलक। नृत्य, संगीत और खान पान से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे लोग। न्यूयॉर्क में हुई अनोखी पार्टी। हर तरफ दिखा सफेद रंग। सफेद रंग के कपड़ों में ही शामिल हुए मेहमान। सफेद रंग के ही टेबल और कुर्सियों का दीदार। हर साल न्यूयॉर्क में किसी खास जगह पे होती है ये व्हाइट पार्टी। हजारों लोग एक साथ लेते हैं इसमें हिस्सा और संगीत, नृत्य और खान पान का लेते हैं आनंद। अर्जेंटीना लॉन्च करेगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। पहली बार किसी दक्षिण अमेरिका देश में की जा रही है पहल। 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर के नॉन रिफंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिल सकेगी अर्जेंटीना में नागरिकता। 8 लाख डॉलर का पब्लिक बॉन्ड खरीदने पर भी मिलेगी सुविधा। ब्यूनस आयर्स में शुरू होगा पहला चाइनीज ऑटो शो। 20 से ज्यादा ब्रांड्स की गाड़ियों की नुमाइश। लैटिन अमेरिका में तेजी से पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं चीनी कार मेकर्स।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है।

0: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देखिए न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होती हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। और खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को ना सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लेकर आनी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। और इसे देखते हुए ये जो शानदार पार्टी है ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। कैसे देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में।
7: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमानों और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाले सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
8: I love showing people that beauty is still essential part of life and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life and this is my best chance.
7: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
9: I like the environment, I like the fun, I like the idea and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
7: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
10: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
7: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
11: It's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
7: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद

0: खुशी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ

0: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे

0: आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत। 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी योद्धाओं का रण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। शारदीय नवरात्र के लिए देश भर में तैयारियां तेज। अजमेर में इको फ्रेंडली बनाई जा रही माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगी माँ। यूपी के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारी तेज। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: अरे आपकी बिटिया तो बड़ी फेमस है, हमारे साथ एडजस्ट करने में इसे प्रॉब्लम हो जाएगी।
1: लोकप्रियता की दीवार, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात सोशल मीडिया, स्टेटस और शादी। एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और इस वीडियो के जरिए ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जैसा बनने से शादी के लिए रिश्ते बनने में अड़चन आती है। लड़के पक्ष के लोगों की सोच, उनका नजरिया अलग हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, कहां का है ये मामला, ये आपको बताएंगे इस बुलेटिन में और चर्चा भी करेंगे इसी को लेकर।

0: तो आज का मुद्दा सोशल मीडिया और शादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला हरियाणा का है। हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये वीडियो है जो खूब चर्चा में है, और ये वीडियो सर्जन डॉक्टर जैस्मीन कलसी ने खुद बनाया है। जैस्मीन का दावा है कि सोशल मीडिया की वजह से उनके रिश्तों में अड़चन आ रही है। इंस्टाग्राम पर जैस्मीन के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर जैस्मीन के मुताबिक इंस्टा के बारे में पता लगने पर लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, परिवार से रिश्ते वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत फेमस है। डॉक्टर जैस्मीन ने यह भी बताया कि लड़के वाले यहां तक कह देते हैं कि हमारे यहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जैस्मीन वैसे पेशे से सर्जन है और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ऐसे में अब उनके वीडियो सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेंडर एक्सपेक्टेशन क्यों होती है, क्या शादी के लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भी मायने रखती है, और जेंडर के आधार पर ही क्यों धारणा बनाई जाती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पुरुष कमाऊ महिला देखभाल वाली सोच क्यों है, क्या अब समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है, और क्या अब महिलाओं की सोच बदल रही है, इसी पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो सोशल मीडिया स्टेटस और शादी की आज चर्चा होगी। एक वीडियो जो कि इंस्टाग्राम पर सुर्खियां बटोर रहा है, और इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। इसे 11,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है, 2,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है। वीडियो में जैस्मीन ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जैसा बनने से शादी के लिए रिश्ते बनने में अड़चन आ रही है।
1: 2 लाख फॉलोअर्स के बाद ना लड़की शादी मटेरियल नहीं रहती है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे घर वाले मेरे लिए मैचेस देख रहे हैं। फैमिली को फैमिली पसंद आती है, प्रोफाइल पसंद आती है, बातचीत पसंद आती है, सब कुछ अरेंज्ड मैरिज के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, और फिर सामने से मेरी फोटो के लिए डिमांड आती है। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर एक बार डॉक्टर जैस्मीन कलसी नाम से सर्च कर लो और देख लो लड़की को। एंड सडनली सामने से रिस्पॉन्स पता क्या आता है, अरे आपकी बिटिया तो बड़ी फेमस है, हमारे साथ एडजस्ट करने में इसे प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है, मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालती हूँ? मेडिकल एजुकेशन और पेशेंट अवेयरनेस। लेकिन अपेरेंटली ना बन पाए लड़के वालों के लिए ये ओनली फैंस का पेज है, बट विद इंडियन मेडिकल वर्जन। प्रभु इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी आपने, इंसान नहीं, और मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस एक डॉक्टर हूँ जिसकी कुछ रील्स थोड़े लोग देख लेते हैं। और सबसे हिलारियस अजम्पशन पता है मुझे क्या लगती है, यार ये तो अपनी रीच से बाहर की लड़की है, रीच मेरी इंस्टाग्राम की है, औकात की नहीं। 2 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख लोग मेरी पर्सनैलिटी कमेटी में बैठे हुए हैं, उसमें तो खैर सिर्फ 36,000 ही है पर्सनैलिटीज मेरी। बट एनीवे, रियल लाइफ में मैं अब भी वही हूँ, घर पे मम्मी के सामने हाँ जी मम्मा अभी आई अभी करती हूँ बोलने वाली। फॉलोअर्स ने बस एक चीज चेंज की है, मेरी विजिबिलिटी। और ऑनेस्टली अगर किसी लड़की को सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट विजिबल लड़की देख के एक इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़की बहुत फेमस है, प्रॉब्लम ये है कि लड़के का ईगो बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सामने तुम खुद को बहुत बड़ा समझ सको और उस लड़की को दबा के रख सको। बस घूंघट या बुरके की कमी है, या एक काम करो ना, औरत को घर में बंद करके रखो, ना किसी को दिखेगी ना तुमसे आगे निकलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी सी है कि अगर 2 लाख फॉलोअर्स तुम्हें 2 लाख प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, तो कांग्रेचुलेशंस।
0: बस यही वीडियो है जिसको लेकर अब चर्चा हर जगह पर हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। शालू चावला डायरेक्टर हैं मेक माय लगन से, मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ मनीषा सिंगल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, और कुछ ही देर में हमारे साथ दीप्ति रंजन साहू भी जुड़ेंगे जो कि प्रेजिडेंट हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के। शालू जी पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, बहुत सारे रिश्ते आप बनाती भी हैं, इस वीडियो को देखकर पहला रिएक्शन क्या लगता है मामला?
2: एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज का सक्सेसफुल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पेरेंट्स का अजम्पशन करना। हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर देखकर कि गर्ल के इतने फॉलोअर हैं, जैसे उसने कहा दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आज की डेट में हर किसी को कोई भी हाउसवाइफ गर्ल नहीं चाहिए, एवरीवन इज लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट गर्ल कि उसको जो उनको समझे उनको देखे, बट जहां पर होता है वो अपनी अजम्पशन कर लेते हैं।
3: सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपका पब्लिक प्रोफाइल है, ऑब्वियसली लोग उसको देखते हैं और आपको जज भी करते हैं बहुत बार, लुकिंग एट योर प्रोफाइल दैट आप प्रोफाइल पे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप प्रोफाइल पे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को देखकर आपको जज भी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो ये डॉक्टर हैं और इनकी प्रोफाइल पे सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड और बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं. सो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ऐसे सिंपल बेसिक एक प्रोफाइल को देखकर भी अगर लोग जज कर रहे हैं और ऐसा यू नो आई जस्ट फील कि इट्स अ केस ऑफ इंटिमिडेशन. लाइक कोई नॉर्मल एक डॉक्टर से शादी करने से इसलिए झिझक है कि अरे उनकी तो प्रोफाइल पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और ये बहुत अच्छा बोलती हैं और इनका ये इनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है. तो वो आई बिलीव द अदर पर्सन इज जस्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड आउट ऑफ नथिंग. शी इज एब्सोल्युटली ग्रेट एट हर वर्क. का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है. शी टॉक्स वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है. Which I think अगर मैं लड़का होती तो I would have been someone who would say कि हाँ यार this girl is very good, she is very good with her work.
0: नहीं लेकिन चले ठीक है, वो सारी बातें ठीक है. वो खुद एक सर्जन है, हम वो एक डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करके मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं. एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर भी हैं. लेकिन क्या एक बार शालू जी मेरी आवाज आप तक आ रही, क्योंकि आपका जवाब अधूरा रह गया. बहुत इंपॉर्टेंट है.
2: yes.
0: क्योंकि आप रिश्ते जोड़ती हैं, बनाती हैं. बहुत सारे बायोडाटर्स आपके पास आते भी होंगे, बहुत सारे लड़के वाले लड़की वाले आपको अप्रोच करते होंगे. मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि जो बायोडाटा होता है, क्या उसके साथ साथ सोशल मीडिया बायोडाटा भी आजकल देखा जा रहा है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या सोच रहती है ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों.
2: सोशल मीडिया बायोडाटा उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है. लोगों को लगता है कि हम उससे उसको जज कर लेंगे.
0: क्या वाकई लोग पूछ रहे हैं आजकल? नहीं, मैं वापस से आपसे सवाल कर रही हूँ. देखिए मैं फिर से सवाल कर रही हूँ. कोई लड़का किसी लड़की को देखने जा रहा है तो क्या उसका सोशल मीडिया खंगालता है? या लड़की लड़के को देखने जा रही है, क्या उसका सोशल मीडिया खंगाला जाता है? क्या वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है पेरेंट्स के लिए भी? क्या इतना इम्पोर्टेंट है? परिवार से ज्यादा ये चीजें इम्पोर्टेंट हो गई है.
2: That's why divorces are happening, because लोग जो है commercial चीजों पे जा रहे हैं. People are judging them through their social medias only. तभी तो हमारे इंडिया में इतने डिवोर्स रेटो जो रेशो है वो इतना बढ़ गया है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग ऑन देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल. इवन जिन बच्चों का सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है, कई बार उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आने लग जाता है कि इसका तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं है, ये तो एक्टिव ही नहीं है, तो शायद ये डम होगी या इसने अपना प्रोफाइल क्यों हाइड किया हुआ है. समटाइम्स हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं.
0: यानी आपके पास अब परिवार की डिटेल्स के साथ साथ सोशल मीडिया डिटेल्स भी मांगी जाती है, मतलब कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे ये भी चीजें मेंशन होती हैं और पूछा जाता है.
2: यस लोग हमें आकर बोलते हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन सा है, आप हमें उसका लिंक दे दीजिए, वी वांट टू लुक एट देयर पिक्चर्स. वो लोग किसको फॉलो कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एन एग्जाम्पल इफ यू कैन लिसन.
0: नहीं बिल्कुल मैं चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम मैं अगला सवाल मेरा यही था कि अगर ऐसा कोई केस है तो प्लीज यहाँ पर बताइए.
2: अभी एक हमने एक दो बच्चों की बातचीत चल रही थी. दोनों बच्चों की बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और मतलब दे वर लाइक ऑन द वर्जन ऑफ से यस टू ईच अदर. और एक दिन सुबह हमारे पास किसी बॉय का कॉल आता है, किसी गर्ल का फोन आता है, एंड शी सेड कि दीदी आप ना बॉय को मना कर दो. एंड वी सेड कि क्या हुआ ऐसा कि आप चाहते हो कि बॉय को मना कर दो या कुछ? लोग उसने बोला नो मैं कोई रीजन बताना नहीं चाहती, बस आप मना कर दो. हमने बार बार पूछा, उसने रीजन नहीं बताया तो हमने मना कर दिया. आफ्टर वन मंथ दैट गर्ल केम टू आवर ऑफिस. वी वर जस्ट डिस्कसिंग, तो मैंने कहा उस केस में ऐसा क्या हुआ था. आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑन माई बिहाफ माई नॉलेज कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने रातों रात मना कर दिया. तो उस गर्ल ने मुझे रीजन क्या दिया कि बॉय ने रात को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट को शेयर किया था और उसने पोस्ट को लाइक किया था और उसमें कुछ वुमेन्स के खिलाफ या कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वुमेन्स आर लाइक डॉग्स, डॉग्स को वुमेन्स के साथ कंपेयर किया गया था. तो उस बॉय की सोच बहुत खराब है, तो मुझे इसलिए उससे शादी नहीं करनी. एंड आई डोंट लाइक कि मतलब
0: आज का मुद्दा ना शालू जी वाकई आपने और इंटरेस्टिंग बना दिया है इस स्टोरी को शेयर करते हुए. ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस होंगे जो आगे हमें बताइएगा. चलिए दीप्ति रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. दीप्ति रंजन जी एक और जिम्मेदारी अब आप पर, समाज को समझना अब इतना आसान नहीं रह गया है. हम जिसकी चर्चा करते हैं ना कि AI वर्ल्ड है, सोशल मीडिया की दुनिया है, भाई रिश्ते तो ऊपर वाला बना के भेजता है या फिर जब रिश्ते बनते हैं तो हम परिवारों को देखते हैं, अब परिवार पीछे हैं, अब सोशल मीडिया पहले देखे जाते हैं.
4: जो बदलते हुए परिदृश्य जो है समाज का, उसमें जो कालखंड में देखते हैं जहां पे बाजार और सोशल मीडिया और जो लाइफस्टाइल चॉइसेस में बदलाव आ रहा है, उसमें काफी बदलता हुआ स्वरूप तो है, लेकिन साथ साथ हमारे भारतीय समाज में जो एक स्थिति है उसमें एक चीज ये भी दिखा जा रहा है कि जो पितृसत्तात्मक सोच है, क्योंकि उससे भी जो पब्लिक स्फीयर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, और जो प्राइवेट स्फीयर है वो भी काफी प्रभावित होता है। तो उसी आधार पे यदि आप देखेंगे कि फैमिली मैरिज, ये सारे जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में बदलाव तो है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी मदद भी कर रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत परेशान भी कर रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है और एक जो एक डॉक्टर एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन के रूप में है और उसके बाद व्यवहारिक रूप में वो देखते हैं, वो सही है, लेकिन उनका जो सोशल सर्कल या जो जिसको कह सकते हैं विजिबिलिटी है वो परेशानी करता है। तो इसमें एक कहीं ना कहीं वो एक वही अगेन स्टीरियोटाइप्स और माइंडसेट में चला जाता है, क्योंकि हम सब समाज में है, कोई मंगल ग्रह से तो पैदा नहीं हुई। तो समाज में मंगल ग्रह से पैदा नहीं होने से क्या होता है कि जो सोच पले बड़े हम लोग जब भी आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं, जागरूक लोग भी हैं, उसके बावजूद भी वो सोच से कभी भी बिल्कुल नाता
0: देवती
4: तोड़ा
0: रंजन जी,
4: नहीं।
0: जल्दी से एक सवाल, फिर हमारे साथ इस वक्त मनीषा जी भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनके पास जाऊंगी। देवती रंजन जी, देखिए अभी एक एग्जाम्पल शालू जी ने यहाँ पर रखा। शालू जी हमारे साथ हैं और ये शादियां करवाती हैं, मेक माई लगन से जुड़ी हुई हैं और मैट्रिमोनियल साइट है इनकी। सोशल मीडिया पर एक शख्स की सोच क्या है किसी किसी महिला को लेकर, जब वो रिश्ता होने जा रहा था, लड़की ने देख लिया, उसको ये लगा कि भाई इसने किसी को लाइक किया है, इसका मतलब इसकी सोच ऐसी हो सकती है और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। देखिए ये चीजें अगर बाद में पता चले तो बुरा होता है, क्योंकि शादियां टूटती हैं। अब ये चीज पहले पता चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी बात अगर देखी जाए, हम लड़का परिवार, लड़का या लड़की दोनों किसी की भी बात कर सकते हैं, परिवार को ना देखकर हम सोशल मीडिया से जज कर लेते हैं कि वो कैसा होगा या फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। इसमें दोनों की बात हो रही है, लड़के की भी लड़की की भी।
4: मनीषा जी से पूछ रहे
0: नहीं,
4: हैं,
0: मैं दीप्ति रंजन जी आपसे एक रिएक्शन, फिर मनीषा जी के पास जाऊंगी।
4: मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच, व्यक्तिगत सोच अलग है और एक पारिवारिक सोच और उसकी जो उनकी परिवार के लोग उनकी सोच अलग है। तो इसलिए पीढ़ी जो है, जनरेशन गैप को भी आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को विजिबिलिटी बहुत पसंद है, सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत पसंद है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पसंद है, बट कहीं ना कहीं फैमिली के जो और लोग हैं, पेरेंटल अप्रूवल है और बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी की अप्रूवल है, उसमें आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में जो सारे मैट्रिमोनियल साइट्स है उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टडीज को देखा कि वहां पे जाति और क्षेत्र और बहुत सारे चीज को काफी बढ़ावा दी जा रही है,
0: नहीं
4: उसमें
0: नहीं ये
4: बल्कि
0: तो
4: जो
0: रहता ही है, जाहिर
4: प्रवर्तन
0: सी बात है, कास्ट वाला फैक्टर तो उसमें रहता है, लेकिन सोशल मीडिया फैक्टर इतना हावी हो गया है। मनीषा जी एक बार आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर?
5: आपकी डिबेट आज बहुत अच्छी है और इसमें मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहूंगी वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड। तो हमारी जो हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि क्यों सोशल मीडिया को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जाते हैं शादियों के लिए, क्योंकि शादी एक बहुत ही सीरियस एक रिलेशनशिप है, सीरियस अफेयर है। तो अगर कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में आता है तो वो उस इंसान के बारे में, स्पेशली अरेंज मैरिजेस का केस अगर हम लेते हैं, तो उसमें उस इंसान के, चाहे वो लड़की है लड़का, दोनों के ही पास्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है फैमिली भी, और लड़का और लड़की वो दोनों भी। अब क्योंकि आज के टाइम में हमारा 50% हर केस में नहीं लेकिन मोस्टली जितने हम हमारे इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं तो उनका वर्चुअल दुनिया में वो लोग ज्यादा जी रहे हैं। अब वो जैसे अपने अकाउंट्स, इंस्टा अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया और बहुत सारे इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पर उनका, उनकी दुनिया क्या है, किससे वो कनेक्ट कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, किस तरह के फॉलोअर्स हैं, किन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से कुछ एक जो बाहर रियल लाइफ के बाहर उनकी क्या उनकी सोच है। सो यहाँ एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड, सो सेम कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, तो एक तो हुआ कॉन्शियसली इंसान क्या कर रहा है, दूसरा सबकॉन्शियस लेवल पे वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, और वर्चुअल वर्ल्ड में वो सब चीजें, मैक्सिमम चीजें इंसान अचीव करना चाहता है, चाहे वो फॉल्स हीरोइज्म ही क्यों ना हो, या किसी भी तरह की जैसे आजकल सेल्फीज लोग शेयर कर देते हैं, अब ट्रिक फोटोग्राफी का यूज किया जाता है, एक्चुअल में वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की फोटोज अपनी खिंचवा के एआई का उपयोग करके वो उस तरह की फोटोज वो शेयर करते हैं जिससे बाकी दुनिया को लगे कि हाँ ये तो बहुत ब्रेव है, या अगर ऐसा भी ना लगे तो उनको लाइक्स मिल जाए, उनको कुछ अच्छे खूबसूरत कमेंट्स मिल जाए, तो
0: हाँ,
5: जिससे उनकी एक कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई होती है।
0: मैं इसी पर एक सेकंड मनीषा जी, मीनल मीनल आपके पास आना चाहूंगी। लाइक्स मिल जाएं, मेरे शेयर्स हो जाएं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये भी एक चीज है। दूसरी बात ये है कि किसी को उसके सोशल मीडिया से जज करना। देखो मीनल, ये बात हम सभी जानते हैं, अभी मनीषा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारी तस्वीरें हम फेक डालते हैं, फेक इन द सेंस कि हम एआई जनरेटेड वीडियोस डाल देते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, कोई किसी को पसंद भी वहां पर कर लेता है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी में बहुत फर्क है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वर्चुअली सोशल मीडिया पर हम कितनी चीजें डाल रहे हैं वो कितनी रियल हैं, या हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि मुझे ज्यादा लाइक्स मिल जाए, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए, क्या उससे किसी शख्स की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है?
3: जी, जब आप किसी का शादी जैसे रिलेशन में आप आगे वाले हैं ना, तो आप एक बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, और अगर आप किसी का प्रोफाइल पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, वो ओपनली अब बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लोग उस चीज से उसको जज करेंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है वो आपका वो फेस है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उस चीज से उस इंसान को जज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अनदर फेस ऑफ यू व्हिच यू डोंट वांट टू शो। जैसे अगर मेरा अपना जो फिटनेस का प्रोफाइल है उसमें अपने आप को सिर्फ एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट दिखाती हूँ, मैं अपने फिटनेस के वीडियोस दिखाती हूँ और फिटनेस से रिलेटेड चीजें दिखाती हूँ। अब उससे बिल्कुल अलग मेरा एक फैमिली का प्रोफाइल है, मेरा एक फैमिली के साथ रिलेशन है जिसमें द वे आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, माई किड्स, माई एल्डरलीज इन द होम, वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आज किसी को यू नो आई एम जस्ट गिविंग यू यू नो जस्ट एग्जाम्पल, अगर आज मेरे जैसे प्रोफाइल से किसी को जज करना हुआ तो किसी को लगेगा ओ माय गॉड ये फैमिली कैसे संभालेगी, बिकॉज शी इज सो आउट गोइंग, एंड यू नो फिटनेस में हम किस किस तरह के कपड़े डाल के वर्कआउट करते हैं, सो पीपल कैन जज मी ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन अगर आप मेरा घर का प्रोफाइल देखें और मुझे देखें मैं घर में किस तरह से रहती हूँ, आई एम वेरी होमली, और यू नो देर आर डेज वेन आई इट्स बीन लाइक कई बार हफ्ते भी होते हैं आई डोंट स्टेप आउट, आई गेट सो बिजी विद एवरीथिंग एट होम। सो ये बहुत गलत भी है और बहुत सही भी है, इन द सेंस गलत है कि आप पूरा पर्सपेक्टिव नहीं लेते, लेकिन अगर आप किसी का बैकग्राउंड चेक करोगे तो आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, उनका फेसबुक प्रोफाइल, उनका इंस्टा प्रोफाइल, ये तो डेफिनेटली चेक करोगे।
0: शालू जी, तो आपका काम मुश्किल हुआ है कि आसान हुआ है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। देखिए मनीषा जी ने बड़े अच्छे से इसको समझाया है और मीनल ने भी इसको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं हम रियल वर्ल्ड में वैसे नहीं होते हैं, ये बहुत बार ऐसा होता है। एक टाइम था कि लोग आपके पास आते थे कि भाई इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करवा दीजिए, ये कहां से है। दीप्ति रंजन जी, आपके पास आऊंगी, इसी का जवाब आपको भी देना है, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया से कैसे आप जज कर लेंगे कि हम इनके साथ रिश्ता बना लेंगे, हम सारी उम्र इनके साथ रह लेंगे, क्या ये मेरे घर को देख पाएगी नहीं देख पाएगी, क्या ये लड़का इसकी सोच ऐसी है कि महिलाओं के बारे में हो सकता है वो ना सोचता हो, उसने ऐसे ही सोशल मीडिया पर लिख दिया हो।
2: यस, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी सोशल मीडिया से बेनिफिट भी बहुत हुए हैं और नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत इजीली कनेक्शन मिल जाता है। जब किसी को किसी की इंक्वायरी करनी होती है, जब वो सोशल मीडिया पे देखता है कि हमारे साथ कॉमन फ्रेंड सर्कल में है, कुछ भी है, तो वो उससे पूछ कर उसके बारे में पता लगा लेते हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत ईजी हो जाता है डिसीजन लेना। बट जहां पर ये जजमेंट शुरू होती है दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज आज के अगर मैं बात करूं, बिकॉज शादियां जो हैं बहुत ज्यादा डिवोर्सेज में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज जो रियल जो शादी जिसको देख के करनी चाहिए हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसका सोशल प्रोफाइल देख रहे हैं, उसका फैमिली का कहाँ रहता है ये देख रहे हैं, वो कितना एक्टिव है ये देख रहे हैं, बट रियल उसकी वैल्यूज क्या है उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें मतलब आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरी पीपल कि डोंट जज फ्रॉम देयर सोशल प्रोफाइल, उस पर्सन से मिलो, उसको जानो, उसकी सोच को समझो, तब कोई डिसीजन लेना चाहिए।
0: मनीषा जी, अच्छा दीप्ति रंजन जी, पहले इस पर आप ही का एक जवाब कि एक जमाना था कि परिवार का बैकग्राउंड पता लगाया जाता था और फिर उसके बाद रिश्ते बनते थे, और हम बार बार इस बात को कहते हैं हमारा समाज ऐसे बना, भारतीय समाज कम से कम ऐसे पाश्चात्य समाज की तरफ नहीं बढ़ा है। आज की तारीख में भी परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शादियां परिवारों की होती है ऐसा कहा जाता है, और अगर लड़के लड़की में कहीं डिफरेंस आता है तो उसको कहीं ना कहीं क्लियर करने में माता पिता परिवार के लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इसीलिए परिवारों की शादियां कहा जाता है भारतीय समाज में होती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से होने लग गया तो कितना मुश्किल होगा ये।
4: देखिए दरिचे पैराडाइम शिफ्ट हम लोग कहते हैं कि पहले जो आप कह रहे थे मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज होते थे, अब मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स है, दो व्यक्तियों के बीच में शादी हो रही है, और उसमें क्या है ना परिवार जो है उसमें सम्मिलित हो जाता है कि चलो ठीक है इन दोनों का पसंद है तो हम कर लें। बट अब जो ये चीज हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब की जो इंस्टाग्राम वो है, वो भी हमको लग रहा है कि द पर्सनल इश्यूज आर बिकमिंग मोर यू नो सोशल करना चाह रही है, जिससे कि वो हो सकता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि इम्प्रेशन के आधार पे कोई भी समाज की पहलुओं को, सामाजिक सोशल फेनोमेना या कोई भी इंडिविजुअल फेनोमेना को देखना चाहिए, नहीं चाहिए बल्कि वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के बारे में हमको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है। वो जिस तरह की सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी हमको पता नहीं है। जस्ट ये हम केवल इंप्रेशन ले रहे हैं कि व्हाट दैट डॉक्टर साहिबा इज स्पीकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, सो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो बता रही है उसके बेसिस पे हमको भी जज नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इन सभी चीजों में जो प्रोस एंड कॉन्स है उसके बिना समझे हम एक जनरल ओपिनियन देना ठीक नहीं है। ये बात सही है, मीडिया इज अ मैसेज, मीडिया बहुत मैसेज देता है, मीडिया बहुत मदद भी करता है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात तो है, लेकिन जो असेसमेंट है वो जो आकलन है वो आकलन एक रिलेशनशिप का जो आधार है वो रेसिप्रोसिटी है, म्यूचुअलिटी है, एक एक आपसी है, एक कमिटेड कमिटमेंट की बात है, वो तो एक फिजिकल रिलेशनशिप को फिजिकली आपको समझ में मीडिया के माध्यम से जज नहीं किया जा सकता। वो तो एक, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे सब आते हैं हमको बहुत पसंद करते हैं, फिर उसके बाद वो जब देखते हैं वो आगे है कि पीछे है वो हम थोड़ी जानते हैं कि भाई वो पहले बताए।
0: हमारे इस पैनल में ना दीप्ति जी आप मौजूद हैं, समाजशास्त्री मौजूद हैं, मैट्रिमोनियल साइड से हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो ये बैलेंस्ड इसलिए रखा गया कि हम समझ सके कि वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी रियल वर्ल्ड को कितना इफेक्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड कैसे अलग है और कैसे ये रिश्तों पर असर डालता है। मनीषा जी यहीं से आपसे सवाल, आप एक मैरिज काउंसलर भी हैं और अक्सर इधर शालू जी पे जिम्मेदारी होती है शादियां करवाने की और आप पे जिम्मेदारी है शादियां बिल्कुल बनी रहे, आपके पास तमाम वो लोग आते हैं जहां कहीं भी थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, ये इस चीज ने क्या रिश्तों को और कॉम्प्लिकेट बना दिया, क्या आप लोगों का जो जॉब है टास्क है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है या ये इजी है कि वर्चुअली आप किसी को जज कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप अपनी धारणा बना ले रहे हैं। ये बाद में भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है कि लड़का बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, या फिर लड़की बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, वाइस वर्सा हो सकता है और किसी एक को पसंद ना आए, ये कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये।
5: किसी भी स्टेज पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शादी के पहले ही ये सारे डाउट्स और यू नो क्वेश्चन मार्क्स आए, ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और सोशल मीडिया जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसने आसान कितना बनाया है चीजों को, मैं इस चीज पे नहीं कमेंट करूंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी है आसान हमारी हुई है, बहुत सारी चीजें आसान हुई हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ गया है और रिश्ते थोड़ा मुश्किल में आ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। और जो पॉइंट आपने रखा इसमें, देखिए आजकल फेक अकाउंट्स भी बनते हैं, अब अगर शादियां अकाउंट्स चेक करके ही की जा रही हैं तो आपका आपको नहीं पता कि इस इंसान के कितने अकाउंट्स और हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका एक ही अकाउंट हो। और कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जो किसी भी इंसान के अकाउंट्स बना देते हैं और उन आईडीज को वो यूज करते हैं गलत इंटेंशंस के साथ में, तो अब कौन सी आईडी को चेक कर रहे हैं ये भी एक चीज है। दूसरा जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, अब जो लड़की है उसकी फैमिली और लड़का है उसकी फैमिली। आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। सो जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे शुरू से ऐसा एक ट्रेंड चला आ रहा है, पैटर्न चला आ रहा है, जिसमें लड़का बाहर जाता है, काम करता है और लड़कियां घर में रहती हैं, जो धीरे धीरे चेंज हुआ है और बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने पॉइंट आपको बोला था, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, सो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली ये एक है कि हाँ लड़की है तो वो क्या हमारे घर में निभा पाएगी या नहीं, या अगर लड़के की फैमिली है तो वो उनकी उनकी थोड़ा सा फीलिंग्स ऐसी होती हैं। सेम लड़की के फैमिली को ये लगता
0: बिल्कुल
5: है कि लड़के क्या ये सिक्योरिटी रहेगी कि लड़का कहीं और लड़के के रिलेशंस ना हो या वो किन्हीं गलत आदतों में ना हो। ऑल दो आजकल दोनों ही जेंडर का कोई इसमें रहा ही नहीं है, ये दोनों ही जेंडर्स को जाती हैं ये चीजें, बट स्टिल एक वो जो सोच है टिपिकल वो
0: बिल्कुल
5: है कहीं ना कहीं।
0: और एक
5: सो
0: धारणा, हाँ
5: उसकी
0: मनीषा जी लौटती हूँ आपके पास, ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन साथ ही साथ एक धारणा ये भी रहती है ना कि अगर सोशल मीडिया पर लड़के के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो उसके प्रोफेशन की डिमांड है, वो इतना पॉपुलर है देखिए, और यही अगर लड़की के ज्यादा फॉलोअर्स है तो कहा जाता है कि वो ये एडजस्ट कर लेगी घर पे। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेक आप लिए हमारे साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: लोकप्रियता की दीवार, इसी को लेकर आज हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, दरअसल डॉक्टर जैस्मीन कलसी हैं जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स, और उनका ये कहना है कि उनके इतने फॉलोअर्स होने के बाद उनके परिवार को उनके लिए लड़का ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि लोग उन्हें उनके इंस्टा प्रोफाइल से जज करते हैं। अब मीनल आपके पास आना चाहूंगी। देखिए दो चीजें ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने चर्चा की थी कि अगर लड़के के इतने सारे फॉलोअर्स हों तो ये कहा जाता है कि भाई देखिए उसके प्रोफेशन की डिमांड है, वो इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है। अब यही अगर लड़की के इतने सारे फॉलोअर्स हो तो ये कहा जाता है अब ये घर का काम कर लेगी। वही सोच जो मनीषा जी कह रही थी कि सोच अभी भी बहुत सारी जगह पर नहीं बदली है।
6: तो नहीं, दिस इज वेरी राइट कि हम गर्ल्स को बहुत अलग ढंग से जज करते हैं और बॉयज की तो जज करते ही नहीं है। दे यू नो वी जस्ट से कि हाँ वो तो चलता है, वैसा तो हमारा समाज है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे यू नो लोगों को ये भी लग सकता है कि हमें इतनी आउटगोइंग और ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो सोशल मीडिया पे इतनी बात करती हो। लोगों को यू नो इस बात की झिझक होती है कि हमारी फैमिली मैटर्स ओपन में आ जाएंगे। और आप देखिए जैसे अभी इन्होंने अपना वीडियो बनाया है, तो शी इज टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, कि उनकी पर्सनल लाइफ में किस तरह से सब हो रहा है। सो यू नो लॉट ऑफ पीपल गेट लिटिल स्केयर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो फैमिली के मैटर्स हैं वो फैमिली में ही रहने चाहिए। और आजकल ऐसा हो रहा है बिकॉज सी इंडिपेंडेंट गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट है, बॉयज भी इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो पीपल डोंट वॉन्ट कि कल ऐसे कोई भी यू नो रिलेशन में प्रॉब्लम आए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम खुल के सोशल मीडिया में डिस्कस हो और लोगों के सामने बहुत सारा यू नो वॉशिंग, जैसे बोलते हैं वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। पीपल डोंट वॉन्ट कि ये चीजें उनकी फैमिली में ही रहे। और ऐसा हुआ भी, आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने बनाया है, जैस्मिन ने वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बात बोली है, तो कल ऐसा भी हो सकता है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड और भी बातें बोले जो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एज सच। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस मीडिया वाली लाइन में आ जाते हैं ना, तो कोई भी ऐसी चाहे आपकी आपसे फैमिली से रिलेटेड हो या आपके यू नो बिजनेस से रिलेटेड हो, आप उस चीज को यू नो बहुत लोग ये वाली जो एक थिन लाइन होती है ना आपके पर्सनल और प्राइवेट और पब्लिक चीज की, वो नहीं समझते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। सो एग्जैक्टली ये यहाँ हुआ है। तो फिर बिकॉज होता क्या है कि देखिए जो आपका कुछ बहुत ही पर्सनल है उस पे लोग बहुत ज्यादा शेयर भी करेंगे, बहुत ज्यादा उस पे कमेंट्स भी आएंगे, बिकॉज इससे लोग बहुत इजिली रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ कंटेंट बनाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपका प्रोफाइल वायरल जा
0: अच्छा अगर इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मीनल क्या एक प्रेशर भी रहता है क्या? हम जब कहते हैं ना कि कोई कोई शख्स बहुत फेमस हो गया तो उस पर प्रेशर है उस पोजीशन को सस्टेन करने का, क्या इतने फॉलोअर्स के बाद? हालांकि देखिए अगर लड़के वाले ये सोच रहे हैं तो वो सोच भी तो गलत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में ऐसी सोच होती है कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की जो निजी चीजें हैं वो सामने आए। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, कई बार वो अपने बच्चों के साथ फोटो डालेंगे लेकिन बच्चों के चेहरे पर वो हार्ट बना देते हैं, कुछ इमोजी लगा देते हैं जिसमें वो नहीं चाहते हैं। हमने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को हम नहीं शेयर करना चाहते, हम सामने आएंगे लेकिन अकेले इंडिविजुअली। तो ये सोच भी गलत नहीं अगर कोई कोई लड़के वाले इस तरह की सोच रखते हैं तो? दोनों का जवाब दीजिए, क्या प्रेशर होता है और इस सोच के बारे में?
6: सो आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और आप देखिए सोशल मीडिया पे शेयरिंग एंड ओवर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा बाहर के देशों से आया है। तो अगर मैं बाहर के देशों के कॉन्टेंट की बात करूँ ना, तो पीपल वुड इवन शो देयर बेबी कमिंग आउट प्रोसेस, मतलब की वो जितना हो सके वो इतना क्लोज दिखाते हैं, बिकॉज उस टाइप का कंटेंट वहां पर यू नो एग्रीएबल है। और बहुत सारे लोग इस तरह से आपको एक आउटसाइड पर्सनालिटी नहीं मान के ऐसा फील करते हैं जैसे वीलॉग्स। तो मैंने देखा है किसी ने अपना यू नो हाउ बेबी इज बॉर्न उसका प्रॉपर वीलॉग बना के वो डाला है। कैन यू इमेजिन, मतलब इट्स समथिंग सो पर्सनल टू अस, हम एज अ पर्सन शायद नहीं करेंगे, मेरी पर्सनल चॉइस है, बट बहुत सारे लोग ये भी करते हैं बिकॉज इससे आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करती है, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत रियल कॉन्टेंट है। तो इट्स सो पर्सनल।
0: एक बार मनीषा जी इस पर आपकी भी राय में जानना चाहूंगी। देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात है कि जब आप एक फैमिली में आ गए, फैमिली हो सकता है ना चाहती हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और दूसरी बात यह है कि जब आपके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं तो क्या ये प्रेशर होता है कि मुझे हर दिन कोई ना कोई कंटेंट पोस्ट करना ही करना है?
4: बिल्कुल, एक प्रेशर के साथ में एक फन एलिमेंट आ जाता है और एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हाँ लेट्स सी अब इस वाली पोस्ट में मेरे कितने लाइक्स आएंगे, और एक कंपैरिजन अपने आप से ही एक अपने साथ ही एक यू नो एक कंपैरिजन कह लीजिए उसको या कंपटीशन कह लीजिए, वो शुरू हो जाता है। और वो कंपटीशन कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी हो रहा होता है, जो भी उनके जिन लोगों को भी वो फॉलो करते हैं या आइडलाइज करते हैं। और इसमें जो पर्सनल अपना अपनी लाइफ शेयर करना या नहीं करना, ये उस इंसान की बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो आज हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो हमने रील देखी है उसमें भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ काफी हद तक शेयर की हुई है। तो ये बिल्कुल अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ लोग जो कर जाते हैं उसमें भी, क्योंकि उनके लाइक्स उनको मिलते हैं, तो हमारा फोकस क्या है, अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा एम क्या है, ये मैटर करता है। व्हाट इज अ पर्सन्स चॉइस, सो वो चॉइस अगर मीट कर रही है उनकी एक्सपेक्टेशन से तो वो उस पाथ पे आगे चलते जाते हैं। सो देन देयर इज नो लिमिट, जैसे कि मीनल जी ने भी बोला कि आप एक यू नो आगे जाते जाते जाते जब आपको पॉपुलैरिटी मिलने लगती है तो कहीं ना कहीं वो एक डिमार्केशन होता है ना, वो आप समझ नहीं पाते हैं। सो इंसान को मैटर ही नहीं करता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, यू नो उस अगर लोग जानना चाह रहे हैं उनके बारे में, तो एक वो फन फैक्टर कहीं ना कहीं वो आने लगता है
0: और उस फन फैक्टर को लोग एंजॉय भी करते हैं। दीप्ति रंजन जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है रिश्तों में दरार की, जिस तरीके से हम आजकल सोसाइटीज में देख रहे हैं?
7: देखिए दरार के लिए हम सभी जो भी बात कर रहे हैं ना, एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, बट आप देखिए कि जब भी सोसाइटी को हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखिए जनरली आप देखेंगे कुछ ऐसे परिवार में लोग होते हैं वो कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, और एक उसी परिवार के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हारे बारे लाइफ तुम्हारे रूल्स नहीं हो सकता है। तो उसमें फिर वो ब्लेंडिंग करते हैं, मिलाते हैं दोनों को, उसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग रोड पे एक मिडिल रेंज में चलते हैं। ऐसे भी सिचुएशन आता है जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट भी आता है। तो इसी तरह से आप देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों में एकदम यूनिफॉर्मिटी है, सब लोग आपस में बात करके वो करते हैं, वो एक अलग बात है। इसी तरह से आप देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन, आपकी समाजीकरण, आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रशिक्षण, आपकी एक्सपोजर, और उससे भी चीजें बहुत सारे पता चलता है। तो मेरा ये कहना है कि जो बहुत सारे रियालिटीज को देखना है, परसिप्ड रियालिटी को देखना और एक ऑब्जेक्टिव रियालिटी को देखना जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें बंतर तो होता है, इन केस टू केस बहुत अंतर आता है। बहुत सारे फैमिली में आपने देखा होगा, व्यक्ति दोनों शादी करते हैं लेकिन परिवार उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत सारे परिवार में ये होता है कि परिवार की शादी को पसंद करते हैं लेकिन व्यक्ति अपनी पसंद से वो पता है। तो ये सब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट अलग अलग तरीके से पाता है, केस टू केस डिफरेंट होता है। आई थिंक साइकोलॉजिस्ट जो भी है वो लोग इसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम ये कह रहे
0: ठीक
7: हैं
0: है,
7: कि समाजशास्त्री के रूप में ये जो है बिना कॉन्टेक्स्ट देखते हुए सामान्यकरण करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि परसेप्टिव रियलिटी का जो ओपिनियन है वो खासतौर पे मेल के लिए इतना इफेक्ट नहीं करता है, वुमेन के लिए अभी भी कर रहा है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप से हम दूर नहीं हुए। जेंडर स्टीरियोटाइप अभी भी है, वो टूटा नहीं, अभी अभी भी वही चीज है जो उसके कि पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, जागरूक लोग भी उसी तरह की सोच रखते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मंगल ग्रह से हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। तो हम लोगों की जो सोच है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, प्रैक्टिसेस में कहीं आपको मिलेगा दर्जे डिसजंक्शन, मतलब एक दोनों एक यूनिफॉर्म नहीं है, साथ में साथ नहीं जा रहा है।
0: बिल्कुल शालू जी, हाँ मैं लौटती हूँ दीप्ति जी। शालू जी आपके पास आना चाहूंगी, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास और भी आते हैं? क्योंकि जब लोग रिश्ता ढूंढने के लिए आते हैं, क्या पूछा जाता है कि सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं या सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? इस तरह की कोई चर्चा होती है या सीधा फैमिली बैकग्राउंड, जो कि अभी तक कहा जाता रहा या पूछा जाता था कि भाई परिवार कैसा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या सिर्फ यही तक इन्फॉर्मेशन लोग मांगते हैं?
4: एक्चुअली ना दैट थिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। अभी हमारे साथ एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ कि हमने एक फैमिली को एक बायोटा भेजा एंड इन दैट प्रोफाइल इट वाज रिटन कंटेंट राइटर। तो पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है कंटेंट राइटर। उनको गर्ल दिखने में बहुत स्मार्ट लगी, इन्होंने बोला कि मेरे बच्चों की मीटिंग करा दो। हमने बच्चों की मीटिंग करा दी, दोनों बच्चों को बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चे 4-5 बार मिल लिए, क्योंकि पेरेंट्स आके पहले बोलते हैं कि जहां बच्चे को पसंद आएगा हम वहां शादी कर देंगे। तो जब 4-5 मीटिंग हो गई, उसके बाद जब फैमिलीज मिली और जब बॉय के फादर ने इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा या उसी उन्हें मतलब उनके मतलब उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया कि यार तुम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा जो तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसका तो करेक्टर ही खराब होगा एंड वो तो ऐसी होगी वैसी होगी। तो उसकी उनके माइंड में वो चीज बैठ गई और वो उसको अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं।
0: नहीं, ये सिर्फ लड़की के साथ होता है या लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है कभी?
4: के साथ होता है, इसको हम
0: बॉयज के साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बताइए जरा।
4: तो इसमें उनकी फैमिली में आज भी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज बॉय कह रहा है कि मुझे शादी इसी से करनी है एंड उसके फादर कह रहे हैं कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। तो ऐसा बहुत बार बॉयज के साथ भी होता है, बिकॉज जब बॉयज सोशली बहुत एक्टिव होते हैं तो गर्ल्स वाले भी आकर बोलते हैं कि इस बॉय की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, इस बॉय का तो करेक्टर खराब होगा, तो मैं अपनी डॉटर को ऐसी फैमिली में नहीं भेज सकता जहां पर ऐसा कुछ हो। मतलब आई वुड नॉट नेम सम पीपल, हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हम उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो लोग उनके जो है उसके बारे में भी सोचते हैं, बॉय के करेक्टर के बारे
0: अच्छा,
4: में
0: वो
4: भी।
0: तो फिर नीचे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे और कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी धारणा बन जाती है।
4: तो इसको हम जेंडर बेस्ड नहीं बोल सकते और किसी एक एग्जाम्पल के ऊपर हम नहीं कह सकते कि बॉय की।
0: तो शालू जी अब तो बहुत मुश्किल हो गए फिर आपके लिए काम। तो कैसे कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे सबको सेटिस्फाई किया जाता है, लड़के वालों को भी लड़की वालों को भी?
4: इसलिए हम लोगों को समझाते हैं, आई ऑलवेज गाइड देम कि आप लोग फैमिली वैल्यूज को देखें, डोंट जज पीपल फ्रॉम देयर करेक्टर, डोंट जज पीपल फ्रॉम देयर इंस्टा प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल। अभी इसकी तरह ही हमने एक आगाज स्टार्ट किया है जिसमें हम बच्चों को फेस टू फेस मिलवाते हैं, क्योंकि कई बार आप किसी की एक ड्रेस की फोटो देखकर सोशल मीडिया पर फैमिली जजमेंट कर लेती है कि ये लड़की तो ऐसे ही कपड़े पहनेगी या ये हमारी फैमिली में ऐसे ही आएगी, तो इसके बेस पे आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं किसी को। तो आपको उसका रियल वैल्यू, रियल करेक्टर देखना चाहिए, ना कि उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल से जजमेंट करनी चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात बताई मनीषा जी ने भी और एक ही, कि आपका बहुत सारी चीजें आप कॉन्शियसली करते हैं और बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली होती रहती हैं, तो हमें उस पर्सन से मिलके जजमेंट करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया प्रोफाइल से।
0: मीनल ये तो बात बाद में भी आ सकती है, और मैं अगर गलत नहीं, अभी मनीषा जी शायद अगला कोई एग्जांपल दे ही देंगी हमें कि शादी के बाद भी लड़के ने देखा, लड़की ने कोई कंटेंट पोस्ट किया, नीचे कमेंट आ गया, तो भाई वहीं से दोनों के झगड़े शुरू हो गए। लड़की ने या लड़के के किसी पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ लिया तो वहीं से झगड़े शुरू हो गए, ये तो कभी भी आ सकती है।
6: आ सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज आप लोगों में वैसा रिलेशन बन जाता है, आप में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम समबडी हु इज वेरी सोशली आउटगोइंग और मैं बहुत पोस्ट करती हूँ, एंड माय हस्बैंड इज समवन हु डजंट वांट टू बी देयर, मतलब शायद उनका इंस्टा प्रोफाइल भी नहीं है. सो आई डोंट टैग हिम एंड आई डोंट डू लॉट ऑफ पोस्टिंग इन विच ही इज प्रेजेंट. बट हाँ, कुछ फिटनेस के यू नो वैसे वाले जो राउंड होते हैं जिसमें कपल के कुछ चैलेंजेस वगैरह होते हैं, मैं फन वे में मयंक को ऐड कर लेती हूँ एंड ही इज लाइक ओके गुड विद इट. सो आई थिंक वो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है. तो आई बिलीव ये इट्स ऑल अबाउट हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव विद योर पार्टनर अबाउट दिस, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ लाइक यू सेड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नॉट लाइकिंग इट पर से, और बहुत लोगों ने अपने ये बंद भी किया है इंस्टा की माई हस्बैंड वॉजंट वेरी की यू नो कीन ऑन मी गोइंग सोशली आउट गोइंग. तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, बट मुझे तो ऐसा लगे कि ये तो मेरी एक पर्सनालिटी का पार्ट है, दिस इज समथिंग व्हाट आई एम, जो मैं करती हूँ आई वांट टू शो इट टू द पीपल, बिकॉज फॉर मी इट इज अ वे इन विच आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी अबाउट देयर फिटनेस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स इन विच यू नो दे कैन लिव अ बेटर एवरीडे लाइफ. तो अगर मुझे कोई बोले ये बंद करने को तो आई थिंक मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी. सो आई
0: मनीषा जी, ठीक है मनीषा जी, सोशल मीडिया रिश्तों को जोड़ने की वजह भी बना है और रिश्तों के टूटने की वजह भी बना है.
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जैसे अभी मीनल जी ने बोला कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया ही रीजन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड कपल का सेपरेशन, अनऑफिशियल सेपरेशन, ऑफिशियल सेपरेशन, उसकी भी बहुत सारी वजह होती है. केवल सोशल मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. अगर कहीं ट्रस्ट कहीं हिला हुआ है या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अब अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ही एक दूसरे के बारे में आप पता कर सकते हो, तो ही एक दूसरे के बारे में जान सकते हो. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना मुंह से बोले भी दो लोग अगर रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड कपल है या वो लिव इन रिलेशनशिप में है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, दो दोस्त भी क्यों ना हो, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो वो समझ पाते हैं. लेकिन बहुत सारी चीजें मुंह से बोल के भी समझ नहीं आती है. So, वो केसेस वो होते हैं जिनमें कहीं कुछ और भी होता है, कुछ और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन ब्रेक ऑलरेडी हो चुका होता है. तो वो कही जा रही है लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच रही है, या वो उस सेंस में समझ नहीं आ पा रही है. और सोशल मीडिया की जहां तक बात है, डेफिनेटली ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं, लाइक्स हैं, सेल्फीज हैं, पोस्ट करना इधर उधर बहुत सारे अकाउंट्स पे, तो अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है, अगर नहीं है तो ये सारी चीजें शुड बी डिस्कस्ड वेरी क्लियरली बिफोर हैंड. अगर बाद में भी ये
0: पहले से इसको आप कह रही है कि डिस्कस करना चाहिए. छोटा सा एक जवाब चाहूंगी शालू जी आपसे, क्योंकि वक्त की कमी है. शालू जी एक और सवाल कि अभी तक तो कहा जाता था कि शादी के लिए IAS IPS ऑफिसर का रिश्ता ढूंढो, डॉक्टर का रिश्ता, इंजीनियर का, लेकिन आजकल एक नई कैटेगरी सोशल मीडिया भी ऐड हो गई और आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, कितनी डिमांड इनकी रहती है?
8: ट्रू नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप अपना रिश्ता कहाँ कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बिकॉज जब हम रिश्ता ढूंढते हैं या जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सोशल प्रोफाइल कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, देयर आर सो मेनी पीपल जिनको चाहिए होता है कि उनकी वाइफ जो आए या उनके घर में जो बॉय आए वो सोशल, उनका प्रोफाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए. बहुत बार रिश्ते इसकी वजह से भी जुड़ रहे हैं. तो आप कहाँ रिश्ता कर रहे हैं, वेदर दैट पर्सन इज कंपैटिबल टू यू या नहीं. अगर आप किसी ऐसी जगह रिश्ता कर रहे हैं जहां पर जो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली दैट रिलेशनशिप विल
0: नॉट वर्क. आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि सोशल मीडिया वाला सोशल मीडिया को ही पसंद करें या उसे ही खोजें, क्योंकि भाई बाकियों के साथ एडजस्ट होना तो मुश्किल हो जाएगा फिर.
8: यस, जिनका ऐसा प्रोफेशन है उनको ऐसी ही गर्ल्स चाहिए होती है. हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स के रिश्ते हैं जो हमें बोलते हैं कि जो हमें गर्ल चाहिए उसका सोशल प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज कल को वो हमारे बिजनेस को भी बूस्ट करेगा. तो दैट डिपेंड्स ऑन द कैरियर की उनकी डिमांड आती है कि हमारे को ऐसा प्रोफाइल चाहिए. बहुत बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के रिश्ते खराब भी होते हैं. छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपसे बात करते करते याद आया मुझे, हमने किसी फैमिली का रोका कराया. उस गर्ल का ड्रीम था कि मुझे कि मैंने मेरी फ्रेंड को देखा था कि उसको उसके हस्बैंड ने प्रपोज किया था आईफल टावर के आगे, तो मुझे पेरिस जाकर वहां पे प्रपोज करना है. तो उनका एक छोटा सा रोके का फंक्शन चल रहा था, बॉय ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया गर्ल के लिए. जब बॉय ने उसको प्रपोज करा तो गर्ल खुश होने के बजाय बॉय के पास जाके फेस बना के बोल रही है, आई टोल्ड यू कि मुझे सोशल मीडिया पे अपना प्रपोजल डालना था पेरिस में, तो व्हाई यू डिड सो।
0: ये भी एक नई बहस आपने शालू जी एक टॉपिक हमको दे दिया है, क्योंकि रोका सेरेमनी कैसी हो, आईफिल टावर के सामने प्रपोजल हो, और अगर नहीं होगा तो फिर वहीं से रिश्तों में खटास शुरू हो जाती। तो ये यानी कि आजकल आज की तारीख में वक्त वक्त अभी इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में आपका बायोडाटा उतना मैटर नहीं करता है, सोशल मीडिया वाला बायोडाटा भी उतना ही इक्वली मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: आरती की जाती है। आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़कर जाते हैं जो कि आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
8: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, लोक गीत हों या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है, और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

ये बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हो। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान हैं। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल

0: ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस सदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं, वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले एप्पल मिलेगा। और ये बात शायद हाथी को पता है, तभी पहले सूंड एप्पल पर जाता है और फिर बच्चे के चेहरे की तरफ मुड़ जाता है। बच्चे भी मानो अपना वादा निभाती है, एक एक कर सारे एप्पल हाथी को खिला देती है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: आरती की जाती है। आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
9: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया अपना कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी योद्धाओं का रणकौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल, अभेद्य, सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य उत्सव। लंबे वीकेंड का लुत्फ उठाने बड़ी तादाद में नैनीताल पहुंच रहे सैलानी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बनाया एक्शन प्लान। रविवार तक शाम के समय हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले वाहनों पर लगी रोक। यूपी के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस मुकाबले की जिसकी चर्चा हर ओर है। देखिए, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। जापान के निशन के करोगी स्पोर्ट्स पार्क में आज हर ओर इंडिया इंडिया का शोर सुनाई दे रहा है। टीम इंडिया ने पूरी धमक के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरे पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने जरूर 96 रन का संघर्ष किया, लेकिन ये पारी भी पाकिस्तान को जीत के दहलीज तक नहीं पहुंचा सकी और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पस्त कर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। देखिए मैच के एक्शन का पूरा हाल इस रिपोर्ट में।
10: जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में पाकिस्तान पस्त था और टीम इंडिया का खेमा गोल्ड मेडल की चमक से दमक रहा था। इस सुनहरी जीत का एहसास यूं तो हर क्रिकेट प्रेमी को पहले से था। फैंस की दुआएं रंग लाईं, खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतरे और एक बार फिर वही हुआ जिसका पूरे हिंदुस्तान को यकीन था। मेंस क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। पाकिस्तान को हराकर मिली इस सुनहरी कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है। अब शुरू से वो किस्सा बयां करते हैं कि कैसे इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात देकर गोल्ड मेडल जीता। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का ऐसा तूफान आया कि पाकिस्तान की चुनौती तिनके की तरह ढह गई और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का उसका अरमान यंगिस्तान की सुनामी में बह गया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने मैदान पर उतरते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वैभव सूर्यवंशी हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन मैदान छोड़ने से पहले 2 छक्के लगाकर वैभव पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। वैभव के जाने के बाद भी पाकिस्तान की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि अब अभिषेक शर्मा की आंधी चल रही थी। उन्हें दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर का साथ मिला और पावर प्ले में भारत ने 80 का आंकड़ा पार कर लिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी 61 रन पर आकर थमी। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज कुछ देर तक श्रेयस ईशान को शांत रखने में कामयाब रहे, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि इसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने तूफानी अंदाज में रन बटोरे। शिवम दुबे 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इस छोटी लेकिन असरदार पारी में शिवम ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वही तिलक वर्मा आखिर तक डटे रहे और उन्होंने महज 22 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा और शिवम दुबे की इस तूफानी साझेदारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जीत के लिए 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को लप्पेबाजी के दम पर शुरुआत तो ठीक ठाक मिली, लेकिन बीच बीच में विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता रहा। पावर प्ले में पाकिस्तान ने कप्तान साहिबजादा फरहान और उस्मान खान के विकेट की कीमत पर 39 रन बनाए। मैच पर धीरे धीरे टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो रही थी कि तभी हसन नवाज के संघर्ष ने पाकिस्तान की मैच में वापसी कराई। हसन नवाज ने तेजी से रन बटोरे, हालांकि इस दौरान उन्हें दो जीवनदान भी मिले। पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 51 गेंदों में 96 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा था कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी पाकिस्तान 20 ओवर के कोटे में 192 रन ही बना सका और टीम इंडिया ने 19 रन से यह मुकाबला जीतकर भारत को एशियन गेम्स में 19वां गोल्ड दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो देखिए, क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्लेयर्स को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसे में प्लेयर्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इस पे, आइए आपको सुनाते हैं।
11: मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और देश को प्राउड करना, गोल्ड जीतना, तो मुझे लगता है इसको बोल नहीं सकते, ये अंदर से दिल में आती है। तो वो सब जितने भी इंडियंस हैं, इंडिया के लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, फैंस हैं, सबको पता है, और सब लोग होपफुली हमारे पर प्राउड भी फील करेंगे।
12: बहुत ही अच्छा फीलिंग है, क्योंकि एशियन गेम्स हम लोग जो जीते हैं, हमेशा ये डिफरेंट फीलिंग है जो रेगुलरली हम लोग खेलते हैं, जो टूर्नामेंट्स हम लोग खेलते हैं उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है। और ये वाला फीलिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया था 2023 चाइना में, एंड द सेम अगेन अभी जीतने में, वो भी पाकिस्तान के साथ, आप जैसे बोले, बहुत प्राउड मोमेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एशियन गेम्स ना आपको अलग ही फीलिंग होता है, क्योंकि अपना ट्राई कलर जब फ्लाई हाई करते हैं और गोल्ड मेडल में आपको पोडियम में ऊपर बुला के गोल्ड मेडल देते हैं, तो जो यूजुअली हम लोगों को मिलता है जीतने में, ये सबसे अलग फीलिंग है।
9: तो पाकिस्तान के खिलाफ इस जबरदस्त जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट फैंस सड़कों पर झूमते हुए नजर आए, शहर शहर इंडिया इंडिया का शोर सुनाई दिया।
13: सबसे बढ़िया मैच, अच्छा गेम खेला सबने, बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला।
14: गोल्ड मेडल जीत के आया इंडिया, वो हमको प्राउड ही फील करता है।
15: इंडिया की आज जीत हुई है, हम सब खुशियां मना रहे हैं।
16: नहीं नहीं, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है कि इंडिया ने दूसरी बार एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता है।
10: कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सोने का तमगा जीता, जापान के नागोया में क्रिकेट का रोमांच फिजा में तैरने लगा। जहां भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत की खुशी में चहक रहे थे, जाहिर है वहीं पाकिस्तान के फैंस निराश दिखे।
17: भाई मजा आ गया, और स्पेशली मैच ऐसा नहीं था। यूजुअली क्या होता है कि हमेशा पाकिस्तान को ऐसे हम ऐसे हरा देते हैं, इस बार पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला।
13: सबसे बढ़िया मैच, अच्छा गेम खेला सबने, बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला पाकिस्तान ने, भी अच्छी अच्छा खेला आखिरी मैच, अच्छी बैटिंग की, गुड बॉल, वेरी गुड।
18: इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला, हमारे लड़कों ने भी फाइट किया, लेकिन इन द एंड इंडिया लास्ट ओवर में बहुत अच्छा खेला।
10: टीम इंडिया के जीतते ही पूरे देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। शहर शहर फैंस सड़कों पर झूमते नजर आए और खुलकर अपने जज्बातों का इजहार करते भी दिखे। क्या दिल्ली, क्या ग्वालियर, क्या राजकोट, हर तरफ से इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही थी।
14: मैं बहुत ही प्राउडली फील कर रहा हूँ, तो सभी गेम हम ही जीतते हैं, तो इस बार तो जो गोल्ड मेडल जीत के आया इंडिया, वो हमको प्राउड ही फील करता है।
15: इतना अच्छा मैच हुआ, दोनों ही टीम अच्छा खेली है, लेकिन हमारी इंडिया हमेशा ही बढ़ चढ़ के खेलती है, हमारे सारे प्लेयर्स ही अच्छा खेलते हैं, और इंडिया की आज जीत हुई है, हम सब खुशियां मना रहे हैं, आगे भी ऐसा ही जीतते रहे इंडिया।
10: संगम नगरी प्रयागराज में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए और अपनी खुशियों का इजहार किया।
19: आज बहुत ही खुशी का है कि एशिया कप में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, ये जब विजय होती है पाकिस्तान को, तो जैसे हम लोग को जोश आ जाता है कि अपने दुश्मन को हमारा आ रहे हैं, एक गद्दार देश को हरा, आतंकवादी देश को हरा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को हरा के हम लोग एशिया कप का गोल्ड मेडल जीते हैं।
20: आज भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके एशिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जश्न मनाया, पटाखे बजाए।
21: आज भारतीय टीम को बहुत बधाई और टीम के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को बधाई, आज भारत ने फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी और गोल्ड मेडल लेके आ गया। हमारे भारतीय शुरुआत बहुत अच्छी की, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने गजब की शुरुआत की।
10: क्या आम क्या खास, शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने हर किसी का दिल जीत लिया।
0: Well, you have any doubt about that? We know our team is much better. We are playing better and congratulations.
10: पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मैच में मिली जीत में ओपनर अभिषेक शर्मा की अहम भागीदारी रही। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 61 रन की तेज तर्रार पारी खेली। इस कामयाबी पर अभिषेक शर्मा के घर भी जश्न का माहौल है।
2: हिंदुस्तान के सभी वासियों को मुबारक कि आज हमने एशिया कप में गोल्ड मेडल ले लिया है और ये बहुत खुशी की बात है। सारे हिंदुस्तान वासियों को बहुत खुशी होगी कि हमारी इंडिया क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है।
10: वहीं जोधपुर में रवि विश्नोई के घर भी जमकर खुशियां मनाई गयी। परिवार को टीम इंडिया की कामयाबी पर गर्व है।
16: पूरे भारत वर्ष में खुशी की लहर है कि इंडिया ने दूसरी बार एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता है और दोनों मैच में भी पिछले बार और इसमें भी रवि है, दोनों मैचों में रवि था और दोनों में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमें बड़ा गर्व हो रहा है और खुशी मतलब भूले नहीं समा रहे, इतनी खुशी हो रही है।
10: महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में भी एशियन गेम्स में गोल्ड, ये बताता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का क्या रुतबा है। बेशक इस गोल्डन चमक के पीछे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत और जज्बा है और यही जोश, जज्बा और जुनून करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के भरोसे का आधार है कि मौका कोई हो, मंच कोई हो, पाकिस्तान के खिलाफ जीतेगा तो इंडिया ही। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर भारत के इसी भरोसे को कामयाबी की सुनहरी खनक में बदल दिया है।
9: तो भारत ने शनिवार को कुल 9 मेडल जीते, इनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से हराकर 21वां गोल्ड हासिल किया है। फाइनल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने डबल गोल किए। एशियन गेम्स के एक ही संस्करण में पहली बार भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती का गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया के हान को हराया। ये एशियन गेम्स में भारत का दूसरा रेसलिंग गोल्ड है। वहीं प्रणवी उर्स ने वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्फ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। वहीं आपको बता दें कि तीरंदाजी के वुमेन्स रिकर्व इंडिविजुअल में कुमकुम मोहोड ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत ने गोल्फ वुमेन्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। प्रणवी के साथ अदिति और दीक्षा डागर टीम में थी। वहीं बात अगर रेसलिंग की करें तो रेसलिंग में अंतिम बंगाल ने वुमेन्स 53 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं दीपक पूनिया ने पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिकर्व मेंस इंडिविजुअल में भारत के नीरज चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यानी भारत अब तक 21 गोल्ड मेडल सहित कुल 85 मेडल के साथ टेली में चौथे स्थान पर आ गया है। ये एशियाड में भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। साल 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित 106 मेडल जीते थे। जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चुनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्ट्रीट रेलवे पुल अंजी ब्रिज को पार किया तो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक सुनहरा चैप्टर जुड़ गया। इस कीर्तिमान की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
22: फीट की ऊंचाई और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर वंदे भारत ट्रेन ने बनाया रफ्तार का रिकॉर्ड तो दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर देखती रह गई। जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2 अक्टूबर को रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। ट्रेन ने पहली बार चुनाब रेल ब्रिज को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। इसी परीक्षण के दौरान ट्रेन ने अंजी ब्रिज को भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। चुनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। जो अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। दरअसल रेलवे ने कटरा बनिहाल रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम मंजूरी रफ्तार बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के साथ इस पहाड़ी रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। कटरा बनिहाल का करीब 111 किलोमीटर लंबा रेल सेक्शन पहाड़ों के बीच से गुजरता है। इस मार्ग पर कई सुरंगें और बड़े पुल हैं। पहले इस रूट के अलग अलग हिस्सों पर ट्रेनों की अधिकतम मंजूर रफ्तार 75 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। अब रेलवे ने इस पूरे सेक्शन पर अधिकतम मंजूर रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। ये बदलाव 2 अक्टूबर से लागू हुआ। इसके बाद ही वंदे भारत का 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार पर स्पीड टेस्ट किया गया। जिस पुल पर वंदे भारत ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी वो कोई सामान्य पुल नहीं है। चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर यानी 1178 फीट पर बना है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है। ये पुल बेहद कठिन पहाड़ी इलाके और खराब मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अंजी ब्रिज नदी की घाटी से करीब 331 मीटर यानी 1086 फीट ऊपर है। इसकी लंबाई करीब 725 मीटर है और इसे 96 हाई टेंसाइल केबल सहारा देते हैं। चिनाब ब्रिज के डिजाइन 120 साल की उम्र को ध्यान में रखकर की गई है और ये करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं को झेलने के लिए बनाया गया है। यानी जिस पुल पर ट्रेन ने 100 की रफ्तार पकड़ी वहां तक पहुंचना और उस पर इतनी रफ्तार से ट्रेन चलाना अपने आप में रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है। चिनाब और अंजी जैसे बड़े पुलों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का परीक्षण बताता है कि इस मुश्किल पहाड़ी रूट पर रेलवे धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव का सबसे सीधा फायदा जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30MKI शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके। तो भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य अंदाज से मनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इस बार की सबसे खास बात यह है कि एयरफोर्स डे का फ्लाई पास्ट पहली बार पवित्र नदी गंगा के ऊपर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नमो घाट के पास वायुसेना की सूर्य किरण टीम पराक्रम का प्रदर्शन करेगी।

रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा

0: अचूक अभेद्य सटीक भारतीय वायु सेना की यही पहचान है। इसी थीम के साथ इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की मुख्य परेड हिंडन के वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जाएगी। इस साल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही थल और जल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। परेड से पहले MI-17 1B हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना का ध्वज लगा होगा।
1: द मेन इवेंट द एयरफोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8th अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई। In alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: Static display में लड़ाकू और परिवहन विमान के साथ हेलीकॉप्टर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। यही नहीं, भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल है, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इसके बाद IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा। हाल के वर्षों में ये परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की जा चुकी है। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई करतब को करीब से देखने का मौका मिल सके। भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में भी मनाने वाली है। 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायुसेना की एरोबेटिक टीम हवाई करतब दिखाने वाली है, जिसमें भारतीय वायुसेना की सिर्फ महिलाओं वाली एरोबेटिक दल टीम शक्ति तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: क्यों देवी और देवता की आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या है, आरती की सावधानियां क्या है और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर पूजा का एक अभिन्न अंग है आरती। आज हम आपको बताएंगे कि आरती का महत्व क्या है, आरती करने का तरीका क्या है और आरती से किस किस तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:31 तक, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आरती होती क्या है और आरती का महत्व क्या है। देखिए आरती के महत्व की चर्चा आरती के बारे में सबसे पहले बताया गया है स्कंद पुराण में। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण काम है, किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इसके अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में दीपक की ज्योति या कपूर की ज्योति रखते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं रख कर देवी या देवता के समक्ष घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ जो आप स्तुति गाते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जितनी भावना से जितनी श्रद्धा से आप आरती गाएंगे उतना ज्यादा ये प्रभावशाली होगी। यानी केवल ज्योति को घुमाने से आरती नहीं होगी, साथ में जितने प्रेम और श्रद्धा से आप आरती गाएंगे या आरती कहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा और उतनी ज्यादा आरती प्रभावशाली होगी। आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं। बिना पूजा उपासना किए हुए, बिना मंत्र जप किए हुए, बिना प्रार्थना या भजन किए हुए केवल आरती नहीं की जा सकती। आप बिना वजह के, बिना किसी पूजा उपासना के सीधे आरती नहीं कर सकते। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक, दोनों में से किसी एक चीज से आप ज्योति जला सकते हैं। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो ये दीपक पंचमुखी होना चाहिए और थाल में पूजा के फूल और कुमकुम ये आपको जरूर रखना चाहिए। आरती को देवी देवता के सामने इस तरह से घुमाइए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में चार बार, उनकी नाभि में दो बार, मुख पर एक बार और पूरे शरीर पर सात बार घुमाना चाहिए। जब आप आरती कर लें और दूसरों को आरती देंगे उनके आशीर्वाद के लिए तो थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। जैसे आपने आरती कर ली, अब आप बाकी दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आरती के माध्यम से भगवान की कृपा दे रहे हैं, तो लोगों के हाथों में फूल दीजिए और लोगों को कुमकुम का तिलक लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जब आरती हो जाती है तो आरती सबको दी जाती है और सब लोग आरती की अग्नि से, ज्योति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो किस प्रकार आरती से ऊर्जा ग्रहण की जाएगी? आरती से जब आप ऊर्जा लेते हैं उस समय अपना सर ढका रखिए, दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाइए और इसको अपने नेत्रों पर, अपनी आंखों पर और सर के मध्य भाग में लगाइएगा। आरती से जब आप ऊर्जा ले लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आरती लेते हैं और आरती की थाल में दक्षिणा या पैसे डालते हैं। दक्षिणा दान पात्र में डाली जाएगी, आरती की थाल में पैसे डालना या दक्षिणा डालना उचित नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, दुर्घटना से सावधान रहिएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्य पूजा में आप रोज जब संध्या काल में पूजा करते हैं तो सामान्य दिनों में जो नारायण की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती रोज संध्या काल में पढ़िए, आपकी पूजा संपन्न होगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में आप अलग अलग आरती भी कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलरली अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। शत्रु और विरोधी अगर ज्यादा परेशान कर रहे हों तो भगवान नृसिंह की आरती कर सकते हैं। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जीवन में कठिनाई है तो माता लक्ष्मी की आरती करना आपके लिए बेहतर होगा। और एक समय की पूजा में केवल एक ही आरती करनी चाहिए, एक साथ तीन चार पांच तरह की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पहली आरती करते हैं आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद बाकी आप कितनी भी आरती करते रहें उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो एक वेला की पूजा में एक आरती ही करना हर दृष्टिकोण से सही है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आर्थिक स्थिति में पैसे रुपए के हाल में लगातार कठिनाई बनी हुई है तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पैसे रुपए की कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना। सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर। फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र रात 9:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है

0: अब ज्योत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: आखिर क्यों लोहे को शनि की धातु माना जाता है? लोहे के प्रयोग से शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्या है शनि और लोहे का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दिमाग, इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी युद्धावकरण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान।

0: भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य एयर शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। रविवार तक शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। 4 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
2: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा ये किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले UGVs विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना UGV व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला UGV व्हीकल है और ये 4-व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की UGV लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना UGVs का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना UGVs 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना UGVs को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन के अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना UGV यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना UGVs का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
2: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बका, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बका झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जांपल है, जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं, वो आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया, और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया।
2: ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया।
0: रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था।
2: रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है, और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है।
0: यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
2: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनॉमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनॉमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
1: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
1: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। रणक्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: आखिर क्यों लोहे को शनि की धातु माना जाता है? लोहे के प्रयोग से शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्या है शनि और लोहे का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी दुनिया एक तरीके से फ्यूचर वेपन्स बनाने में जुटी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है अनमैन्ड व्हीकल्स की। फिर चाहे वो अनमैन्ड ड्रोन्स हो, या फिर अनमैन्ड गाड़ियां, या फिर अनमैन्ड बोट, या अनमैन्ड टैंक, जो कि सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं। इंसानी निर्देश मिले या नहीं मिले, ये सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं।
1: अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकियों के सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाता रहा है। अनमैन्ड ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलने पर दुश्मन पर वार करता है और इसकी वजह से जवानों का जोखिम कम होता है।
0: दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में जंग लड़ने के तौर तरीके भी पूरी तरह से बदल दिए हैं। फिर चाहे वो व्हीकल्स हो या फिर रणनीति हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां लाखों गीगाबाइट सूचनाएं जुटा सकता है, वहीं पलक झपकते ही इसे नष्ट भी कर सकता है।
1: आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें लगातार एआई सिस्टम को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी जंगी काबिलियत दिखाते नजर आएंगे। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल उतारा, नाम है मार्कर। मौजूदा समय में ये ड्राइवरलेस टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कॉर्नेट रूस की सबसे ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल है, जो 100 से 5500 मीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी में 7.62 एमएम की मशीन गन लगी हुई है, जिससे हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग की जा सकती है। दावा ये कि रूसी मार्कर 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त लगा सकते हैं, जो अपने साथ स्वार्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चलता है। स्वार्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: यूरो 9 के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा अनमैन्ड टैंक है यूजीवी। हालांकि इसका ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक के हुए ट्रायल के हिसाब से अगर देखा जाए तो टैंक ने सफल परीक्षण किया है, क्योंकि बाहर से ना तो किसी इंसानी कमांड की जरूरत पड़ी है और ना ही किसी मदद की जरूरत पड़ी है। और अगर तमाम ट्रायल सफल हो जाते तो ये जल्दी ही रूसी सेना का हिस्सा होगा।
1: आज सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देश फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिसमें एआई की ताकत शामिल की जा रही है। फ्यूचर वेपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देने के मामले में इजराइल भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में नए रोबोट हथियार तैनात किए हैं। रिमोट कंट्रोल बंदूकों से आंसू गैस, स्टैन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागी जा सकती हैं। हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर रोबोटिक वेपन तैनात किए गए हैं। इसराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावर्स पर यह हथियार तैनात किए हैं। बंदूकों पर कैमरे लगे हैं, जिन्हें टावर के भीतर से इसराइल डिफेंस फोर्सेज के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंदूकें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में तुर्की ने भी ड्राइवरलेस बोट का परीक्षण कर भविष्य के हथियार की झलक दिखा दी। ये न सिर्फ समुद्री सरहद की निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। साउथ कोरिया ने एक एआई आधारित किलर बोट तैयार किया है, जो किसी भी लोकेशन पर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरह ड्रोन कर रहे हैं। एक बार बोट प्रोग्राम कर दिया जाए तो उसके बाद ये किलर बोट अपने दुश्मन की खुद पहचान कर उसे मार गिराएगा। ये किलर बोट त्वचा के रंग, चेहरे की बनावट, आवाज और कपड़े के आधार पर दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और पल भर में उन्हें तबाह कर सकते हैं।
0: ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और किलर रोबोट के जरिए तमाम देश अब कमर कस रहे हैं, क्योंकि जिस देश के पास भी ये हथियार होंगे वो आने वाले समय में युद्ध के क्षेत्र में आगे होगा। और इसीलिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि इजराइल जैसे देशों ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश कर दिया है।
1: आखिर क्या है किलर बोट और क्यों है दुनिया के लिए ये खतरा, इसे जानने और समझने की जरूरत है। किलर बोट्स फुल ऑटोनोमस वेपन होते हैं। किलर बोट्स के मिशन में ह्यूमन ऑपरेशन का रोल नहीं होता, यानी किलर बोट रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से इसके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन की प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है। अमेरिकी सेना की नजरें कुछ सालों में अपने जल, थल और वायु सेना को किलर बोट से लैस करने पर है। वहीं रूस भी किलर बोट्स को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा है कि वो किलर बोट्स को विकसित करने की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक ग्लोबल लीडर होगा।
2: देखिए, रोबोट्स वो हैं जो बनाए गए हैं, ट्यून किए गए हैं, जिनमें बैटरी लगाई गई है, जिनको 5-7-10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग जैसी डिवाइसेस लगाई गई हैं, जो बैटलफील्ड के ऊपर क्या काम करते हैं, इंटेलिजेंस का कलेक्शन का, रिकॉग्नाइजेंस कलेक्शन का और सर्विलेंस करने का। लेकिन अगर इन्हीं रोबोट्स में, जो जनरली मिलिट्री के रोबोट्स आर्म्स से इक्विप्ड नहीं होते, लेकिन अगर इन्हीं के अंदर आर्म्स लगा दिए जाएं तो फिर इन्हें किलर ड्रोन कहते हैं, और अगर इनमें आर्म्स लगा दिए जाएं तो उन आर्म्स के फायर को कंट्रोल करना एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी बैटल ग्राउंड पे ऐसे भी सीन देखे गए हैं कि रोबोट्स ने अपने ही लोगों को मार दिया है।
1: दुश्मन की साजिशों से निपटने के लिए भारतीय युवाओं की ऐसी टोली तैयार की जा रही है जो तकनीक में इतने दक्ष हों कि वो दुश्मन के चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सके। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपे गए, जिनमें साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडरिन ट्रांसलेटर डिवाइस थे। आज के दौर में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिविजन बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी एलएमजी, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। 300 मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगा सकता है। अगर टारगेट मूविंग हो तो इसकी एक्यूरेसी रेट 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से लगा है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में एआई के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है।
3: दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है, और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा, क्योंकि LAC के ऊपर जितना भी चाइनीज की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है, क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। वहाँ वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेज है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं।
1: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी तरह की सोचने समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोचा जा रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखता हो। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही और गलत होने पर दुनिया भर में अभी बहस छिड़ गई है।
0: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य अंदाज से मनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इस बार की सबसे खास बात यह है कि एयरफोर्स डे का फ्लाई पास्ट पहली बार पवित्र नदी गंगा के ऊपर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नमो घाट के पास वायुसेना की सूर्य किरण टीम पराक्रम का प्रदर्शन करेगी।

0: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायु सेना की यही पहचान है। इसी थीम के साथ इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की मुख्य परेड हिंडन के वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जाएगी। इस साल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही थल और जल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। परेड से पहले MI-17 1B हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट करेंगे। इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना का ध्वज लगा होगा।
1: द मेन इवेंट द एयर फोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8 अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई, in alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: Static display mein ladaku aur parivahan viman ke sath helicopter satah se hawa aur satah se satah par maar karne wale guided hathiyar system, radar और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। यही नहीं, भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल है, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इसके बाद IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा। हाल के वर्षों में ये परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की जा चुकी है। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में भी मनाने वाली है। 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायुसेना की एरोबेटिक टीम हवाई कर्तव्य दिखाने वाली है, जिसमें भारतीय वायुसेना की सिर्फ महिलाओं वाली एरोबेटिक दल टीम शक्ति, तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मौसम बदला तो पहाड़ों पर सैलानियों की मौजूदगी जो है वो भी बढ़ने लगी है, जिससे हिल स्टेशंस के कारोबारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद भी है कि आने वाले सीजन में इस बार कारोबार भी काफी अच्छा रहेगा।

0: अक्टूबर की शुरुआत पर्यटकों से पहाड़ गुलजार। खिले कारोबारियों के चेहरे, जी हाँ, अभी तो ठंड का शुभारंभ होना बाकी है और पहाड़ सैलानियों से भर गए हैं। लंबे वक्त के बाद पहाड़ी शहरों की तस्वीर बदली बदली से दिख रही है। कुछ होटल्स फुल ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, तो कई होटल्स कारोबारियों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह से पर्यटकों के आगमन से इस सीजन में सकारात्मक संकेत दिखाई दिया है। पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। होटल्स, रेस्टोरेंट, टैक्सी, पर्यटन गतिविधियों और पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी चहल पहल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कारोबार और बेहतर होने की उम्मीद है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की हैं, जहां हर चौक चौराहे और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है। सुहाने मौसम के साथ पर्यटक डलहौजी के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। परिवारों के साथ पहुंचे पर्यटक ठंडी हवा, देवदार के जंगल और पहाड़ी वादियों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से डलहौजी के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ पर्यटक स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। मनाली में भी लॉन्ग वीकेंड के पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर शहर की सड़कों पर भी दिखने लगा है। मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बदला मौसम सैलानियों को पहाड़ों की ओर खींच रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बद्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मौसम साफ होने और शुक्रवार से लेकर रविवार तक छुट्टी होने की वजह से लोग धाम तक पहुंचना चाह रहे हैं। गाड़ियां इतनी पहुंच गई हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस को एक्टिव होना पड़ गया। नैनीताल में भी मौसम बदलते ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कैंची धाम में दिनभर भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है, तो नैनीताल के नैनी झील में पर्यटकों को बोटिंग का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। यानी एक तरफ बाबा नीम करौली की भक्ति देश भर के लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊं की ओर खींच रही है, तो दूसरी ओर पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल रही है। उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में टूरिस्ट अभी से ही उमड़ रहे हैं। अभी तो जाड़े का मौसम बाकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2026 का टूरिस्ट सीजन कारोबार के लिहाज से बेमिसाल रहने वाला है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होती हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहैटन में एक अनोखी महफिल की है वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाली सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
3: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
2: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
3: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
2: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
4: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
2: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
5: It's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: France ki tarj par America

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
7: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दिमाग, इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी युद्धाओं करण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी, इस साल अटल, अभेद्य और सटीक है एयरफोर्स की थीम, वाराणसी में भी होगा भव्य।

0: Eso. नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। रविवार तक शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर रोक, नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। 4 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौत।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का यह पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1:42 बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंद गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानी हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींचकर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानी हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's be near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and as and then is crushed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passengers, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूँ। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंग बली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: अमिसाइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुंबकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा नदी परिवार बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई।
2: मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डांस होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए।
1: दरअसल ओमान मूल के कोपायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से ज्यादा उड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर दे सकता।
1: मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के इस साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
2: बहुत बहुत गर्व होता है, अभी में तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
3: स्मिथ अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों, शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
4: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का रफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30MKI शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है, जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं, ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: आखिर क्यों लोहे को शनि की धातु माना जाता है? लोहे के प्रयोग से शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्या है शनि और लोहे का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पे भारत। 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया दम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी योद्धाओं का रणकौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30M के आईने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। रविवार तक शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। 4 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सफर बरकरार। पुरुष हॉकी ने दिलाया भारत को 21वां गोल्ड। भारत ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराया। इस जीत के साथ ही ओलंपिक 2028 के लिए किया डायरेक्ट क्वालिफायर। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल, वहीं गुजरात हार्दिक और शिलानंद ने 1-1 गोल किया। इससे पहले भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती का गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया के हान को हराया। रेसलिंग में 53 किलो कैटेगरी में अंतिम पंघाल को सिल्वर मेडल मिला। फाइनल में जापान के मोए कियोका ने 9-1 से हारी। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला जीती। देश को दिलाया एक और गोल्ड मेडल। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था 212 रनों का लक्ष्य। पीछा करने उतरी टीम 6 विकेट पे 192 रन ही बना सकी। मुकाबले में भारतीय टीम ने 19 रनों से हासिल की जीत। निशन के करोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुआ यह मुकाबला। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी की पूरी। 61 रनों का दिया योगदान। तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 15 गेंदों पर शानदार 27 रन बनाए। ग्वालियर में भारत की T20 गोल्ड जीत पर क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। पाकिस्तान को हरा के एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने पर जमकर खुशी जताई। प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत को लेकर फैंस में जोश का माहौल। जय हिंद जय भारत के लगाए गए नारे। एशियन गेम्स में भारत की जीत पर जापान में भारतीय प्रवासियों ने जताई खुशी। स्टेडियम से निकलते वक्त चेहरे पर नजर आई खुशी। एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में भी भारत को पदक। नीरज ने कांस्य पदक जीता। भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने अपने ही देश के धीरज को दी मात। 6-4 से हरा के जीता कांस्य पदक। एशियन गेम्स 2026 के गोल्फ में भी भारत का शानदार प्रदर्शन। गोल्ड मेडल के साथ खुला खाता। प्रणवी ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीत के रच दिया इतिहास। व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। गोल्फ की महिला टीम ने भी किया कमाल। सिल्वर पदक पर किया कब्जा। प्रणवी, अदिति और दीक्षा डागर की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। प्रवनी ने किया टीम का नेतृत्व। पूरी में सैंड आर्टिस्ट ने महिला हॉकी टीम को शानदार तरीके से दी शुभकामनाएं। रेत पर बनाई कलाकृति। आईची नागोया एशियन गेम्स में आज भी भारत की सुनहरी शुरुआत। आर्चरी में मिला एक और गोल्ड। 17 साल की कुमकुम मुहूर्त ने रच दिया इतिहास। शूट ऑफ में दक्षिण कोरिया के ओयेजुन को हराया। कुमकुम के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, एशियाई खेलों के व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। रिकर्व तीरंदाजी में गोल पर निशाना साधने वाली कुमकुम, अनिल मोहोड़ के घर जश्न का माहौल, अमरावती में घर पर बांटी गई मिठाई, जमकर हुई आतिशबाजी। एशियाई खेलों में कुल 85 मेडल जीत के चौथे स्थान पर है भारत, 21 गोल्ड 27 रजत और 37 कांस्य पदकों पर कब्जा। तेजस राफेल F-35 और SU-30M के एक साथ आसमान में उड़ते हुए नजर आए, तिरंग शक्ति में चार देशों की एयर पावर का शानदार नजारा नजर आया। भारतीय तेजस ने राफेल F-35 और SU-30M के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भरी, अद्भुत लगा नजारा। तरंग शक्ति में भारत समेत कई देशों के 80 से ज्यादा विमान ले रहे हैं हिस्सा, आसमान में फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर का दमखम नजर आया। जोधपुर एयरबेस पर भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के एयरफोर्स जुटी, उड़ान ऑपरेशन ट्रेनिंग और एक दूसरे की तकनीकी को समझाना इस ऑपरेशन का मकसद। अमेरिका का स्टील्थ फाइटर F-35 पहली बार तरंग शक्ति में शामिल हुआ, जोधपुर के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ इसकी उड़ान खास रही। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पुरतासी महीने के तीसरे पवित्र शनिवार को विशेष आयोजन, पेरुमल मंदिर में की गई पूजा अर्चना। थूथुकुड़ी पेरुमल मंदिर में नंदी का किया गया विशेष श्रृंगार, पुरोहितों ने की विशेष पूजा अर्चना। तिरुचिरापल्ली के मुक्कोम में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा, खुले स्लुइस गेट मिट्टार बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी नदी में उफान। मुकोम्बू में जल स्तर 9,900 क्यूसेक के पार, कावेरी डेल्टा में सांबा खेती के लिए छोड़ा गया पानी, किसानों में खुशी। मुकोम्बू बांध का बड़ा जल स्तर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, ड्रोन तस्वीरें हुई वायरल, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बारिश के बाद मौसम खुलते ही पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, फोटो पॉइंट्स पर पहाड़ी पोशाक में तस्वीरें खिंचवाने का क्रेज बढ़ा। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदारों को लंबी छुट्टी से अच्छे कारोबार की उम्मीद है, पर्यटकों की भीड़ देख के कारोबारियों के खिले चेहरे। शिमला पहुंच रहे पर्यटक पारंपरिक पहाड़ी लुक में फोटो खिंचवा के यादें संजो रहे हैं, स्थानीय दुकानों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। माल रोड से पर्यटन स्थलों तक भीड़ नजर आई, कारोबारियों को सीजन में बिक्री और कमाई बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में आयोजित 50वें इंडिया कारपेट एक्सपो का रविवार को उद्घाटन करेंगे, 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगा ये एक्सपो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाटों पर भरा पानी। पटना के दानापुर दियारा में फिर बाढ़ का संकट, 6 पंचायतों की सड़कें डूबी, स्मीटर बना यातायात का सहारा। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी, वैशाली से भेजे गए राहत सामग्री से भरे 5 ट्रक। बिहार के सारण में 11,000 पॉलिथीन शीट और 1700 ड्राई राशन पैकेट भेजे गए, जिला प्रशासन की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम, छुट्टियों के चलते अचानक से बड़ी सैलानियों की संख्या। असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क का हुआ शुभारंभ, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया सफारी का आनंद। 13 अक्टूबर को फिर से खुलेगा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। पर्यटन नगरी डलहौजी में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, पर्यटन कारोबारियों के किले शहरे। बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए लोग, वीकेंड का ले रहे मजा। राजकोट में कैप्टन स्मिथ मछार के पिता ने बेटे पर जताया गर्व, परिवार जल्द स्वस्थ होकर उनकी वापसी की कर रहा है कामना। शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा पंडालों को तैयार करने के साथ प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अजमेर में दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम लगातार जारी, विभिन्न स्वरूपों में दिखेंगे माँ। दुर्गा पूजा के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा जोर, इको फ्रेंडली प्रतिमाएं की जा रही है तैयार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए राहत देने वाली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4,00,000 से ज्यादा युवाओं को बांटी स्कॉलरशिप। बैंक खातों में भेजी गई स्कॉलरशिप की 148 करोड़ रुपए की राशि, लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। लैंडफिल साइट से 100 एकड़ जमीन कराई गई है कचरा मुक्त। ओखला में ताजा कचरे की प्रोसेसिंग के लिए नई यूनिट शुरू। रोजाना 3 से 4 हजार मीट्रिक टन कचरे का होगा निस्तारण। ओखला लैंडफिल पर पुराने कचरे का लगभग पूरा निस्तारण होने का दावा। ताजा और सीएनडीडी कचरे की प्रोसेसिंग पर भी सरकार का फोकस। ओलंपियन नीरज चोपड़ा और गगन नारंग पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोनों खिलाड़ियों ने जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। नैनीताल के कैंची धाम में फिल्म हनुमान अंश के बाद उमड़ा आस्था का जन सैलाब। पर्यटन उद्योग को भी मिल रहा है बढ़ावा। चीन के हुआंगशान में ड्रैगन का जलवा। 38 हिस्सों से बना करीब 100 मीटर लंबा रोशन ड्रैगन पहाड़ पर नजर आया। रात में जगमगाया हुआंगशान पर्वत। चीन के अनहुई में पहली बार यिंगलोंग थीम पर नाइट टूर हुआ शुरू। रोशनी से बना 100 मीटर लंबा ड्रैगन लाल तेन पहाड़ी रास्तों पर नदी की तरह बहता हुआ नजर आया, जिसे देखने के लिए पर्यटक उमड़े। चीनी संस्कृति की झलक दिखा रहा है ये शो। नाइट टूर में पेपर कटिंग, ड्रैगन डांस और फिश लालटेन जैसी परंपराएं भी शामिल हैं। पर्यटकों के लिए खास बना हुआंगशान नेशनल डे हॉलिडे में नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से यहाँ पे पर्यटकों का अनुभव और भी खास हो गया। चीन के 77वें वर्षगांठ पे विक्टोरिया हार्बर के पास 2026 ड्रोन ने आसमान को सजाया। ड्रोन से रॉकेट, रेडियो, टेलीस्कोप और फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें बनी। ड्रोन शो में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का मॉडल आसमान में नजर आया। साथ ही हैप्पी बर्थडे और हांगकांग के 5-ईयर प्लान के संदेश भी नजर आए। चीन के नेशनल डे पे हांगकांग में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ लोगों के लिए कई तरह की छूट भी दी गई। 1 से 7 अक्टूबर को चुनिंदा सामान पर 23% तक की छूट दी जा रही है। ऑफर दुकानों के साथ ऑनलाइन शॉप और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। हांगकांग के कई मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर ने स्पेशल ऑफर शुरू किए हैं। डाइनिंग, शॉपिंग और पार्किंग पर भी लोगों को दी जा रही है छूट। चीन के हांगझोउ में नेशनल डे पे इंसान और रोबोट के बीच अनोखी खेल प्रतियोगिताएं हुई। लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के साथ मिलकर खेलों में हिस्सा लिया। ह्यूमन रोबोट गेम्स में अत्याधुनिक तकनीक को आम लोगों के लिए पेश किया गया। प्रतिभागियों ने इसे भविष्य की दुनिया का शानदार एक्सपीरियंस बताया। हांगझोउ में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीक लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। कभी लैब तक सीमित तकनीक अब आम जिंदगी में नजर आ रही है। हांगझोउ चीन का प्रमुख एआई इनोवेशन शहर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए प्रयोग शहर में बढ़ रहे हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में हांगझोउ में टेक्नोलॉजी आधारित आकर्षण बढ़े हैं। साइंस और रोबोटिक्स के अनुभव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन रहे हैं। चीन के हार्बिन पोलर पार्क में नेशनल डे पे खास पेंगुइन परेड हुई। पेंगुइन्स को देखने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। पेंगुइन स्क्वायर में टहलते नजर आए और लोगों का ध्यान खींचा। उनकी क्यूट चाल देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी। पेंगुइन्स के लिए परेड वाली जगह पे बर्फ बिछाई गई, इससे तापमान कम रखा गया और उन्हें बाहर लाया गया। परेड में जेंटू पेंगुइन शामिल हुए जो अंटार्कटिक इलाके में पाए जाते हैं। ये बेहद ठंडे इलाकों के बजाय कम ठंडे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हार्बिन पोलर पार्क की पेंगुइन परेड छुट्टी का बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी। देश भर से आए पर्यटकों ने पेंगुइन्स को करीब से देखा। चीन के हेनान में नेशनल डे पर गोंगों और शुनशुन को खास दावत मिली। बांस से बने केक, फल और सब्जियों से सजी दावत ने लोगों का ध्यान खींचा। पांडा के लिए कई परतों वाला बांस का केक तैयार किया गया। इसमें ताजा बांस, फूल और दूसरी पसंदीदा चीजें शामिल की गई। पांडा भाइयों की छुट्टी वाली दावत का लाइव प्रसारण भी किया गया। लोगों ने उन्हें खाना खाते देखा और जमकर उनकी तस्वीरें भी खींची। पांडा के आसपास तरबूज से लालतेन, पिगी और फूलदान बनाए गए। ड्रैगन फ्रूट और पोमेलो ने सजावट में और रंग भर दिया। पार्क में पांडा के अलावा बच्चों और माता पिता के लिए मैजिक शो भी आयोजित किए गए। मस्ती के साथ सीखने वाले इन कार्यक्रमों ने छुट्टियों का मजा दोगुना कर दिया। चीन के नेशनल डे हॉलीडे में विदेशी पर्यटक जांग जियाजी पहुंच रहे हैं। पहाड़ों के साथ लोकगीत, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हैं। विदेशी पर्यटकों ने मशहूर जांग जियाजी ग्लास ब्रिज पर स्थानीय कलाकारों के साथ डांस किया। पर्यटकों ने प्राकृतिक नजारों और माहौल की जमकर तारीफ की। जांग जियाजी 72 वनडे टावर्स पर रात का लाइट शो देखने बड़ी संख्या में विदेशी पहुंचे। पारंपरिक तुझे शादी और इंटरैक्टिव कार्यक्रमों में भी पर्यटकों ने हिस्सा लिया। पिघले लोहे से होने वाले आतिशी प्रदर्शन ने पर्यटकों को हैरान कर दिया। पेरू के एक पर्यटक ने इसे अद्भुत और जादुई अनुभव बताया। पश्चिमी हुनान के थिएटर में रोज 4 शो हो रहे हैं और सभी 3200 सीटें भर रही हैं। तुजिया डांस, लोक कला और पारंपरिक शादी की झलक पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के 94 साल पूरे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा। IAF का नया प्रोमो वीडियो, सालगिरह से पहले वायुसेना ने अपनी ताकत और जाबाजों की झलक दिखाने वाला प्रोमो जारी किया। आसमान में दिखाई है पावर, प्रोमो में फाइटर जेट्स के शानदार ऑपरेशन और जबरदस्त एक्शन नजर आया। वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के बहादुर जवानों और उनके मिशन की झलक देखने को मिली। प्रोमो में आधुनिक हथियारों, विमानों और वायुसेना की नई तकनीक को हाईलाइट किया गया है। रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में हजारों लोग जश्न में शामिल हुए। गीत संगीत और डांस से पूरा माहौल उत्साह से भर गया। लोगों ने हरी घास और फूलों के साथ पारंपरिक रस्में निभाई। इरीशा पार्क और मेस्केल स्कोर में खूब रौनक देखने को मिली। पारंपरिक गीतों और नृत्य ने इरीशा समारोह में रंग जमा दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर खुशी का इजहार किया। लोगों ने खास पारंपरिक परिधानों में इरीशा पर्व मनाया। पूरे समारोह में सांस्कृतिक और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिली। हजारों लोगों ने साथ जुटके इस बड़े सांस्कृतिक पर्व का जश्न मनाया। फूलों, हरियाली, गीत और डांस के बीच उत्सव का माहौल छाया रहा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: तो देखिए मौसम बदला तो पहाड़ों पर सैलानियों की मौजूदगी जो है वो भी बढ़ने लगी है, जिससे हिल स्टेशन के कारोबारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद भी है कि आने वाले सीजन में इस बार कारोबार भी काफी अच्छा रहेगा।

अक्टूबर की शुरुआत पर्यटकों से पहाड़ गुलजार। खिले कारोबारियों के चेहरे, जी हाँ अभी तो ठंड का शुभारंभ होना बाकी है और पहाड़ सैलानियों से भर गए हैं। लंबे वक्त के बाद पहाड़ी शहरों की तस्वीर बदली बदली से दिख रही है। कुछ होटल्स फुल ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, तो कई होटल्स कारोबारियों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह से पर्यटकों के आगमन से इस सीजन में सकारात्मक संकेत दिखाई दिया है। पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। होटल्स, रेस्टोरेंट, टैक्सी, पर्यटन गतिविधियों और पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी चहल पहल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कारोबार और बेहतर होने की उम्मीद है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की हैं, जहां हर चौक चौराहे और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है। सुहाने मौसम के साथ पर्यटक डलहौजी के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। परिवारों के साथ पहुंचे पर्यटक ठंडी हवा, देवदार के जंगल और पहाड़ी वादियों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से डलहौजी के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ पर्यटक स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। मनाली में भी लॉन्ग वीकेंड के पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर शहर की सड़कों पर भी दिखने लगा है। मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बदला मौसम सैलानियों को पहाड़ों की ओर खींच रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बद्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मौसम साफ होने और शुक्रवार से लेकर रविवार तक छुट्टी होने की वजह से लोग धाम तक पहुंचना चाह रहे हैं। गाड़ियां इतनी पहुंच गई हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस को एक्टिव होना पड़ गया। नैनीताल में भी मौसम बदलते ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कैंची धाम में दिनभर भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का

0: या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में टूरिस्ट अभी से ही उमड़ रहे हैं। अभी तो जाड़े का मौसम बाकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2026 का टूरिस्ट सीजन कारोबार के लिहाज से बेमिसाल रहने वाला है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आखिर क्यों लोहे को शनि की धातु माना जाता है? लोहे के प्रयोग से शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्या है शनि और लोहे का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
11: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। आज क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीता गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी युद्धाओं करण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी, इस साल अटल, अभेद्य और सटीक है एयरफोर्स की थीम, वाराणसी में भी होगा भव्य एयर शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान, रविवार तक शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर रोक, नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। 4 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय रहने वाला है लोहे का शनि कनेक्शन। आज आपको बताएंगे कि लोहे का शनि के साथ कनेक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे। लोहा और शनि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये तो पंडित जी बताएंगे ही, लेकिन लोहे का सही इस्तेमाल करते हुए शनि की स्थिति को आपके जीवन में और कुंडली में कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में तमाम उपाय और जानकारियां पंडित जी विस्तार के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आगे जाकर आपके बारे में हम बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे, पंडित जी उसके जवाब भी देंगे, महाउपाय के बारे में जानकारी देंगे, राशियां भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकते, सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो आपको मंत्र जप करने से, साधना करने से, ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने आचरण और अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करिए।
0: चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 अक्टूबर 2026 रविवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 4 अक्टूबर 2026, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:31 तक, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया लोहा और शनि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये तो बात होगी ही, लेकिन उससे पहले पहला प्रश्न जो बनता है वो है लोहा आखिर है क्या, ये धातु क्या है, इसका सामान्य तौर पर महत्व क्या होता है हम सबके जीवन में।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि शनि ग्रह का लोहे के साथ क्या संबंध है और लोहे का प्रयोग करके शनि को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि लोहा है क्या और इसका सामान्य महत्व क्या है। देखिए, लोहा धरती के गर्भ में, धरती के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। लोहे का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था, ऐसी जानकारी पाई जाती है। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है और बिना लोहे के किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोहे के बिना डेवलप नहीं हो सकता। शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में रहता है। साथ ही साथ यकृत, लिवर, प्लीहा, स्प्लीन और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड में भी इकट्ठा रहता है। शरीर में आयरन के तत्व की, लोहे के तत्व की कमी होने पर श्वास प्रश्वास की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है। शरीर की स्ट्रेंथ कम हो सकती है।
0: चलिए, इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आगे जाकर पंडित जी से लेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की, और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल यह है कि ज्योतिष नजरिए से अगर इस धातु को लोहे का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो लोहे का महत्व क्या होता है?
1: अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में लोहे का क्या महत्व है। देखिए, लोहे को सामान्यतः शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। अपने गुणों और प्रभाव के कारण लोहा शनि का तत्व माना जाता है। शनि की पीड़ा से, शनि की कठिनाइयों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लोहे का दान किया जाता है। और कभी कभी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर को सबल करने के लिए लोहे के पात्र में भोजन बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। खास तौर से जो साग है उसको लोहे के पात्र में बनाकर खाना बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। लोहे के नाल की बनी हुई अंगूठी शनि की पीड़ा को कम करने के लिए धारण की जाती है। जब आप जीवन में लोहे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लोहे के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तो इससे आपके शनि को जीवन में मजबूती मिलती है, शनि आपका प्रबल होता है।
0: चलिए राशिफल पर वापस आते हुए अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब, इसका वक्त आ चला है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देती हूँ कि आप भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, उसका सुधार आप करना चाहते हैं तो तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए। इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है वो आपसे जानते हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न आंचल जी ने हमें लिखा है और आंचल जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1993। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं अभी इंदौर में नौकरी करती हूं और मेरे पास एक ऑफर आया है बेंगलोर में नौकरी करने का, तो क्या मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए और क्या नई नौकरी मेरे लिए बेहतर रहेगी? आंचल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना करियर बनाने की कोशिश करें या नौकरी करें तो आप ज़्यादा सफल होंगी। और जिस समय आपके पास ये ऑफर आया है वो समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इस समय में आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, तो आप निर्णय ले करके अपना स्थान और नौकरी में परिवर्तन दोनों कर सकती हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। पंडित जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में, आज के इस शो में कौन से दर्शक का है।
0: जी, अगला प्रश्न अरविंद जी ने हमें लिखा है और अरविंद जी हमें मेल लिखते हैं बदायूं से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 26 नवंबर 2008। जन्म का समय दोपहर में 1:05। जन्म स्थान है बदायूं। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहा है और आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्या उसका विदेश जाना सही रहेगा? क्या उसको आगे पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहिए? देखिए अरविंद जी, आपके पुत्र की कुंडली ये तो जरूर कह रही है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद इनका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन विदेश जाने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। विदेश जाना इनके लिए अनुकूल नहीं है और वहां जाकर शिक्षा और करियर में कोई लाभ नहीं होगा। 2030 के आसपास, 2030 के आसपास अगर ये विदेश जाना चाहें तो उस समय स्थितियों को देख करके विचार किया जा सकता है। आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप उनसे कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा।
1: देखिए लोहे के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं, लेकिन पंडित जी एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल ये है कि लोहे का ऐसा कौन सा विशेष प्रयोग, खास प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे शनि का भरपूर फायदा हम सबको जीवन में प्राप्त हो?
0: अब आपको बताते हैं लोहे के विशेष प्रयोगों के बारे में, जो अगर आप करेंगे तो शनि की वजह से आपको लाभ होगा। शनि को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अनुकूल करना चाहते हैं, तो लोहा जरूर धारण करिए और लोहे के बर्तनों का, लोहे के पात्रों का, खास तौर से लोहे की कड़ाही का जीवन में प्रयोग करिए। अगर शनि आपका बहुत ज्यादा निगेटिव है, अगर शनि बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो लोहे की वस्तुओं का दान करिए, लोहे का दीपक बनवा लीजिए और शनि देव के लिए लोहे के दीपक में सरसों का तेल भर करके अगर आप दीप दान करें तो बेहतर होगा। अगर घर के मुख्य द्वार पर आप लोहे का दरवाजा लगाते हैं तो इससे शनि की कृपा बड़ी आसानी से आपको मिलेगी, क्योंकि मुख्य द्वार पर जो मेटल आप प्रयोग करते हैं वो मेटल आपके पूरे घर की पॉजिटिविटी पर और निगेटिविटी पर असर डालता है।
1: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, दुर्घटनाओं से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी ये बताइए कि क्या लोहे का व्यवसाय करने में या फिर वाहन खरीदने में भी लोहे का विचार करना चाहिए, इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि इसका फायदा होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा है क्या?
0: देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोहे का व्यापार करने जा रहे हैं या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, गाड़ियां आमतौर पर लोहे की तो होती ही हैं, तो अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं या लोहे का वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसमें बड़ा सोचना समझना चाहिए, लोहे का विचार करना चाहिए। क्या होता है ऐसा? देखिए लोहे का जो व्यवसाय है वो एक विशेष तरह का व्यवसाय है, वैसे मेटल का जो व्यवसाय है वो मंगल का है, लेकिन लोहा अलग से मेटल होने के बावजूद शनि का व्यवसाय है, शनि से संबंध रखता है। जब तक शनि आपके करियर को प्रभावित ना करे, आपकी कुंडली में आपके करियर को कनेक्ट ना करे, तब तक लोहे का व्यापार मत करिएगा। और ये भी देखिएगा कि जब आप लोहे का व्यापार कर रहे हैं तो शनि आपकी दशाओं में अनुकूल है या नहीं है, दशाओं को प्रभावित करना जरूरी है। अगर बिना सोचे विचारे आप लोहे का व्यापार करें और शनि अनुकूल ना हो तो सब कुछ जीरो हो सकता है। वाहन अगर खरीदना है तो उसी व्यक्ति के नाम से खरीदना चाहिए जिसका शनि थोड़ा बेहतर हो, और वाहन के रंग का और नंबर का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे तो वाहन का सुख शुक्र से आता है, लेकिन वाहन खरीदने की ताकत आती है शनि से। और जो लोग गाड़ी खरीदते हैं खासतौर से बिना सोचे विचारे शौक में काले रंग की गाड़ी खरीदते हैं, अक्सर वाहन दुर्घटना के शिकार होते हैं या वाहन की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं।
1: चलिए राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मकर राशि, करियर में आपकी उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से जानते हैं कि अगला प्रश्न यानी आप में से कौन से दर्शक का है अगला सवाल हमारे इस शो में। पंडित जी
0: जी अगला प्रश्न हमें हेमा जी ने लिखा है और हेमा जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जून 1986, दोपहर में 3:10, जन्म स्थान है देहरादून। हेमा जी कह रही हैं कि मैं नौकरी काफी समय से बदलना चाहती हूँ, नौकरी मेरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हेमा जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप अभी कोशिश करें तो अप्रैल 2027 के पहले आपकी नौकरी बदलेगी और बेहतर करियर में आप जा पाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्टूबर के बाद से आपके स्वास्थ्य के हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का यानी दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं कि अंतिम सवाल पंडित जी किसका है।
0: जी

0: का अंतिम प्रश्न वीरभद्र जी ने हमें लिखा है और वीरभद्र जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1970, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है मधुबनी बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ अभी बेंगलोर में रह रहा हूं और यहां पर मैं अपना ऑनलाइन व्यापार भी कर रहा हूं, तो आने वाले समय में क्या बेंगलोर में परमानेंटली बसना मेरे लिए ठीक रहेगा? वीरभद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप भविष्य में बेंगलोर में नहीं रहेंगे, आपके बेटे का भी स्थान परिवर्तन 2027 के आखिरी में या 2028 में होगा और आपका भी स्थान परिवर्तन होगा, संभवतः उत्तर दिशा की तरफ, दिल्ली NCR, राजस्थान, हरियाणा, इस तरफ सेटलमेंट होगा, इस तरफ शिफ्ट होने की संभावना बन रही है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत का मामला आपका बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 4 अक्टूबर को, उनका बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, शिक्षा और करियर के मामले में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, संतान और संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः, पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ गई है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की, तो पंडित से ही जानते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः शनि की मुख्य धातु लोहे को माना जाता है, लेकिन शनिवार को लोहा ना खरीदें इसका कोई आधार नहीं है। आप शनिवार को लोहा खरीदेंगे, शनि आपका बिगड़ जाएगा या जीवन में शनि की कोई समस्या आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिवार को कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेकर लोहे की वस्तु या लोहा खरीद सकता है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं शुपहर के बारे में, 4 अक्टूबर 2026 रविवार का शुपहर क्या है वो भी जानते हैं।
0: दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को लाल फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से आपको मान सम्मान की और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 4 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आपकी गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी बताएंगे आपको।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा में किस तरह की चीजें आती हैं। आज की गुडलक राशि है मेष राशि। इनकी शिक्षा में सामान्यतः बदलाव होता रहता है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। नियमित सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें तो लाभ होगा।
1: चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां, इस शो से जुड़े हुए आपके प्रश्न हम सब ने इस शो में शामिल कर लिए हैं, लेकिन अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ये जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर शनि संबंधी व्यवसाय में, लोहे में, कंस्ट्रक्शन में या शनि की वस्तुओं के व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम 108 बार शनि का मंत्र जरूर पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लीजिएगा, उनकी उपासना कर लीजिएगा और भूल कर भी शनि संबंधी वस्तुओं का दान मत करिएगा। अगर आप ऐसा करें और कुंडली में शनि के व्यवसाय का योग हो तो शनि के व्यापार में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी।
1: पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस मुकाबले की जिसकी चर्चा हर ओर है। देखिए, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। जापान के निशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आज हर ओर इंडिया का शोर सुनाई दे रहा है। टीम इंडिया ने पूरी धमक के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरे पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने जरूर 96 रन का संघर्ष किया, लेकिन ये पारी भी पाकिस्तान को जीत के दहलीज तक नहीं पहुंचा सकी और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पस्त कर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। देखिए मैच के एक्शन का पूरा हाल इस रिपोर्ट में।
3: जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में पाकिस्तान पस्त था और टीम इंडिया का खेमा गोल्ड मेडल की चमक से दमक रहा था। इस सुनहरी जीत का एहसास यूं तो हर क्रिकेट प्रेमी को पहले से था। फैंस की दुआएं रंग लाईं, खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतरे और एक बार फिर वही हुआ जिसका पूरे हिंदुस्तान को यकीन था। मेंस क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। पाकिस्तान को हराकर मिली इस सुनहरी कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है। अब शुरू से वो किस्सा बयां करते हैं कि कैसे इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात देकर गोल्ड मेडल जीता। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का ऐसा तूफान आया कि पाकिस्तान की चुनौती तिनके की तरह ढह गई और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का उसका अरमान यंगिस्तान की सुनामी में बह गया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने मैदान पर उतरते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वैभव सूर्यवंशी हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन मैदान छोड़ने से पहले 2 छक्के लगाकर वैभव पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। वैभव के जाने के बाद भी पाकिस्तान की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि अब अभिषेक शर्मा की आंधी चल रही थी। उन्हें दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर का साथ मिला और पावर प्ले में भारत ने 80 का आंकड़ा पार कर लिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी 61 रन पर आकर थमी। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज कुछ देर तक श्रेयस ईशान को शांत रखने में कामयाब रही, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि इसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने तूफानी अंदाज में रन बटोरे। शिवम दुबे 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इस छोटी लेकिन असरदार पारी में शिवम ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वही तिलक वर्मा आखिर तक डटे रहे और उन्होंने महज 22 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा और शिवम दुबे की इस तूफानी साझेदारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जीत के लिए 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को लप्पेबाजी के दम पर शुरुआत तो ठीक ठाक मिली, लेकिन बीच बीच में विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता रहा। पावर प्ले में पाकिस्तान ने कप्तान साहिबजादा फरहान और उस्मान खान के विकेट की कीमत पर 39 रन बनाए। मैच पर धीरे धीरे टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो रही थी कि तभी हसन नवाज के संघर्ष ने पाकिस्तान की मैच में वापसी कराई। हसन नवाज ने तेजी से रन बटोरे, हालांकि इस दौरान उन्हें 2 जीवनदान भी मिले। पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 51 गेंदों में 96 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा था कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी पाकिस्तान 20 ओवर के कोटे में 192 रन ही बना सका और टीम इंडिया ने 19 रन से ये मुकाबला जीतकर भारत को एशियन गेम्स में 19वां गोल्ड दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्लेयर्स को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसे में प्लेयर्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इस पे, आइए आपको सुनाते हैं।
4: मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और देश को प्राउड करना, गोल्ड जीतना, तो मुझे लगता है इसको बोल नहीं सकते, ये अंदर से दिल में आती है। तो वो सब जितने भी इंडियंस हैं, इंडिया के लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, फैंस हैं, सबको पता है, और सब लोग होपफुली हमारे पर प्राउड भी फील करेंगे।
5: बहुत ही अच्छा फीलिंग है, क्योंकि एशियन गेम्स हम लोग जो जीते हैं, हमेशा ये डिफरेंट फीलिंग है जो रेगुलरली हम लोग खेलते हैं, जो टूर्नामेंट्स हम लोग खेलते हैं उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है। और ये वाला फीलिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया था 2023 चाइना में, एंड द सेम अगेन अभी जीतने में, वो भी पाकिस्तान के साथ, आप जैसे बोले, बहुत प्राउड मोमेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एशियन गेम्स ना आपको अलग ही फीलिंग होता है, क्योंकि अपना ट्राई कलर जब फ्लाई हाई करते हैं और गोल्ड मेडल में आपको पोडियम में ऊपर बुला के गोल्ड मेडल देते हैं, तो जो यूजुअली हम लोगों को मिलता है जीतने में, ये सबसे अलग फीलिंग है।
2: तो पाकिस्तान के खिलाफ इस जबरदस्त जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट फैंस सड़कों पर झूमते हुए नजर आए, शहर शहर इंडिया इंडिया का शोर सुनाई दिया।
6: सबसे बढ़िया मैच, अच्छा गेम खेला सबने, बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला।
7: गोल्ड मेडल जीत के आया इंडिया, वो हमको प्राउड ही फील करता है।
8: इंडिया की आज जीत हुई है, हम सब खुशियां मना रहे हैं।
9: नहीं नहीं, पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है कि इंडिया ने दूसरी बार एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता है।
3: कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सोने का तमगा जीता, जापान के नागोया में क्रिकेट का रोमांच फिजा में तैरने लगा। जहां भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत की खुशी में चहक रहे थे, जाहिर है वहीं पाकिस्तान के फैंस निराश दिखे।
10: भाई मजा आ गया, और स्पेशली मैच ऐसा नहीं था। यूजुअली क्या होता है कि हमेशा पाकिस्तान को ऐसे हम ऐसे हरा देते हैं, इस बार पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला।
6: सबसे बढ़िया मैच, अच्छा गेम खेला सबने, बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला पाकिस्तान ने, अच्छी अच्छा खेला आखिरी मैच, अच्छे बैटिंग की, गुड बॉल, वेरी गुड।
11: इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला, हमारे लड़कों ने भी फाइट किया, लेकिन इन द एंड इंडिया लास्ट ओवर में बहुत अच्छा खेला।
3: टीम इंडिया के जीतते ही पूरे देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। शहर शहर फैंस सड़कों पर झूमते नजर आए और खुलकर अपने जज्बातों का इजहार करते भी दिखे। क्या दिल्ली, क्या ग्वालियर, क्या राजकोट, हर तरफ से इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही थी।
7: मैं बहुत ही प्राउडली फील कर रहा हूँ, तो सभी गेम हम ही जीतते हैं, तो इस बार तो जो गोल्ड मेडल जीत के आया है इंडिया, वो हमको प्राउड ही फील करता है।
8: इतना अच्छा मैच हुआ, दोनों ही टीम अच्छा खेली है, लेकिन हमारी इंडिया हमेशा ही बढ़ चढ़ के खेलती है, हमारे सारे प्लेयर्स ही अच्छा खेलते हैं, और इंडिया की आज जीत हुई है, हम सब खुशियां मना रहे हैं, आगे भी ऐसा ही जीतते रहे इंडिया।
3: संगम नगरी प्रयागराज में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए और अपनी खुशियों का इजहार किया।
12: आज बहुत ही खुशी का है कि एशिया कप में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, ये जब विजय होती है पाकिस्तान को, तो जैसे हम लोग को जोश आ जाता है कि अपने दुश्मन को हमारा आ रहे हैं, एक गद्दार देश को हरा, आतंकवादी देश को हरा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को हरा के हम लोग एशिया कप का गोल्ड मेडल जीते हैं।
13: आज भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके एशिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जश्न मनाया, पटाखे बजाए।
14: आज भारतीय टीम को बहुत बधाई और टीम के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को बधाई, आज भारत ने फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी और गोल्ड मेडल लेके आ गया। हमारे भारतीय शुरुआत बहुत अच्छी की, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने गजब की शुरुआत की।
3: क्या आम क्या खास, शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने हर किसी का दिल जीत लिया।
15: You have any doubt about that? We know our team is much better. We are playing better and congratulations.
3: Pakistan ke khilaf gold match mein mili jeet mein opener Abhishek Sharma ki ahem bhagidari rahi. Is high voltage muqable mein Abhishek Sharma ne 61 run ki tez tarrar pari kheli. Is kamyabi par Abhishek Sharma ke ghar bhi jashn ka mahol hai.
16: Hindustan ke sabhi vasiyon ko mubarak ki aaj humne Asia Cup mein गोल्ड मेडल ले लिया है, और ये बहुत खुशी की बात है, सारे हिंदुस्तान वासियों को बहुत खुशी होगी कि हमारी इंडिया क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है।
3: वहीं जोधपुर में रवि विश्नोई के घर भी जमकर खुशियां मनाई गईं। परिवार को टीम इंडिया की कामयाबी पर गर्व है।
9: पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है कि इंडिया ने दूसरी बार एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता है और दोनों मैच में भी पिछले बार और इसमें भी रवि है, दोनों मैचों में रवि था और दोनों में गोल्ड मेडल जीता, तो हमें बड़ा गर्व हो रहा है और खुशी मतलब भूले नहीं समा रहे, इतनी खुशी हो रही है।
3: महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में भी एशियन गेम्स में गोल्ड, ये बताता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का क्या रुतबा है। बेशक इस गोल्डन चमक के पीछे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत और जज्बा है और यही जोश, जज्बा और जुनून करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के भरोसे का आधार है कि मौका कोई हो, मंच कोई हो, पाकिस्तान के खिलाफ जीतेगा तो इंडिया ही। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर भारत के इसी भरोसे को कामयाबी की सुनहरी खनक में बदल दिया है।
2: तो भारत ने शनिवार को कुल 9 मेडल जीते, इनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से हराकर 21वां गोल्ड हासिल किया है। फाइनल मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने डबल गोल किए। एशियन गेम्स के एक ही संस्करण में पहली बार भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती का गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया के हान को हराया। ये एशियन गेम्स में भारत का दूसरा रेसलिंग गोल्ड है। वहीं प्रणवी उर्स ने वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्फ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। वहीं आपको बता दें कि तीरंदाजी के वुमेन्स रिकर्व इंडिविजुअल में कुमकुम मोहोड ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत ने गोल्फ वुमेन्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। प्रणवी के साथ अदिति और दीक्षा डागर टीम में थी। वहीं बात अगर रेसलिंग की करें तो रेसलिंग में अंतिम बंगाल ने वुमेन्स 53 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं दीपक पूनिया ने पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिकर्व मेंस इंडिविजुअल में भारत के नीरज चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यानी भारत अब तक 21 गोल्ड मेडल सहित कुल 85 मेडल के साथ टेली में चौथे स्थान पर आ गया है। ये एशियाड में भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। साल 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित 106 मेडल जीते थे। जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चुनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्ट्रीट रेलवे पुल अंजी ब्रिज को पार किया तो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक सुनहरा चैप्टर जुड़ गया। इस कीर्तिमान की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
17: फीट की ऊंचाई और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर वंदे भारत ट्रेन ने बनाया रफ्तार का रिकॉर्ड तो दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर देखती रह गई। जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2 अक्टूबर को रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। ट्रेन ने पहली बार चुनाब रेल ब्रिज को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। इसी परीक्षण के दौरान ट्रेन ने अंजी ब्रिज को भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। चुनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। जो अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। दरअसल रेलवे ने कटरा बनिहाल रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम मंजूरी रफ्तार बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के साथ इस पहाड़ी रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। कटरा बनिहाल का करीब 111 किलोमीटर लंबा रेल सेक्शन पहाड़ों के बीच से गुजरता है। इस मार्ग पर कई सुरंगे और बड़े पुल हैं। पहले इस रूट के अलग अलग हिस्सों पर ट्रेनों की अधिकतम मंजूर रफ्तार 75 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। अब रेलवे ने इस पूरे सेक्शन पर अधिकतम मंजूर रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। ये बदलाव 2 अक्टूबर से लागू हुआ। इसके बाद ही वंदे भारत का 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार पर स्पीड टेस्ट किया गया। जिस पुल पर वंदे भारत ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी वो कोई सामान्य पुल नहीं है। चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर यानी 1178 फीट पर बना है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है। ये पुल बेहद कठिन पहाड़ी इलाके और खराब मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अंजी ब्रिज नदी की घाटी से करीब 331 मीटर यानी 1086 फीट ऊपर है। इसकी लंबाई करीब 725 मीटर है और इसे 96 हाई टेंसाइल केबल सहारा देते हैं। चिनाब ब्रिज के डिजाइन 120 साल की उम्र को ध्यान में रखकर की गई है और ये करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं को झेलने के लिए बनाया गया है। यानी जिस पुल पर ट्रेन ने 100 की रफ्तार पकड़ी वहां तक पहुंचना और उस पर इतनी रफ्तार से ट्रेन चलाना अपने आप में रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है। चिनाब और अंजी जैसे बड़े पुलों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का परीक्षण बताता है कि इस मुश्किल पहाड़ी रूट पर रेलवे धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव का सबसे सीधा फायदा जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस के रफेल,

0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है,

0: होती है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात, इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी, इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम, वाराणसी में भी होगा भव्य एयर शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान, आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक, नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन, कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा है एक्सपो मार्ट।

0: में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत पहले से ही नजर आने लगती है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
2: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
3: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
1: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
4: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
1: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
5: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदेव ने, दो दिन से जो खरा रोद उठ रहा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी, माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
1: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
6: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है, वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था। यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
1: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, इसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी जिसे एटेल माटी कहते हैं उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है, इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
7: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना, माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
8: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सदी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
1: कुम्हार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है, अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
5: इस साल में AI बनाया है मैंने, आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, एआई से एडिट हो रहा है, एआई से आपका 20 साल का 50 साल 100 साल 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो एआई अभी तो सब हो जाएगा एआई से। अभी जो एआई से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो एआई दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन एआई नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा एआई था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
1: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
9: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
10: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
6: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
10: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
6: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
9: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-10-15 मूर्ति बन रहा है।
1: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
11: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
10: आज क्या घूमने आए थे?
11: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
12: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
1: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआरपी। तो देखिए सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो है वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुमार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए, दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजो के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए, ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो है वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली है और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ। और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही है। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है वो बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, थोड़ा मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा आता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरे काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो देखिए, न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस भी सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाले सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
3: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
2: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
4: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
2: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
5: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
2: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं, बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
6: It's community and it's the people getting together, and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य एयर शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वीं कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा। युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इन्फॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट्स के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना क्यों जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। ये अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलियंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले UGVs विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना UGV व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला UGV व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की UGV लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना UGVs का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना UGVs 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना UGVs को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना UGV यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना UGVs का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
2: जंगल का दूसरा शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन वेवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जांपल है, जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं वो आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
2: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया। रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
3: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
3: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। जब अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
3: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयर फ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
3: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
4: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
3: रोबोटिक डॉग। में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
4: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
3: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
3: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रणक्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30M के आए शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है, जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं, ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

0: लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: इसीलिए खबर के
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धाव करण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वीं कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत पहले से ही नजर आने लगती है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती

0: है शिवली फूलों की महक। तभुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है, जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
4: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खड़ा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले माँ का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
5: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो है सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
0: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी जिसे एटेल माटी कहते हैं उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
6: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
7: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
4: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है लेकिन AI ने किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
8: ये बहुत पुराना संबंध है यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है एक, यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
3: तो यही क्या माता दुर्गा का प्राण केंद्र बन चुका है?
5: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
3: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
5: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
8: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है एक, यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-15 मूर्ति बन रहा है।
0: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते, माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आँखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं।
9: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
3: आज क्या घूमने ही आए थे?
9: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
1: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आँखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। तो देखिए, सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो हैं वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुमार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए, दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थी, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए, ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ, आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनावर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो देखिए, न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
3: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइट डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाले सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
4: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
3: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
4: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
3: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
5: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
3: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
4: It's community and it's the people getting together, and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
3: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वीं कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है, 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा। युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट्स युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन के अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है। जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन वेवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं और आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइंड क्लियर किया और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन्ड सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
2: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
1: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं, ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में। 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
1: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
0: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायु सेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का रफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30MKI शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है, जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं, ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: हम लोगों को।
1: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वीं कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहाँ वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत पहले से ही नजर आने लगती है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी।

0: वो कहानी जो शुरू होती है एक काट के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
1: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
2: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
0: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है, जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
3: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है, जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से। और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
0: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
4: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदय ने, दो दिन से जो खरा रोद उठ रहा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी, माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पाटिए आके ले जाएगा।
0: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
5: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है, वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर है।
0: वास्तव में में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
1: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफर है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
6: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
0: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में AI की झलक भी दिखाई देने लगी है।
4: इस साल में AI बनाया है मैंने। आजकल AI से सब हो रहा है, AI से पढ़ना होता है, AI से एडिट हो रहा है, AI से आपका 20 साल का 20, 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था वो AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
0: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
7: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग पूजा कबड्डी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
8: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
5: एकदम 100% इसमें कोई दो राय नहीं है।
3: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
5: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
7: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे दस मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में दस दस पंद्रह मूर्ति बन रहा है।
0: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजो से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
8: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
3: आज क्या घूमने ही आए थे?
8: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
1: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
0: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं, तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है, तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआरपार्क। तो देखिए सीआरपार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो है वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुम्हार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब चार महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजो के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: तो देखिए, न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
3: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमानों और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाले सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
4: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
3: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
4: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
3: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल, फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल, कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल, अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन, F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी, इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम, वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान, आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक, नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन, कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा। युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा ये किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन के अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है। जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है, जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेना के आगे गए हैं, वो आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइंड क्लियर किया, और जरूरत पड़ने पर आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है, और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुंचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन्ड सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
2: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान ऊबड़ खाबड़ जमीन ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
1: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
1: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
0: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30MKI शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है, जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धाव करण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर। बाकी जगहों पर तो उत्सव के रंग नवरात्र में बिखरेंगे, लेकिन कोलकाता का एक कोना ऐसा भी है जहां वास्तव में उत्सव पूजों की शुरुआत पहले से ही नजर आने लगती है। कोलकाता का कुमारटुली इलाका देवी प्रतिमाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है। कुमारटुली में इन दिनों माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मूर्तिकार अपनी अपनी कल्पना के आधार पर अपने अपने हिसाब से माँ के स्वरूप को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमारटुली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
2: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
3: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
1: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
4: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं।

0: माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
1: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुमुरतुली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
2: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्यदेव ने, दो दिन से जो खरा रोद उठा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी। माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मौला जब आएगा तब वो मेरा घर से चाटो प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
1: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले मां का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
3: यहां पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहां पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था, यहां पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो है सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है। और अभी तक लोग आप देख, अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
1: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी, जिसे एटेल माटी कहते हैं, उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
4: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग, है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजावा रूप देखते हैं, और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते हैं और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है, और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
5: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सजी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
1: कुमार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है, अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में एआई की झलक भी दिखाई देने लगी है।
2: इस साल में एआई बनाया है मैंने, आजकल एआई से सब हो रहा है, एआई से पढ़ना होता है, एआई से एडिट हो रहा है, एआई से आपका 20 साल का 50 साल 100 साल 300 साल का वही देश में कौन राजा था ओ AI अभी तो सब हो जाएगा AI से। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिन्मय रूप मैंने दिया।
1: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
6: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है, एक यहाँ पे मूर्ति सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग का पूजा कमेटी मूर्ति लेता है, आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं, ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
7: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
8: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
7: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा की यहाँ से ले जा रहे हैं?
8: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
6: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है, एक यहाँ पे मूर्ति सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-10-15 मूर्ति बन रहा है।
1: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आंखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं।
9: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत जिसको बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस हुआ, और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
7: आज क्या घूमने ही आए थे?
9: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
10: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ, और ये मतलब ये सुना बहुत था मैम लोग से, बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा। तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है बहुत सुंदर।
1: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आंखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियां गवाह हैं उस अटूट विश्वास की जहां इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। तो देखिए, सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो है वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुमार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए, दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए, ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है वो बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं। ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, तो मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देखिए न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
4: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस भी सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाले सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
5: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
4: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
6: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
4: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
7: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
4: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं, बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
8: It's community and it's the people getting together, and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
4: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वें कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं।
1: यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके।
0: आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
2: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
1: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
2: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे।
1: ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
2: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
1: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
2: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है जिसको कहा जाए, जहाँ पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं वो आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
1: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
3: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सकें।
1: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
3: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
2: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
2: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
4: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
4: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
3: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
0: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
3: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायुसेना के पराक्रम की अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़ते हुए नजर आए। इसमें भारत का तेजस, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-35 और SU-30M के आए शामिल थे। ये दुर्लभ तस्वीर दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। दरअसल जोधपुर में हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 हो रहा है, जिसमें भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स शामिल होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपसी तालमेल को बढ़ा रहे हैं ताकि मौका पड़ने पर वो एक साथ मिलकर दुश्मन को सबक सिखा सके।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से दी मात। इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा। भारत ने क्रिकेट, गोल्फ, रेसलिंग और आर्चरी में भी जीते गोल्ड मेडल। कुल 21 स्वर्ण पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित जीते कुल 85 मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया अपना दमखम। पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर सोने पर जमाया कब्जा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान आसमानी उद्धावकरण कौशल। अमेरिका, भारत और फ्रांस के फाइटर जेट्स का अनोखा फॉर्मेशन। F-35 के साथ तेजस, राफेल और SU-30 MKI ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के लिए स्पेशल प्रोमो किया गया जारी। इस साल अटल अभेद्य सटीक है एयरफोर्स की थीम। वाराणसी में भी होगा भव्य शो। नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन का एक्शन प्लान। आज शाम 4 बजे के बाद पहाड़ पर चढ़ने पर लगी रोक। नीचे उतरने वाले वाहनों को दी जाएगी तरजीह। उत्तर प्रदेश के भदोही में 50वीं कारपेट एक्सपो की तैयारियां तेज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कालीनों के शानदार नए डिजाइन से सज रहा एक्सपो मार्ट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो देखिए, देश में त्योहारों के मौसम की शुभ शुरुआत होने वाली है और देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में मंदिर और पंडाल जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। यूं तो देश भर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है पश्चिम बंगाल पर।

0: रूप देने में जुटे हुए हैं। तो चलिए ऐसे में आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कुमार टोली की कहानी और क्यों सारा कोलकाता माँ की प्रतिमाओं के लिए हुगली किनारे बसे इसी मोहल्ले का रुख करता है।
1: कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सोता है इतिहास के पालने में, और एक रोज जब शरद ऋतु की हवाओं में घुल जाती है शिवली फूलों की महक, तब हुगली की ओर से आते मध्यम झोंकों के बीच कला की उंगलियां सहलाकर जगाती हैं जिसे, और जाग उठता है ये शहर साल के सबसे बड़े उत्सव के लिए। और इसी शहर के कोने में चुपचाप शुरू हो जाती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकार देने की कहानी। वो कहानी जो शुरू होती है एक काठ के टुकड़े से, एक बिना तराशे पत्थर से और माँ गंगा की मिट्टी से। ये कहानी है उसी मिट्टी के साक्षात महामाया बन जाने की।
2: माँ का इतना अद्भुत यहाँ होता है कि माँ आती हैं और मतलब बेटी हैं वो, तो कैसे उसका सब कुछ होता है, उनका सजावट और वो देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर है।
3: कलकत्ता का नहीं, वो सारा वर्ल्ड में फेमस है।
1: उत्तरी कोलकाता में हुगली के किनारे बसा कुम्हार टोली, बंगाली में कुमोर यानी कुम्हार और टोली यानी बस्ती। लगभग 300 साल पुराना ये इलाका सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि कला का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर साल आकार लेता है माँ दुर्गा का वो भव्य रूप जिस पर शब्दकारों ने मुक्त कंठ से स्तुतियां पढ़ी, चित्रकारों ने प्रतिबद्ध होकर चित्र बनाए और मूर्तिकारों ने गढ़ी मूर्तियां। कोलकाता का कुम्हार टोली उन्हीं मूर्तिकारों की बस्ती है जहां के कारीगर अपने अपने दृष्टिकोण से रचते हैं माँ का ये महारूप।
4: कुम्हार टोली की मिट्टी की खुशबू ये एहसास दिलाता है कि बंगाल की सबसे श्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, और इस समय हम कुम्हार टोली में ही उपस्थित है जहां से बंगाल के मैक्सिमम पंडाल्स में माता दुर्गाओं की मूर्ति पहुंचती है। माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुम्हार टोली से, और इस बीच कुम्हार टोली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। जो मृत शिल्पी है, जो आर्टिस्ट है, वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं माताओं की मूर्ति रेडी करने के लिए।
1: बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा नवकृष्ण देव ने अपने घर में दुर्गा पूजा की शुरुआत करवाई, तब वे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए बंगाल के ही कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों से कुछ कुशल कारीगरों को लेकर यहाँ आए। धीरे धीरे ये कारीगर हुगली नदी के पास इसी इलाके में बस गए, जिसे आज कुम्हार टोली या कुम्हार टोली कहा जाता है। दिन गुजरते गए, गंगा नदी के किनारे की ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी इन कारीगरों का नसीब बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पिता और पिता से बेटे तक ये हुनर इस मिट्टी की तरह ही यही ठहर गया। आज भी इन कलाकारों के वंशज कुम्हार टोली की छोटी तंग गलियों में माँ की प्रतिमा गढ़ते हैं। जगह कम है पर माँ का आशीर्वाद बड़ा है। अब के साल भी ये कलाकार तन मन से माँ का स्वरूप गढ़ने में जुटे हैं।
5: जो इतना दिन बारिश था उससे तकलीफ हुआ था, अभी जो बारिश दिया है सूर्योदेव ने, दो दिन से जो खड़ा रोद उठ रहा वो हम लोग का अच्छा है। माने एक घंटा दो घंटा में जो मिट्टी का काम होता है, अभी लास्ट टाइम में जो मिट्टी का काम को होता है वही अभी सूख रही है, ठीक है। तो और दो दिन लगेगा, फिर रंग पेंट पेंट होगा, फिर हो जाएगा कपड़ा। और मेरा 90% काम हो गया कलर का, अभी चल रही है साड़ी, माँ का जो साड़ी है अभी साड़ी चल रही है, इसके बाद आएगा ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स बाल जो है उस लगा के फिर मोहल्ला मौला जब

0: आएगा तब वो मेरा घर से चारों प्रतिमा पार्टी आके ले जाएगी।
1: कोलकाता के कई बड़े पंडाल कुम्हार टोली से ही मूर्तियां ले जाते हैं। महीनों पहले मूर्तिकारों को बता दिया जाता है कि माँ के स्वरूप में अब की बार क्या खास होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और अपनी कल्पना के आधार पर कुम्हार टोली के कलाकार मूर्ति बनाने में जुट जाते हैं। महीनों तक काम चलता है और आखिरकार नवरात्र से पहले माँ का स्वरूप बनकर तैयार हो जाता है।
2: यहाँ पर हम जो चाहते वही मिल जाता है। वहाँ पर बागमारी में ये फैसिलिटी नहीं था। यहाँ पर हम जैसा बोलते हैं ये लोग वैसे ही बना देते हैं। अलग है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला हुआ रहा है। बागमारी का जो है और आदर्श जगह जो सब नया बना हुआ है, ये ब्रिटिश जमाना से चला हुआ आ रहा है और अभी तक लोग आप देख अगर आप यहाँ सर्वे कीजिएगा देखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति यहीं पर।
1: वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल कला का प्रदर्शन भर नहीं है बल्कि ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ की मूर्ति का निर्माण शरीर की तरह ही पांच तत्वों से शुरू होता है, लकड़ी, बांस, पुआल, रस्सी और गंगा की मिट्टी। सबसे पहले बांस और लकड़ियों की मदद से मूर्ति का मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है जिसे बंगाली भाषा में काठमो कहा जाता है। इस ढांचे पर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर बांस के ढांचे को सूखे पुआल से अच्छी तरह बांधा जाता है। इसके बाद गंगा नदी के तट की चिकनी मिट्टी जिसे एटेल माटी कहते हैं उसे धान की भूसी के साथ मिलाकर पहली मोटी परत चढ़ाई जाती है। मूर्ति को धूप में सुखाया जाता है और दरारों को कपड़ों की पट्टी से भरा जाता है। पहली परत सूखने के बाद बेले माटी यानी बारीक चिकनी मिट्टी की दूसरी परत लगाई जाती है। इससे मूर्ति को चिकना, गोल और सुंदर आकार मिलता है। इस चरण में चेहरे, हाथों और उंगलियों को बारीकी से गढ़ा जाता है। मूर्ति पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सफेद रंग का प्राइमर या बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा को सुंदर रंगों से सजाया जाता है। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम धार्मिक अनुष्ठान चोखू दान की, जिसमें महालया या पूजा से ठीक पहले देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अंत में मूर्ति को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और बालों से सजाया जाता है।
3: इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग है ना। माँ को हम लोग पंडाल हॉपिंग में जब जाते हैं तो उनका पूरा सजा हुआ रूप देखते हैं और यहाँ पर आज हम कैसे शुरुआत होती है, कैसे पुआल और मिट्टी से उनको एक पहले एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसकी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्राइमर और कलर और फिर ज्वेलरी, तो वो जो पूरी की पूरी जर्नी हम पहले शुरू गली से शुरू होते और गली के अंत तक आते आते माँ का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाता है और यहाँ से फिर जो पंडाल तक का सफ़र है वो बिल्कुल ही अद्भुत रहता है। आप सोच नहीं सकते कि वो पंडाल में लाइट्स के साथ में जो वो इफेक्ट आता है, ये मूर्ति जो यहाँ पे हम देखते हैं वो और भी भव्य हो जाती है।
4: वेट करने के बाद ये वाला माँ का रूप देखने को मिलता है, नहीं तो आप देखेंगे बस सदी धजी माँ पंडाल में दिख जाती है लेकिन ये वाली चीज़ कहीं नहीं दिखती, तो इसके लिए वेट करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है और कलर्स की जो महक आ रही है बहुत अच्छी है।
1: कुम्हार टोली में अब कई तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक एकचाला मूर्तियाँ होती हैं, जिनमें सारे देवता एक ही ढांचे में बनाए जाते हैं, तो वहीं आधुनिक थीम पर आधारित मूर्तियाँ भी ऑर्डर पर अब तैयार होती हैं, जिनमें सामाजिक संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी गढ़ी जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कुम्हार टोली भी बदला है। अब तो यहाँ माँ की मूर्ति के निर्माण में एआई की झलक भी दिखाई देने लगी है।
0: इस साल में एआई बनाया है मैंने। आजकल एआई से सब हो रहा है, एआई से पढ़ना होता है, एआई से एडिट हो रहा है, एआई से आपका 20 साल का 50 साल, 100 साल, 300 साल का वही देश में कौन राजा था ओ एआई अभी तो सब हो जाएगा एआई से। अभी जो एआई से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया। ठीक है, उसको जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो एआई दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस वही फेस मैंने रखा है, लेकिन एआई नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा एआई था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया।
1: एक ही छत के नीचे माँ के अनंत रूप यहाँ नजर आते हैं। यही वजह है कि कोलकाता ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग मूर्तियाँ लेने यहाँ पहुँचते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। हाँ, यहीं से हम लोग पूजा कमेटी मूर्ति लेता है। आज बहुत दिन से हम लोग यहीं से लिए जा रहे हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मिल भी जाता है, आते हैं हर बार, हर तरह का देख के लेके जाते हैं।
6: तो यही क्या माता दुर्गा क्या प्राण केंद्र बन चुका है?
2: एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
6: आप लोगों का पंडाल के दुर्गा प्रतिमा के यहाँ से ले जा रहे हैं?
2: यहीं से ले जा रहे हैं, सामने ही मेरा मूर्ति बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं।
5: ये बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पे आज प्राचीन काल से चले आ रहा है। एक यहाँ पे मूर्ति, सारा मूर्ति यहीं पे बनता है, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है और हम लोग भी आज बचर बचर यहीं से आके लेके जा रहे हैं। इसके इतना बड़ा जगह तो कहीं है भी नहीं ना, अगर है भी तो वहाँ पे दो चार मूर्ति बन रहा है, चाहे 10 मूर्ति बन रहा है, मगर यहाँ पे तो आप एक एक घर में 10-10-15 मूर्ति बन रहा है।
1: दुर्गा पूजा के शुभारंभ से पहले कुम्हार टोली में मूर्तियाँ लेने वालों के बीच ही सेल्फी लेते, माँ के अर्ध निर्मित रूपों को निहारते सैलानियों की भी भरमार है। कहते हैं दुर्गा पूजा में कोलकाता की रौनक निराली होती है, लेकिन पूजों से पहले वो सारी रौनक कोलकाता के इस एक इलाके में सिमटी नजर आती है, जहां माटी से माँ को गढ़े जाने की यात्रा को अपनी आँखों से देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं।
7: एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
6: आज क्या घूमने ही आए थे?
7: जी बिल्कुल, ये दर्शन देवी माँ के अभी दर्शन करने आए थे हम लोग।
8: मैं भी पहली बार कोलकाता में आई हूँ और ये मतलब ये सुना बहुत था, मैम लोग से बहुत सुना था, तो मुझे बहुत ही मैं उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा। अभी मैंने माँ का जो मूर्ति बनते हुए कैसे बनाते हैं और कितने मेहनत से बनाते हैं वो देखा, और कितने लगन से बनाते वो चीज़ देखा, तो वो चीज़ महसूस कर रही हूँ कि सच में माँ का कैसे, माँ मतलब वो फील आता है ना, वो फील आ रही है, बहुत सुंदर।
1: और महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद इसी यात्रा के अंत में आता है वो पल जिसे चोखू दान कहा जाता है। महालया के दिन जब मूर्तिकार माँ की आँखों की अंतिम लकीर खींचते हैं तो मिट्टी का वो ढांचा जीवित हो उठता है। कुम्हार टोली की संकरी अंधेरी गलियों से निकलकर जब ये मिट्टी की प्रतिमा कोलकाता के भव्य पंडालों में रोशनी से चमकती है तो पूरा शहर उत्सव के उल्लास से गमक उठता है। ये मूर्तियाँ गवाह हैं उस अटूट विश्वास की, जहाँ इंसान अपनी आस्था और मेहनत के दम पर मिट्टी से निराकार को साकार कर लेता है। कोलकाता के कुम्हार टोली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बंगाल की, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में बसे छोटे बंगाल यानी दिल्ली का सीआर पार्क। तो देखिए, सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पे थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल जो है वो सजाए जाते हैं। इनमें काली बाड़ी मंदिर में लगने वाला पंडाल की चर्चा और तैयारी तो दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। कोलकाता के कुमार टोली की तरह भी यहाँ भी प्रतिमा निर्माण की अपनी ही परंपरा है। हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले यहाँ पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियों को तैयार किया जाता है। 1970 के दशक से ये जो परंपरा है यूं ही निभाई जा रही है। और देखिए, दोनों में फर्क बस इतना है कि शुरुआत में इस वर्कशॉप में कुछ ही मूर्तियां आकार लेती थीं, लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। हर साल पूजों के समय सीआर पार्क की रौनक देखने लायक होती है। तो चलिए, ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क और दिखाते हैं तैयारी दुर्गा पूजा की।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही है। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है वो बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली, अगर आपको याद हो तो ये वो स्टेज होती है सामने, जहाँ पर पंडाल सजाया जाता है, माँ की मूर्ति को लाया जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रफ यहाँ पर स्टेज तैयार की गई है, लेकिन चलिए मेरे साथ आपको मैं वर्कशॉप में लिए चलती हूँ और देखते हैं कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। आइए।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियाँ तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियाँ दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ से भेजी जाती हैं, और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये मूर्तियाँ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है, तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं, और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, थोड़ा मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है, जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी है स्पेशल,
1: जो आप बना ही रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं, और बाकी यूपी का पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है, वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकर कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकर होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो देखिए, न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक डिनर पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला, और वो जो रंग था वो था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आना था, बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद ही लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। तो चलिए, ऐसे में आपको दिखाते हैं शानदार पार्टी की हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस ही सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल, कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाली सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
3: I love showing people that beauty is still essential part of life, and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life, and this is my best chance.
2: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
4: I like the environment, I like the fun, I like the idea, and I like being part of something like this. That is every type of other people like us.
2: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ डॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
5: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
2: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं, बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
6: It's community and it's the people getting together, and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,